ये आकाशवाणी का नजीबाबाद केंद्र है। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्स पर। सवेरे के 6 बजने क्यों हैं, कुछ ही पलों में आप समाचार सुनेंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिएगा।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ बातचीत करेंगे। दोनों नेताओं के बीच व्यापार, रक्षा, प्रौद्योगिकी, शिक्षा और जनसंपर्क मजबूत करने पर चर्चा होने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भारत ऑस्ट्रेलिया मुख्य कार्यकारी अधिकारी मंच को भी संबोधित करने का कार्यक्रम है। श्री मोदी मेलबर्न में प्रवासी भारतीयों से भी बातचीत करेंगे। श्री मोदी ऑस्ट्रेलिया की 3 दिन की यात्रा पर कल शाम मेलबर्न पहुंचे थे। प्रधानमंत्री ने मेलबर्न में भारतीय समुदाय का गर्मजोशी से स्वागत के लिए आभार व्यक्त करते हुए इसे अविस्मरणीय बताया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि स्वागत समारोह में स्थानीय कलाकारों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए।
1: सांस्कृतिक प्रस्तुति की शुरुआत ऑस्ट्रेलिया के पारंपरिक वाद्य यंत्र डिडजेरिडू और भारतीय तबले की अनूठी जुगलबंदी से हुई। कार्यक्रम का समापन ऑस्ट्रेलिया इंडिया ऑर्केस्ट्रा की प्रस्तुति से हुआ। कलाकारों ने एआर रहमान के प्रसिद्ध गीत माँ तुझे सलाम की सिम्फनी प्रस्तुति देकर दर्शकों का मन मोह लिया।

0: मेलबर्न से सुहास राम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: ऑस्ट्रेलिया में भारत के उच्चायुक्त नागेश सिंह ने बताया कि एक दशक में श्री मोदी की ऑस्ट्रेलिया की तीसरी यात्रा द्विपक्षीय संबंधों में महत्वपूर्ण प्रगति दर्शाती है। उच्चायुक्त ने कहा कि दोनों देशों के बीच कई क्षेत्रों में सहयोग में वृद्धि भारत ऑस्ट्रेलिया संबंधों की मजबूती और विविधता दर्शाता है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देश में कृषि अर्थव्यवस्था को नई गति दे सकता है। उन्होंने कहा कि एआई के उपयोग से प्रत्येक किसान सालाना लगभग 5,000 रुपए की बचत कर सकता है। नई दिल्ली में कल 17वें कृषि नेतृत्व सम्मेलन में डॉक्टर सिंह ने कहा कि कृषि स्टार्टअप भारत के कृषि क्षेत्र का भविष्य है। केंद्र सरकार ने किसानों के हितों के लिए तमिलनाडु के किसानों से खोपरा और तोतापुरी आमों की खरीद को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कहा कि इससे उत्पादकों को बेहतर मूल्य मिलेगा और उन्हें बाजार में उतार चढ़ाव की कीमतों से राहत मिलेगी। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने किसानों के हितों की रक्षा और उनका विश्वास बहाल करने के लिए तंबाकू कंपनियों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर तंबाकू की खरीद प्रक्रिया तत्काल शुरू करने का निर्देश दिया है। अमरावती में अधिकारियों और व्यापारियों के साथ तंबाकू खरीद की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि तंबाकू की कीमत 200 रुपए प्रति किलोग्राम से कम नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कंपनियों से नीलामी प्रक्रिया में तेजी लाने का भी निर्देश दिया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज ओडिशा के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान उपराष्ट्रपति भुवनेश्वर स्थित ओडिशा कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में खुले समुद्र में मत्स्य पालन के लिए प्राधिकरण पत्र जारी करेंगे। श्री राधाकृष्णन ओडिशा डीप सी फिशिंग मिशन दस्तावेज का भी विमोचन करेंगे। इसके बाद उपराष्ट्रपति भुवनेश्वर स्थित राष्ट्रीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान खुर्दा के 15वें दीक्षांत समारोह में भाग लेंगे। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के चालू वर्ष में 7% की वृद्धि दर के अनुमान के साथ भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के रूप में अपना स्थान बरकरार रखे हुए है। IMF द्वारा कल जारी की गई प्रमुख अर्धवार्षिक रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक अपडेट के अनुसार अगले वर्ष भारत के सकल घरेलू उत्पाद GDP में 6.4% की मामूली वृद्धि का अनुमान है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने CSIR UGC NET जून 2026 परीक्षा के लिए

0: प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। ये परीक्षा 17 और 18 जुलाई को आयोजित की जाएगी। परीक्षार्थी अपना प्रवेश पत्र आधिकारिक वेबसाइट www.csirnet.nta.in पर डाउनलोड कर सकते हैं। अमरीकी सेना ने कहा है कि वो ईरान पर फिर से हवाई हमले कर रही है। ये हमले एक दिन पहले होर्मुज जलडमरू मध्य में ईरान द्वारा जहाजों पर किए गए हमलों के बाद शुरू हुए। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 2-3 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के उत्तरी अरब सागर के शेष हिस्सों राजस्थान, हरियाणा और पंजाब में पहुंचने की संभावना है। वहीं राजधानी दिल्ली में रात से वर्षा जारी है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। सवेरे के 6:05 हो रहे हैं। प्रस्तुत है भक्तिमय कार्यक्रम वंदना। उगती हुई ये नई भोर अपने साथ नई ऊर्जा, नई आशा और ईश्वर की असीम कृपा का संदेश लेकर आई है। आइए दिन की शुरुआत करते हैं भक्ति, श्रद्धा और आत्मिक शांति के सुरों के साथ और कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं गुरु महिमा को समर्पित इस भावपूर्ण भजन से।

श्रद्धा और विश्वास के प्रतीक शिरडी के साईं बाबा का नाम लेते ही मन में अपनापन और शांति का एहसास जाग उठता है। उनकी कृपा सब पर बनी रहे, आइए उनकी इसी कामना के साथ हम अर्चना करते हैं।

गुरुवाणी के शब्द केवल शब्द नहीं बल्कि जीवन को सत्य, सेवा और सदाचार का मार्ग दिखाने वाली दिव्य वाणी है। इसका हर शब्द मन को शांति और जीवन को नई प्रेरणा प्रदान करता है। जब हम श्रद्धा और समर्पण के साथ गुरुवाणी का श्रवण करते हैं तो मन में प्रेम, विनम्रता और ईश्वर के प्रति अटूट विश्वास का भाव जागृत होता है।

उस मालिक की याद और इबादत की इस महफिल में अब पेश है एक पुरनूर और दिलनशी नात, अल्लाह ताला की रहमत और हुजूरे अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में अकीदत के जज्बात से सजा ये कलाम मोहब्बत, अमन और इंसानियत का पैगाम देता है। इसकी हर सदा दिलों में ईमान की रोशनी जगाती है और रूह को सुकून और इत्मीनान अता करती है। आइए पूरे अदब और एहतराम के साथ मुलाहिजा फरमाएं ये खूबसूरत नात।

और आत्मिक शांति से भर दिया है। आइए कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर प्रभु की आरती में अपने मन को पूर्णतः समर्पित करते हैं और उनकी असीम कृपा, सुख समृद्धि तथा मंगल जीवन की हम सभी कामना करते हैं।

इन्हीं मंगलमय स्वरों के साथ आज का भक्तिमय कार्यक्रम वंदना अब यहीं पर संपन्न होता है। अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 6:30 हुए हैं। अब सुनिएगा श्री रामचरित मानस गान से आज का प्रसंग। सतीश भाटिया के संगीत निर्देशन में स्वर है सुरेश वाडेकर का।

निषाद राज के साथ भरत प्रयाग के मार्ग पर अग्रसर हैं। उन स्थानों को देखकर उनका मन परिताप से भर उठता है जहां कभी श्री राम ने रात्रि विश्राम किया था। कुशों की साथरी और सोने के उन कणों को देख जो सीता जी के वस्त्राभूषणों से गिर पड़े होंगे, भरत विचलित हो जाते हैं। जिन सुकुमारी के श्वसुर महाराज दशरथ थे, जिनके पिता योग तथा भोग दोनों के स्वामी राजा जनक हैं, उन पतिव्रता शिरोमणि सीता जी का ऐसा बिछावन देख किसका हृदय नहीं फट जाएगा। कोमल स्वभाव तथा स्वामी भक्ति की प्रतिमूर्ति लक्ष्मण सरीखे छोटे भाई वन में न जाने किन विपत्तियों का सामना कर रहे होंगे। स्वयं श्री राम जो शील सुख और समस्त गुणों के सागर हैं, कुशा बिछाकर पृथ्वी पर सोते हैं। भरत का परिताप इस सोच से और भी गहरा हो जाता है कि अपनी आंखों से ये सब कुछ देखकर भी उनकी छाती क्यों नहीं फट जाती। हे शंकर, क्या उनका हृदय वज्र से भी अधिक कठोर हो गया है?

0: आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस कान से आज का प्रसंग। ये आकाशवाणी का नजीबाबाद केंद्र है। सवेरे के 6:40 हुए हैं। अब सुनिएगा आज का चिंतन।
1: ये बुद्धिमत्ता है कि हम अपने विचारों पर विश्वास करते हैं। जो हमारे लिए सत्य है वही दूसरों के लिए भी सत्य है। इसका मुख्य कारण ये है कि हमारे अंदर जो आत्मा है वही आत्मा सभी मनुष्यों में है। अतः हमारा व्यक्तिगत विचार सार्वभौम या सर्वव्यापी हो जाता है। एक मनुष्य को ये सीखना चाहिए, उसे खोज करना चाहिए और देखरेख करनी चाहिए कि उसके अंदर एक ज्योतिपुंज है जो उसके मानस को अंदर से प्रकाशित करता है। ईश्वर ने मनुष्य को मनुष्यों में विभाजित कर दिया। इन सभी की एकता किसी उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए आवश्यक है। जैसे हमारे हाथ की अंगुलियां विभाजित हैं, परंतु किसी कार्य को संपादित करने के लिए उनका एकीकरण आवश्यक है। पूरे समाज में वही एक व्याप्त है। समाज के विभिन्न सदस्यों, विद्वान, पुजारी, राजनीतिज्ञ, उत्पादक एवं सैनिक आदि में वही एक मनुष्य है। लेकिन दुर्भाग्यवश इस तथाकथित विभाजन को वास्तविक मानकर उसमें विभाजन एवं पुनर्विभाजन करके ऐसी बूंद का रूप प्रदान कर दिया गया है जिसे एकत्रित करना कठिन लगता है। हम समाज को और समाज में रहने वाले मनुष्य को उनके विभिन्न अंगों के रूप में देख रहे हैं जो उसकी एकता से अपने को दूर रखे हुए है। मानव का मानव से प्यार ही हमें इस एक की ओर ले जा सकता है और यही मानव के लिए खुशी का हार होगा। यदि ऐसा होता है तो ऐसे व्यक्तियों का एक देश अस्तित्व में आएगा जिसमें सभी लोग ये विश्वास करेंगे कि यही दैवी आत्मा की प्रेरणा है जो सभी मनुष्यों को प्रेरित करती है। आत्मा की ये एकता मैंने भारतीय वांग्मय, विशेषकर वेद, श्रीमद् भागवत गीता, विष्णु पुराण एवं कठोपनिषद से सीखा है, जहां मौलिक एकता अर्थात सारे सत्ताओं का एक सत्ता में समन्वय

0: इस जगत में नाप तौल की एक इकाई है, उसी में प्रकृति के सब नियम निहित हैं। मैं ये विश्वास करता हूँ कि मनुष्य ने स्वयं अपने को गलत बना दिया, वो अपने अस्तित्व को खो बैठा है। हमें वो मनुष्यत्व पुनः वापस प्राप्त करना होगा। संपूर्ण इतिहास अथवा आत्म परिचय का मूल्य ही यही है कि उससे मनुष्य का आत्मविश्वास बढ़ता है। उसे ये देखना है कि मनुष्य क्या हो सकता है और क्या कर सकता है। उसे स्वयं अपने को जानना चाहिए। स्वयं अपने को जानकर वो संपूर्ण मानव जगत के बारे में जान जाता है। यही उसके जीवन का उद्देश्य है। व्यक्ति घटनाओं को बनाता है और घटनाएं व्यक्ति को। भाग्य अपरिहार्य है, परंतु केवल भाग्य पर ही आधारित रहना जगत को गलत सिद्ध करना है। भाग्य के साथ हमें कर्म रूपी शक्ति का भी प्रयोग करना चाहिए। हमें भाग्यवाद की आवश्यकता के सामने अपनी शक्ति का समर्पण नहीं करना है। वो लोग जो बहुत अधिक भाग्यवादिता की बातें करते हैं, बुराइयों को जिससे वे डरते हैं आमंत्रित करते हैं। इत्यर्थ हमें अपने कर्म शक्ति का प्रयोग करना चाहिए, सभी कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, परंतु कर्तव्य पालन बुद्धि पर आधारित हो।
1: आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से आप सुन रहे थे कार्यक्रम आज का चिंतन। सुबह के 6:45 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम काव्यधारा। काव्यधारा कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे नीलम मिश्रा का पूर्व प्रसारित काव्य पाठ।
2: एक घनाक्षरी देखें, ज्ञान और विवेक से सींच के ये सारा जग, वाणी के प्रसाद से जग को संवार दे। हंस सवारी तेरी उससे कहो ये मातु, निरचिर का विवेक मन में उतार दे। जग में बड़े हैं पाप, बेचते हैं बेटी बाप, ऐसे पापियों को मातु सद ज्ञान सार दे। माता सारे जग से पापों को तू दूर कर, दुखियों के मातु सारे दुखड़े निवार दे। एक घनाक्षरी और देखें, प्रेम रंग में रंगे बरसने लगे जो मेघ, फुवारे बांसुरी की तान लगने लगी। हवाओं में कृष्ण की हंसी सुनाई देती है, सृष्टि सांवरे का परी धान लगने लगी। कल रात सांवरा जो सपने में आया सकी, जीवन से कोई पहचान लगने लगी। जाने किस आसन पे बिठा दिया सखीरी, धरती ये स्वर्ग के समान लगने लगी। धरती ये स्वर्ग के समान लगने लगी। चंद पंक्तियां और देखें, इंसानियत को ताक पर रख कर चला गया, सैलाब में वो गम के डुबो कर चला गया। पत्थर नहीं पिघलते।

हाथ लेकर सिकंदर चला गया। खाली हाथ लेकर सिकंदर चला गया। एक मतला शेर देखें, जाने उसने किस लिए मुझको जगाया बार बार, जाने उसने किस लिए मुझको जगाया बार बार, ख्वाब में एक अजनबी ख्वाब आया बार बार, आंखें बंद की के सो जाऊं जरा, आंखें बंद की के सो जाऊं जरा, चीखने लगता है खामोशी से एक साया बार बार, चीखने लगता है खामोशी से एक साया।

बार बार, वो राहते जहाँ कभी दोबारा दिखा ही नहीं, वो राहते जहाँ कभी दोबारा दिखा ही नहीं, बस एक बार दिखा चांद फिर दिखा ही नहीं। भुलाकर भी उसे भुला न सके हम, भुलाकर भी उसे भुला न सके हम, तेरा ख्याल कभी छोड़कर गया ही नहीं। चंद शेर और देखें। हमेशा काम करता था कोई भी मौसम हो, हमेशा काम करता था कोई भी मौसम हो, तमाम उम्र वो पिता कभी थका ही नहीं, तमाम उम्र वो पिता कभी थका ही नहीं। तमाम उम्र कैद में गुजारी उसने, तमाम उम्र कैद में गुजारी उसने, वो जिसने कि कोई जुर्म किया ही नहीं। ये क्या हुआ जिसे बोलना सिखाया था, ये क्या हुआ कि जिसे बोलना सिखाया था, बड़ा हुआ तो हमसे बोलता ही नहीं, बड़ा हुआ तो हमसे बोलता ही नहीं। चंद शेर और देखें। अब भी बड़ी शिद्दत से है इंतजार आपका, अब भी बड़ी शिद्दत से है इंतजार आपका, क्यों उतरता नहीं खुमार आपका। मैंने चेहरे से तो नजरें हटा ली थी मगर, मैंने चेहरे से तो नजरें हटा ली थी मगर, ख्याल आता रहा बार बार आपका। जब भी होगा कभी मुकाबला किसी से, जब भी होगा कभी मुकाबला किसी से, चंद लोगों में होगा शुमार आपका, चंद लोगों में होगा शुमार आपका। एक गीत देखें। चांद

सनम रात भर। बंद देखें, चांद श्रोता बना नभ पे ठहरा रहा, चांद श्रो

रात भर गीत तुम पर लिखे ऐ सनम रात भर। चंद पंक्तियां मैंने अपने ऊपर लिखी हैं, वो मैं आप तक पहुंचाती हूँ। मेरा सच बोलना मुझको मुजरिम बना।

फिर भी वक्त अच्छा नहीं है क्या, मुझे पत्थर बना देगा। वक्त अच्छा नहीं तो क्या, मुझे पत्थर

0: तभी कीमत जब मुझको बुझा देगा, समझेगा तभी कीमत जब मुझको मना देगा।
1: कार्यक्रम काव्यधारा अभी आपने सुना। इस कार्यक्रम में आज हमने आपको सुनवाया नीलम मिश्रा का पूर्व प्रसारित काव्य पाठ। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 6:55 होने को है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार।
2: इयम आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचिका ऋचा झा। अथ वार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी त्रिराष्ट्र यात्रायाः द्वितीये चरणे ऑस्ट्रेलिया देशस्य मेलबोर्न नगरं सम्प्राप्तवान्। ह्यः तस्य आगमन समये ऑस्ट्रेलिया देशस्य नगरावासन मन्त्री क्लेयर ओ नील इत्येषा प्रधानमन्त्रिणः मोदिनः स्नेहपूर्वकं स्वागतम् अकरोत्। प्रधानमन्त्री अवदत् यत् इयं यात्रा भारत ऑस्ट्रेलिया समग्र सामरिक सहभागितायाः ऊर्जां वर्धयिष्यति इति। सामाजिक संचार पटले एकस्मिन् सन्देशे श्रीमोदी अवदत् यत् असौ ऑस्ट्रेलिया देशस्य समकक्षेण एन्थनी एल्बनीज इत्यनेन सह संवादम् आचरिष्यति। असौ एतदपि कथितवान् यत् भारत ऑस्ट्रेलिया सहभागित्वस्य महत्वपूर्ण स्तम्भेन भारतीय प्रवासिना सह संवादाय अवसरः अपि प्राप्स्यामि इति। यात्रावधौ श्रीमोदी तृतीये भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक सम्मेलने भागं ग्रहीष्यति। असौ भारत ऑस्ट्रेलिया मुख्य कार्यकारी मंचे अपि भागं ग्रहीष्यति, यत्र सः उभय देशयोः प्रमुखानां व्यापार नेतृणां समागममपि सम्बोधयिष्यति। भारत म्यांमार देशौ द्वैपाक्षिक सुरक्षा सहकारिता विषये चर्चां कृतवन्तौ। द्वैपाक्षिक संवाद व्यवस्थायाः अन्तर्गते प्रगतिं च समीक्षितवन्तौ। भारत म्यांमार देशयोः मध्ये 23तमं द्विदिवसीय राष्ट्रिय स्तरीय सम्मेलनम् अद्य ह्यः नवदिल्ल्यां सम्पन्नम्। गृहमन्त्रालयः अवदत् यत् भयोत्पादनं विद्रोहः मादकद्रव्याणां क्रयविक्रयणं शस्त्राणां क्रयविक्रयणं मानवव्यापारं वन्यजीवानां क्रयविक्रयणम् इत्यादीनां संघटितानां अपराध प्रकाराणां निवारणार्थं सहकारिता विषये उभयपक्षौ चर्चां कृतवन्तौ। भारत रूस देशाभ्यां ह्यः संयुक्त राष्ट्र ब्रिक्स यूरेशियन समूह शंघाई सहयोग संघटनानि समेत्य बहुपाक्षिक मञ्चेषु आतंकवादरोधी सहयोगम् इतोपि सुदृढीकरणस्य प्रतिबद्धता पुनरुद्घाटिता। भारत रूस आतंकवाद निरोधक संयुक्त कार्य समूहस्य चतुर्दशोपवेशनम् ह्यः नवदिल्ल्याम् आयोजितमासीत्। द्वौ देशौ सीमापारे आतंकवादं समेत्य आतंकवादस्य सर्वेषां रूपाणाम् अभिव्यक्तिनां च निन्दां कृतवन्तौ। भारतीयान्तरिक्ष अनुसन्धान संघटनम् मध्यप्रदेशस्य श्योपुर नगरस्य एरियल डिलीवरी रिसर्च एण्ड डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट इत्यस्य ड्रॉप जोन इत्यत्र गगनयान उपक्रमस्य कृते महत्वपूर्णम् एकीकृतम् IMAT इति परीक्षा सफलतया आयोजिता। भारतर्तु विज्ञान विभागेन उक्तं यत् आगामिषु त्रिषु दिनेषु नैऋत्य प्रावृषे उत्तर अरब सागर राजस्थान गुजरात हरियाणा पंजाब इत्येतेषां शेष भागेषु अग्रे गन्तुं स्थितिः अनुकूलः अस्ति। अद्य अरुणाचल

0: प्रदेश असम मेघालय बिहार पूर्व राजस्थान मध्य प्रदेश उप हिमालयीय पश्चिम बंगाल सिक्किम पश्चिमोत्तर प्रदेशानां केषुचित् भागेषु प्रचंड वृष्टिः भविष्यति इति ऋतु विभागेन पूर्वानुमानितम्। जम्मू कश्मीर प्रशासनेन ह्यः श्री अमरनाथ जी यात्रामुद्देश्य एका नवीना निर्देशिका प्रसारिता, यस्यां सर्वैः तीर्थयात्रिभिः पंजीकरण प्रक्रियायाः अथ सुरक्षा मार्गदर्शिकानां निष्ठापूर्वकं दृढतापूर्वकञ्च पालनं कर्तुं समादिष्टम्। आकाशवाण्याः जम्मू वार्ताहरैः विज्ञापितं यत् सर्वोच्च न्यायालयस्य निर्देशानुसारं निर्धारिता यात्रिणां प्रतिदिनस्य संख्या सीमा सम्प्रत्योपि पूर्णतो प्रवृत्ता वर्तते। श्रद्धालवः परामृष्टाः यत् यात्रा प्रारम्भात् एव पूर्वमेव अग्रिम पंजीकरणं करणीयम्, अथ अनुमतिपत्रे उल्लिखिते दिनांके एव यात्रा आरम्भणीया। प्रशासनेन स्पष्टीकृतं यत् अनुपदमेव पंजीकरणस्य सुविधा अत्यन्तं सीमितसंख्यासु एव उपलब्धा अस्ति। इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी ऑस्ट्रेलिया यात्रा के दौरान मेलबर्न में भारत ऑस्ट्रेलिया मुख्य कार्यकारी आधिकारिक मंच को संबोधित किया। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि व्यापारिक साझेदारियों को हमें ऊंचाइयों पर ले जाना है।
2: भारत आपके फंड्स को सेफ स्टेबल और सस्टेनेबल ग्रोथ का अवसर देता है। हमारा प्रयास रहेगा कि आपका ट्रस्ट भी बढ़े और आपका कैपिटल भी बढ़े। एजुकेशन और स्किल्स में दोनों देशों के बीच नेचुरल सिनर्जी है। डिकिन यूनिवर्सिटी और वुलोंगोंग यूनिवर्सिटी ने कीप सिटी में कैंपस खोलकर एक नया अध्याय शुरू किया। यह भारत के प्रति उनके कॉन्फिडेंस का प्रतिबिंब है। हमारा साझा लक्ष्य होना चाहिए कि हम स्टूडेंट मोबिलिटी को टैलेंट पार्टनरशिप में बदले।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज से बातचीत करेंगे। दोनों नेताओं के बीच व्यापार, रक्षा, महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी, शिक्षा और जनसंपर्क को मजबूत करने पर चर्चा होने की संभावना है। प्रधानमंत्री ने मेलबर्न में भारतीय समुदाय को गर्मजोशी से स्वागत के लिए उनका आभार व्यक्त करते हुए इसे अविस्मरणीय बताया। ऑस्ट्रेलिया में भारत के उच्चायुक्त नागेश सिंह ने कहा कि एक दशक में श्री मोदी की ऑस्ट्रेलिया की तीसरी यात्रा द्विपक्षीय संबंधों में हुई महत्वपूर्ण प्रगति को दर्शाती है। भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने वर्ष 2026 के दौरान इसकी 7% की वृद्धि दर का अनुमान लगाया है। IMF ने यह भी अनुमान जताया है कि अगले वर्ष में भारत की GDP वृद्धि दर कुछ घटकर 6.4% रह सकती है। केंद्र सरकार ने किसानों के हितों की रक्षा के लिए तमिलनाडु के किसानों से खोपरा और तोतापुरी आमों की खरीद को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि इससे उत्पादकों को बेहतर मूल्य मिलेगा और उन्हें बाजार में उतार चढ़ाव की कीमतों से राहत भी मिलेगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में शिक्षकों और गैर शिक्षण कर्मचारियों के लिए नकदी रहित स्वास्थ्य योजना शुरू की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी से मुख्यमंत्री शिक्षक नकदी रहित चिकित्सा योजना का शुभारंभ किया, जिसके तहत 15 लाख से अधिक शिक्षण कर्मचारियों को 5 लाख रुपए तक का चिकित्सा उपचार मिलेगा। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देश में कृषि अर्थव्यवस्था को नई गति दे सकता है। नई दिल्ली में 17वें कृषि नेतृत्व सम्मेलन में डॉक्टर सिंह ने कहा कि कृषि स्टार्टअप भारत के कृषि क्षेत्र का भविष्य है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन आज ओडिशा के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान उपराष्ट्रपति भुवनेश्वर स्थित ओडिशा कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में खुले समुद्र में मत्स्य पालन के लिए प्राधिकरण पत्र जारी कर

0: श्री राधा कृष्णन ओडिशा डीप सी फिशिंग मिशन दस्तावेज का भी विमोचन करेंगे और इसके बाद उपराष्ट्रपति भुवनेश्वर स्थित राष्ट्रीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान खुर्दा के 15वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। अमेरिका ने ईरान पर फिर हवाई हमले किए हैं। ये हमले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ईरान के फिर से किए गए हमलों को दोनों देशों के बीच युद्ध विराम की समाप्ति के बाद किए गए हैं। केरलम के 5 उत्तरी जिलों में कहीं कहीं तेज बारिश की संभावना का येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के देहरादून, हरिद्वार, ऊधम सिंह नगर, नैनीताल और चंपावत जिलों में अगले 36 घंटों के दौरान तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं राजधानी दिल्ली में रात से ही लगातार बारिश हो रही है। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 श्रृंखला का 4th मुकाबला आज ब्रिस्टल के काउंटी ग्राउंड में खेला जाएगा। इससे पहले 3rd मैच में भारत को इंग्लैंड से 125 रन से हार का सामना करना पड़ा था। और इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का नजीबाबाद केंद्र है। समय सुबह के 7:05 और अब सुनिएगा कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा, जिसमें आज आपको जानकारी दी जाएगी क्या कहती है दिल की धड़कन इस विषय पर।
2: दिल या हृदय मनुष्य के शरीर का बड़ा ही महत्वपूर्ण भाग है। दिल के हाथों मजबूर होकर आदमी अपने दिमाग का कहना मानने से भी इनकार कर देता है। अत्यधिक खुशी में दिल झूमने लगता है और किसी से धोखा खाकर ये टूट भी जाता है। शायरों, कवियों, लेखकों की लेखनी का एक बड़ा हिस्सा दिल के खाते में जमा है, मगर वैज्ञानिक हैं कि दिल को खून पंप करने वाला एक यंत्र ही मानते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार मानवीय हृदय 1 मिनट में 70 बार अर्थात जीवन में 2 अरब बार धड़कता है तथा 1 वर्ष में 15 लाख गैलन रक्त पंप करता है, मगर उम्र बढ़ने के साथ साथ 40 वर्ष बाद ये क्षमता कम होती जाती है। मसलन 90 वर्ष की आयु में हृदय जितना रक्त पंप करता है वो 20 वर्ष की आयु में पंप किए जाने वाले रक्त का आधा होता है। मानवीय हृदय का बाया प्रकोष्ठ हृदय का 85% कार्य अकेले ही करता है। इसी वजह से यही भाग सबसे ज्यादा क्षतिग्रस्त होते देखा गया है। हृदय रोग कई कारणों से होता है, जैसे बिल्कुल परिश्रम ना करना या फिर मशीन की तरह अत्यधिक श्रम करना, शक्ति से अधिक दौड़ना, भय, चिंता, मद्यपान, धूम्रपान करना, हृदय में चोट लगना या फिर हर समय मानसिक तनाव में रहना। इसके अतिरिक्त जब हमारे शरीर के भीतर अत्यधिक दूषित पदार्थों का संचय हो जाता है और उनके द्वारा हृदय आक्रांत हो जाता है, तब हृदय रोग उत्पन्न होता है। आधुनिक विज्ञान ने हृदय रोग के निदान के लिए बाईपास सर्जरी, पेसमेकर जैसी अनेक सुविधाएं ईजाद की हैं, किंतु इनका उपयोग साधारण रोगी नहीं कर सकता। एक उपाय करके देखें। लौकी हृदय रोग में रामबाण औषधि है। लौकी को छिलके सहित धोकर कद्दूकस में कस लें। कसी हुई लौकी को सिलपट्टे पर पीस लें। आप चाहें तो ग्राइंडर में डालकर इसे पीस सकते हैं और इसका रस भी निकाल सकते हैं। लौकी को पीसते समय पुदीना के 5-6 पत्ते तथा तुलसी के 8 पत्ते उसमें डाल दें। फिर पीसी हुई लौकी को कपड़ छान करके उसका रस निकाल लें। उस रस की मात्रा 125 से 150 ग्राम होनी चाहिए। इसमें इतना ही स्वच्छ जल मिलाएं। अब ये 250 से 300 ग्राम रस हो जाएगा। इस रस में 4 काली मिर्च का चून तथा 1 ग्राम सेंधा नमक मिला लें। अब इस रस को भोजन करने के आधा या 1.25 घंटे के पश्चात सुबह, दोपहर एवं रात्रि में 3 बार लें। प्रारंभ में 3-4 दिन तक रस की मात्रा कम भी ली जा सकती है। रस हर बार ताजा ही लेना चाहिए। प्रारंभ में यदि पेट में कुछ गड़गड़

0: घबराहट महसूस हो तो बिल्कुल चिंता ना करें। लौकी का ये रस पेट में पल रहे विकारों को भी दूर करता है। एक अन्य प्रयोग करके देखें। एक चम्मच पान का रस, एक चम्मच लहसुन का रस, एक चम्मच अदरक का रस तथा एक चम्मच शहद। इन चारों रसों को एक साथ मिला लें और पी जाएं। इसमें पानी मिलाने की जरूरत नहीं है। इसे एक बार सुबह तथा एक बार शाम को पिएं। तनाव तथा चिंता से मुक्त होकर इसका प्रयोग करें। हृदय में कोई और कठिनाई हो तो जो दवा ले रहे हैं लेते रहें। ये नुस्खा 21 दिन का है। अधिक वसा वाले दूध, दही, देसी घी, मक्खन का सेवन कदापि न करें। दूध और दही भी कम वसा वाला ही हो। अपने वजन पर नियंत्रण रखें। मोटापा आपके हृदय के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि अधिक वजन के कारण आप शरीर को चुस्त नहीं रख सकते। सैर और व्यायाम हृदय को स्वस्थ और गतिशील बनाए रखते हैं। इसलिए आप अपनी दिनचर्या में सुबह और शाम का कीमती समय सैर और व्यायाम के लिए जरूर रखें। पौष्टिक भोजन पर विशेष ध्यान दें। अंकुरित दालें, अनाज, ताजे फल, सब्जियां और चोकर सहित आटे की रोटी खाएं।
1: स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में आपने क्या कहती है दिल की धड़कन इस विषय पर जानकारी ली। आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम खेती की बातें, जिसमें आज हमारे किसान भाई भूमि सुधार की विभिन्न विधियों के बारे में जानकारी लेंगे।
2: किसान भाइयों, राम राम। खेती की बातें कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है और आज के इस कार्यक्रम के साथ मैं हूँ आपका भाई प्रमोद सिंह। किसान भाइयों, आज इस कार्यक्रम में हम आपके लिए जो जानकारी लेकर आए हैं उसका विषय है भूमि सुधार की विभिन्न विधियां। देखिए किसान भाइयों, किसान की सबसे बड़ी पूंजी उसकी भूमि होती है। यदि मिट्टी स्वस्थ, उपजाऊ और पानी को अधिक समय तक रोकने वाली हो तो कम समय में भी अच्छी पैदावार प्राप्त की जा सकती है। लेकिन लगातार एक ही प्रकार की खेती, रासायनिक उर्वरकों का संतुलित प्रयोग, मृदा अपरदन और जैविक पदार्थों की कमी के कारण भूमि की उर्वरा शक्ति धीरे धीरे कम होने लगती है। इसलिए समय समय पर भूमि का सुधार करना बहुत जरूरी है। भूमि सुधार की सबसे पहली विधि है जैविक पदार्थों का प्रयोग बढ़ाना। खेत में गोबर की अच्छी तरह सड़ी हुई खाद, कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट और हरी खाद का नियमित उपयोग करना चाहिए। इससे मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ बढ़ते हैं, मिट्टी भुरभुरी बनती है और उसकी जल धारण क्षमता में वृद्धि होती है। ऐसी मिट्टी में पौधों की जड़ें अच्छी तरह फैलती हैं और आवश्यक पोषक तत्व आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण विधि है हरी खाद का उपयोग। ढेंचा, सनई या मूंग जैसी फसलों को खेत में उगाकर फूल आने से पहले मिट्टी में मिला देने से भूमि में नाइट्रोजन और जैविक पदार्थ की मात्रा बढ़ती है। इससे रासायनिक उर्वरकों की आवश्यकता भी कम हो जाती है और मिट्टी की उर्वरा शक्ति लंबे समय तक बनी रहती है। किसान भाइयों, भूमि सुधार की एक और प्रभावी विधि है फसल चक्र। यदि किसान हर वर्ष एक ही फसल उगाते हैं तो मिट्टी के कुछ विशेष पोषक तत्व लगातार कम होते जाते हैं, लेकिन यदि दलहनी, तिलहनी और अनाज वाली फसलों का क्रम बदल बदल कर उत्पादन किया जाए तो मिट्टी का पोषण संतुलित बना रहता है। दलहनी फसलें वायुमंडलीय नाइट्रोजन को मिट्टी में स्थिर करने में भी सहायक होती हैं। मिट्टी की उर्वरा शक्ति बनाए रखने के लिए संतुलित उर्वरक प्रबंधन भी बहुत जरूरी है। किसान केवल यूरिया पर निर्भर ना रहें, बल्कि मिट्टी परीक्षण के आधार पर नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश और सूक्ष्म पोषक तत्वों का संतुलित प्रयोग करें। इससे फसल को सभी आवश्यक पोषक तत्व मिलते हैं और मिट्टी की गुणवत्ता भी बनी रहती है। भूमि की जल धारण क्षमता बढ़ाने के लिए मल्चिंग एक बहुत ही उपयोगी उपाय है। फसल के अवशेष, सूखी घास, पत्तियां या जैविक मल्च को मिट्टी की सतह पर बिछाने से नमी लंबे समय तक बनी रहती है। इससे पानी का वाष्पीकरण कम होता है, खरपतवार भी कम उगते हैं और मिट्टी का तापमान संतुलित रहता है। वर्षा जल का संरक्षण भी भूमि सुधार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। खेत की मेड़बंदी, कंटूर बंडिंग, खेत, तालाब, जल संग्रहण, गड्ढे और वर्षा जल संचयन जैसी तकनीकों से वर्षा का पानी खेत में ही रोका जा सकता है। इससे भूजल स्तर बढ़ता है और मिट्टी में पर्याप्त नमी बनी रहती है, जिसका लाभ अगली फसलों को भी मिलता है। किसान भाइयों, ढाल वाले क्षेत्रों में मृदा संरक्षण पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है।

0: वर्षा के साथ मिट्टी की ऊपरी उपजाऊ परत बह जाती है, जिससे भूमि की उर्वरा शक्ति कम हो जाती है। इसे रोकने के लिए जुताई, सीढ़ीनुमा खेत, घास की पट्टियां और वृक्षारोपण जैसे उपाय अपनाने चाहिए। इससे मिट्टी का कटाव रुकता है और भूमि लंबे समय तक उपजाऊ बनी रहती है। किसान भाइयों, आज के समय में सूक्ष्म सिंचाई प्रणालियां जैसे ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई भी भूमि सुधार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इनसे आवश्यकता के अनुसार ही पानी दिया जाता है, जिससे जल की बचत होती है और मिट्टी में नमी का संतुलन बना रहता है। अधिक सिंचाई से होने वाले जल भराव और लवणीयता जैसी समस्याओं से भी बचाव होता है। किसानों को समय समय पर मिट्टी की जाँच भी अवश्य करानी चाहिए। मृदा परीक्षण से ये पता चलता है कि मिट्टी में कौन से पोषक तत्व कम हैं और किन उर्वरकों की आवश्यकता है। इसके आधार पर वैज्ञानिक सलाह के अनुसार खेती करने से उत्पादन बढ़ता है और अनावश्यक खर्च में भी कमी आती है। इसलिए किसान भाइयों, याद रखिए कि स्वस्थ भूमि ही समृद्ध खेती का आधार है। यदि हम जैविक खाद का उपयोग बढ़ाएं, फसल चक्र अपनाएं, मिट्टी की जाँच कराएं और वर्षा जल का संरक्षण करें और मृदा कटाव रोकने के उपायों को अपनाएं, तो हमारी भूमि की उर्वरा शक्ति और जल धारण क्षमता दोनों में सुधार होगा। इससे उत्पादन बढ़ेगा, लागत घटेगी और खेती अधिक लाभकारी बनेगी। तो किसान भाइयों, आज तो हम अपनी बात को यहीं पर विराम देते हैं। कल फिर खेतीबाड़ी से संबंधित अन्य विषयों की जानकारी लेकर आपके बीच में उपस्थित होंगे। किसान भाइयों, राम राम।
1: खेती की बातें कार्यक्रम अभी आपने सुना और जानकारी ली भूमि सुधार की विभिन्न विधियों के बारे में। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 7:15 हो रहे हैं। आइए अब डालते हैं एक नजर हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के कुछ मुख्य कार्यक्रमों पर। आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स सुनिएगा हमारी संध्याकालीन सभा के आरंभ शाम 4:00। जिले की हलचल प्रातः 9:15 पर हमारे लखनऊ केंद्र से प्रसारित होने वाले इस कार्यक्रम में आज सुनिएगा लखनऊ और रामपुर जिले की हलचल। सुगम संगीत कार्यक्रम में शाने आलम और साथियों की आवाज में कुछ कवालियों का आनंद लेंगे आप संध्या 7:32 पर। रात्रि 10:30 पर सुनिएगा पूर्व प्रसारित रूपक हिंदी साहित्य में तुलनात्मक आलोचना के जनक पंडित पदम सिंह शर्मा। आलेख अमन कुमार का है, प्रस्तुति सहयोग इकबाल अहमद का और प्रस्तुत करता है सुशील त्यागी और अनिल त्यागी। कृषि जगत कार्यक्रम में किसान भाई सुनेंगे धान की रोपाई करते समय सावधानियों और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पर चर्चा। साथ ही सुनिएगा मासिक कार्यक्रम पगडंडी शैक्षिक प्रणाली का विकास। कार्यक्रम का समय वही संध्या 6:05 पर। युवा साथियों का पसंदीदा कार्यक्रम आप सुनेंगे रोजाना की तरह ही संध्या 5:15 पर। कार्यक्रम में आज की सौगातें रहेंगी बुझो तो जाने कुछ खास है आज, नॉन फिल्मी चार्ट बस्टर, गुफ्तगु बस यूं ही और पोस्टर। विविधा कार्यक्रम में वार्ताकार रविंद्र त्यागी की शांति और विकास एक सिक्के के दो पहलू पर पूर्व प्रसारित वार्ता सुनिएगा शाम 6:45 पर। तो श्रोताओं, ये तो थी जानकारी हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के कुछ मुख्य कार्यक्रमों की। सुबह के 7:18 होने को है, कुछ ही पलों में सुनिएगा प्रादेशिक समाचार।

कि मैं दुनिया में किसी से नहीं डरूंगा, केवल भगवान से डरूं। मैं किसी के प्रति बुरा भाव ना रखूं, मैं किसी के अन्य

0: न्याय के समक्ष झुकूं नहीं। मैं असत्य को सत्य से जीतूं और असत्य का विरोध करते हुए मैं सभी कष्टों को सह सकूं। महात्मा गांधी।
1: मन का धर्म है मनन करना, मनन में ही उसे आनंद है, मनन में बाधा प्राप्त होने से उसे पीड़ा होती है। रविन्द्रनाथ ठाकुर।
0: अपने ज्ञान पर जरूरत से ज्यादा यकीन करना मूर्खता है। सबसे मजबूत कमजोर हो सकता है और सबसे बुद्धिमान गलती कर सकता है। एपीजे अब्दुल कलाम।
1: जैसे सूर्य सबको एक सा प्रकाश देता है, बरसात सबके लिए बरसती है, उसी तरह विद्या वृष्टि सब पर बरकरार होनी चाहिए। महात्मा गांधी।
0: आकाश की तरफ देखिए, हम अकेले नहीं हैं। सारा ब्रह्मांड हमारे लिए अनुकूल है और जो सपने देखते हैं, मेहनत करते हैं, उन्हें प्रतिफल देने की साजिश करता है। एपीजे अब्दुल कलाम। निरंतर विकास जीवन का नियम है और जो व्यक्ति खुद को सही दिखाने के लिए हमेशा अपनी रूढ़िवादिता को बरकरार रखने की कोशिश करता है, वह खुद को गलत स्थिति में पहुंचा देता है। महात्मा गांधी।
1: मानव का दानव होना उसकी हार है, मानव का महामानव होना उसका चमत्कार है और मनुष्य का मानव होना उसकी जीत है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन।
2: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वेद प्रकाश पाठक। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी से मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना का किया शुभारंभ। विद्यार्थियों की यूनिफॉर्म और स्टेशनरी के लिए जारी किए 1320 करोड़ रुपए। मुख्यमंत्री ने चित्रकूट में 951 करोड़ रुपए की 124 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, इको टूरिज्म का नया केंद्र बन रहा है चित्रकूट। श्रीराम जन्मभूमि मंदिर के चढ़ावे में कथित अनियमितता के मामले में पुलिस की कार्रवाई जारी। 3 आरोपियों को रिमांड पर लेकर की गई पूछताछ। और वाराणसी हवाई अड्डे के नए टर्मिनल पर बनाया जा रहा है देश का पहला 6 लेन वाला अंडरपास। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल वाराणसी से मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना का शुभारंभ किया। इस योजना से प्रदेश के 12 लाख शिक्षक, शिक्षणेत्तर कर्मचारियों और उनके आश्रितों को स्वास्थ्य सुरक्षा मिलेगी। मुख्यमंत्री ने 1,10,00,000 विद्यार्थियों की यूनिफॉर्म, जूते, मोजे, स्वेटर, स्कूल बैग और स्टेशनरी के लिए अभिभावकों के खाते में करीब 1,320 करोड़ रुपए की धनराशि का अंतरण भी किया। इस अवसर पर 10 लाख शिक्षकों और संविदा कर्मियों को सामाजिक सुरक्षा कवच प्रदान करने के लिए भारतीय स्टेट बैंक के साथ MOU किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य है जहां इस योजना को लागू किया गया है।
3: हर एक शिक्षक को भी, शिक्षा मित्र को भी और अनुदेशक को भी एक नई गारंटी दी जा रही है, जिसमें अस्थाई शिक्षक और कार्मिकों को जिनका वेतन 10,000 रुपए से अधिक है उन्हें 10,00,000 का ग्रुप टर्म इंश्योरेंस कवर, जिसमें 1 करोड़ का पर्सनल एक्सीडेंट कवर, 1 करोड़ का स्थायी दिव्यांगता कवर, 1.6 करोड़ का ईयर एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर के साथ ही किसी अनहोनी की दिशा में शिक्षक या कार्मिक के बच्चों की शिक्षा और पुत्रियों के विवाह के लिए भी एड ऑन कवर इसमें प्रदान किया जाएगा। यह एक नई सामाजिक सुरक्षा की गारंटी मिली है।
2: प्रदेश के अन्य जिलों में भी मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना के शुभारंभ के मौके पर कार्यक्रमों के आयोजन किए गए। इस अवसर पर सिद्धार्थनगर जिले में आयोजित कार्यक्रम को डुमरियागंज के सांसद जगदम्बिका पाल ने संबोधित किया। श्री पाल ने कहा कि प्रदेश सरकार की इस पहल से शिक्षकों की बहुप्रतीक्षित मांग पूरी हुई है। उन्होंने कहा कि इससे प्रदेश के लाखों परिवारों को लाभ होगा। मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना के लिए आभार जताते हुए जौनपुर के शिक्षक राजेश पांडे ने कहा,

0: की प्रदेश सरकार ने इस योजना के माध्यम से शिक्षकों को बड़ी सौगात दी है।
1: उत्तर प्रदेश सरकार ने बेसिक शिक्षा परिषद से जुड़े हुए समस्त शिक्षकों और शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के लिए मुख्यमंत्री कैशलेस चिकित्सा योजना की जो शुरुआत की है, यह बहुत ही सराहनीय पहल है। इसके लिए पूरे शिक्षा विभाग की तरफ से सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री जी को हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। यह योजना लाखों लाख शिक्षकों और शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के चिकित्सा संबंधी समस्याओं और उनकी चिंताओं का समाधान करेगा।
0: वाराणसी के बाद मुख्यमंत्री ने मिर्जापुर में पहुंचकर मां विंध्यवासिनी देवी का दर्शन पूजन किया और विंध्य कॉरिडोर का निरीक्षण किया। श्री योगी ने विंध्य मंडल के जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ विकास कार्यों की समीक्षा की। समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि विकास परियोजनाओं से संबंधित सभी प्रस्ताव 15 जुलाई तक शासन को भेज दिए जाएं। श्री योगी ने कहा कि 15 अगस्त तक स्वीकृत योजनाओं के लिए धनराशि उपलब्ध कराने की प्रक्रिया पूरी कर ली जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल चित्रकूट में 951 करोड़ रुपए की लागत वाली 124 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार समाज के हर वर्ग के विकास के लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा कि चित्रकूट में अब निवेश आ रहा है, जिससे जनपद के विकास को गति मिल रही है।
2: अब निवेश यहाँ भी आ रहा है, क्योंकि अब भय नहीं है, अब तो निवेश का वातावरण है। 4 लेन की सड़कें हैं, एक सुंदर चित्रकूट हम सबके सामने है और वह आज हम सबको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। आज तो यहाँ पे हम लोग एक पर्यटन के नए केंद्र के रूप में, यानी ये आध्यात्मिक टूरिज्म तो था ही, अब इको टूरिज्म के भी एक नए केंद्र के रूप में इसको विकसित करने के लिए हम लोगों ने यहाँ पे रानीपुर टाइगर रिजर्व को भी यहाँ पे के लिए आगे बढ़ाने का कार्य प्रारंभ किया है।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि मंदिर के चढ़ावे में कथित अनियमितता मामले की जांच कर रही पुलिस टीम ने कल 3 आरोपियों अनुकल्प मिश्रा, लोकुश मिश्रा और करुणेश पांडे को रिमांड पर लेकर पूछताछ की। पुलिस तीनों आरोपियों को लेकर 14 कोसी परिक्रमा मार्ग भी पहुंची। वहीं श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी से कल कई साधु संतों ने मुलाकात की। मुलाकात के बाद महंत राजकुमार दास ने कहा कि आगामी दिनों में ट्रस्ट में बड़े परिवर्तन होंगे, जिसकी जानकारी जल्द ही ट्रस्ट द्वारा साझा की जाएगी। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री के राम मोहन नायडू ने कहा है कि वाराणसी हवाई अड्डे के नए टर्मिनल पर देश का पहला 6 लेन वाला अंडरपास बनाया जा रहा है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में कल उन्होंने बताया कि 450 मीटर लंबा यह अंडरपास देश की अगली पीढ़ी के बुनियादी ढांचे का हिस्सा है। वहां ऊपर विमानों के संचालन के दौरान नीचे सड़क यातायात सुचारू रूप से चल सकेगा। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की अध्यक्षता में लखनऊ स्थित ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय का कल 11वां दीक्षांत समारोह आयोजित हुआ। कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद डॉ. सुधांशु त्रिवेदी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। समारोह में 1246 विद्यार्थियों को उपाधियां प्रदान की गईं। इस अवसर पर अपने संबोधन में राज्यपाल ने भाषा विश्वविद्यालय में शुरू होने जा रहे नए कोर्सेज के बारे में चर्चा की।
3: ख्वाजा मोहिद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय में पूर्व से संचालित भाषाओं के साथ साथ अब जर्मन, जापानी और चीनी जैसी अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं का अध्ययन प्रारंभ किया जा रहा है। यह पहल विद्यार्थियों के लिए विश्व के ज्ञान द्वार खोलने के साथ साथ उन्हें वैश्विक अवसरों से भी जोड़ेगी। इसके साथ ही अवधि भाषा में स्नातक पाठ्यक्रम प्रारंभ करने का प्रयास विशेष रूप से अभिनंदनीय है।
0: प्रदेश में 12 जुलाई को होने वाले पौधरोपण महाअभियान को लेकर वन विभाग ने सारी तैयारियां पूरी कर ली हैं। इस अभियान के तहत 35 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए प्रदेश की 2600 से अधिक नर्सरियों में 57 करोड़ 62 लाख पौधे तैयार किए गए हैं। प्रयागराज पहुंचे प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि सरकार के प्रयासों से प्रदेश के वन क्षेत्र में बड़े पैमाने पर वृद्धि हुई है।
4: पूरी दुनिया इस समय ग्लोबल वार्मिंग के संकट से जूझ रही और इस बार 35 करोड़ जब हमारे यहाँ पेड़ लग जाएंगे, जब से 9 साल में हम लोग 275 करोड़ पेड़ लगाने का रिकॉर्ड, 35 करोड़ का इस बार का लक्ष्य है, उससे ज्यादा ही लगते हैं जितना लक्ष्य होता है, तो यह हम लगाने का काम करेंगे। उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है, वन आच्छादन का जो क्षेत्र है वो घटा नहीं, वो बढ़ा है।
0: राजधानी लखनऊ सहित प्रदेश के कई अन्य जिलों में कल हुई बारिश ने लोगों को गर्मी से राहत दी। वहीं गोरखपुर सहित कई पूर्वी जिलों में हल्की बूंदाबांदी का क्रम जारी है। इस अंचल में हल्की हवाओं के चलने के बावजूद उमस का असर कायम है। इस बीच मौसम विभाग ने 3 दिनों तक प्रदेश के अधिकांश जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी से मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना का किया शुभारंभ। विद्यार्थियों की यूनिफॉर्म और स्टेशनरी के लिए जारी किए 1,320 करोड़ रुपए। मुख्यमंत्री ने चित्रकूट में 951 करोड़ रुपए की 124 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, इको टूरिज्म का नया केंद्र बन रहा है चित्रकूट। श्रीराम जन्मभूमि मंदिर के चढ़ावे में कथित अनियमितता के मामले में पुलिस की कार्रवाई जारी। 3 आरोपियों को रिमांड पर लेकर की गई पूछताछ। और वाराणसी हवाई अड्डे के नए टर्मिनल पर बनाया जा रहा है देश का पहला 6 लेन वाला अंडरपास। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
5: तब तक लड़ना मत छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह तक ना पहुंच जाओ। यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। APJ अब्दुल कलाम। असंतुष्ट व्यक्ति के लिए सभी कर्तव्य नीरस होते हैं। उसे तो कभी भी किसी वस्तु से संतोष नहीं होता, फलस्वरूप उसका जीवन असफल होना स्वाभाविक है। स्वामी विवेकानंद।
6: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा 3 आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा, सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन 3 आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।
7: हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्ज पर। सुबह के 7:31 हो रहे हैं। प्रस्तुत है जानकारी, मनोरंजन और रोचकता से भरपूर कार्यक्रम सूरज के साथ साथ।

सवेरा सिर्फ सूरज के निकलने का नाम नहीं है, बल्कि एक नई सोच, नई भरोसे का पैगाम भी है। इसी खूबसूरत पैगाम के साथ करते हैं आज के अपने कार्यक्रम सूरज के साथ साथ की शुरुआत। और आज के सुनहरे सवेरे की ताजगी भरी भीगी भीगी सुबह में मैं फरीना आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो चलिए सबसे पहले आपको जानकारी देते हैं 9 जुलाई से जुड़े राष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस के बारे में। श्रोताओं, कहते हैं आज का विद्यार्थी कल का नागरिक नहीं बल्कि आने वाले भारत का निर्माता भी है। इसी सोच को सार्थक करते हुए हर साल हम 9 जुलाई को राष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस मनाते हैं। इस दिवस को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के स्थापना दिवस के रूप में याद किया जाता है। वर्ष 1949 में 9 जुलाई को ही इस दिवस को औपचारिक रूप से पंजीकृत किया गया था। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य

0: सिर्फ एक संगठन की स्थापना के दिन को याद करना नहीं है, बल्कि हर विद्यार्थी को ये संदेश देना है कि विद्यार्थी जीवन केवल किताबों, कक्षाओं और परीक्षाओं का नाम नहीं होता है। ये तो वो सुनहरे पल होते हैं जब सपनों को नई नई उड़ान मिलती है, संस्कारों की नींव पड़ती है, भविष्य की राहें बनती हैं। आज का विद्यार्थी तकनीक से जुड़ा है, दुनिया से जुड़ा है, लेकिन सबसे जरूरी बात है कि वो देश और समाज के साथ साथ अपने संस्कारों से भी जुड़ा रहे, क्योंकि शिक्षा का असली उद्देश्य केवल नौकरी पाकर एक सफल इंसान बनना नहीं है, उसके साथ साथ एक अच्छा नागरिक बनना भी है। आइए, राष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस पर हम हर विद्यार्थी के सपनों के साकार होने और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हैं।
1: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
2: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
1: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
2: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
1: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001424 पर।
2: 8700001424।

0: डेंगू चिकनगुनिया मलेरिया दिमागी बुखार से बचेगी।
1: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
2: एक बार फिर से स्वागत है आपका कार्यक्रम सूरज के साथ साथ में। तो आइए अब चर्चा करते हैं आहार विहार से दें वर्षा ऋतु की बीमारियों को मात विषय पर। श्रोताओं, आप जानते हैं कि बारिश हो रही है और बारिश के मौसम की ये ठंडी ठंडी फुहारें जितनी सुहानी होती हैं, उतना ही इस मौसम में जगह जगह पानी भर जाता है, निकलना मुश्किल हो जाता है। और इस मौसम में जब ये पानी जमा हो जाता है तो वायरल फीवर, मलेरिया, टाइफाइड, डेंगू और पेट संबंधी बीमारियों का खतरा भी बढ़ जाता है। ऐसे में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हम सबसे पहले ध्यान दें अपने आहार पर। इसलिए आहार में हमेशा ताज़ा और पौष्टिक भोजन लें। बाहर के खाने से तो दूरी बना कर रखें, क्योंकि जो पौष्टिकता घर के खाने में होती है वो बाहर कहाँ मिल पाएगी। इसके साथ साथ साफ और फिल्टर किया हुआ पानी इस्तेमाल करें। आहार के बाद ज़रूरी होती है बात विहार की, यानी हमारी दैनिक दिनचर्या की, जो बारिश के मौसम में हमारे स्वास्थ्य की मजबूत ढाल होती है। इसलिए इस मौसम में समय पर सोना, जागना, हल्का व्यायाम, योग और व्यक्तिगत स्वच्छता का खास ख्याल रखना बेहद ज़रूरी होता है। इस मौसम में आप कहीं ना कहीं भीग सकते हैं और अगर भीग जाएं तो फौरन अपने कपड़े चेंज करें। घर के आसपास गड्ढे हों तो नगर पालिका को सूचना देकर इन गड्ढों का भरावन कराएं, क्योंकि इन गड्ढों में ही गड्ढा पानी ही मच्छरों के पनपने का सबसे बड़ा कारण होता है। तो इस तरह इन छोटी छोटी सावधानियों से आप अपने आहार विहार का ख्याल रखते हुए बरसात के मौसम में होने वाली बीमारियों को मात दे सकते हैं और बरसात की इस खूबसूरत मौसम की रिमझिम बारिश का आनंद ले सकते हैं, बिल्कुल इस गीत की तरह।

श्रोताओं, अब हम भी चलते हैं हिंदी सिनेमा के सुनहरे सफर पर, जहां हम याद कर रहे हैं आज ऐसे दो महान कलाकारों को जिनकी रचनात्मकता और अदाकारी आज भी सबके दिलों में जिंदा है। तो सबसे पहले बात करते हैं अभिनेता संजीव कुमार की। श्रोताओं, हिंदी सिनेमा में कुछ ऐसे कलाकार होते हैं जो अपने किरदारों से याद किए जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो हमेशा हमेशा के लिए सबके दिलों में बस जाते हैं। ऐसे ही बेहद संजीदा अदाकार थे 9 जुलाई 1938 को जन्मे अभिनेता संजीव कुमार। साल 1960 में हम हिंदुस्तानी फिल्म से अपने करियर की नींव रखने वाले संजीव कुमार के लिए अभिनय केवल एक कला नहीं, बल्कि हर किरदार को जीने का खूबसूरत जरिया थी। शोले के ठाकुर, कोशिश का एक मूक बधिर व्यक्ति, आंधी का संजीदा गंभीर इंसान और अंगूर की खट्टी मीठी कॉमेडी, और इसके साथ साथ नया दिन नई रात में एक ही फिल्म में 9 अलग अलग भूमिकाओं से उन्होंने अपनी प्रतिभा का ऐसा परिचय दिया जो आज भी नई

पादुकोण, जिन्हें हम सभी गुरुदत्त के नाम से जानते हैं, साल 1925 को आज ही की तिथि में जन्मे अभिनेता गुरुदत्त का नाम भारतीय सिनेमा में बड़े सम्मान और श्रद्धा के साथ लिया जाता है। आपने प्यासा, कागज के फूल, साहिब बीबी और गुलाम, चौधरी का चांद जैसी कालजयी फिल्मों से समाज, रिश्तों और इंसानी भावनाओं को बेहद खूबसूरती से पर्दे पर उतारा है। कैमरे की बारीकियां, सशक्त निर्देशन, हर दृश्य में संवेदना, संवाद में गहराई और गीत संगीत में भावनाओं की सच्ची अभिव्यक्ति फिल्म जगत के हर प्रेमी के लिए एक खूबसूरत मिसाल है। दशकों बाद भी उनकी हर रचना हिंदी सिनेमा के आसमान पर चौधरी के चांद की तरह चमकती है और हर कोई उसे लाजवाब ही कहता है।

0: अपने व्यापार को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना चाहते हैं?
1: तो इंतजार किस बात का,
0: अभी बुक कराइए अपना विज्ञापन आकाशवाणी नजीबाबाद के संग।
1: विज्ञापन बुकिंग कराने के लिए आज ही संपर्क करें।
0: हमारा मोबाइल नंबर है 8865845809।
1: नंबर एक बार फिर सुन लीजिए 8865845809।
0: और हमारा ईमेल आईडी है
1: akashwaninajibabad@gmail.com।
0: तो देर किस बात की, उठाइए अपना फोन और बुक कराइए अपना विज्ञापन
1: आकाशवाणी नजीबाबाद के संग।
0: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सूरज के साथ साथ आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से, और अब हम पहुंच

इतिहास की यही खूबसूरती है कि हर तारीख अपने साथ अनगिनत यादें समेटे होती है। कहीं वो किसी ऐतिहासिक घटना की गवाह बनती है, तो कहीं अनेक प्रेरणादायक व्यक्तियों के जन्म या स्मृतियों के साथ हमेशा के लिए खास बन जाती हैं। तो आइए जान लेते हैं 9 जुलाई के तिथि विशेष को। भारत की आर्थिक यात्रा का सुनहरा अध्याय 9 जुलाई 1875 को ही लिखा गया, जब इस तारीख को बम्बई स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना की गई। एशिया का सबसे पुराना ये स्टॉक एक्सचेंज आज भी हमारे देश की अर्थव्यवस्था की धड़कन है। स्वतंत्र भारत के विकास को नई दिशा देने वाली देश की पहली पंचवर्षीय योजना 9 जुलाई 1951 को ही शुरू की गई। कृषि, सिंचाई और ग्रामीण विकास को प्राथमिकता देकर आत्मनिर्भर बनाने की नींव रखने का प्रयास रखने वाली ये योजना आज ही के दिन आरंभ हुई थी। भारतीय वन्य जीव बोर्ड ने 9 जुलाई 1969 को एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए शेर को भारत का राष्ट्रीय पशु घोषित किया। बाद में साल 1972 में ये सम्मान बाघ पशु को दिया गया। यूपी में युवा सोच को नई पहचान देने की दिशा में 9 जुलाई 2020 उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति 2020 की शुरुआत की गई, जिसका उद्देश्य युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर प्रदान करना था। अब जान लेते हैं आज के दिन जन्म लेने वाली महान हस्तियों के बारे में। श्रोताओं, आज हम जो सिले सिलाए और खूबसूरत परिधान पहनते हैं, इनके पीछे सिलाई मशीन की बड़ी भूमिका होती है। इस क्रांतिकारी आविष्कार के जनक अलायंस हाउस का जन्म 9 जुलाई 1819 को ही हुआ था। भारतीय अभिनेत्री, मॉडल और पूर्व मिस इंडिया संगीता बिजलानी का जन्म भी 9 जुलाई 1960 को हुआ। निर्मा, पॉन्ड्स और वीको क्रीम के विज्ञापन सहित आपने खेल, जुर्म, इज्जत, हथियार और त्रिदेव जैसी फिल्मों में अपने अभिनय से 80-90 के दशक में दर्शकों का दिल जीत लिया था। अब बात करते हैं उन हस्तियों के बारे में जो आज के दिन हमारे लिए याद बन गए। हिंदी सिनेमा के प्रसिद्ध गीतकार, पटकथा लेखक और निर्देशक डी.एन. मधोक यानी दीनानाथ मधोक ने साल 1882 में आज ही की तारीख को अंतिम सांस ली थी। साल 1932 में फिल्म राधे श्याम से अपने करियर की शुरुआत करने वाले डी.एन. मधोक ने अपने करियर में 800 से अधिक गीत लिखे। शब्दों की कला के इस अद्भुत फन के लिए आपको महाकवि मधोक की उपाधि दी गई। 26 नवंबर 1923 को जन्मे मशहूर संगीतकार मनोहर लाल सोनिक 9 जुलाई 1993 को हम सब की आंखें नम कर गए थे। मशहूर संगीतकार जोड़ी सोनिक ओमी के रूप में आपने महुआ, सावन भादो, धर्मा, दिल ने फिर याद किया जैसी फिल्मों में अपनी मधुर धुनों से फिल्म को खूबसूरत बनाया। हालांकि आप देख नहीं सकते थे, लेकिन संगीत के सुरों पर शब्दों को सुरीला बनाने का आपका फन कमाल का था। तो आइए सुनते हैं उनके फन की एक मिसाल को फिल्म दिल ने फिर याद किया में।

चलिए जान लेते हैं क्या कहते हैं आज के अखबार। हिंदुस्तान लिखता है, मुख्यमंत्री योगी ने शिक्षकों के लिए की कैशलेस चिकित्सा योजना। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि शिक्षा की उपेक्षा से यूपी बीमारू राज्य बन गया था, इसलिए उन्होंने बुधवार को कैशलेस चिकित्सा योजना शुरू की। इससे प्रदेश के 12 लाख शिक्षक, शिक्षा मित्र, अनुदेशक और रसोईया लाभान्वित होंगे। हिंदुस्तान आगे लिखता है, इंडोनेशिया संघ सहयोग के नए रास्ते खुले, प्रधानमंत्री मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उनकी 3 दिवसीय इंडोनेशिया यात्रा ने अहम क्षेत्रों में सहयोग के नए नए रास्ते खोले हैं। अब खबर अमर उजाला से। अमर उजाला लिखता है, राज्य कर विभाग को मिले 153 नए सहायक आयुक्त। उत्तर प्रदेश राज्य कर विभाग को 153 नए सहायक आयुक्त मिल गए हैं। आदेश के अनुसार उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित इस संबंध में राज्य कर आयोग ने 6 जुलाई को ये आदेश जारी किया है। आगे अमर उजाला लिखता है, 15 जुलाई तक पीएफ खाते में होगा 8.25% ब्याज। कर्मचारी भविष्य निधि ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भविष्य निधि खातों में 8.25% ब्याज जमा करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अब खबर दैनिक जागरण से, गगनयान मिशन के लिए मुख्य पैराशूट का अहम परीक्षण सफल। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने गगनयान मिशन के क्रू मॉड्यूल के मुख्य पैराशूट का एक महत्वपूर्ण परीक्षण बुधवार को सफलतापूर्वक कर लिया है। आगे दैनिक जागरण लिखता है, हवाई अड्डों पर यात्री सुविधाएं व सुरक्षा व्यवस्था होगी मजबूत। देश में हवाई यात्रा करने वालों की बढ़ती संख्या को देखते हुए केंद्र सरकार ने यात्रिक सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए त्वरित तरीके से काम करने का फैसला लिया है। और ये आखिरी खबर भी दैनिक जागरण से, धनुष से दुश्मन का सफाया करेगी सेना, बढ़ाई जा रही है फायर क्षमता। भारतीय सेना धनुष तोप का मेक इन इंडिया के तहत पूरी तरह

स्वदेशी बनाने जा रही, यानी अब इसमें कोई भी पार्ट विदेशी नहीं होगा और ये दुश्मन का सफाया करेगी। तो इसी के साथ आज का कार्यक्रम सूरज के साथ साथ अब यहीं पर संपन्न होता है।

0: जानकारी, मनोरंजन और रोचकता से भरपूर कार्यक्रम सूरज के साथ साथ अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से। सुबह के 8 बजने को है, अब सुनिएगा कुछ ही देर में समाचार।
1: बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है, तो मेरा खास आग्रह है वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
2: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं, रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेलबर्न में भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा, अनिश्चितता, सप्लाई चेन में रुकावट और ऊर्जा संकट वाले दौर में भारत और ऑस्ट्रेलिया का भरोसेमंद साझेदार के तौर पर आगे बढ़ना स्वाभाविक और जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ वार्ता करेंगे। केंद्र सरकार ने तमिलनाडु के किसानों के हित में खोपरा और तोतापुरी आमों की खरीद को मंजूरी दी। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में शिक्षकों और गैर शिक्षण कर्मचारियों के लिए नकदी रहित स्वास्थ्य योजना शुरू की। भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने 2026 में 7% की विकास दर रहने का अनुमान जताया। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा युद्ध विराम खत्म होने की घोषणा के बाद अमरीका ने ईरान पर नए हमले किए और भारत के अर्णव पापरकर ने विंबलडन जूनियर्स 2026 में सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंचकर इतिहास रचा। पिछले 36 वर्षों में सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाले भारत के पहले खिलाड़ी बने। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने आज सुबह मेलबर्न में भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम में भाग लिया। दोनों नेताओं ने भारत और ऑस्ट्रेलिया के उद्योग जगत के प्रमुखों से भी मुलाकात की। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विश्व इस समय अनिश्चितता, आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान और ऊर्जा संकट के दौर से गुजर रहा है। ऐसे समय में भारत और ऑस्ट्रेलिया के लिए स्वाभाविक और विश्वसनीय साझेदार के रूप में आगे बढ़ना स्वाभाविक है और आवश्यक भी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में दोनों देशों ने अपनी शक्तियों का लाभ उठाते हुए भविष्य की साझेदारी के लिए एक मजबूत ढांचा तैयार किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 2022 में रिकॉर्ड समय में संपन्न हुए आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते से दोनों देशों के आर्थिक संबंधों में मजबूती आई है।
4: साल 2022 में रिकॉर्ड समय में किए गए एक्टा समझौते से हमारी आर्थिक साझेदारी और सशक्त हुई है। इसके लागू होने के बाद भारत से ऑस्ट्रेलिया को एक्सपोर्ट डबल हुआ है और दोनों देशों के बिजनेसेस को नए मार्केट एक्सेस इसका लाभ मिला है। अब हम व्यापक सीका समझौता करने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। इन प्रयासों से दोनों देशों की सरकारों ने एक नया रनवे तैयार किया है। अब इस पर इन्वेस्टमेंट और इनोवेशन का विमान उड़ान भरने के लिए तैयार है।
3: प्रधानमंत्री मोदी ने विनिर्माण, स्वच्छ ऊर्जा, महत्वपूर्ण खनिज, खनन, अवसंरचना, शहरी विकास, विमानन, रसद, उन्नत प्रौद्योगिकी, एआई, खाद्य

0: प्रसंस्करण और डिजिटल अर्थव्यवस्था क्षेत्रों में भारत में उपलब्ध विशाल अवसरों का उल्लेख किया। श्री मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के निवेशकों को भारत में दीर्घकालिक निवेश के अवसरों का लाभ उठाने के लिए आमंत्रित किया।
1: भारत आपके फंड्स को सेफ, स्टेबल और सस्टेनेबल ग्रोथ का अवसर देता है। हमारा प्रयास रहेगा कि आपका ट्रस्ट भी बढ़े और आपका कैपिटल भी बढ़े। एजुकेशन और स्किल्स दोनों देशों के बीच नेचुरल सिनर्जी है। डिकिन यूनिवर्सिटी और वुलोंगोंग यूनिवर्सिटी ने किप सिटी में कैंपस खोलकर एक नया अध्याय शुरू किया। यह भारत के प्रति उनके कॉन्फिडेंस का प्रतिबिंब है। हमारा साझा लक्ष्य होना चाहिए कि हम स्टूडेंट मोबिलिटी को टैलेंट पार्टनरशिप में बदले।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज से बातचीत करेंगे। दोनों नेताओं के बीच व्यापार, रक्षा, महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी, शिक्षा और जनसंपर्क मजबूत करने पर चर्चा होने की संभावना है। श्री मोदी मेलबर्न में प्रवासी भारतीयों से भी बातचीत करेंगे। श्री मोदी ऑस्ट्रेलिया की 3 दिन की यात्रा पर कल शाम मेलबर्न पहुंचे थे। ऑस्ट्रेलिया में भारत के उच्चायुक्त नागेश सिंह ने कहा है कि एक दशक में श्री मोदी की ऑस्ट्रेलिया की तीसरी यात्रा द्विपक्षीय संबंधों में हुई महत्वपूर्ण प्रगति को दर्शाती है।
2: तीसरा एनुअल लीडर्स समिट भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, इस वर्ष और पिछले सालों में जो आपने देखा कि जो एक पूरे विश्व में एक हल्का सा तनाव है, चाहे युद्ध का है, जो डिस्प्यूट्स हैं, जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस हैं, उस संदर्भ में इंडिया ऑस्ट्रेलिया रिलेशनशिप एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है हमारी रिलेशनशिप को उस क्षेत्र में जिसको हम लोग इंडो पैसिफिक बोलते हैं।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
1: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4555 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केंद्र सरकार ने किसानों के हितों की रक्षा के लिए तमिलनाडु के किसानों से खोपड़ा और तोतापुरी आमों की खरीद को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि इससे उत्पादकों को बेहतर मूल्य मिलेगा और उन्हें बाजार में उतार चढ़ाव की कीमतों से राहत मिलेगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि स्वीकृत खरीद का कुल MSP मूल्य 1000 करोड़ रुपए से अधिक है। इसके अलावा बाजार हस्तक्षेप योजना MIS के तहत इस वर्ष तमिलनाडु में 96,000 मीट्रिक टन से अधिक तोतापुरी आमों की खरीद को भी मंजूरी मिल गई है। यह खरीद MIS के तहत की जाएगी, जिसमें बाजार हस्तक्षेप मूल्य 1000 रुपए प्रति क्विंटल से अधिक निर्धारित किया गया है। अनुपम मिश्र के साथ सकलेन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने किसानों के हितों की रक्षा और उनका विश्वास बहाल करने के लिए तंबाकू कंपनियों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर तंबाकू की खरीद प्रक्रिया तत्काल शुरू करने का निर्देश दिया है। अमरावती स्थित सचिवालय में अधिकारियों और व्यापारियों के साथ तंबाकू खरीद की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि तंबाकू की कीमत 200 रुपए प्रति किलोग्राम से कम नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कंपनियों से नीलामी प्रक्रिया में तेजी लाने का निर्देश दिया। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में शिक्षकों और गैर शिक्षण कर्मचारियों के लिए नकदी रहित स्वास्थ्य योजना शुरू की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी से मुख्यमंत्री शिक्षक नकदी रहित चिकित्सा योजना का शुभारंभ किया, जिसके तहत 15 लाख से अधिक शिक्षण कर्मचारियों को 5 लाख रुपए तक का चिकित्सा उपचार मिलेगा। और ब्यौरे के साथ हैं हमारे संवाददाता।
3: इस योजना के तहत राज्य भर के शिक्षकों और उनके परिवारों को 5 लाख रुपए तक की कैशलेस चिकित्सा सुविधा मिलेगी। प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा से जुड़े लगभग

0: 15 लाख शिक्षक और गैर शिक्षण कर्मचारी इस योजना से लाभान्वित होंगे। नियमित शिक्षकों के अलावा इस योजना से शिक्षा मित्रों, प्रशिक्षकों, रसोइयों और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों के पात्र कर्मचारियों को भी लाभ मिलेगा। शिक्षकों और उनके परिवारों को सामाजिक सुरक्षा कवर प्रदान करने के लिए भारतीय स्टेट बैंक के साथ एक समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए गए हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने शिक्षकों के स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा की रक्षा करने के अपने वायदे को पूरा किया है। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा विभाग के कर्मचारियों के लिए ये व्यापक सामाजिक सुरक्षा और बीमा कार्यक्रम देश में अपनी तरह की पहली पहल है। इस योजना के तहत 10,000 रुपए से ज्यादा मासिक वेतन पाने वाले संविदा कर्मचारियों को 30 लाख रुपए से 80 लाख रुपए तक का व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा कवर मिलेगा। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने वर्ष 2026 के दौरान इसकी 7% की वृद्धि दर का अनुमान लगाया है। IMF ने यह भी अनुमान जताया है कि अगले वर्ष में भारत की GDP वृद्धि दर कुछ घटकर 6.4% रह सकती है। अमरीका ने ईरान पर फिर हवाई हमले किए हैं। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर होर्मुज जलडमरू मध्य में वाणिज्यिक जहाजों पर हमला करने का आरोप लगाते हुए कहा है कि अमरीकी हमले जवाबी कार्रवाई में किए गए। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर ईरान ने फिर हमले किए तो अमरीका इसका और कड़ा जवाब देगा। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, बिहार, पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल तथा हिमालय के निचले इलाकों, सिक्किम और पश्चिम उत्तर प्रदेश में दिन में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड में भी आज इसी तरह के मौसम की संभावना है। इधर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में रात से ही बारिश हो रही है। दिन में भी शहर में ऐसा ही मौसम रहने का अनुमान है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर, नैनीताल और चंपावत जिलों में अगले 36 घंटों के दौरान तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। हमारी संवाददाता ने बताया कि राज्य में कल रात से ही मूसलाधार बारिश हो रही है। केरलम के 5 उत्तरी जिलों में कहीं कहीं तेज बारिश की संभावना का येलो अलर्ट जारी किया गया है। मलप्पुरम, कोझिकोड, वायनाड, कन्नूर और कासरगोड जिलों में येलो अलर्ट पहले से ही जारी है। इन जिलों में कल रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया था। भारत के अर्णव पापरकर ने विंबलडन जूनियर्स 2026 में लड़कों के सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंचकर इतिहास रच दिया है। पिछले 36 वर्षों में सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाले वे भारत के पहले खिलाड़ी हैं। 18 वर्षीय पापरकर ने प्री क्वार्टर फाइनल में जापान के रियो ताबाता को मात्र 52 मिनट में 6-2, 6-1 से हराया। पापरकर का अगला मुकाबला आज शाम 5 बजे क्वार्टर फाइनल में अमेरिका के जॉर्डन ली से होगा। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार।
2: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी समाचार पत्रों ने ईरान अमेरिका युद्ध विराम खत्म होने के, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ऐलान और बारिश के चलते देश में प्रभावित जनजीवन के समाचारों को सुर्खियों में जगह दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया यात्रा का समाचार भी कई अखबारों ने अपने पहले पन्ने पर प्रमुखता से प्रकाशित किया है। अमर उजाला ने इंडोनेशिया के प्रम्बानन मंदिर में पूजा अर्चना करते प्रधानमंत्री का चित्र सबसे ऊपर छापा है। खबर को शीर्षक दिया है, इंडोनेशिया के सबसे बड़े हिंदू मंदिर में मोदी ने की पूजा। वीर अर्जुन ने इस खबर को प्रधानमंत्री के इस बयान के साथ प्रकाशित किया है कि सांस्कृतिक विरासत हमें जोड़ती है। देश बंधु की सुर्खी है, इंडोनेशिया के सबसे बड़े शिव मंदिर में पहुंचे मोदी। ऑस्ट्रेलिया में भारतीय समुदाय से स्वागत स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री का चित्र भी कुछ अखबारों ने प्रकाशित किया है। दैनिक जागरण ने अपने संपादकीय में दिल्ली के रोहिणी इलाके में एक निर्माणाधीन इमारत के ढहने के समाचार को देश भर में भवन निर्माण संबंधी अनियमितताओं के मामले से जुड़ी स्थिति का विश्लेषण प्रकाशित किया है। पत्र का कहना है कि नियमों का उल्लंघन कर लोग 5 से 6 मंजिला भवन बना रहे हैं। स्थिति को सुधारने के लिए अधिकारियों की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए ताकि ऐसी अप्रिय घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। लोक सत्य ने नौकरी पेशा पेंशन धारकों के लिए खुशखबरी शीर्षक से PF खाते में 8.25% की दर से ब्याज देने की सरकार की घोषणा को प्रकाशित किया है।
1: और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेलबर्न में भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा, अनिश्चितता, सप्लाई चेन में रुकावट और ऊर्जा संकट वाले दौर में भारत और ऑस्ट्रेलिया का भरोसेमंद साझेदार के तौर पर आगे बढ़ना स्वाभाविक और जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ वार्ता करेंगे। केंद्र सरकार ने तमिलनाडु के किसानों के हित में खोपरा और तोतापुरी आमों की खरीद को मंजूरी दी है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा युद्ध विराम खत्म होने की घोषणा के बाद अमेरिका ने ईरान पर नए हमले किए और भारत के अर्णव पापरकर ने विंबलडन जूनियर 2026 में सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंचकर रचा है इतिहास। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning. I'm Shagun Chopra. The headlines. Prime Minister Narendra Modi addresses India-Australia CEOs Forum in Melbourne, says it is natural and essential for India and Australia to move forward as trusted partners in a world marked by uncertainty, supply chain disruptions and energy crisis. Prime Minister Modi to also hold talks with his Australian counterpart Anthony Albanese in Melbourne today. Centre approves procurement of copra and Totapuri mangoes from farmers in Tamil Nadu to safeguard farmers' interests. Uttar Pradesh government launches cashless health scheme for teachers as well as non-teaching staff in the state. IMF projects India to remain world's fastest growing major economy with 7% growth this year. US launches new strikes on Iran after President Donald Trump said ceasefire is over. And India's Arnav Paparkar creates history by becoming first Indian in 36 years to reach boys singles quarterfinals at Wimbledon Juniors 2026. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi and his Australian counterpart Anthony Albanese participated in the India-Australia CEO Forum in Melbourne this morning. Both leaders also met the leading business leaders from India and Australia. Speaking on the occasion, Prime Minister Modi said the world is currently navigating a period marked by uncertainty, supply chain disruptions and energy crisis. He said that in such times, it is both natural and essential for India and Australia to move forward as natural and trusted partners. The Prime Minister further said economic cooperation and trade agreement concluded in record time in 2022 has further strengthened the economic ties between the two countries.
2: साल 2022 में रिकॉर्ड समय में किए गए एकता समझौते से हमारी आर्थिक साझेदारी और सशक्त हुई है। इसके लागू होने के बाद भारत से ऑस्ट्रेलिया को एक्सपोर्ट डबल हुआ है और दोनों देशों के बिजनेसेस को नए मार्केट एक्सेस इसका लाभ मिला है। अब हम व्यापक सीका समझौता करने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। इन प्रयासों से दोनों देशों की सरकारों ने एक नया रनवे तैयार किया है। अब इस पर इन्वेस्टमेंट और इनोवेशन का विमान उड़ान भरने के लिए तैयार है।
1: Prime Minister Modi also noted the complementarities between the Indian and Australian economies, underlining vast opportunities available in India across a number of sectors.
2: हमारी पार्टनरशिप केवल दोनों राजधानियों या कुछ शहरों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। हमें हमारे राज्यों, छोटे बड़े शहरों, विश्वविद्यालयों, उद्योगों, सभी के स्टेक होल्डर्स बनाना होगा। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की क्रिटिकल मिनरल स्ट्रेंथ, उसको हम उड़ीसा और गुजरात की मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी के साथ जोड़ सकते हैं। क्वींसलैंड और टेस्मेनिया की क्लीन एनर्जी और एग्रीकल्चर एक्सपर्टीज, पंजाब और तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के रिन्यूअल कॉरिडोर्स और फूड प्रोसेसिंग इकोसिस्टम को नई गति दे सकते हैं।
1: Mr. Modi invited Australian investors to take advantage of opportunities for long-term investments in the country and also welcomed the growing presence of Australian universities in India.
2: भारत आपके फंड्स को सेफ, स्टेबल और सस्टेनेबल ग्रोथ का अवसर देता है। हमारा प्रयास रहेगा कि आपका ट्रस्ट भी बढ़े और आपका कैपिटल भी बढ़े। एजुकेशन और स्किल्स दोनों देशों के बीच नेचुरल सिनर्जी है। डिकिन यूनिवर्सिटी और वुलोंगोंग यूनिवर्सिटी ने किप सिटी में कैंपस खोलकर एक नया अध्याय शुरू किया। यह भारत के प्रति

0: to safeguard farmers' interests. Uttar Pradesh government launches cashless health scheme for teachers as well as non-teaching staff in the state. IMF projects India to remain world's fastest growing major economy with 7% growth this year. US launches new strikes on Iran after President Donald Trump said ceasefire is over. And India's Arnab Paparkar creates history by becoming first Indian in 36 years to reach boys' singles quarterfinals at Wimbledon Juniors 2026. For details of these stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and News on AIR app. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
1: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं फैसल खान। पहले इस वक्त की अहम खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के उनके हम मनसब एंथोनी अल्बनीज आज सुबह मेलबर्न में भारत ऑस्ट्रेलिया के सीओज फोरम में शरीक हुए। दोनों लीडरों ने भारत और ऑस्ट्रेलिया के सरकर्दा कारोबारी रहनुमाओं से भी मुलाकात की। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया के अपने हम मनसब एंथोनी अल्बनीज के साथ भी मुजाकरात करेंगे। मरकज ने किसानों के मुफादात के तहफ्फुज़ के लिए तमिलनाडु में किसानों से खोपरा और तोतापुरी आमों की खरीदारी को मंजूरी दे दी है। उत्तर प्रदेश हुकूमत ने रियासत में असातिज़ा के साथ गैर तदरीसी अमले के लिए सेहत की कैशलेस स्कीम शुरू की है। बैलोकमी मालियाती फंड की जानिब से इस साल के दौरान भारत की शरे तरक्की 7% रहने के तखमीने के साथ भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई बड़ी मईशत के तौर पर अपना ताज बरकरार रखे हुए है। अमेरिका ने ईरान पर फिर से हवाई हमले शुरू कर दिए हैं। ये हमले सदर ट्रंप के उस बयान के बाद किए गए हैं जिसमें कहा गया था कि ईरान के ताजा हमलों से जंगबंदी खत्म हो गई है। और विंबलडन जूनियर्स 2026 में भारत के अर्नब पापरकर ने एक तारीख रकम की है और वो 36 साल में ऐसे पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं जो लड़कों के सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे हैं। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज सुबह मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया के अपने मनसब एंथोनी अल्बनीज के साथ भारत ऑस्ट्रेलिया के सीओज फोरम और इक्तसादी रोडमैप बिजनेस रिसेप्शन में शिरकत की। दोनों रहनुमाओं ने भारत और ऑस्ट्रेलिया के सरकर्दा कारोबारी रहनुमाओं से भी मुलाकात की। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि दुनिया इस वक्त एक गैर यकीनी सूरत हाल से दोचार है। सप्लाई चेन में रुकावट के अलावा तवानाई के बहरान से भी दोचार है। वजीर आजम ने कहा कि ऐसे वक्त में ये भारत और ऑस्ट्रेलिया के लिए फितरी और लाजमी है कि वो एक भरोसेमंद शराकतदारों की हैसियत से आगे बढ़ें। वजीर आजम ने मजीद कहा कि माशी ताउन और तिजारती समझौता 2022 में एक रिकॉर्ड मुद्दत में मुकम्मल हुआ और इससे दोनों मुल्कों के दरमियान माशी ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम हुए हैं।
2: साल 2022 में रिकॉर्ड समय में किए गए एक्टा समझौते से हमारी आर्थिक साझेदारी और सशक्त हुई है। इसके लागू होने के बाद भारत से ऑस्ट्रेलिया को एक्सपोर्ट डबल हुआ है और दोनों देशों के बिजनेसेस को नए मार्केट एक्सेस इसका लाभ मिला है। अब हम व्यापक सीका समझौता करने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। इन प्रयासों से दोनों देशों की सरकारों ने एक नया रनवे तैयार किया है। अब इस पर इन्वेस्टमेंट और इनोवेशन का विमान उड़ान भरने के लिए तैयार है।
1: वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने बहुत से शोबों में भारत में दस्तियाब वसी मौके का जिक्र करते हुए भारत और ऑस्ट्रेलिया की मईशतों के दरमियान तकमील को भी वाजे किया।
2: न्यू साउथ वेल्स और विक्टोरिया की फाइनेंस, एजुकेशन, मेडिकल टेक और इनोवेशन इकोसिस्टम महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना के साथ मिलकर ग्लोबल सॉल्यूशंस बना सकते हैं। साउथ ऑस्ट्रेलिया की डिफेंस, स्पेस और मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी उत्तर प्रदेश और केरलम के साथ नए अवसर बना सकते। मेरा सुझाव है कि हम आने वाले समय में कुछ फोकस स्टेट टू स्टेट और सेक्टर टू सेक्टर पार्टनरशिप की पहचान करें और उन्हें आगे ले जाने के लिए रणनीति बनाए।
1: जनाब मोदी ने मुल्क में तवील मुद्दती सरमायाकारी के लिए

0: मौके का फायदा उठाने की गरज से ऑस्ट्रेलिया के सरमायाकारों को मदद किया और साथ ही साथ भारत में ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटियों की बढ़ती हुई मौजूदगी का भी खैर मकदम किया।
1: भारत आपके फंड्स को सेफ, स्टेबल और सस्टेनेबल ग्रोथ का अवसर देता है। हमारा प्रयास रहेगा कि आपका ट्रस्ट भी बढ़े और आपका कैपिटल भी बढ़े। एजुकेशन और स्किल्स दोनों देशों के बीच नेचुरल सिनर्जी है। डिकिन यूनिवर्सिटी और वुलोंगोंग यूनिवर्सिटी ने किप सिटी में कैंपस खोलकर एक नया अध्याय शुरू किया। यह भारत के प्रति उनके कॉन्फिडेंस का प्रतिबिंब है। हमारा साझा लक्ष्य होना चाहिए कि हम स्टूडेंट मोबिलिटी को टैलेंट पार्टनरशिप में बदले।
0: सीओज फोरम के बाद वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने इक्तिसादी रोडमैप बिजनेस से मुतालिक तकरीब से भी खिताब किया, जिसमें दोनों मुल्कों के 200 से ज्यादा सीओज और कारोबारी रहनुमाओं ने शिरकत की। भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान फितरी तालमेल के बारे में इजहार ख्याल करते हुए उन्होंने इस बात को उजागर किया कि मुश्तरका जमहूरी कदरें भारत बहरुल काहिल के लिए एक मुश्तरका विजन, अवाम से अवाम के दरमियान वसी ताल्लुकात और मजबूत सियासी मफाहमत ने दोनों मुल्कों के दरमियान कारोबारी शराकतदारी के लिए एक जबरदस्त बुनियाद की राह हमवार की है, जिससे दोनों मुल्क मिलकर आगे बढ़ेंगे और खुशहाली लाएंगे। अब हम मेलबर्न में अपने नामा निगार के पास चलते हैं, जो वज़ीर-ए-आज़म के दौरे के बारे में मज़ीद तफसील से आगाह कर रहे हैं।
2: भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम ने मुतबादिल सिफारती रास्तों से हटकर एक मजबूत मुस्तकबिल के लिए महफूज इक्तिसादी इंजन की तरफ एक फैसलाकुन तब्दीली की निशानदेही की है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने लामरकजी इक्तिसादी सिफारतकारी के एक नए दौर का इशारा देते हुए बराह रास्त मुल्क से मुल्क के कॉरिडोर का मुतालबा किया है, जो ऑस्ट्रेलिया के खाम मसाइल को बराह रास्त भारत के बड़े पैमाने पर साफ सुथरी तवानाई, चिप मैन्युफैक्चरिंग और डिजिटल बुनियादी ढांचा पाइपलाइन से जोड़ते हैं। मेलबर्न से सुहास राम की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं हुसैन अख्तर।
0: वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज बाद में मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया के अपने मनसब एंथोनी अल्बनीज के साथ मुज़ाकरात करेंगे। तवक्को है कि दोनों रहनुमा तजारत, दिफा, अहम टेक्नोलॉजी, तालीम और अवाम से अवाम के दरमियान ताउन को मुस्तहकम करने पर तवज्जो मरकूज करेंगे। जनाब मोदी ऑस्ट्रेलिया के 3 रोजा दौरे पर कल शाम मेलबर्न पहुंचे। वो ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर-ए-आज़म के दावत पर उस मुल्क का दौरा कर रहे हैं। मरकज ने तमिलनाडु में किसानों से खोपरा और तोतापुरी आम की खरीदारी को मंजूरी दे दी है, ताकि किसानों के मुफादात का तहफ्फुज़ किया जा सके। ज़राअत और किसानों की बहबूद की वजारत ने बताया कि इससे किसानों के लिए बेहतर कीमत को यकीनी बनाया जा सकेगा और मार्केट में उतार चढ़ाव की वजह से मजबूरी में कम कीमत पर फरोख्त करने से उनका तहफ्फुज़ किया जा सकेगा। पेश है एक रिपोर्ट।
3: ये मंजूरी तमिलनाडु के जरिए पेशकर्दा तजवीज पर मुबनी है। इस मंजूरी के तहत 87,000 मैट्रिक टन से ज्यादा खोपरा रियासत में फरोख्त किया जा सकेगा। मंजूर शुदा खरीदारी के कम से कम कुल इमदादी कीमत की कदर 1,000 करोड़ रुपए से ज्यादा है। मजीद ये कि इस साल के दौरान तमिलनाडु में 96,000 मैट्रिक टन से ज्यादा तोतापुरी आमों की खरीदारी को मार्केट इंटरवेंशन स्कीम MIS के तहत मंजूरी हासिल हुई। खरीदारी MIS के तहत की जाएगी। इंटरवेंशन स्कीम का मकसद इस बात को यकीन बनाना है कि तोतापुरी आम की काश्त करने वाले किसानों को उनकी पैदावार की मुनसिफाना और मुनासिब कीमतें हासिल हो सकें और मार्केट की कीमतों में अचानक गिरावट की वजह से नुकसान पर फरोख्त करने से उनका तहफ्फुज किया जा सके। इस इकदाम से तवक्को है कि कीमतों में इस्तेहकाम लाया जा सकेगा और किसानों की आमदनी का तहफ्फुज किया जा सकेगा। सकलेन अख्तर की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं नरगिस अलीम।
0: ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही है। उत्तर प्रदेश हुकूमत ने रियासत में असातिज़ा के साथ साथ गैर तदरीसी अमले के लिए कैशलेस हेल्थ स्कीम शुरू की है। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी से चीफ मिनिस्टर्स टीचर्स कैशलेस मेडिकल स्कीम का आगाज किया, जिसके तहत 15 लाख से ज्यादा तदरीसी अमले को 5 लाख रुपए तक का मेडिकल कवर फराहम किया जाएगा। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
2: इस स्कीम के तहत रियासत भर के असातिज़ा और उनके खानदानों को 5 लाख रुपए तक की कैशलेस तिब्बी सहूलियात मैसर आएंगी। बुनियादी और सेकेंडरी तालीम से वाबस्ता तकरीबन 15 लाख असातिज़ा और गैर तदरीसी अमला इस स्कीम से फायदा उठा सकेंगे। बाकायदा असातिज़ा के अलावा इस स्कीम से शिक्षा मित्र, इंस्ट्रक्टर्स, कुक्स और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों के अहल अमले को भी फायदा पहुँचेगा। اساتذہ اور ان کے اہل

मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का नजीबाबाद केंद्र है। सुबह के 8:45 हुए हैं। पेश है सदाबहार गीतों का सुरीला कार्यक्रम गोल्डन हिट्स। श्रोताओं, स्वागत है आप सभी का सदाबहार गीतों के कार्यक्रम गोल्डन हिट्स में। श्रोताओं, बूंदों की अपनी एक भाषा होती है। एक तरफ बारिश की बूंदें बरस रही हैं, वहीं पुराने गीतों की खुशबू लिए हम आ गए हैं लेकर कार्यक्रम गोल्डन हिट्स। और देखिए, बारिश की बूंदों के साथ साथ पुराने गीतों की भी बरसात हो जाए और ये जब दोनों साथ मिल जाएं तो दिल अनायास ही गुनगुनाने लगता है एक खूबसूरत गीत जिसने मोहब्बत और बारिश के रिश्ते को हमेशा के लिए अमर कर दिया। ये सिर्फ एक गीत नहीं बल्कि अनगिनत यादों का भीगा हुआ सुहाना सा सफर है जिसमें प्यार भी है और इकरार भी है।

श्री 420। इस फिल्म में आप सुन रहे थे लता मंगेशकर, मन्ना डे को। धुन तैयार की थी शंकर जयकिशन ने और गीत के बोल लिखे थे शैलेन ने। आइए अब आपको सुनवाते हैं कमर चलालाबादी के लिखे गीत, कल्याण जी आनंद जी के संगीत में बुना मुकेश का गाया गीत फिल्म छलिया से। श्रोताओं, रिमझिम फुहारों ने मौसम को एक अलग ही अंदाज दे दिया है। बादलों की अटखेलियां और ठंडी हवाओं का साथ और उसके साथ साथ पुराने गीतों की मिठास और भी खूबसूरत हो जाती है। तो आइए ऐसे ही भीगे भीगे एहसासों को सुरों में पिरोता एक सदाबहार नगमा हम आपको सुनवा रहे हैं मुकेश की आवाज़ में।

0: घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन, आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल। देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: कम ब्याज पे लोन चाहिए, वो भी ऐप से।
2: अनजान ऐप से बचें।
3: RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

ये भीगे भीगे एहसासों से सजा गीत आप सुन रहे थे। फिल्म काला बाजार थे, आवाजें थी मोहम्मद रफी गीता दत्त की, शब्द रचना शैलेंद्र की और संगीत रचना शंकर जयकिशन की। आइए अब आनंद लेते हैं आनंद बख्शी के लिखे गीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत में, मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर को सुनते हैं फिल्म दो रास्ते में।

साथ सिर्फ ठंडी ठंडी फुहारें ही नहीं लाता, बल्कि हमारे दिल में कुछ मीठी मीठी सी बेचैनियां भी जगा देता है। ना दिन का चैन होता है ना रातों की नींद। ऐसा लगता है कि चैन कहीं दूर चला गया है और नींद हमसे रूठ गई है। तो ऐसे में आपका अंदाज़े बयां कुछ ऐसा होगा।

को सुनकर बारिश के मौसम का लुत्फ उठा रहे होंगे। और आपको बता दें कि इस गीत की संगीत रचना लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की थी और गीत रचना आनंद बख्शी की थी। तो अब चलते हैं कार्यक्रम के अंतिम गीत की तरफ। श्रोताओं, बाहर मौसम भीगा भीगा है और हवाएं भी पूरी मस्ती में हैं। बादलों की महक, फुहारों की रुंझुन और मिट्टी की सौंधी सौंधी सी खुशबू पूरे माहौल को खुशनुमा बना रही है। ऐसे सुहाने पल में अगर ये गीत हम आपको ना सुनाएं तो बरसात के मौसम का एहसास अधूरा रह जाएगा। तो सुनिएगा फिल्म धरती में मोहम्मद रफी, लता मंगेशकर को, जिसकी संगीत रचना है शंकर जयकिशन की और गीत के फूल लिखे हैं हसरत जयपुरी ने।

0: में आज बस इतना ही। उम्मीद है बारिश की इन फुहारों के साथ सुनहरे दौर के नगमों में आपके दिन को और भी खुशनुमा बना दिया होगा। इसी उम्मीद के साथ दीजिएगा मुझे इजाजत। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ और सदाबहार और दिलकश गीतों के साथ। तब तक मुस्कुराते रहिए, सुरक्षित रहिए और आकाशवाणी नजीबाबाद को सुनते रहिए।
1: जिले की हलचल। जिले की हलचल आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए लखनऊ और रामपुर जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं लखनऊ जिले की हलचल। आलेख और स्वर है मुमताज अली का।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 जून 2026 को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना PMVBRY के तहत लगभग 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित की। लखनऊ भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस कार्यक्रम से जुड़ा। लखनऊ में यह कार्यक्रम इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित किया गया। इस राज्य स्तरीय कार्यक्रम का शुभारंभ प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने दीप जलाकर किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना सिर्फ एक रोजगार योजना से कहीं अधिक है। यह एक ऐसी पहल है जिसका उद्देश्य पहली नौकरी में प्रवेश करने वाले युवाओं की आकांक्षाओं को मजबूत करना और उद्योग व कार्यबल के बीच एक मजबूत सेतु का निर्माण करना है।
3: हमारी सोच सोशल सिक्योरिटी फॉर एवरी वर्कर की है। हमारी सोच सिक्योर एम्प्लॉयमेंट की है। हमारी सोच सोशल सिक्योरिटी फॉर एवरी वर्कर की है। इसलिए आज टेक्नोलॉजी के माध्यम से EPFO की व्यवस्था को आधुनिक बनाया गया। पेंशन व्यवस्था को भी सरल और सुलभ बनाया गया। लाखों नए कर्मियों को हेल्थ इंश्योरेंस और सस्ते उपचार की व्यवस्था से भी जोड़ा गया।
2: लखनऊ स्थित मौसम विज्ञान केंद्र अब क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र के रूप में कार्य कर रहा है। इसकी घोषणा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 8 जून 2026 को लखनऊ में आयोजित एक कार्यक्रम में की। इस अवसर पर भारत सरकार के विज्ञान प्रौद्योगिकी और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर जितेंद्र सिंह भी मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज लखनऊ इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के एक प्रमुख क्षेत्रीय केंद्र के रूप में अपनी पहचान स्थापित कर रहा है। यह विकसित भारत की संकल्पना को वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। भारत सरकार के विज्ञान प्रौद्योगिकी और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि जो काम पिछले 65 वर्षों में नहीं हो पाया उसे बीते एक दशक में पूरा करने का प्रयास किया गया है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों राज्यों में आधुनिक मौसम उपकरणों की स्थापना से अब सटीक और समय पर पूर्वानुमान लगाना संभव हो सकेगा। योजना भवन लखनऊ में 25 जून 2026 को केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ हाई लेवल समीक्षा बैठक में कृषि और ग्रामीण विकास की स्थिति पर विस्तृत चर्चा की। बैठक के दौरान केंद्रीय मंत्री श्री चौहान ने रबी विपणन वर्ष 2026-27 के लिए गेहूं, चना, मसूर जैसी फसलों की MSP पर खरीद अवधि 24 जून से 8 जुलाई 2026 तक बढ़ाने की मंजूरी का पत्र मुख्यमंत्री को सौंपा। इसके साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के नए चरण के तहत UP के लिए 6,18,482 पक्के मकानों की स्वीकृति का अनुमोदन पत्र भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दिया। केंद्रीय रेल और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री रोनीत सिंह बिट्टू 1 जुलाई 2026 को लखनऊ स्थित अनुसंधान अभिकल्प और मानक संगठन RDSO पहुंचे। उन्होंने जानकारी दी कि स्वदेशी ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम कवच अब भारतीय रेलवे के 3,500 किलोमीटर से अधिक नेटवर्क पर तैनात हो चुका है। यह प्रणाली ट्रेन की टक्कर रोकने और यात्री सुरक्षा बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के 4 जुलाई 2026 को प्रथम लखनऊ आगमन पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक, प्रदेश संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह, प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर नीरज सिंह, लखनऊ महानगर अध्यक्ष आनंद द्विवेदी सहित कैबिनेट मंत्रियों, जनप्रतिनिधियों और विधायकों ने पुष्पगुच्छ भेंट कर भव्य स्वागत किया। एयरपोर्ट से भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय तक निकली अभिनंदन यात्रा में 42 स्थानों पर राष्ट्रीय अध्यक्ष का भव्य स्वागत किया गया। लखनऊ दौरे के दूसरे दिन श्री नवीन ने 5 जुलाई 2026 को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA के सहयोगी दलों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। बैठक में 2027 उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा हुई। नितिन नवीन ने दावा किया कि 2027 में प्रचंड बहुमत से लगातार तीसरी बार सरकार बनेगी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर 21 जून 2026 को लखनऊ के विभिन्न स्थानों पर योग अभ्यास किया गया। योग अभ्यास कार्यक्रमों में अधिकारियों, कर्मचारियों, विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं और समाज के संभ्रांत नागरिकों के साथ गणमान्य लोगों ने भी भाग लिया। 22 जून 2026 को लखनऊ के अलीगंज क्षेत्र में एक व्यवसायिक इमारत में आग लगने से 15 लोगों की जान चली गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री और लखनऊ के सांसद राजनाथ सिंह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित विभिन्न नेताओं ने दुर्घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटनास्थल का निरीक्षण करने के बाद घायलों से

0: अस्पताल में जाकर मुलाकात। मामले की जांच के लिए गठित 2 सदस्यीय विशेष जांच दल SIT ने रिपोर्ट तैयार कर ली है। यह जांच रिपोर्ट जल्दी मुख्यमंत्री को सौंपी जाएगी। मुख्यमंत्री ने इस घटना की जांच की जिम्मेदारी पर्यटन विभाग के अपर मुख्य सचिव अमृत अभिजात और ADG जोन लखनऊ प्रवीण कुमार को सौंपी थी। 23 जून 2026 को दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पद्म पुरस्कारों का वितरण किया। पुरस्कार प्राप्त करने वालों में लखनऊ के प्रसिद्ध रंगकर्मी डॉक्टर अनिल कुमार रस्तोगी भी शामिल थे। लखनऊ के कलाकार को पद्म पुरस्कार मिलने पर शहरवासियों ने प्रसन्नता व्यक्त की है। पूरे विश्व में ताजियादारी और अदादारी के लिए मशहूर लखनऊ में मुहर्रम का महीना शोक के साथ मनाया जा रहा है। इमाम बारगाहों, इमाम बाड़ों और घरों में मजलिसों का दौर जारी है। 26 जून 2026 यानी 10 मुहर्रम को ताजियों को जुलूस की शक्ल में करबला तक ले जाकर दफन किया गया। पहली मुहर्रम को शाही दरी का जुलूस अपने रवायती अंदाज में निकला। 7 मुहर्रम को मेहदी और 8 मुहर्रम को अलम फातह फरात के बाद 9 मुहर्रम को अलम शबे आशूर का जुलूस गमगीन माहौल में निकाला गया।
1: लखनऊ जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं रामपुर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है शन्नू खान का।
2: रामपुर में उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा UPTET शांतिपूर्ण, पारदर्शी एवं नकल विहीन वातावरण में संपन्न हुई। परीक्षा जनपद के केंद्रों पर शासन के दिशा निर्देशों के अनुरूप कड़ी सुरक्षा एवं प्रशासनिक निगरानी के बीच आयोजित कराई गई। परीक्षा में 92% उपस्थिति दर्ज हुई। जिलाधिकारी अजय कुमार द्विवेदी ने बताया कि परीक्षा के सफल संचालन के लिए सभी परीक्षा केंद्रों पर सेक्टर मजिस्ट्रेट, स्टैटिक मजिस्ट्रेट एवं पुलिस अधिकारियों की तैनाती की गई थी। सभी अधिकारियों ने अपने दायित्वों का पूरी सतर्कता एवं जिम्मेदारी के साथ निर्वहन किया, जिससे परीक्षा पूरी तरह शांतिपूर्ण एवं व्यवस्थित ढंग से संपन्न हुई। जिलाधिकारी अजय द्विवेदी ने स्कूल चलो अभियान के द्वितीय चरण की शुरुआत के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि वर्तमान समय में शिक्षा केवल रोजगार प्राप्त करने का माध्यम नहीं, बल्कि बेहतर जीवन जीने, सरकारी योजनाओं का लाभ लेने, बैंकिंग, डिजिटल सेवाओं तथा दैनिक आवश्यकताओं को सहज रूप से पूरा करने के लिए भी अत्यंत आवश्यक है। प्रत्येक बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से जोड़ना समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है। जिलाधिकारी ने कहा कि शिक्षा बच्चों के सर्वांगीण विकास एवं व्यक्तित्व निर्माण का आधार है। उन्होंने कहा कि विद्यालयों का वातावरण बच्चों के लिए आकर्षक एवं प्रेरणादायी होना चाहिए। इस अवसर पर जिलाधिकारी एवं मुख्य विकास अधिकारी ने मिशन कायाकल्प के अंतर्गत उत्कृष्ट कार्य करने वाले ग्राम प्रधानों तथा नामांकन अभियान में उल्लेखनीय योगदान देने वाले शिक्षकों एवं आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। रामपुर में उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल ने जिला प्रशासन को एक अनुरोध पत्र सौंपा। इस अवसर पर संगठन के युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश अग्रवाल ने कहा कि PPE मॉडल पर प्रस्तावित मेडिकल कॉलेज संचालन के लिए 100 बीघा भूमि ग्राम जगतपुर व ग्राम बेनजीर में अधिग्रहण की कार्रवाई की गई है। कॉलेज स्वीकृत हो चुका है, लेकिन भूमि अधिग्रहण कार्रवाई पूर्ण न होने से मेडिकल कॉलेज शुरू नहीं हो पा रहा है। मेडिकल कॉलेज शुरू न होने से आम जनता समय से बेहतर इलाज न मिल पाने से परेशान है। संगठन ने मांग की है कि भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई जल्द पूरी होनी चाहिए। 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर जनपद योग में दिखाई दिया। जिला प्रशासन एवं आयुष विभाग के संयुक्त तत्वाधान में पनवड़िया स्थित सांस्कृतिक सद्भावना मंडप में जनपद स्तरीय भव्य योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जन प्रतिनिधियों, अधिकारियों, पुलिस कर्मियों, विद्यार्थियों एवं आमजन की उत्साहपूर्ण सहभागिता रही। योग प्रशिक्षकों के निर्देशन में सभी प्रतिभागियों ने कॉमन योग प्रोटोकॉल के अंतर्गत विभिन्न योगासनों, प्राणायाम एवं ध्यान का अभ्यास किया। मुख्य अतिथि कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सतत प्रयासों के परिणाम स्वरूप योग को वैश्विक पहचान मिली है और आज विश्व के अनेक देशों में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस उत्साहपूर्वक मनाया जा रहा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि भारत की प्राचीन योग, आयुर्वेद एवं यूनानी चिकित्सा परंपरा को विश्व मंच पर प्रतिष्ठित करने में प्रधानमंत्री की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। योग हमारी हजारों वर्षों पुरानी सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है, जो आज पूरे विश्व को स्वस्थ जीवन का मार्ग दिखा रहा है। जिलाधिकारी अजय कुमार द्विवेदी एवं पुलिस अधीक्षक सोमेंद्र कुमार मीणा ने तहसील सदर के परिसर में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत पौधारोपण किया। इस अवसर पर उन्होंने कार्यक्रम में आए लोगों को पौधे वितरित कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया। इस मौके पर जिलाधिकारी ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी मां के सम्मान में कम से कम एक पौधा अवश्य लगाए तथा उसके वृक्ष बनने तक उसकी देखभाल एवं संरक्षण भी सुनिश्चित करे।
3: जो माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है एक पेड़ मां के नाम, उसको जरूर अपनाएं और सभी लोगों से उम्मीद करूंगा कम से कम एक पेड़ जरूर अपने संरक्षण में उसको बड़ा करें।
2: रामपुर में पल्स पोलियो अभियान का उद्घाटन मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर दीपक सिंह द्वारा किया गया। डॉक्टर दीपक सिंह द्वारा शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र शाहबाद गेट स्थित पोलियो बूथ पर फीता काटकर एवं बच्चों को पोलियो की 2 बूंद पिलाकर अभियान की शुरुआत की गई। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने इस मौके पर कहा कि पोलियो जैसी गंभीर बीमारी से बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए

0: प्रत्येक अभिभावक जन्म से 5 वर्ष तक के बच्चों को पोलियो की खुराक जरूर पिलाएं।
1: ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।
2: मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का नजीबाबाद केंद्र है। प्रातः के 9:25 हुए हैं। प्रस्तुत है लोक संगीत का कार्यक्रम धरती गाती है। स्वागत है सभी श्रोताओं का कार्यक्रम धरती गाती है में। श्रोताओं, आज हम आपके लिए लाए हैं रूबी रस्तोगी के गाए कुछ रुहेलखंडी लोकगीत। रुहेलखंडी लोकगीत ऐसे मनभावन लोकगीत होते हैं जिसमें रुहेलखंड के गांवों की खुशबू, रिश्तों की आत्मीयता और लोक जीवन के रंग सहज ही झलकते हैं। तो बिना देर किए करते हैं कार्यक्रम की खूबसूरत शुरुआत।

श्रोताओं, लोक गीतों के बोल जितने सरल होते हैं उनके भाव भी उतने गहरे और आत्मीय होते हैं। तो आइए एक बार फिर चलते हैं लोक गीतों की सुरमय सफर पर।

0: डेंगू चिकनगुनिया मलेरिया दिमागी बुखार से बचेगी।
1: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
2: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

इसी लोकगीत के साथ आज का धरती गाती है कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न होता है। अभी आप सुन रहे थे लोक संगीत का कार्यक्रम धरती गाती है, जिसमें आज आपने आनंद लिया रूबी रस्तोगी के गाए कुछ रुहेलखंडी लोकगीतों का। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं, सवेरे के 10 बज रहे हैं। अब पेश है आपके पत्रों और व्हाट्सएप मैसेजेस पर आधारित फिल्म संगीत का फरमाइशी कार्यक्रम गीत तुम्हारे।

0: मोहब्बत के अल्फाज कभी खतों में महकते हैं, मोहब्बत के अल्फाज कभी खतों में महकते हैं, कभी संदेश बनकर हमारे दिलों तक पहुंचते हैं। संगीत उन एहसासों को आवाज़ देता है, संगीत उन एहसासों को आवाज़ देता है जो अक्सर लफ्ज़ों में बयां नहीं हो पाते। आइए आपकी पसंद के उन्हीं सदाबहार गीतों से सजी महफिल में मैं फरीना
1: और मैं नसरीन जैदी
0: आपका दिल से करते हैं स्वागत। तो नसरीन जी, कार्यक्रम में श्रोताओं की पसंद का गीत सुनवाने से पहले क्यों ना हम उन्हें अपना नंबर बता दें जिससे वो जल्दी से हमसे जुड़ जाएं।
1: श्रोताओ, हमारा नंबर नोट कीजिएगा 9457078288। एक बार नंबर फिर से नोट कर लीजिएगा 9457078288।
0: और देखिए नसरीन जी, नंबर बताने से पहले और नंबर बताने के बाद गीतों की फरमाइश की झड़ियां लग गई हैं।
1: जी हाँ फरीना, देखिए हमारे स्क्रीन बिल्कुल ग्रीन हो चुकी है।
0: हाँ, तो कार्यक्रम का पहला गीत हम जो सुनवा रहे हैं अपने श्रोताओं की पसंद में, वो हमने लिया है फिल्म मुझसे दोस्ती करोगे से, जिसको आवाज़ दी है लता मंगेशकर, सोनू निगम ने, संगीत रचना राहुल शर्मा की है और गीत रचना आनंद बख्शी की है। इस गीत के लिए ये फरमाइशी पत्र हमें भेजा है कनेरा मोहल्ला पटियाला से बत्ता परिवार ने। आप हैं मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन पलक, करण, गीतू, निहारिका, वंश बत्ता, दीदार रेडियो श्रोता संघ बिलराम गेट कासगंज से ये पत्र हमें भेजा है। एम असलम सैफी, जैबुन्निसा बेगम, अक्रम सैफी, आबाद खान, रेडियो कॉलोनी भटिंडा से हैं। आप हैं जगमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, जे एस नायक, शोभा नायक और समस्त डागला परिवार।
1: और फरीना, ये पत्र हमें भेजा है और हमारे साथ अपने इस कार्यक्रम में जुड़ना चाह रहे हैं महादेव घाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारणी ठाकुर, सूरज ठाकुर, सुजला ठाकुर, ज्योति ठाकुर, रियांश ठाकुर। और ये एक और पत्र हमें मिला है इसी गीत के लिए, ये हमें मिला है मेहर नगर उमेरखड़ महाराष्ट्र से। इसको लिखने वाले हैं अभिजीत गवहाड़कर, राही श्रीमती सरिता गवहाड़कर, प्रिंस एकांश गवहाड़कर और बदलापुर मुंबई से सिद्धांत गवहाड़कर, प्रणीता गवहाड़कर, अर्जुन गवहाड़कर और ये इसी में शामिल है आकार हाइट्स बहादुरा नागपुर से वैशाली शैलेश गवहाड़कर, सुमित गवहाड़कर, कुमारी धवनी गवहाड़कर। एक और पत्र हम इसमें शामिल कर लेते हैं अपने करीबी ही एरिए का, ये मिला है हमें मोहल्ला अफगानान शेरकोट बिजनौर से। और इसमें इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं नदीम बाकी, कलीम बाकी, अलीम बाकी, अजीम बाकी, अदीम बाकी, अब्दुल गनी, अलमीर, जन्नत और उनके परिवार के सभी लोग।
0: और अपनी पसंद का गीत सुनने के लिए ये अगला पत्र हमने लिया है पाकिजा रेडियो श्रोता संघ वैष्णव कलानी सनावद मध्य प्रदेश से। आप हैं मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अलकमा खत्री, मोहम्मद अल्तमश खत्री, रमेश गौड़, मोहम्मद शादाब खत्री, गांधी चौक रोपड़ पंजाब से ये फरमाइशी पत्र आया है हरदेव मीका, बलविंदर बिरक, जयतेक बिरक, मीका बिरक का। और लच्छनपुर छत्तीसगढ़ से हमें पत्र भेजा है विश्वनाथ साहू, पंकज साहू, तिरुपतु साहू, थनक्ष आरू साहू ने।
1: और एक खत और हम शामिल कर लेते हैं फरीना, ये हमें ये भी खत हमें शेरकोट से मिला है, लिखा है मोहम्मद वक्कार फरीदी ने, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू भैया, साजदा रानी और हीना कौसर। तो आइए सुना देते हैं इन सब की पसंद का ये प्यारा सा गीत।

0: नसरीन जी, कितने सारे मैसेजेस हमारी स्क्रीन पर हैं, तो जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं। हमारे कौन श्रोता और कौन कौन से गीत सुनना चाहते हैं? तो ये हैं हमारे श्रोता अनिल जैन, जैन साहब, संयम जैन, मुस्कान जैन, मास्टर जीवीएम जैन। आपने ये मैसेज भेजा है मालियान सरदना मेरठ से। और ये अगला मैसेज हमें भेजा है गांव जेवरा हिसार से वीरेंद्र भ्याण, सुरेंद्र, शमशेर, मनोज और उनके परिवार के सदस्यों ने। ये अगला मैसेज जो हमने लिया है, ये भेजा है हमें मंसूरी रेडियो लिसनर क्लब बाजार रोड मुंगीसापुर से मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमरून निशा, शबिस्ता मोहम्मद, नसीब, पलक, लुबना और यश मंसूरी ने। और ये आगे मैसेज हमें भेजा है सलमान अख्तर ने,
1: ये
0: जिला,
1: बसी किरतपुर से।
0: हाँ, जिला बिजनौर से ये मैसेज उन्होंने भेजा है। और देखिए ये मैसेज किसने भेजा है,
1: ये मैसेज हमें मिला है फरीना पटेल नगर मलोट से। इसको भेजने वाले हैं डॉक्टर रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी जाजोरिया, गगनदीप जाजोरिया, आरजू जाजोरिया, गुड्डू, और पटेल नगर मलोट से ही ये हमें मिल रहे हैं उनके परिवार के सभी सदस्य। अगला मैसेज हमें मिल रहा है सब्जी मंडी झज्जर से बिट्टू भाटिया, रीटा भाटिया। और एक और मैसेज हम शामिल कर लेते हैं। ये मैसेज हमें दिख रहा है अपनी स्क्रीन पर उत्तम नगर दिल्ली से। लिखने वाले हैं बोधराज खोरवाल, कमला रानी, गीतिका खोरवाल, भानु प्रकाश।
0: और ये मैसेज हमें भेजा है मुगलपुरा बागपत से अब्दुल सत्तार अब्बासी और उनके परिवार के सदस्यों ने। और ये मैसेज हमें भेज रहे हैं आसाम से हितेंद्र दास। अगला मैसेज भेजने वाले हैं मध्य प्रदेश छिंदवाड़ा से नाना लाम से, मीना लाम से, तेजस लाम से, जय लाम से, हर्षिता लाम से।
1: और ये अगला मैसेज हमें मिला है लोकू कॉलोनी लोहारू हरियाणा से। लिखा है बिल्लू सिंह चिंडालिया, लक्ष्मी देवी, सुरेंद्र कुमार चिंडालिया, बरखा, योगेंद्र कुमार चिंडालिया, नरेंद्र कुमार चिंडालिया और उनके परिवार के सभी सदस्य। फरीना, हमारे पास काफ़ी दूर दूर से मैसेज आ रहे हैं। और देखिए, हमारा ये जो कार्यक्रम है, ये वाकई इनके गीतों की वजह से ही हमारे इस कार्यक्रम में जान है।
0: हाँ बेशक, तो कार्यक्रम में जान डालने के लिए ये अगला मैसेज हमें भेजा है सराय मीर स्ट्रीट नगीना से रईस अहमद राई, रवीश अहमद राई, रुवेश अहमद राई, रिशान अहमद राई, रोशेज अहमद राई, रुशमान अहमद राही और उनके परिवार के सदस्यों ने। ये अगला मैसेज हमें भेजा है गनगोला दातागंज जिला बदायूं से इशरत खान, शायरा बेगम, रहूब खान, सावरीन बेगम, शाहबाज खान, सैफ खान, ईशान खान, आजम खान, अरहान खान ने। और अगला मैसेज हमें भेजा है, आप पढ़िए नसरीन जी।
1: जी, ये मैसेज हमें मिला है गांव नथाना पंजाब से। मैसेज हमें भेज रहे हैं हरजिंदर छिंदा, जसवीर, जसी, सीता और गीता।
0: और ये मैसेज हमें भेजा है कोटवा नारायण बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित राय, हैप्पी राय, उनके साथ हैं दुबीहा निवादा जिला गाजीपुर से प्रतीक राय, रोशनी राय और प्रांजल राय।
1: अगला मैसेज हमें मिल रहा है पार्थ रेडियो क्लब छत्रपति संभाजी नगर से। राजेश साबले पाटिल, राजदीप, राजेश, राज, राशि, राजेश, शीतल, राजेश का। ये हमें

0: गीत के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका अपने कार्यक्रम गीत तुम्हारे में। और नसरीन जी, अब बताइएगा कौन सा गीत हम अपने श्रोताओं को सुनवा रहे हैं।
1: फरीना, अब हम अपने श्रोताओं को सुनवा देते हैं उन्हीं की पसंद का ये गीत। और इस गीत के लिए हमारे पास फरमाइश आई है कृष्णा पार्क दिल्ली से, सुखिंदर सिंह जोड़ा, सिटी दीवाना। और ये सुनना चाहते हैं उदित नारायण अलका याग्निक की आवाज में फिल्म क्योंकि का गीत। और
0: इसको संगीत दिया है हिमेश रेशमिया ने और शब्द रचना है समीर की। और क्योंकि का ये गीत सुनने के लिए फरमाइश भेजने वाले हमारे अगले श्रोता हैं
1: टैगोर गार्डन नई दिल्ली से रविंद्र सिंह छाबड़ा, इंद्रजीत कौर छाबड़ा, स्वीटी छाबड़ा, मोहल्ला फतेहपुर फतेहगढ़ लुधियाना से, पंजाब से हमें भेजा है मैसेज विनोदपुरी, वीपी पांजू, अशोकपुरी, सुशीलपुरी, बीकेपुरी, कैलाशपुरी, नीलमपुरी, रमापुरी, पालीपुरी, सुनील पाठक, वीकेपुरी और विनोदपुरी ने।
0: ये मैसेज हमें भेजा है पूर्णा जंक्शन मस्तानपुरा से अनंता भगत, अरुणा भगत, चेतन भगत, सुलोचना भगत ने। नगर पंचायत बड़ापुर बिजनौर से आप हैं मोहम्मद ताहिर और मोहम्मद उजैफ। ये मैसेज हमें भेजा है जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज, रिफाकत, मोहम्मद रिहान, समरीन परवीन, माहिरा नूर ने। ये मैसेज भेजने वाले हमारे श्रोता हैं
1: गोल्डन रेडियो श्रोता संघ राजा पैलेस मऊनाथ भंजन उत्तर प्रदेश से, राजेश कुमार वर्मा, प्रीति वर्मा, कार्तिक आर्यन वर्मा। और इन्हीं के साथ जुड़े हैं शिव मंदिर हकीकतपुरा मऊ से मुन्ना भाई स्वर्णकार, पिंकी स्वर्णकार, आर्यन कृष्णा और पीहू स्वर्णकार।
0: ये अगला मैसेज हमें भेजा है ग्राम जुजेला थाना शिवाला क्लब बिजनौर से राशिद अंसारी, परवीन जहां, निशात, आयशा, सायना महफिज, मोहम्मद अफवान, अदीना नूर ने। और कार्यक्रम में ये अगला मैसेज

0: हमें भेज रहे हैं फर्रुखाबाद साहबगंज चौराहा उत्तर प्रदेश से सुरेश चौरासिया, सरोज चौरासिया, सुबोध सलोनी, संजू लल्ला, बाबू शिवा शिवानी, पवन गौड़, योगेंद्र नायक, काश गंजी। और अगला मैसेज है,
1: ये अगला मैसेज हमें मिला है अहमदपुर खैगांव खांडवा से कैलाश फूलमाली, दीपक फूलमाली, समर फूलमाली और वेदिका फूलमाली का। लाल कुर्ती रुड़की कैंट से हमें मैसेज भेज रहे हैं राजेश वर्मा, मंजू वर्मा, निशांत वर्मा, कौशिकी वर्मा, दीपाली वर्मा, युवान और आर के राजा।
0: और अगला फरमाइश ही मैसेज भेजने वाले हमारे श्रोता हैं दाऊद सराय सहारनपुर से, अनवर साबरी, शन्नो साबरी, मुदस्सिर साबरी, मुजक्किर साबरी, जरीफ अंसारी। और ये मैसेज हमें भेजा है मेन रोड तेलहारा से प्रकाश पोहरकार, नर्मदा पोहरकर, सुजाता पोहरकार ने।
1: ये मैसेज हमें मिल रहा है मार हरा दरवाजा एटा से नबी हसन अब्बासी, शहनाज अब्बासी, नवेद हसन अब्बासी, सुहेल हसन अब्बासी, अनम यशफ अब्बासी, रसीद वारिसी। तो आइए श्रोताओं, हम सब आपके साथ सुनते हैं आपके पसंद का ये गीत जो बहुत जल्दी पहुंच रहा है आपके पास।

0: नसरीन जी, आज मौसम कैसा है?
1: आज मौसम बहुत खुशगवार है फरीना, और इसीलिए आज हमारे श्रोता जो हैं अपने आकाशवाणी नजीबबाद को बड़े दिल थाम के सुन रहे हैं और धड़ाधड़ हमारे पास मैसेज भेज रहे हैं और मौसम का लुत्फ उठा रहे हैं।
0: और देखिएगा ना कि मौसम का मजा लेने के लिए हमारे श्रोता ने हमें मैसेज किया है गीत सुनने का, जो बरसात पर ही केंद्रित है। और ये गीत है फिल्म अंदाज से, जिसको आवाज़ दी है बाबुल सुप्रियो ने अलका याग्निक के साथ। और इस गीत की संगीत रचना है नदीम श्रवण की और गीत के बोल लिखे हैं समीर ने। तो इस गीत के लिए फरमाइश भेजने वाले जो हमारे श्रोता हैं वो हैं ज़िला खरगोन सनावत मध्य प्रदेश से मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना

0: वर्मा, अनुज वर्मा, आयुषी वर्मा, रमेश चंद वर्मा, शेख मूसा भाईजान, राजकुमार भोड़ाना और उनके साथ हैं सुदामा नगर खंडवा से लक्ष्मी नन्नी, रोहित, रितु, मुकेश, जगताप। और ये अगला मैसेज जो हम पढ़ रहे हैं ये भेजा है हमें ऑरेंज सिटी नागपुर से विट्ठल जाधव, अनुसुईया जाधव, पवन राजे जाधव, छत्रपति संभाजी नगर से हैं मंगेश इंग्लिश, संध्या इंग्लिश, स्वराज विराज। और ये मैसेज हमारे श्रोता में भेज रहे हैं सनावत से शेख मूसा मोहसिन, अशोक वर्मा, राजकुमार बौड़ाना। अगला मैसेज भेजने वाले हमारे श्रोता हैं,
1: ये मैसेज हमें मिल रहा है मेरठ कैंट से दिग्दर्शन और कविता गौड़ का। और ये अगला मैसेज फरीना हमें दिखाई दे रहा है, ये हमें मिला है महाराष्ट्र से, जय जिनेन्द्र श्रोता संघ परभणी से। इसको लिखा है रुपेश संघई, महेश संघई, प्रज्ञेश संघई, प्रीतेश संघई और पूरा संघई परिवार ने।
0: अगला मैसेज भेजने वाले हमारे श्रोता हैं नई बस्ती गंजुंडवारा से मोहम्मद यासीन हाशमी, नाजमा बेगम हाशमी, तौशीफ हाशमी, तैमूर हाशमी और कलीम अंसारी। ये मैसेज हमें भेजा है मोहम्मद आसिफ शेख, बेगम रूमा, माहिरा शेख, नोमान शेख, सुलमान शेख, शेख मोहम्मद कलीम। और ये मैसेज हमें भेज रहे हैं बड़ी दूर से नाला सोपारा मुंबई से, ये मैसेज आया है। कितनी दूर से हमारे श्रोता में सुनते हैं ना,
1: देखिए हमारा आकाशवाणी नजीबाबाद अपनी एक अलग ही छवि पूरे हम देश में अर्जित कर ली है।
0: हाँ तो कार्यक्रम का अगला मैसेज लीजिएगा।
1: ये मैसेज हमें मिल रहा है दतरेंगी से भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीत वर्मा, रुद्र वर्मा और भागवत वर्मा, शांति देवी। ये फिर से इन्होंने शायद ये रिपीट कर देते हैं मैसेज को, ऐसा ना करें श्रोता, एक मैसेज अगर आप लिखें तो सिर्फ एक ही बार लिखें।
0: और ये अगला अपना गीत सुनने की ख्वाहिश कर रहे हैं, पसंद का गीत जो इन्हें सुनना है, ये है सेक्टर 18 जगाधरी यमुनानगर हरियाणा से विनय मोहन, खारवन, मीनाक्षी, प्लोमा और ईशानी।
1: ये मिल रहा है हमें मैसेज ग्राम करेली पुरानी मस्जिद बरेली से, लिखने वाले हैं लाल मोहम्मद अंसारी, लालू मिस्त्री अंसारी, मोहम्मद मुनाजिर अंसारी, अब्रार हुसैन अंसारी, मुन्ना भाई, निशा परवीन, तमन्ना और आशिक हुसैन अंसारी।
0: और ये मैसेज हमें भेजा है शिरकोट बिजनौर से निजामुद्दीन, रऊफ अहमद, अरसलान, हन्नान, महक, रमशा। और अगला मैसेज जो हमने लिया है, ये गीत सुनने के ख्वाहिशमंद हमारे श्रोता हैं
1: व्हाइटफील्ड बेंगलुरु से भरत भूषण, अंजू श्रीवास्तव, दिव्येंदु भूषण, संस्कृति पौरुष और रामगढ़ कैंट से भी हमारे साथ जुड़े हैं महेंद्र मोदी, कुलदीप, कंवल।
0: अगले श्रोता जो हमसे जुड़ रहे हैं वो हैं पांडर कवड़ा जिला यवतमाल महाराष्ट्र से अनिल बुरांडे, उषा बुरांडे, अनुश्री बुरांडे, धनिशी बुरांडे। तो आइए आप सबकी फरमाइश पर सुनवाते हैं आपको बरसात का आनंद लेने के लिए फिल्म अंदाज का ये खूबसूरत गीत।

0: श्रोता इस समय आनंद ले रहे हैं अपने पत्रों और व्हाट्सएप मैसेजेस पर आधारित फिल्म संगीत के फरमाइशी कार्यक्रम गीत तुम्हारे का। और कार्यक्रम में जुड़ने के लिए हम आपको एक बार फिर से बता देते हैं अपने कार्यक्रम का नंबर। हमारा नंबर है 9457078288। और कार्यक्रम में जुड़ने के लिए हमारा पता हम आपको बता रहे हैं ताकि आप अपने प्यारे प्यारे शब्दों में अपने फरमाइशी गीत सुनने के लिए हमें भेज दें। तो कार्यक्रम में पत्र भेजने के लिए हमारा पता है
1: गीत तुम्हारे द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी केंद्र नजीबाबाद। हमारा पिन कोड है 2467633।
0: तो श्रोता अभी हम बस थोड़ी देर में आते हैं और आपकी पसंद के और गीत आपको सुनवाते हैं। फिलहाल सुनिएगा ये संदेश।

0: प्रसार भारती, भारत का लोक सेवा प्रसारक।
1: लीजिए श्रोताओं, अपने वादे के मुताबिक हम आ गए हैं फिर से अपने कार्यक्रम में आपकी पसंद के गीत सुनवाने। तो कार्यक्रम का अगला गीत सुनवाने का हमारा इरादा है वो है फिल्म प्रियतमा से। आवाज है किशोर कुमार की, गीत के बोल लिखे हैं योगेश ने और धुन तैयार की है राजेश रोशन ने। इस गीत को सुनने के लिए हमारे श्रोता जो हमें मैसेज भेज रहे हैं वो है
2: गांव उगाला जिला अम्बाला हरियाणा से राजेंद्र कुमार, मलकीत कौर, आरती रानी, राघव, हरमन और परिवार के सभी सदस्यगण।
1: ये मैसेज हमें भेजा है ग्राम बड़ बग बुड़वा पथरिया छत्तीसगढ़ से। आप हैं नरेन नेताम, कुसुम नेताम।
2: और ये अगला मैसेज हमें मिल रहा है मोताला महाराष्ट्र से। लिखने वाले हैं विजय सुरलकर, रतन माला सुरलकर, गौरी सुरलकर।
1: और अगले श्रोता हमारे हैं काशगंज से राधेश्याम, शक्या, ऋषभ, जॉली, मधु और उनके परिवार के सभी सदस्य।
2: और हमारे साथ शामिल हो रहे हैं वड़िंग खेड़ा पंजाब से मिंटू, टॉमस, पिंकी, लवली, आरती, अरोड़ा।
1: ये मैसेज हमें भेजा है गांव डाकघर निम्नाबाद जिला जिंद हरियाणा से जसबीर सिंह अरोड़ा, जतिंदकर कौर, गुरप्रीत सिंह, लवप्रीत कौर, करमजीत कौर और उनके सभी साथियों ने।
2: और इसी गीत के लिए अपना प्यार हमें भेज रहे हैं अपने मैसेज के द्वारा टाउनशिप सेक्टर 8 भिलाई नगर छत्तीसगढ़ से अशोक श्याम कुंवर, प्रमिला श्याम कुंवर, आसमा श्याम कुंवर, दीपक श्याम कुंवर, अनुश्री श्याम कुंवर।
1: और ये अगला मैसेज अपने एहसासों से बुनकर हमें भेजा है नगीना से अनिल विनोचा, शम्मी विनोचा, अक्षय विनोचा, कनिका अरोड़ा, सहज अरोड़ा, गीत अरोड़ा ने। और अगला मैसेज भेजने वाले हमारे श्रोता हैं,
2: ये हमें फरीना मिल रहा है मैसेज ग्राम पंचायत काले गांव जाफराबाद से। इसको लिखा है सुधाकर राजे जाधव, प्रशांत राजे जाधव, संचित वायाल, प्रथमेश देशमुख, प्रणाली देशमुख, सर्वद देशमुख, सानवी देशमुख और कल्पना देशमुख ने।
1: ये मैसेज भेजने वाले हमारे श्रोता हैं दादा बाबू रोड गिरडी झारखंड से मोहम्मद यासीन, अनजान, सईमा नवाज, हसन नवाज, बबू अहद, मिफरा नाज, बेबी चाहत ने। देखना इन्होंने भी झारखंड से हमें मैसेज भेजा,
2: ये इनका दूर, प्यार दूर है, ये इनका प्यार
1: है। इतनी दूर से हम पर बरसता है ना
2: जी हरीना।
1: तो ये मैसेज अगला आप लीजिएगा।
2: ये मैसेज हमें मिल रहा है करणवीर हाउस भूचो कैंची या भटिंडा पंजाब से। और इसमें हमारे साथ शामिल हो रहे हैं प्रेम सिंह जौड़ा, मंजीत कौर जौड़ा, करणवीर करण, दपिंदर वरिंदर, कुलदीप, सीमू एकम, दमन, अभिजोत और इनके परिवार के सभी सदस्य।
1: नसरीन जी गीत के बोल तो कह रहे हैं कि कोई रोको ना, लेकिन हमें थोड़ा अब रुक जाना चाहिए और गीत सुनवा लेना चाहिए।
2: बिल्कुल फरीना, तो सुनवा दीजिए और पहुंचिए इन सब के पास अपने इस प्यारे से गीत के साथ।

0: नसरीन जी, मौसम बरसात का परेशानियां तो लेकर आता है। अगर हम पहले से तैयार रहें तो ये मौसम बड़ा सुहाना होता है।
1: जी बिल्कुल, और इस टाइम तो सारी परेशानियां दूर हो गई हैं फरीना, क्योंकि गर्मी इतनी शिद्दत की हो रही थी और ये बारिश की कुछ बूंदों ने कदर सुकून पैदा किया है कि हम उन सारी परेशानियों को भूल गए हैं।
0: हाँ, और इस मौसम में हमारे श्रोताओं का दिल भी बरसात के गीतों को सुनने के लिए मचल रहा है। तो अगला गीत जो हमारे श्रोता सुनना चाहते हैं वो फिल्म बरसात का ही है, और जिसको आवाज दी है कुमार शानू, अलका याग्निक ने। नदीम श्रवण की धुन तैयार किए गए इस गीत के बोल लिखे हैं समीर ने। तो इस गीत को फरमाइश जो हमारे श्रोता भेज रहे हैं वो है
1: शाहजी नगर देगलूर जिला नांदेड़ महाराष्ट्र से संतोष भाकरे, सुनैना सुकन्या और सविता भाकरे।
0: और ये है हमारे श्रोता कुलम रोड हरगोविंद नगर नवान शहर से सुरिंदर, अनीता, रोहित, रितेश, शिखा, प्रतीशा और मैक्स।
1: ये मैसेज हमें मिल रहा है राजकोट गुजरात से रश्मि झरना भरत कुमार का।
0: और ये मैसेज हमें भेजा है बागपत उत्तर प्रदेश से। भेजने वाले हमारे श्रोता हैं संजय ढिंगिया, नमन ढिंगिया, अपार ढिंगिया।
1: और इसी गीत को सुनना चाहा है हमारे इन श्रोताओं ने कोहका भिलाई से उत्तम सिंह झंगेल, मोरस झंगेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष झंगेल और नंदिनी झंगेल ने।
0: अगले श्रोता हमारे हैं ग्राम गधरोना जिला हरिद्वार उत्तराखंड से मदन गिरी, विमला गिरी, भारत गिरी, सोनिया गिरी, बलराम गिरी, मधु गिरी, सिमरन, गोविंद, वंशिका, रमन गिरी और दिव्य गिरी।
1: ये अगला मैसेज फरीना हमें मिल रहा है गांव हीरा वाली फाजिल का पंजाब से, जिसको भेजा है सुभाष गोदारा, बिमला गोदारा, इंदु, पार्वती, हिमांशु गोदारा, राम और इनके परिवार के सभी सदस्यों ने।
0: तो आइए फिर से एक और बरस

0: श्रोताओं, देखते ही देखते हम कार्यक्रम के अंतिम गीत की तरफ पहुंच चुके हैं, जिसे हमने लिया है लव इन टोक्यो से। आवाज है लता मंगेशकर की। शंकर जयकिशन के संगीतबद्ध किए गए इस गीत के बोल लिखे हैं हसरत जयपुरी ने, और इस गीत को सुनने की हसरत भेजने वाले हमारे श्रोता हैं कलानौर से नरेंद्र शर्मा, किरण शर्मा, नितिन और मयंक शर्मा।
1: और ये हमें अगला मैसेज मिल रहा है सप्तरंग श्रोता परिवार से। कुंभार गली, श्री रामपुर तीर्थ, अशोक दले, सविता दले, अनिकेत दले, रोहिणी दले, ऋषिकेश दले, जीविका दले और पुनावले पुणे से हमारे साथ जुड़ रहे हैं अजय सोनवने, करिश्मा सोनवने, अविका सोनवने, विशाखा सोनवने।
0: और अगले श्रोता हमारे हैं खमरिया छत्तीसगढ़ से साबित खान, धर्मेंद्र प्रजापति, सावित्री देवी, प्रतीक कुमार, और ये श्रोता हैं हमारे नसीब रेडियो श्रोता संघ नागचुन रोड संजय कॉलोनी खंडवा से अब्दुल गफ्फार, डावर खुश नसीब, अब्दुल हक, जियाउल हक। भाटापारा छत्तीसगढ़ से आप हैं सोहन जोशी, और ये मैसेज भेजा है हमारे श्रोता हैं मुंदी चक भागलपुर बिहार से दिलीप कुमार सोनी। ये मैसेज भेजने वाले हमारे अगले श्रोता हैं

0: नहीं, छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, और ये मैसेज हमें भेजा है
1: मोताला महाराज से विजय सुरलकर, रतन माला सुरलकर और गौरी सुरलकर ने।
0: हमें सदर बाजार कुरावली से अनिल कुमार वर्मा, माया देवी वर्मा, राहुल कुमार वर्मा, विनीत कुमार वर्मा, सोनम वर्मा ने। और कार्यक्रम का अंतिम मैसेज जो हम ले रहे हैं वो भेजा है ग्राम लसूड़िया प्रांता तहसील नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ मध्य प्रदेश से। आप हैं गोविंद, वैष्णव, मुस्कान, दिव्या, सुमन, कोमल, परी, कृतिका और रमेश चंद डांगी। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये अंतिम गीत आप सभी की फरमाइश पर।

इसी गीत के साथ आज का गीत तुम्हारे अब यहीं पर संपन्न हो रहा है, इस वादे के साथ कि बहुत जल्द होगी आपसे मुलाकात। दीजिएगा इजाजत फरीना को और बने रहिएगा कार्यक्रम में हमारे साथ।

अभी आप सुन रहे थे पत्र और व्हाट्सएप मैसेज पर आधारित फिल्मी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम गीत तुम्हारे। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर। सवेरे के 11 बज रहे हैं। अब पेश है चित्रपट संगीत। बसंती बूंदों में छिपा है प्यार का मौसम, भी

0: की हवाओं में बसा है अपनों का नाम, संगीत के सुर में जब सावन से मिल जाते हैं तो हर पल बन जाता है यादगार। श्रोताओ, बरसात का मौसम अपने साथ सिर्फ ठंडक ही नहीं बल्कि ढेर सारी मीठी यादें, मुस्कुराहटें और अनगिनत जज्बात लेकर आता है। तो आइए इस सुहाने मौसम का आनंद लेते हैं और सुनते हैं कार्यक्रम का ये पहला बहुत ही प्यारा सा गीत, जिसको हमने लिया है फिल्म नमक हलाल से। आवाज़ है किशोर कुमार और आशा भोसले की, गीत के बोल लिखे हैं अनजान ने और धुन तैयार की है बप्पी लहरी ने। तो लीजिए, पेश है कार्यक्रम का ये पहला गीत।
1: अरे अरे अरे ना ना ना ना।

0: श्रोता, फिल्म संगीत के क्रम में आप सुन रहे हैं आकाशवाणी नजीबाबाद केंद्र से चित्रपट फिल्म संगीत। और श्रोताओं, कार्यक्रम में आगे बढ़ने से पहले ये सुन लेते हैं जरूरी संदेश।
1: सुनो ना।
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूं।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
2: मुझसे।
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो, फायदा है जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700014242।
1: ओ, 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।
0: श्रोताओ, चलिए बढ़ते हैं अपने कार्यक्रम में अगले गीत की ओर और सुनवाते हैं आपको फिल्म दिल तो पागल है का ये गीत। आवाजें हैं लता मंगेशकर और उदित नारायण की, संगीत है उत्तम सिंह और नदीम श्रवण का, गीत है आनंद पक्षी का।

श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं फिल्म ओम शांति ओम का ये गीत। आवाजें हैं श्रेया और अभिजीत की। गीत के बोल लिखे हैं जतिन ललित ने, गीत के बोल लिखे हैं सॉरी जावेद अख्तर ने, और संगीत है विशाल शेखर का। तो आइए सुनते हैं श्रेया को ओम शांति ओम में।

श्रोताओं, आइए आप सुनते हैं फिल्म प्यार किया तो डरना क्या से कुमार सानू और कविता कृष्णमूर्ति के युगल आवाजों में ये गीत। गीत के बोल लिखे हैं समीर ने और धुन तैयार की है जतिन ललित ने।

श्रोताओ, अब हम आपको सुनवा रहे हैं कुमार सानू और अलका याग्निक की युगल आवाजों में फिल्म खुद्दार का ये गीत, जिसको लिखा है राहत इंदौरी ने और इस गीत की धुन तैयार की है अनु मलिक ने।

श्रोताओं, इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट संगीत अब यहीं पर समाप्त होता है। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। सवेरे के 11:30 हो रहे हैं। प्रस्तुत है एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: उमंग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: कीजिए स्वीकार। नमस्कार, विमलेश का उमंग कार्यक्रम में
3: और अजीत का भी जोहार। गांव गणेश धाम परसुली पोस्ट खेरथा बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलव दास, जय दास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतीम बाई मानिकपुरी जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
2: तन और मन के स्वास्थ्य के लिए योग एक बेहतरीन टॉनिक है।
3: बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका इस सुंदर विचार के लिए। जी हाँ, सच है, तन और मन के स्वास्थ्य के लिए योग एक बेहतरीन टॉनिक है। आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम जिन्होंने हमें भेजा है संदेश।
2: ग्राम चरौदाबार नवापारा अभ्यारण्य जिला बालोद छत्तीसगढ़ से नंद कुमार ठाकुर, प्रमिला ठाकुर, खुशबू और ज्योति ठाकुर।
3: और छत्तीसगढ़ रूपापाली बसना से हीरालाल जगत, देवेश, ब्रिजेश जगत और एकता लवण्य कश्यप।
2: पलारी छत्तीसगढ़ से नितेश कुमार देवांगन।
3: और माँ महामाया चौक मेघापारा लोरमी से राम कुशल पटेल, संतोषी पटेल, दीपांशु पटेल, दिव्या पटेल, दीपांजलि पटेल, दीपक पटेल और टेकलाल पटेल।
2: और छत्तीसगढ़ पलारी से ही प्रकाश वर्मा, निखिल वर्मा, प्रिंस वर्मा और यशस्वी वर्मा।
3: बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं संदेश भेजने के लिए। एक बार फिर से आपका स्वागत है श्रृंखला ये भी जानिए कि अगली कड़ी में। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं, इस सप्ताह हम बात कर रहे हैं पेड़ पौधों की अनूठी और रहस्यमयी दुनिया के बारे में।
2: पिछले दो दिनों में हमने जाना था पेड़ पौधों के बीच के संचार की व्यवस्था के बारे में। आज हम बात करेंगे एक और रोचक विषय पर।
3: जी हाँ श्रोताओं, आज हम जानेंगे दुनिया के कुछ ऐसे पेड़ों के बारे में जो हजारों हजार वर्षों से जीवित हैं। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि ये पेड़ मिस्र के पिरामिडों से भी पुराने हैं और भारत में सिंधु घाटी की सभ्यता जब अपने विकास के प्रारंभिक चरण में थी उससे भी पुराने ये पेड़ हैं।
2: जी, ऐसे तो बहुत से वृक्ष हैं, लेकिन सबसे अधिक ज्ञात वृक्षों में से एक है ग्रैन एबियलो। वैज्ञानिक अनुमान के अनुसार इसकी आयु 5000 वर्ष से भी अधिक मानी जाती है। ये लैटिन अमेरिका के चिली देश में है। ये नॉन क्लोनल पेड़ है। अजीत जी, श्रोताओं को ये भी बता दें कि नॉन क्लोनल पेड़ किसे कहते हैं।
3: विमलेश जी, वैज्ञानिक वर्गीकरण के अनुसार नॉन क्लोनल पेड़ उसे कहते हैं जिसका एक ही तना होता है। इसके तने से कई और नए तने नहीं निकलते हैं, यानी ये अपना क्लोन नहीं बनाते हैं। सरल उदाहरण से समझिए, यदि एक आम का पेड़ एक गुठली से उगा और 200 वर्षों या एक निश्चित अवधि तक जीवित रहा तो ये नॉन क्लोनल पेड़ है, क्योंकि इसके तने से कोई और नया पेड़ नहीं उगा। लेकिन इसके विपरीत,
2: क्लोनल पेड़ों में एक ही मूल वृक्ष से कई नए तने और पौधे निकलते रहते हैं। जैसे भारत में मुख्य रूप से पाए जाने वाला बरगद का पेड़, ये पेड़ अपना प्रतिरूप या क्लोन बना लेता है। बरगद की शाखाओं से ही बहुत सारी हवाई जटाएं निकलती हैं, ये भूमि तक पहुंच जाती हैं और उनसे फिर नई शाखाएं निकलने लगती हैं। बांस भी क्लोनल पेड़ों में गिना जाता है, क्योंकि इसके प्रकंदों से कई नए नए बांस के पौधे पनपने लगते हैं।
3: जी विमलेश जी, जब बरगद के पेड़ की बात आई तो मुझे अपने देश के ग्रेट बैनियन ट्री की भी याद आई। ये कोलकाता के आचार्य जगदीश चंद्र बोस इंडियन बोटेनिकल गार्डन में स्थित है।
2: बिल्कुल,
3: बताते हैं कि इसकी आयु 300 से भी अधिक वर्ष आंकी गई है।
2: जी,
3: हवाई जटाओं या एरियल रूट्स के कारण ये पेड़ इतना फैल चुका है कि देखने में एक विशाल जंगल की तरह दिखाई देता है। है तो ये एक ही पेड़, लेकिन इसने अपने हजारों क्लोन बना लिए हैं।
2: जी जी जी, विशालता की दृष्टि से एक अद्भुत पेड़ है। इसका मूल तना बिजली गिरने से नष्ट हो गया था, लेकिन अपनी हजारों सहायक जड़ों के कारण ये आज भी जीवित है। जी, तो आज हम बात कर रहे थे दीर्घजीवी पेड़ों के बारे में। एक और पेड़ है जिसका नाम है मतुशेलाह। ये अमेरिका के कैलिफोर्निया में है। इसकी आयु लगभग 4850 वर्ष से भी अधिक मानी जाती है। ये ग्रेट बेसिन ब्रिसल पाइन कोन प्रजाति का पेड़ है। ये मानव जाति के अधिकांश लिखित इतिहास से भी पुराना माना जाता है।
3: माना जाता है श्रोताओं कि इस पाइन वृक्ष का अंकुरण संभवतः 2800 ईसा पूर्व हुआ होगा। विमलेश जी, हम बात कर रहे हैं पेड़ों की आयु की, तो हमारे श्रोताओं के लिए ये जानना भी बहुत रोचक होगा ना कि पेड़ों की आयु भला कैसे आंकी जाती है।
2: जी, पेड़ों की आयु को जानने के लिए कई वैज्ञानिक तरीके हैं। सबसे पहला तरीका है पेड़ों के वार्षिक वलयों की गिनती। इन वलयों को ट्री रिंग्स भी कहते हैं। आपने किसी कटे हुए पेड़ के तने को यदि देखा होगा कि उसमें कई वलय, छल्ले या रिंग्स दिखाई

0: पड़ते हैं।
1: जी, माना जाता है कि एक छल्ला एक वर्ष को दिखाता है। पेड़ के तने में जितने छल्ले होंगे उसकी आयु लगभग उतने वर्षों की होगी। लेकिन विमलेश जी, फिर तो किसी पेड़ की आयु को जानने के लिए उसे काटना होगा।
0: जी नहीं अजीत जी, ऐसी बात नहीं है। इसके लिए वैज्ञानिक एक विशेष विधि से तने के भीतर से पतली लकड़ी का नमूना निकालते हैं और उसका अध्ययन करते हैं। इससे पेड़ों को काटना नहीं पड़ता।
1: और हाँ श्रोताओ, कभी कभी तने की परिधि से भी पेड़ की उम्र का अंदाजा लगाया जाता है। इसके लिए उस पेड़ की वृद्धि की औसत दर का पता लगाना पड़ता है। विमलेश जी, एक और विधि है जिसे हम रेडियो कार्बन डेटिंग कहते हैं।
0: जी अजीत जी, बहुत पुराने या विशेषकर मृत पेड़ों की लकड़ी के नमूनों से वैज्ञानिक उसकी उम्र का पता लगाते हैं।
1: तो श्रोताओ, आपको बता दें कि पेड़ों के वलय मात्र उम्र ही नहीं बताते, बल्कि ये भी बताते हैं कि किसी विशेष वर्ष में मौसम कैसा था। चौड़े वाले रिंग्स संकेत देते हैं कि उस वर्ष में अच्छी वर्षा हुई थी, जबकि सकरे वलय सूखा या मौसम की प्रतिकूल परिस्थितियों का संकेत देते हैं।
0: तो श्रोताओ, ये थी हमारी आज की जानकारी विश्व के कुछ दीर्घजीवी पेड़ों के बारे में। साथ ही साथ हमने चर्चा की उनकी आयु जानने की विधियों के बारे में। अब आज का प्रश्न, आज की ही जानकारी से।
1: आज का प्रश्न है, क्लोनल और नॉन क्लोनल वृक्षों का एक एक उदाहरण दीजिए। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: क्लोनल और नॉन क्लोनल वृक्षों का एक एक उदाहरण दीजिए।
1: 8800440559 है हमारा IBRS नंबर, और audio@cit.nic.in है हमारे ईमेल का पता। संदेश जरूर भेजिएगा।
0: आप इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। इससे आपको CIET NCERT के बारे में ताज़ा जानकारी मिलती रहेगी।
1: और आइए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। हमारा पहला कार्यक्रम है भारत तू है सबसे प्यारा।
0: हिंदी की पाठ्य पुस्तक की एक कविता पर आधारित इस कार्यक्रम में भारत भूमि के गौरव और विविधता का बड़े सुंदर ढंग से वर्णन किया गया है और बताया गया है क्यों हमारा देश सभी अन्य देशों से अनूठा है।

भारत तू है सबसे प्यारा। प्यारे बच्चों, अभी आपने सुना ये सुंदर गीत, आशा है आपको जरूर पसंद आया होगा। आपने आज अपने देश भारत के बारे में बहुत सी अच्छी बातों को सुना। आपने सुना भारत की नदियों, समुद्रों, अन्न, फल और फूलों के बारे में। सच में कितना सुंदर है ना हमारा देश। अब जरा सोचिए, अपने देश भारत की और कौन कौन सी बातें आपको बहुत अच्छी लगती हैं? सोचिए और हमें लिख भेजिए। आप हमें audio@cieet

0: hindi@nic.in पर अपना संदेश भेज सकते हैं। अब एक और बात, जरा बताइए कि क्या आपने भारत पर कुछ और भी कविताएं सुनी हैं? यदि सुनी हैं, तो उन कविताओं का संकलन कीजिए और अपने मित्रों के संग मिलकर उसका पाठ कीजिए। अभी आपने सुना कार्यक्रम भारत तू है सबसे प्यारा, और अब सुनते हैं कार्यक्रम उत्तर वैदिक काल।
1: इस कार्यक्रम में उत्तर वैदिक काल के बारे में विस्तार से बताया गया है, विशेषकर उस समय की शासन व्यवस्था और संस्कृति की चर्चा की गई है।
2: आर्य लोग जब भारत में आए तो भारत का अधिकतर भाग जंगलों से ढका हुआ था। यहाँ कुछ लोग पहले से रहते थे,

आर्यों ने उन्हें दस्यु या दास कहा है। आर्य लोग मुख्यतः पशुपालक थे। ये लोग अपने साथ गाय, बैल, भेड़ बकरियां और घोड़े लेकर आए थे। आर्यजन पहले पहले आज के पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के कुछ भागों में आकर बसे थे। इस क्षेत्र में सरस्वती नाम की एक नदी बहती थी जिसमें सदा जल रहता था। ये नदी अब सूख गई है। ऋग्वेद की अधिकतर ऋचाओं की रचना इसी नदी के तट पर हुई थी।

इस काल में समाज चार वर्णों में बंटने लगा था। ये वर्ण हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र।

सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद की रचना भी इसी उत्तर वैदिक काल में हुई। ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद ग्रंथों की रचना भी इसी समय हुई थी। आर्यों का जीवन घुमक्कड़ी दशा से स्थायित्व की ओर बढ़ रहा था। कृषि अब उनका प्रमुख धंधा बन गया था। आइए चलते हैं उत्तर वैदिक काल के आर्यों की दुनिया में।

0: नहीं हुई, कुछ पता भी है? कार्तिक महीने के भी कुछ दिन चढ़ गए हैं।
1: जी वो
0: तुम्हारे चाचा के परिवार ने तो अपने खेतों में गेहूं और जौ बो भी दिए हैं।
1: पिताजी, हमारे खेत भी गेहूं और जौ की बुआई के लिए तैयारी समझिए, बस एक दो जुताई और करनी है। क्यों अजीत?
2: हाँ हाँ पिताजी, इस बार मैंने बहुत ज्यादा काम किया है और इस साल हमारी उड़द और धान की खेती बहुत अच्छी हुई है। अरे हाँ, अब तक तो हम उसकी कटाई और मड़ाई में ही लगे रह गए थे, क्यों देवदत्त?
3: हाँ हाँ पिताजी।
1: और पिताजी, हम तो अपने साथ हरिराज शत्रु मर्दन को भी ले जा रहे हैं।
2: हाँ
1: आज हम चार चार बैलों वाले तीन हलों से जुताई करेंगे, खेत बस तैयारी समझिए।
0: नहीं, हरिराज और शत्रुमर्दन तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे खेतों में।
1: जी
0: उन्हें कल हस्तिनापुर जाना है।
2: पर क्यों पिताजी?
0: वहां महाराजा अधिराज जन्मेजय ने यज्ञ का आयोजन किया है, इन्हें तो जाने की तैयारी करनी होगी। वहां रथों की दौड़ भी होगी।
2: पिताजी, हमारे जाने की पूरी तैयारी हो गई है।
3: जी पिताजी।
2: हमारा रथ और घोड़े दोनों तैयार हैं।
0: बहुत अच्छा।
2: और हाँ पिताजी, हमने अपने घोड़ों को भी खूब खिलाया पिलाया है, और पता है अब तो वो भी बहुत फुर्तीले हो गए हैं।
1: पिताजी, देवों की इच्छा हुई तो रथों की दौड़ में इस बार हम ही जीतेंगे।
2: हाँ पिताजी, हम ही जीतेंगे।
0: देव तुम पर अवश्य प्रसन्न होंगे। देखो, तुम लोग अपने साथ कुछ गेहूं, जौ और चावल ले जाना।
2: जी पिताजी।
0: सम्राट ने यज्ञ के अवसर पर भंडारा भी चला रखा है।
2: अच्छा पिताजी।
0: सभी वर्णों के लोग भोजन कर रहे हैं। यही नहीं, गुरुकुलों के ब्रह्मचारी, गृहस्थ और साधु सन्यासी भी यज्ञ में बुलाए गए हैं।
2: अच्छा
1: पिताजी, हमने अन्न के साथ साथ महाराज को भेंट देने के लिए माँ के द्वारा बुना हुआ उत्तरीय भी रख लिया है। बहन धृताची ने इस उत्तरीय पर सोने के तारों से बहुत सुंदर कढ़ाई भी की है।
2: हाँ।
4: ये मेरा नाम क्यों लिया जा रहा है और कौन कहाँ जा रहा है?
0: आओ पुत्री आओ, तुम्हारे ये भाई हस्तिनापुर जा रहे हैं।
4: अच्छा पिताजी, इनसे मेरे लिए सोने के कंगन मंगवा दीजिए ना। सुना है हस्तिनापुर के सुनार बहुत सुंदर कंगन बनाते हैं।
1: चल चल बढ़िया है कंगन वाली। पिछले वर्ष तो तुझे सोने के कुंडल और हार ला कर दिए थे मैंने।
3: और क्या,
1: अब कुछ नहीं लाऊंगा। हाँ
4: मेरे अच्छे भैया, मेरे प्यारे भैया, देखो मैं तुम दोनों का कितना ध्यान रखती हूँ। मैंने छुपा छुपा कर तुम्हारे घोड़ों को घी भी पिलाया है।
1: अच्छा अच्छा, चल ठीक है, ले ही आएंगे।
3: हाँ।
1: अब तो खुश।
0: अरे ये तो खुश हो गई, पर तुम अपनी तैयारी पर ध्यान दो। हाँ, अपने हथियारों को ठीक ठाक करके रख लो।
2: जी,
0: कल सूर्योदय से पहले ही चल देना। आजकल इस रास्ते वाले वन में शेरों, चीतों और तेंदुओं का आतंक कुछ ज्यादा ही हो गया है। अंधेरा होने से पहले ही वन पार करके अपनी बुआ के गांव पहुंच जाना।
1: जी पिताजी, हमने लोहे की फाल वाले भाले और लोहे की नोक वाले पहने तीर भी रख लिए हैं। भला हमारे इन तीरों के सामने वो क्या टिकेंगे?
2: और पिताजी, एक परिव्राजक के द्वारा हमने अपने फुफेरे भाइयों को भी सूचित कर दिया है, वो भी हमारे साथ रथों की दौड़ में हिस्सा लेने जाएंगे।
1: भैया, सुना है इस बार रथों की दौड़ में भाग लेने के लिए कौशल, काशी और विदेश से भी रथ आ रहे हैं।
2: हाँ।
1: इस बार कुछ ज्यादा ही बड़ा आयोजन है।
0: हाँ ये तो है।
2: हाँ, हाँ, हाँ, बड़ा आनंद आएगा।
5: और शुरू हो गई रथों की दौड़।

0: इस बार तो हमारा रथ ही जीतेगा।
1: अरे हमने भी पूरी तैयारी की है,
0: याद है पिछले वर्ष रथों की दौड़ में कितना आनंद आया था। मित्र क्या इस बार भी तुम्हारे गांव का वही रथ दौड़ाने वाला आया है?
1: अरे नहीं भाई नहीं, इस बार दूसरा रथ दौड़ाने वाला आ रहा है। गांव में होने वाली प्रतियोगिता में तो उसने सबको पीछे छोड़ दिया था।
0: चलो देखते क्या होता है।
2: सुने सुने सुने, यज्ञ के आयोजन के इस अवसर पर अब प्रारंभ होती है रथों की दौड़।
3: अरे वो देखो
0: क्या
3: रथ की दौड़ शुरू हो गई। देखो तो
0: हाँ, क्या बाकी और सजीले सवार है। वाह वाह
3: वाह वाह वाह वाह वा, वा, देखो देखो वो देखो बीच वाला रथ
4: इस वर्ष के रथों की दौड़ के आयोजन में विदेह का रथ विजेता घोषित किया जाता है।

ये आयोजन सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं था, इसमें राजा की शक्ति की परीक्षा भी होती थी। उत्तर वैदिक काल में राज्यों का विस्तार हो रहा था। राजा की शक्ति, पदवी और दबदबा बढ़ गया था। करों की वसूली होने लगी थी। राजकोष में खूब धन जमा होने लगा था। राजकाज चलाने में पुरोहित, सेनापति, रानियां और कुछ अन्य अधिकारी भी मदद करते थे। ग्राम पंचायतें प्रशासन संभालती थी। राजा को गांव से बड़ी मदद मिलती थी। उत्तर वैदिक काल में राजा की कोई स्थायी सेना नहीं होती थी। युद्ध के मौके पर गांव और कबीलों से लोगों को इकट्ठा करके सेना बनाई जाती थी। शिक्षा के लिए बालकों को गुरुकुल में जाना पड़ता था। गुरुकुल वनों के शांत और सुरम्य स्थानों पर बनाए जाते

0: गुरुकुल के सभी ब्रह्मचारी मेरी बात को ध्यान से सुने, सावधान होकर सुने, क्योंकि मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण समाचार दे रहा हूं। और समाचार ये है कि आज शाम तक आचार्य शाकल्य यहां पहुंच जाएंगे। उनके स्वागत का पूरा प्रबंध कर लिया गया है, ये तो आप जानते ही हैं, लेकिन उसी बात को दोहराने के लिए मैं यहां इसलिए उपस्थित हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि हमारे आश्रम की जो प्रतिष्ठा और परंपरा रही है वो सर्वदा बनी रहे। इसके लिए जरूरी है कि स्वागत कार्य के लिए जिस ब्रह्मचारी को जो भी कार्य सौंपा गया है उसे पूरा करने के प्रयास में तुरंत लग जाए। अंत में मैं धन्यवाद कहूंगा कि आपने मेरी बात को पूरी शांति से सुना और समझा। धन्यवाद।
1: मित्र, कुलपति का आदेश सुना तुमने? कैसा आदेश मित्र, मुझे तो कुछ भी नहीं सुनाई पड़ा। मैं तो ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या में ही उलझा था कि आज एक और समस्या आ गई। गुरुजी कह रहे हैं पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, अर्थात पूरे में से पूरा निकाल देने पर भी पूरा ही बच जाता है।
2: भोले ब्रह्मचारी, अब इस उलझन को छोड़ो और कुलपति के आदेश पर ध्यान दो और आचार्य शाकल्य के स्वागत की तैयारी में लग जाओ। सुना है आचार्य आयुर्वेद आदि अनेक विद्याओं के पंडित हैं।
1: अच्छा,
2: वे हमारे गुरुकुल में कुछ दिन रहकर छात्रों को इन विषयों की विशेष शिक्षा देंगे।
3: अरे वो देखो, वो देखो कितना सुन...

0: अरे ये कोलाहल कैसा है?
1: छोड़ दो छोड़ दो, ये महाराजा धीराज जन्मेजय का अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा है। तुम्हें इसके मस्तक पर सम्राट का विजय पत्र नहीं दिखा? इस घोड़े की सुनहरी लगाम और काठी तो दूर से दिख जाती है। छोड़ दो छोड़ दो, शीघ्र छोड़ दो, नहीं तो हमारे तीरों के तीखे प्रहार सहने पड़ेंगे।
0: अरे ये तो हमारे गुरुकुल के एक क्षत्रिय कुमारों ने घोड़े को पकड़ रखा है। अरे अरे इन पर तो सैनिकों की चेतावनी का भी कोई असर नहीं हो रहा है।
2: अरे चलो चलो भाग चले, आचार्य को बता दें, कहीं क्षत्रिय कुमार सैनिकों से युद्ध ही ना कर बैठे।
0: अरे रुको तो सही, अरे देखो देखो
2: क्या
0: आचार्य तो वही पहुंच गए हैं। और हाँ वो देखो आचार्य की आज्ञा मानकर क्षत्रिय कुमारों ने उस घोड़े को छोड़ भी दिया है।
2: हाँ, हाँ। अच्छा हुआ संकट टल गया, अब ये सैनिक इस घोड़े को सारे राज्यों में घुमाकर हस्तिनापुर ले जाएंगे।
0: हाँ।
2: जहाँ अश्वमेध यज्ञ करके महाराज जन्मेजय चक्रवर्ती सम्राट बन जाएंगे।
0: हाँ।
2: उनका प्रभाव कीर्ति और ख्याति चारों दिशाओं में फैल जाएगी।
3: और इसी तरह राजा की शक्ति और सत्ता धीरे धीरे बढ़ती गई।

0: कबीले के सरदार से वो चक्रवर्ती सम्राट बने, फिर उनके बेटे सम्राट बने और फिर उनके बेटे। इस तरह राज पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहा। उत्तर वैदिक काल धीरे धीरे समाप्त हो गया और ये सम्राट एक काल को दूसरे काल से जोड़ते चले गए।
1: अभी आपने सुना कार्यक्रम उत्तर वैदिक काल, और इसी के साथ अब हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
2: और विमलेश को तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
1: नमस्कार।

अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर। श्रोताओं, आइए आपको जानकारी दे दें आज हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के संदर्भ में। अब से कुछ ही देर में यानी दोपहर 12:05 पर हमारे सैनिक भाई सुनेंगे अपना पसंदीदा कार्यक्रम सैनिकों के लिए। दिन में 1:15 पर हमारी बहनें सुन सकेंगी अपना कार्यक्रम महिला जगत। इस कार्यक्रम में बहनें सुनेंगी सोनिका वर्मा से उड़ान हौसलों के विषय पर वार्ता, और इसी अंक में यानी आधी आबादी से क्रम में सुनेंगे छोटे परिवार के सामाजिक और आर्थिक लाभ पर चर्चा।

एक ही संगीतकार इस कार्यक्रम के अंतर्गत हम आज आपको सुनवाएंगे संगीतकार मदन मोहन की धुन पर बने कुछ फिल्मी गीत दिन में 2:30 पर।

हमारी सांध्यकालीन सभा के आरंभ में आज शाम 4 बजे सुनिएगा दिल्ली केंद्र से प्रसारित कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर, और आज रात्रि 9:30 पर सुनिएगा कंट्री वाइड और इनसाइट्स। ये कार्यक्रम भी दिल्ली केंद्र से ही रिले किया जाएगा। रात्रि 10 बजे सुनिएगा रूपक, विषय होगा हिंदी साहित्य में तुलनात्मक आलोचना के जनक पंडित पद्म सिंह शर्मा, आलेख अमन कुमार का होगा और प्रस्तुति सहयोग इकबाल अहमद का रहेगा। प्रस्तुत करता होंगे सुशील त्यागी और अनिल भारती। प्रतिभागी कलाकार होंगे अकबर इलाहाबादी, राशिद बिजनौरी, रामनाथ, रॉबिन कर्माकर, पंडित रलाराम, ब्रिजी किशोर सुयाल, लक्ष्मण स्वरूप, डॉक्टर एस के जौहर, पंडित पद्म सिंह शर्मा और पंकज गर्ग। सुनना ना भूलिएगा आज रात्रि 10 बजे।

शाम 5 बजे कार्यक्रम मेरा सपना उन्नत भारत में जानकारी का विषय रहेगा अल्पसंख्यक कल्याण के लिए प्रधानमंत्री के 15 नए सूत्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत मलिन बस्तियों का सुधार और सरकारी सेवाओं में भर्ती। युवाओं के कार्यक्रम युवाणी में आज शाम 5:15 पर कार्यक्रम के आकर्षण रहेंगे। बूझो तो जानी कुछ खास है आज, नॉन फिल्मी चार्ट, गुफ्तगू, बस यूं ही, बूस्टर और फिल्म संगीत।

हमारे किसान भाई सुनेंगे अपने दैनिक कार्यक्रम कृषि जगत में शाम 6:05 पर मासिक विशेष कार्यक्रम पगडंडी, शैक्षिक प्रणाली का विकास, और साथ ही इस अंक में धान की रोपाई करते सावधानी और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पर चर्चा भी की जाएगी। शाम 6:45 पर कार्यक्रम विविधा में आप सुन सकेंगे रविंद्र त्यागी की वार्ता। वार्ता का विषय होगा शांति और विकास, एक सिक्के के दो पहलू। कार्यक्रम सुगम संगीत में शाम 7:32 पर लुत्फ लीजिएगा शाने आलम और साथियों की आवाज में गाई कव्वालियों का। श्रोता, ये थी आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रही हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर। दोपहर के 12:05 हो रहे हैं। अब प्रस्तुत है सैनिक भाइयों का कार्यक्रम सैनिकों के लिए।

सैनिक भाइयों जय हिंद। श्रोताओं, हमारा ये कार्यक्रम समर्पित है उन वीर जवानों को जो दिन रात हर मौसम में देश की सीमाओं की रक्षा करते हैं ताकि हम सब अपने घरों में चैन सुकून की जिंदगी जी सके। सैनिक सिर्फ सीमा के प्रहरी नहीं बल्कि पूरे देश के साहस, त्याग और अनुशासन की पहचान होते हैं। उनका हौसला जितना बुलंद होता है उतनी ही मजबूत होता है हमारा भारत। तो आइए आज का सफर शुरू करते हैं एक ऐसे जोशीले देशभक्ति गीत से जो हर भारतीय के दिल में देश प्रेम की भावना जगा देता है। आइए सुनते हैं फिल्म योद्धा से ये गीत, आवाज है बी पराग की। गीत के बोल लिखे हैं मनोज मुंतशिर ने और धुन तैयार की है तनिष्क बागची ने।

श्रोताओं, सैनिकों की जिंदगी में सिर्फ ड्यूटी तक सीमित नहीं होती। जब उन्हें थोड़ा वक्त मिलता है तो वो भी संगीत सुनते हैं, हंसते हैं, दोस्तों के साथ खुशियां बांटते हैं। इसलिए आज के इस कार्यक्रम में देशभक्ति गीत के साथ साथ हम उनके चेहरे पर मुस्कान लाने की कोशिश कर रहे हैं अपने इस जोशीले मस्ती भरे गीत के साथ, जिसको हमने लिया है फिल्म दिल धड़कने दो। आवाज़ है मनीष, टीपू, फरहान अख्तर और शंकर की। और इस गीत को आइए सुनते हैं आप सभी के साथ।

श्रोता, अभी आपने सुना फिल्म दिल धड़कने दो से। ये गीत आवाज़ थी मनीष टीपू, फरहान अख्तर और शंकर महादेवन की। गीत के बोल लिखे थे जावेद अख्तर ने और संगीत था शंकर ईशान लॉय का। तो आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में अगले गीत की ओर, जिसे हमने लिया है।

श्रोताओं, इस समय आप आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से सुन रहे हैं कार्यक्रम सैनिकों के लिए। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत, जिसको हमने लिया है फिल्म की एंड का से। आवाजें हैं मीत ब्रॉज, जैस थानी, आदिति सिंह शर्मा और योयो की। संगीत है मीत ब्रॉस, योयो हनी सिंह और गीत भी है कुमार।

श्रोताओं, कार्यक्रम की आखिरी प्रस्तुति के रूप में पेश है फिल्म ये जवानी दीवानी का। ये गीत आवाज़ है मोहित चौहान की, गीत को संगीत दिया है प्रीतम ने और बोल लिखे हैं अमिताभ भट्टाचार्य ने।

सैनिक भाइयों, उम्मीद है आपको आज का ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। हमारी बस यही कामना है कि आप हमेशा स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, इसी तरह देश की सेवा करते रहें। आप सभी वीर जवानों को हमारा सैल्यूट है, हमारा सम्मान और ढेर सारी शुभकामनाएं।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सैनिकों के लिए। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्ज पर। दोपहर के 12:31 हो रहे हैं। पेश है फिल्म संगीत के क्रम में कार्यक्रम मिड डे मेलोडी। हर धुन में छिपी है कहानी, हर गीत में बसती है जिंदगानी। आइए सुरों की इस महफिल में खो जाएं, कुछ गुनगुनाएं, कुछ मुस्कुराएं। श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम मिड डे मेलोडी। दोपहर के इस खुशनुमा वक्त में हम लेकर आए हैं कुछ ऐसे सदाबहार नगमे जिन्होंने हर दौर में श्रोताओं के दिलों पर राज किया है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के इस पहले गीत से, जिसको हमने लिया है फिल्म मंजिल से। आवाज़ है लता मंगेशकर की, गीत है योगेश का और संगीत है आरडी बर्मन का। तो लीजिए सुनिए कार्यक्रम का ये पहला गीत फिल्म मंजिल से।

फिल्म गाइड का ये गीत आवाज़ है लता मंगेशकर की, और संगीत है एसडी बर्मन का, गीत है शैलेंद्र का। तो आइए सुनते हैं फिल्म गाइड का ये गीत। जिंदगी का मज़ा हर पल को खुलकर जीने में है, और ये गीत कुछ ऐसा ही संदेश दे रहा है।

श्रोताओं, अभी आपने सुना फिल्म मंजिल में लता मंगेशकर को। आइए अब आगे बढ़ते हैं अपने कार्यक्रम की तरफ और आपको सुनवाने जा रहे हैं हम।

0: श्रोताओं, इस समय आप आकाशवाणी के नजीब आबाद केंद्र से सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम मिड डे मेलोडी। श्रोताओं, कार्यक्रम में आगे बढ़ने से पहले सुन लेते हैं ये जरूरी संदेश।
1: प्रसार भारती के पास है भारतीय संस्कृति की अनमोल धरोहर। इसमें शामिल हैं शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्तचित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग। और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन

0: खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना, तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in।
1: श्रोताओ, इस जरूरी संदेश के बाद आइए बढ़ते हैं अपने कार्यक्रम की ओर और सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत, जिसे हम आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार की युगल आवाज़ों में। गीत है साहिर लुधियानवी का और संगीत है खय्याम का, फिल्म है त्रिशूल। श्रोता, मोहब्बत दिल की वो जुबान है जिसे हर कोई समझ तो सकता है मगर बयां हर कोई नहीं कर पाता। मोहब्बत में फासले मायने नहीं रखते अगर दिलों में अपनापन सच्चा हो। सच्ची मोहब्बत वही है जो वक्त बदलने पर भी अपना रंग ना बदले। तो आइए सुनते हैं इन्हीं जज्बातों को फिल्म त्रिशूल के इस प्यारे से गीत में।

श्रोताओ, जब साथ निभाने का वादा सच्चे दिल से किया जाए तो जिंदगी की हर मुश्किल आसान लगने लगती है। मोहम्मद की सब

0: अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम मिड डे मेलोडी। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। अब आप समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने दोहराया है कि बदलते जटिल रणनीतिक माहौल में रक्षा और सुरक्षा सहयोग दोनों देशों के बीच साझेदारी का प्रमुख आधार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त घोषणा पत्र जारी किया है। ये दोनों देशों के द्विपक्षीय रक्षा और सुरक्षा संबंधों में एक महत्वपूर्ण बदलाव को दर्शाता है। घोषणा पत्र में दोनों नेताओं ने भारत ऑस्ट्रेलिया समुद्री सुरक्षा सहयोग रोडमैप के माध्यम से समुद्री सहयोग को और मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की। मेलबर्न में संयुक्त वक्तव्य में प्रधानमंत्री मोदी ने शांतिपूर्ण, स्थिर और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए साझा दृष्टिकोण में समुद्री सहयोग को रेखांकित किया।
2: भारत और ऑस्ट्रेलिया दो वाइब्रेंट डेमोक्रेसीज हैं, दो मल्टी कल्चरल सोसाइटीज हैं और दो महत्वपूर्ण ओशन पावर्स हैं। हमारी ये समानताएं और हमारा कॉमन वर्ल्ड व्यू हमें गहरे आपसी विश्वास के साथ निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। आज तीसरी एनुअल समिट से हमारे सहयोग में कई नए आयाम जुड़े हैं।
1: ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने रक्षा, सुरक्षा और शिक्षा के क्षेत्र में हुए समझौते का उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि भारत के लिए यूरेनियम आपूर्ति सुनिश्चित करने पर और सेनाओं के बीच अंतर संचालन क्षमता को बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की गई। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री अल्बनीज ने भारत ऑस्ट्रेलिया मुख्य कार्यकारी अधिकारी मंच और आर्थिक कार्य योजना कार्यक्रम को संबोधित किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया साझेदारी एक परिवर्तनकारी उच्च तकनीकी युग में पहुंच गई है। उन्होंने वर्ष 2030 तक 100 अरब डॉलर के द्विपक्षीय व्यापार को गति देने के लिए एक दूरदर्शी कार्य योजना प्रस्तुत की। ऑस्ट्रेलिया सुपर के 500 मिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर के निवेश का भारत ने स्वागत किया है। मेलबर्न में कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पॉल श्रोडर ने इसकी घोषणा की। ऑस्ट्रेलिया भारत बिजनेस काउंसिल के प्रमुख सदस्य विश्व विश्वनाथन ने मेक विद इंडिया पहल के बढ़ते असर पर जोर दिया। ये समूह रणनीतिक कॉरपोरेट पार्टनरशिप को बढ़ावा देकर ऑस्ट्रेलिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मेक इन इंडिया दृष्टिकोण को लागू करने का काम कर रहा है। भारत के ब्रिक्स अध्यक्षता में ब्रिक्स परिवहन मंत्रियों की तीसरी बैठक आज महाराष्ट्र के नागपुर में शुरू होगी। इस बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। इसमें परिवहन क्षेत्र और बुनियादी ढांचे जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। ये बैठक भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता की थीम बिल्डिंग फॉर रिजिलियंस इनोवेशन कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी के तहत आयोजित की जा रही है। केंद्र सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में अंत्योदय अन्न योजना परिवारों से आने वाले कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों के शुल्क को पूरी तरह से माफ करने की मंजूरी दी है। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी एक आदेश में कहा गया है कि ये निर्णय तत्काल प्रभाव से लागू होगा। इसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों पर वित्तीय बोझ कम करने और पढ़ाई जारी रखने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करना है। गृहमंत्री अमित शाह ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के स्थापना दिवस पर परिषद के सभी कार्यकर्ताओं को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि स्वामी विवेकानंद के आदर्शों का अनुसरण करते हुए ये संगठन विद्यार्थियों को संगठित करने और युवाओं में देशभक्ति की भावना का प्रसार करने का कार्य कर रहा है। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, बिहार, पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों, सिक्किम और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कर्नाटक के तटीय भाग, पूर्वी उत्तर प्रदेश, गांगे, पश्चिम बंगाल, गुजरात, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में भी दिन में तेज बारिश की संभावना है। हिमाचल प्रदेश, केरलम, माहे, कोंकण, गोवा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पंजाब, दक्षिण कर्नाटक के भीतरी भाग, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारेकाल और उत्तराखंड में भी आज इसी तरह के मौसम की संभावना है। घरेलू शेयर बाजार के

0: या उसके द्वारा स्वतः अपना रोजगार स्थापित करने के कार्यक्रम का ही परिणाम है कि अब बुंदेलखंड का नौजवान अब पलायन नहीं करता है, अब उसको अपने घर में कार्य मिलता है, सम्मान मिलता है।
1: वज़ीर-आला योगी आदित्यनाथ ने कल चित्रकूट में 951 करोड़ रुपए के 124 तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया और संग बुनियाद रखा। तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर-आला ने कहा कि मरकजी और रियासती हुकूमतें समाज के हर तबके की तरक्की के लिए काम कर रही हैं। उन्होंने मजीद कहा कि चित्रकूट में अब सरमायाकारी आ रही है, जिससे जिले की तरक्की में तेजी आई है।
0: अब निवेश यहाँ भी आ रहा है, क्योंकि अब भय नहीं है, अब तो निवेश का वातावरण है। 4 लेन की सड़कें हैं, एक सुंदर चित्रकूट हम सबके सामने है और वह आज हम सबको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। आज तो यहाँ पे हम लोग एक पर्यटन के नए केंद्र के रूप में, यानी ये आध्यात्मिक टूरिज्म तो था ही, अब इको टूरिज्म के भी एक नए केंद्र के रूप में इसको विकसित करने के लिए हम लोगों ने यहाँ पे रानीपुर टाइगर रिजर्व को भी यहाँ पे के लिए आगे बढ़ाने का कार्य प्रारंभ किया है।
1: अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि मंदिर के नजराने में मुबैना बेजातियों की तहकीकात करने वाली पुलिस टीम ने कल 3 मुलजमीन अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा और करुणेश पांडे को रिमांड पर लेकर पूछगछ की। पुलिस तीनों मुलजमीन के साथ 14 कोसी परिक्रमा के रास्ते पर भी गई। इस दौरान कई संतों ने श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के खजांची गोविंद देवगिरी से मुलाकात की। मीटिंग के बाद महंत राजकुमार दास ने कहा कि आने वाले दिनों में ट्रस्ट में बड़ी तब्दीलियां होंगी, जिनकी तफसीलात ट्रस्ट की तरफ से जल्द ही शेयर की जाएंगी। लखनऊ में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती लैंग्वेज यूनिवर्सिटी का 11वां कन्वोकेशन कल मुनक्किद हुआ, जिसकी सदारत रियासत की गवर्नर आनंदीबेन पटेल ने की। राज्यसभा MP डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी ने इस तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। तकरीब में 1246 तलबा को डिग्रियां तकसीम की गईं। शहरी हवाबाजी के मरकजी वजीर के राम मोहन नायडू ने कहा है कि वाराणसी हवाई अड्डे के नए टर्मिनल पर मुल्क का पहला 6 लेन वाला अंडरपास बनाया जा रहा है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि 450 मीटर लंबा यह अंडरपास नेक्स्ट जनरेशन के बुनियादी ढांचे का हिस्सा है, जहां हवाई जहाज ऊपर चलते रहेंगे जबकि नीचे ट्रैफिक चलता रहेगा। महकमा जंगलात ने रियासत में 12 जुलाई को मुनक्किद होने वाली शजरकारी मुहिम के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। इस मुहिम के तहत 350 मिलियन पौधे लगाने का हदफ है। इस मकसद के लिए रियासत भर में 2600 से ज्यादा नर्सरियों में 576 मिलियन पौधे तैयार किए गए हैं। प्रयागराज पहुंचे नायब वजीर आला केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि हुकूमत की कोशिशों से रियासत के जंगलाती रकबे में नुमाया इजाफा हुआ है।
2: पूरी दुनिया इस समय ग्लोबल वार्मिंग के संकट से जूझ रही और इस बार 35 करोड़ जब हमारे यहाँ पेड़ लग जाएंगे, जब से 9 साल में हम लोग 275 करोड़ पेड़ लगाने का रिकॉर्ड, 35 करोड़ का इस बार का लक्ष्य है, उससे ज्यादा ही लगते हैं जितना लक्ष्य होता है, तो यह हम लगाने का काम करेंगे। उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है, वन आच्छादन का जो क्षेत्र है वो घटा नहीं, वो बढ़ा है।
1: कल की बारिश से राजधानी लखनऊ और रियासत के कई दीगर इजला में रहने वालों को गर्मी से राहत मिली है। इस दौरान गोरखपुर समेत कई मशरकी इजला में हल्की बूंदाबांदी जारी है। हवाओं के बावजूद इस खित्ते में नमी बरकरार है। दरियासना महकमा मौसमियात ने रियासत के बेशतर इजला के लिए 3 दिन की शदीद बारिश का अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नशर किया जाएगा।
3: मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 1:15 हो रहे हैं। अब हमारी बहनें सुने अपना कार्यक्रम महिला जगत।

महिला जगत कार्यक्रम सुनने वाली सभी बहनों को आपकी बहन आपकी सखी सुनीति आर्य का प्यार भरा नमस्कार। बहनों कैसी हैं आप? हम आशा करते हैं कि आप अच्छे से होंगी और स्वस्थ होंगी, साथ ही साथ कार्यक्रमों का आनंद भी ले रही होंगी। तो बहनों कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले आइए सुनते हैं ये संदेश।

0: मेरा स्वागत है आपका एक बार फिर से कार्यक्रम में। महिलाएं परिवार, समाज और देश की मजबूत नींव हैं। आज की महिला हर क्षेत्र में अपनी प्रतिभा, मेहनत और आत्मविश्वास से नई पहचान बना रही है। इसी सोच के साथ हम अपने कार्यक्रम में एक सक्सेस स्टोरी आपके लिए लेकर आते हैं, आधी आबादी क्रम के माध्यम से। तो आइए सुनते हैं क्रम आधी आबादी से। बहनों, आज आधी आबादी क्रम में हम बात करेंगे 2023 बैच की गुजरात कैडर की आईएएस ऑफिसर नेहा फाडेवाल के बारे में। नेहा ने यूपीएससी सीएससी परीक्षा 2023 में अखिल भारतीय रैंक 569 हासिल की। वो भारत की सबसे युवा आईएएस ऑफिसर्स में से एक हैं। बहनों, नेहा का जन्म 3 जुलाई 1999 को जयपुर में हुआ था। उनके पिता वरिष्ठ आयकर अधिकारी के पद पर कार्यरत थे। तबादलों के कारण उनका पालन पोषण छत्तीसगढ़ में ही हुआ।
1: मैं राजस्थान की रहने वाली हूँ। राजस्थान में पैदा हुई, रायपुर में पली बढ़ी और मेरी पूरी शिक्षा रायपुर में हुई है। मैं अगर आपको अपनी पर्सनल जर्नी के बारे में बताऊँ तो मेरी जर्नी अप डाउन अप डाउन अप डाउन इट्स एज इंटरेस्टिंग एज इट कैन बी।
0: उन्होंने डीपीएस कोरबा और डीपीएस बिलासपुर सहित कई विद्यालयों में शिक्षा प्राप्त की। नए माहौल और नई भाषा की वजह से 5वीं में वो एक बार फेल भी हो गई थी, लेकिन उन्होंने असफलताओं को अपने आड़े नहीं आने दिया और आगे चलकर रायपुर के डीबी गर्ल्स कॉलेज से स्नातक की पढ़ाई पूरी कर यूनिवर्सिटी टॉपर बन गई।
1: टिल माई फोर्थ स्टैंडर्ड आई वॉज विथ माई ग्रैंड पेरेंट्स और वहां पे इंग्लिश आप छोड़ दीजिए, हिंदी भी बहुत बड़ी बात थी। हम राजस्थानी में बात करते थे तो इवन स्पीकिंग हिंदी वॉज अ कल्चर शॉक फॉर मी। लेकिन वहां पे एक बगल में एक स्कूल था, बहुत खुश थी मैं वहां पे। आई वॉज अ पर्सन जो 3 साल की स्कूल गई और रोई नहीं। दैट इज वन ऑफ द एक्सेप्शनल थिंग्स दैट माई मदर स्टिल गेट सरप्राइज एट। मैं रोई नहीं स्कूल में एंड आई वॉज सो हैप्पी। आई अबॉर्ड द डेज संडे एंड सैटरडेज, आई डिडंट लाइक द वीकेंड्स। फिर उसके बाद चली गई मैं भोपाल अपने पापा के साथ। वहां पे डाला गया मुझे एक इंग्लिश मीडियम प्रॉपर स्कूल में एंड वहां पे आई रियलाइज्ड कि ये जो किताबों में लिखा है वो समझ ही नहीं आ रहा है। आई कुडंट अंडरस्टैंड एनीथिंग, कुछ भी डिसाइफर नहीं कर पा रही थी।

माई जर्नी लाइक अ ट्रैम्पलीन. मुझे ऐसा लगता है कि जितना नीचे में गई वो थ्रस्ट था और ऊपर आने का. देन आई वेंट टू अ कॉलेज, अ वेरी वेरी सिंपल कॉलेज, डीबी गर्ल्स कॉलेज रायपुर में ही मेरी ग्रेजुएशन हुई.

0: है वहां तुमको पहुंचना है और मुझे पूरा भरोसा है कि तुम पहुंचोगी, लेकिन कैसे पहुंचना है तो एक रास्ता है जिसे मैं जानता हूं और एक रास्ता है जो तुम खुद ट्रीट कर सकती हो। तुम कहां से जाओगी, किधर गिरोगी, कितनी बार वापस नीचे आओगी? अगर तुम कोई ऐसा रास्ता चूज करोगी जो बहुत दूर है तो मैं तुम्हें संभाल नहीं पाऊंगा। आई विल कम टू द डिटेल्स ऑफ माई फैमिली। माई फैमिली इज एन एक्सेप्शनल फैमिली एंड आई एम लकी दैट आई वॉज बॉर्न इन टू दिस फैमिली। तो पापा ने ये बात की मुझसे तो तब मुझे लगा कि नहीं, सहारे की तो जरूरत है और जो ये रास्ता दिखा रहे हैं उसमें चलने में कोई बुराई तो नहीं है। तो तब फिर हम निकल पड़े कि सिविल सर्विस की तैयारी करेंगे।
1: कॉलेज की डिग्री लेने के बाद आईएएस बनने के लिए यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी। हालांकि आईएएस बनने का सफर आसान नहीं था, वो 3 बार लगातार असफल भी रही। ये वो वक्त था जब परिवार ने नेहा को टूटने नहीं दिया, उनका हौसला बनाए रखा और फिर से तैयारी करने के लिए मोटिवेट किया। नेहा की जिंदगी में भी कई मुश्किलें आईं, लेकिन फैमिली के सपोर्ट से वो आगे बढ़ती गईं। बार बार असफलताओं के बाद उन्होंने सिर्फ खुद को बेहतर बनाने पर ध्यान दिया।
0: माय फादर इज एन आईआरएस ऑफिसर, लेकिन उससे जो प्रिविलेज मुझे मिलता उससे ज्यादा मैं ये मानती हूँ कि प्रिविलेज जो मुझे मिला है वो प्रिविलेज मुझे इसीलिए मिला है कि वो जिस तरीके के इंसान है, जब एक आदमी सुबह से शाम तक काम करके थका हारा घर आता है तो वो चाहता है कि वो थोड़ा आराम करे, अपने फैमिली के साथ थोड़ा सा थोड़ी सी बात करे, उनके साथ थोड़ा टीवी देखे, थोड़ा मूवीज देखे। बचपन से ही हमारे घर में टीवी तो कभी रहा ही नहीं है, टीवी का कल्चर तो कभी था ही नहीं। होता ये था कि पापा घर आते थे, एक रूम में बोर्ड लगा था, पहले डाइनिंग टेबल पे एक मीटिंग होती थी, तुमने क्या पढ़ा, तुमने क्या पढ़ा, तुमने क्या पढ़ा, तुमने क्या पढ़ा, और फिर थोड़ी सी खिंचाई होती थी, बताओ अब तुमने हमने क्या पढ़ा, चलो मुगल पढ़ा, ऑल राइट, मुगल में क्या पढ़ा, अकबर पढ़ा, ऑल राइट, अकबर में क्या पढ़ा, दीन ए इलाही पढ़ा, बताओ। तो हम डिनर टेबल के लिए प्रिपेयर करते थे ऑल ऑफ अस स्टूडेंट्स चिल्ड्रन व्हाटएवर यू कॉल, और फिर इसके बाद एक सेट क्लास होती थी जो कि एक बोर्ड लगा रखा था पापा ने, और वो उसमें हमेशा पढ़ा।

छोटी सी स्टॉपवॉच की मदद से उन्हें दबाव में लिखने की चुनौती से निपटने में भी गाइड किया। फिर वो दिन आया जब सब कुछ बदल गया। उन्होंने यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम 2023 में 569वीं ऑल इंडिया रैंक हासिल की और सिर्फ 24 साल की उम्र में

0: कंट्रोल में रहता है। वैसे भी बहनों, आज की महंगाई के दौर में हमें बहुत सोच समझ कर चलने की जरूरत है, जिससे भविष्य के लिए बचत और निवेश करना आसान हो जाता है। बहनों, दो बच्चों पर माता पिता का ज्यादा ध्यान हो सकता है, इससे उन्हें अच्छे स्कूल और कॉलेज में उच्च शिक्षा और बेहतर चिकित्सा सुविधाएं भी दिलाई जा सकती हैं। छोटे परिवार में माता पिता बच्चों को अपना अधिक समय दे सकते हैं। माता पिता और बच्चे के बीच आपसी समझ, संवाद और जुड़ाव भी अधिक होता है। सीमित खर्च और जिम्मेदारियों के कारण घर का माहौल खुशनुमा रहता है, जिससे मानसिक तनाव भी कम होता है। छोटे परिवार के घर का राशन, बिजली का, पानी का बिल और दैनिक इस्तेमाल की चीजों पर भी खर्च काफी कम हो जाता है। बहनों, बच्चे कम हो तो उन पर माता पिता अतिरिक्त ध्यान देते हैं, जिससे बच्चों में अनुशासन, आत्मनिर्भरता और सामाजिक रूप से भी वो अपनी एक पहचान आसानी से बना सकते हैं। बहनों, हम देख रहे हैं कि समाज में बच्चों का व्यवहार बदलता जा रहा है। बच्चे अपने में ही खोए रहते हैं, तो अपने घर का माहौल ऐसा बनाएं जिससे बच्चे हर बात आपसे शेयर करें और उन्हें आपके द्वारा डांट नहीं बल्कि मार्गदर्शन मिल सके। इसी उम्मीद के साथ बहनों, अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। और बहनों, आज क्रम है उड़ान हौसलों की का, तो चलिए सुनते हैं बहन सुनीता नेगी की सोनिका वर्मा से ये बातचीत।
1: महिला हर बाजी जीत ले अगर वो ठान ले, महिला हर बाजी जीत ले अगर वो ठान ले, दुनिया क्या उसे रोकेगी अगर वो हौसलों से उड़ान ले। श्रोता बहनों, यदि व्यक्ति के भीतर हौसला है, दृढ़ इच्छा शक्ति है और मनोबल पक्का है, तो उसे सफल होने से कोई भी कमी नहीं रोक सकती और फिर सफलता ही उसकी पहचान बन जाती है। व्यक्ति अगर शारीरिक रूप से कमजोर है और उस कमजोरी को वो अपनी ताकत बना ले, अपने हौसलों को उड़ान दे, तो ऐसी शख्सियत समाज के लिए प्रेरणा बन जाती है। आज ऐसी ही मेहमान हमारे उड़ान हौसलों के क्रम के लिए हमारे साथ हैं, जिनका नाम है सोनिका वर्मा। ये एक अध्यापिका है। सोनिका वर्मा जी, स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में।
2: धन्यवाद मैम।
1: सोनिका जी, आपसे आपका परिचय जानना चाहेंगे, हमारी श्रोताओं को अपना परिचय दीजिएगा।
2: जी मैम, मैं सोनिका वर्मा उच्च प्राथमिक विद्यालय सिसौन जट में शिक्षक के पद पे कार्यरत हूँ और मैं किरतपुर में रहती हूँ।
1: जी, एक अध्यापिका आप हैं, कितने सालों का कार्यकाल है आपका?
2: मैम लगभग मुझे टीचिंग करते हुए 8 साल हो चुके हैं।
1: एक अच्छा अनुभव 8 साल आपके पास है। सोनिका जी, जैसा कि मैं देख पा रही हूँ आपको फिजिकली थोड़ा सा पैरों में आप ईश्वर ने, अगर मैं उसे कहूँ, कमी भी नहीं कहना चाहूंगी, क्योंकि एक दिव्यांग आप हैं। बचपन कैसा गुजरा, कैसे आगे का जीवन गुजरा, क्या क्या संघर्ष रहा आपके जीवन में, और कभी क्या इस कमी को आपने महसूस होने दिया है स्वयं को?
2: जी मैम, मैं जैसे आपको पता है मेरे पैरों में थोड़ी दिक्कत है, तो मेरी कक्षा 8 तक की एजुकेशन घर से ही हुई है।
1: घर पर किस तरह से, किस माध्यम से आपने पढ़ा है?
2: मैम जैसे कोई सर आते थे मुझको ट्यूशन पढ़ाने, और जब एग्जाम होते थे तो मैं एग्जाम देने जाती थी।
1: अच्छा, स्कूल में?
2: तो एग्जाम देके मैं प्रमोट हो जाती थी नेक्स्ट क्लास में।
1: जी
2: जी।
1: उसके बाद फिर स्कूलिंग कौन सी क्लास से स्टार्ट हुई?
2: मैम 8th क्लास से स्कूलिंग स्टार्ट हुई है मेरी। और एक अच्छी बात ये भी रही है, जहाँ से मेरी स्कूलिंग स्टार्ट हुई है वहीं से मैंने टीचिंग स्टार्ट करी है।
1: ये बहुत अच्छी।
2: और जिन टीचरों से मैं पढ़ी हूँ उनके साथ मैंने टीचिंग करी भी है।
1: अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, जैसा मैंने आपसे पूछा था कि क्या आपने अपनी कमी को स्वयं को महसूस होने दिया है कभी?
2: मैम कभी कभी तो महसूस होती है, लेकिन फिर ये रहता है कि आप अपनी कमी पे ध्यान दोगे तो आप और चीजों पे ध्यान नहीं दे पाओगे, आप मेंटली भी थोड़ा डिस्टर्ब रहोगे, परेशान रहोगे। इसलिए मैंने सोचा कि मेरे माइंड, हाथ, वे सब तो सही है, तो मैंने उन्हें काबिल बनाया, अपनी एजुकेशन पे ध्यान दिया, अपनी कमी को थोड़ा इग्नोर करके कौशल करने का कोशिश।
1: तो स्वयं आपने अपने मनोबल को बढ़ाया है, स्वयं को प्रेरित किया है। अच्छा, परिवार की बात करें, समाज की बात करें, किस तरह का आपको माहौल मिला, किस तरह से प्रेरणा मिली परिवार से, या समाज में कभी कोई भेदभाव वाला भी व्यवहार आपके साथ हुआ है?
2: नहीं, इस विषय में मैं थोड़ा लकी हूँ कि मेरे परिवार ने भी मुझे मोटिवेट करा, उन्होंने मुझे ऐसा फील ही नहीं होने दिया कि मुझ में कुछ कमी है। मम्मी हो, पापा हो, दादी हो, सबने मुझे बहुत ध्यान रखा है, इस बात का ध्यान ही नहीं करना कि तुम्हें कुछ कमी है।
1: मैंने
2: कहा अच्छे से पढ़ो, पढ़ के काबिल बनना है।
1: बिल्कुल
2: जी। और समाज में भी लोग बाग मुझे अच्छे ही मिले हैं, ज्यादातर सब सपोर्टिव ही मिले हैं, मोटिवेट करने वाले,
1: चाहे स्कूल लाइफ की बात करें या टीचिंग लाइन की बात करें।
2: जी मैम, सब मुझे बहुत अच्छे लोग मिले हैं, सबने बहुत मोटिवेट करा है।
1: जी, कभी कुछ समस्या भी होती है क्या दैनिक जीवन में, आने जाने में, अपने दैनिक कार्य को कर लेती हैं आप अच्छे से?
2: जी मैम, थोड़ी बहुत ही दिक्कत तो रहती है, उसमें मेरी मम्मी हेल्प करती हैं बहुत ज्यादा।
1: अच्छा
2: जी।
1: परिवार में कौन कौन है आपके?
2: परिवार में मेरी दादी जी हैं, दो चाचा हैं, मम्मी पापा हैं और मेरी 3 सिस्टर्स हैं।
1: जी
2: जी। 3 जॉब करती हैं, 1 हाउसवाइफ है।
1: अच्छा।

0: पोर्ट्रेट करती हूँ, एक्रेलिक पेंटिंग्स करती हूँ, और मुझको मेहंदी लगाने का भी बहुत शौक है।
1: अच्छा, पेंटिंग घर पे बनाने का शौक है, सभी तरह की पेंटिंग आप लगभग कर लेती हैं, तो क्या कभी किसी एग्जीबिशन वगैरह में भी पेंटिंग आपकी गई है?
0: हाँ मैम, अभी बिजनौर महोत्सव हुआ था पिछले साल, तो वहाँ पे मेरी पेंटिंग गई थी। अभी पिछले साल मेरठ में भी एक एग्जीबिशन हुई थी, वहाँ पे भी मेरी पेंटिंग गई थी, और मुझको ऑर्डर भी मिलते रहते हैं पेंटिंग्स के।
1: जी, तो आप सेल भी करती हैं?
0: जी मैम, मैं सेल भी करती हूँ।
1: चलिए, बहुत अच्छी बात है कि एक साइड से अपनी क्रिएटिविटी को आपने निखारा है।
0: जी
1: कला की बात करें तो कला में आप पेंटिंग, सिलाई, कढ़ाई, बुनाई सभी क्रिएटिव वर्क हैं। इस ओर रुझान कैसे हुआ, किससे प्रेरित हुई आप?
0: मैम, इसमें मेरे नाना जी से मैं बहुत प्रेरित हुई, उनकी ड्राइंग बहुत अच्छी थी, और वे कहते थे कि सोनिका तुम ये पेंटिंग करते हो तो इस पेंटिंग को थोड़ा और टाइम लगा के करो,
1: जी
0: जिससे तुम्हारी फिनिशिंग भी आएगी, और प्रैक्टिस करो डेली। तो
1: अच्छा,
0: उनसे मैं, मुझे बहुत प्रेरणा मिली है ड्राइंग करने की।
1: बनाती हैं आप ड्राइंग बचपन से ही?
0: जी
1: थी
0: बचपन से बनाती हूँ मैं, 8-9 साल की उम्र से ही।
1: जी, तो नाना जी ने आपके अंदर छिपी प्रतिभा को निखारा है।
0: जी
1: अच्छा, सिलाई बुनाई कढ़ाई किससे सीखी है?
0: वो मेरी मम्मी हर काम में परफेक्ट हैं, चाहे
1: अच्छा,
0: सिलाई बुनाई कढ़ाई हो, घर को संभालना हो, तो मैं भी चाहती हूँ मैं भी थोड़ा उनकी तरह परफेक्ट बनूँ हर चीज में।
1: जी, तो उनसे सीखा है आपने।
0: जी
1: आपका बहुत शार्प माइंड मुझे लग रहा है कि चीजों को एकदम से कैच कर लेना, सीख लेना।
0: जी मैं सीखती हूँ, लेकिन मैं वो ये चीज देख के सीखती हूँ कि कौन सी अच्छी चीज सीखनी है और कौन सी चीज को नहीं सीखना है,
1: जी
0: इस चीज को देख के ध्यान के सीखती हूँ मैं।
1: अच्छा,
0: जी
1: तो सोनिका जी, पेंटिंग आप करती हैं, क्रिएटिविटी आपने बताई। अच्छा, हमारे समाज में अक्सर ये सोच होती है कि शरीर में किसी की कमी है, दिव्यांग जो है उन्हें समाज एक अलग नजरिए से देखता है, कई बार भेदभाव भी करता है, और उस नजरिए को देख के वो व्यक्ति हीन भावना से भी भर जाता है, उसे एहसास होता है कि हाँ मेरे अंदर ये कमी है। तो क्या आपको एहसास हुआ कभी जीवन में ऐसा?
0: हाँ मैम, कभी कभी होता था। फिर मैं सोचती थी कि कमी तो सिर्फ पैरों में है ना, मेरे हाथ, मेरा माइंड, वो तो सब सही है।
1: जी
0: तो हम कमी को थोड़ा इग्नोर करके अपनी अच्छाई पे वर्क कर सकते हैं, उनको और निखार सकते हैं।
1: जी,
0: जी देखो मैम, दिक्कत तो सबकी लाइफ में होती है,
1: बिल्कुल।
0: लेकिन हमें अपनी दिक्कतों पे ध्यान ना देके अपने हुनर पे ध्यान देंगे तो हम जीवन में संतुष्टि से रह सकते हैं।
1: जी, आपने नेगेटिविटी को दूर किया और पॉजिटिविटी
0: जी
1: की तरफ ध्यान दिया।
0: जी
1: जी, और सफलता का राज भी आपका वही है।
0: जी
1: और अगर हम कह लें कि हर व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई कमी जरूर होती है, चाहे वो शारीरिक रूप से हो, मानसिक रूप से हो, कुछ कमियां होती ही हैं, और अगर हम कमियों को इग्नोर करके आगे बढ़ते हैं तो निश्चित रूप से सफलता प्राप्त होती है। सोनिका जी, विद्यालय में बच्चों को आपकी क्रिएटिविटी का क्या लाभ मिलता है, किस तरह से बच्चों के लिए यूजफुल होती है आपकी ये आर्ट और कला?
0: हाँ मैम, जैसे मैं बच्चों को TLM के माध्यम से पढ़ाती हूँ, जैसे कोई टॉपिक है, शुरू में बच्चों को वर्णमाला सीखने में बहुत दिक्कत होती है, वे सोचते हैं कि क्या है मैम, क्या बुलवाती रहती है, इसका कोई अर्थ भी नहीं है।
1: जी
0: तो हम उन्हें पिक्चर्स बना लेते हैं, ड्राइंग बना लेते हैं कलरफुल सी, तो कलरफुल में बच्चों का इंटरेस्ट भी आता है, उन्हें लगता है नहीं कि हम पढ़ रहे हैं, उन्हें लगता है कि हम खेल रहे हैं, और
1: जी
0: खेल के माध्यम से वो बहुत जल्दी सीखते हैं। और ड्राइंग के माध्यम से उनके लेखन कौशल भी आता है, जैसे शुरू में
1: जी
0: बच्चे आते हैं उनसे पेंसिल पकड़ना चलाना नहीं आता, तो उन्हें ड्राइंग के माध्यम से वो बहुत जल्दी सीखते हैं।
1: जी
0: जी ड्राइंग का बहुत अहम रोल है शिक्षण में।
1: बिल्कुल, एक खेल खेल में ही ड्राइंग के माध्यम से बच्चे सीख लेते हैं शिक्षा को।
0: जी मैम,
1: जी
0: जैसे ए हो गया, ए से हम उन्हें एप्पल बनाना, इजी ड्राइंग सिखा सकते हैं, अल्फाबेट्स, तो अल्फाबेट भी आ जाता है और उन्हें ड्राइंग बनाना भी आ जाता है।
1: जी इसके अलावा बात करें कला का, के तो बच्चे आपसे क्या घर पर भी सीखने आते हैं, ड्राइंग, पेंटिंग, मेहंदी की आपने बात की।
0: जी मैम, समर वेकेशन जैसे बच्चों की होती है तो बच्चे आ जाते हैं सीखने के लिए।
1: जी, सोनिका जी, आगे क्या सपने हैं, क्या आगे और चाह है कि और जीवन में ये करना
0: जी
1: है?
0: मैम, शिक्षक बनने का सपना तो मेरा पूरा हो चुका है, मैं चाहती हूँ कि मैं एक आर्टिस्ट भी बन सकूं।
1: अच्छा, एज ए आर्टिस्ट आपको समाज में एक पहचान मिले,
0: जी
1: तो इस पर क्या कार्य चल रहा है आजकल कला पे आपका?
0: मैम, एक मैं सीरीज पे काम कर रही हूँ, माँ दुर्गा, उसमें माँ दुर्गा की जो विशेषताएं होती है मैं उन्हें चित्र के माध्यम से दर्शाने की कोशिश कर रही हूँ।
1: इस पर कितना काम हो चुका है
0: मैम अभी
1: लगभग?
0: माँ दुर्गा के 3 रूप तो बन चुके हैं,
1: हाँ,
0: अभी 6 बाकी हैं।
1: जी।
0: जी
1: सोनिका जी, अध्यापन का कार्य, बिजी रहना है स्कूल में,
0: जी
1: इसके साथ साथ आप कला के लिए समय कैसे निकाल पाती हैं?
0: मैम, बस शौक की बात है, जब अब शौक होता है ना इंसान में तो वो थका हुआ तब भी वो निकाल ही लेता है रोज।
1: जी,
0: मैं भी जितना बिजी रहती हूँ फिर भी मैं 1 घंटा निकाल ही लेती हूँ ड्राइंग के लिए।
1: तो डेली 1 घंटा आप जरूर करती हैं
0: जी
1: ड्राइंग।
0: जी 1 घंटा मैं जरूर करती हूँ ड्राइंग।
1: चलिए, बहुत अच्छी बात है, और उम्मीद है कि आपकी ये सीरीज जल्दी ही पूरी होगी। जी, और आपने बताया है कि आपका कुछ चैनल भी
0: जी है? मेरा इंस्टाग्राम पे चैनल है।
1: हाँ, तो उस पे सभी को देखने को ये सीरीज जरूर मिलेगी
0: जी।
1: आपसे मैं ये जानना चाहूंगी, परिवार में परिवार वालों का सपोर्ट कैसा रहता है? आपने बताया बहनें भी हैं, छोटी बड़ी भी, क्या सपोर्ट रहता है आपको मोटिवेट करने में, और परिवार के किस सदस्य का सबसे ज्यादा सहयोग रहा है आपको प्रेरित करने में?
0: देखो मैम, मम्मी पापा दोनों का रहा है। मम्मी घर में सपोर्ट करती थी, कभी डिमोटिवेट नहीं होने देती थी, और पापा का बाहर रहा है एजुकेशन में मेरे
1: जी।

0: मैं कॉलेज जाती थी, पापा बस पे छोड़ के आते थे, फिर जब मैं आती तो लेने आते थे, फिर मैंने डाइट से कराया बीटीसी तो वहां पे मेरे साथ जाते थे, फिर जब तक कॉलेज चलता था वहां बैठते थे, फिर मुझे लेकर तब आते थे, तो पापा का भी बहुत संघर्ष
1: जी बिल्कुल। और संघर्ष बाद सफलता आपको मिली है उनके आशीर्वाद से,
0: और मम्मी ने कभी डिमोटिवेट नहीं होने दिया
1: जी
0: जी।
1: अच्छा सोनिका जी, कभी विद्यालय जाती हैं आप तो किस माध्यम से जाती हैं, और क्या कभी कोई समस्या भी आती है?
0: मैम समस्या तो आती, देखो जैसे बरसात का मौसम होता है तो हमारे स्कूल का प्रांगण कच्चा है तो वहाँ पे कीचड़ हो जाती है, तो मुझको शूज पहन के चलने में बहुत दिक्कत रहती है, रपड़ने का भी डर रहता है, वरना बाकी दिनों में तो सही रहता है, तो आने जाने में दिक्कत नहीं होती, लेकिन बरसात के दिनों में बहुत दिक्कत हो जाती है, मुझे छुट्टी लेनी पड़ती है जब बारिश होती है।
1: जी जी जी
0: जी।
1: तो स्वयं विद्यालय चली जाती है स्कूल वैन से?
0: हाँ मैम, पापा छोड़ के आते हैं वहाँ पे वैन पे, और फिर लेने भी आते हैं।
1: चलिए कुल मिलाकर आपने अपने आप को बहुत सशक्त बनाया हुआ है, आपके जो भी दिव्यांगता है उसको आपने कमी के रूप में स्वीकार नहीं किया, बल्कि उसे अपनी ताकत आपने बनाया है।

0: गई हूँ।
1: इस पर कितना काम हो चुका है?
0: अभी माँ दुर्गा के 3 रूप तो बन चुके हैं, अभी 6 बाकी हैं।
1: जी जी सोनिका जी, अध्यापन का कार्य, बिजी रहना है स्कूल में, इसके साथ साथ आप कला के लिए समय कैसे निकाल पाती हैं?
0: मैम बस शौक की बात है, जब शौक होता है ना इंसान में तो वो थका हुआ तब भी वो निकाल ही लेता है रोज
1: जी।
0: मैं भी जितना बिजी रहती हूँ फिर भी मैं 1 घंटा निकाल ही लेती हूँ ड्रॉइंग के लिए।
1: तो डेली 1 घंटा आप जरूर करती हैं
0: जी
1: ड्रॉइंग?
0: जी 1 घंटा मैं जरूर करती हूँ ड्रॉइंग।
1: चलिए बहुत अच्छी बात है, और उम्मीद है कि आपकी ये सीरीज जल्दी ही पूरी होगी
0: जी।
1: और आपने बताया है कि आपका कुछ चैनल
0: जी, मेरा इंस्टाग्राम पे चैनल है,
1: तो उस पर सभी को देखने को ये सीरीज जरूर मिलेगी
0: जी।
1: आपसे मैं ये जानना चाहूंगी, परिवार में परिवार वालों का सपोर्ट कैसा रहता है? आपने बताया बहनें भी हैं, छोटी बड़ी भी, क्या सपोर्ट रहता है आपको मोटिवेट करने में, और परिवार के किस सदस्य का सबसे ज्यादा सहयोग रहा है आपको प्रेरित करने में?
0: देखो मैम, मम्मी पापा दोनों का रहा है। मम्मी घर में सपोर्ट करती थी, कभी डिमोटिवेट नहीं होने देती थी, और पापा का बाहर रहा है एजुकेशन में मेरे
1: जी।
0: जैसे मैं कॉलेज जाती थी तो पापा बस पे छोड़ के आते थे, फिर जब मैं आती तो लेने आते थे, फिर मैंने डाइट से कराया BTC तो वहां पे मेरे साथ जाते थे, फिर जब तक कॉलेज चलता था वहां बैठते थे, फिर मुझे लेकर तब आते थे, तो पापा का भी बहुत संघर्ष
1: जी बिल्कुल। और संघर्ष बाद सफलता आपको मिली है उनके आशीर्वाद से,
0: और मम्मी ने कभी डिमोटिवेट नहीं होने दिया
1: जी।
0: जी
1: अच्छा सोनिका जी, कभी विद्यालय जाती हैं आप तो किस माध्यम से जाती हैं, और क्या कभी कोई समस्या भी आती है?
0: मैम समस्या तो आती है, देखो जैसे बरसात का मौसम होता है तो हमारे स्कूल का प्रांगण कच्चा है तो

0: और फिर लेने भी आते हैं।
1: चलिए, कुल मिलाकर आपने अपने आप को बहुत सशक्त बनाया हुआ है। आपके जो भी दिव्यांगता है उसको आपने कमी के रूप में स्वीकार नहीं किया, बल्कि उसे अपनी ताकत आपने बनाया है। आप अब आने वाले वक्त में काम करना चाहेंगे?
0: जी मैम।
1: तो हमारी तो शुभकामना है आपके लिए सोनिका वर्मा जी, जीवन में आप और आगे बढ़े, बहुत तरक्की करें और एक मिसाल बनकर समाज में आए। आज आप हमारे स्टूडियो में आई, उड़ान हौसले के क्रम में आपने अपनी कहानी हमारे श्रोताओं से बयां की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद मैम, आपने मुझे मंच दिया जिससे लोग वक्त और प्रेरित हो सके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद।
2: मेरो अभी हम सुन रहे थे सुनीता नेगी की सोनिका वर्मा से ये बातचीत क्रम उड़ान हौसलों की में। और बहनों, चलते चलते अब बात कर लेते हैं मौसम के बारे में। तो बहनों, बारिश का मौसम सुहावना तो जरूर होता है, लेकिन यही समय सर्दी, खांसी और वायरल इन्फेक्शन और कमजोर इम्यूनिटी का भी होता है। तो ऐसे में हम आपको कुछ हेल्दी ड्रिंक्स बताते हैं जो आप यूज करके अपनी इम्यूनिटी को मजबूत कर सकते हैं। तो बहनों, अदरक, तुलसी और दालचीनी से बनी हर्बल चाय जो है शरीर में गर्माहट लाने के साथ साथ सर्दी जुकाम में भी बचाव करती है और गले में खराश और सांस की दिक्कत से राहत दिलाती है। सुबह के वक्त या शाम को स्नैक्स के साथ इस चाय का हम ले सकते हैं, इससे शरीर भी एक्टिव बना रहता है। साथ ही साथ बहनों, हल्दी वाला जो दूध होता है, हल्दी दूध मानसून में वायरल इन्फेक्शन, बुखार और इम्यूनिटी वीकनेस से लड़ने में मदद करता है। रात को सोने से पहले एक गिलास गर्म हल्दी वाला दूध पीने से न केवल अच्छी नींद आती है, बल्कि शरीर की अंदरूनी सफाई भी होती है और जोड़ों के दर्द जिनको रहते हैं तो उसमें भी आराम मिलता है। तीसरी ड्रिंक की बात करें तो बहनों, नींबू और शहद से बना गर्म पानी सबसे अच्छा ऑप्शन होता है। इसमें विटामिन सी भरपूर होता है जो आपकी इम्यूनिटी को मजबूत करता है और पाचन में सुधार लाता है। सुबह खाली पेट इस ड्रिंक का सेवन करें, शरीर में डिटॉक्सिफिकेशन की प्रक्रिया तेज होती है और दिन भर एनर्जी भी बनी रहती है। और बहनों, खाने के साथ हम वेजिटेबल सूप का भी यूज़ कर सकते हैं। हॉट वेजिटेबल सूप या प्रोटीन से भरपूर कोई भी सूप न केवल स्वादिष्ट होता है, बल्कि इसमें मिनरल्स, विटामिन्स और एंटीऑक्सीडेंट की भरमार होती है। ये इम्यूनिटी को बूस्ट करता है और गले की खराश से भी राहत देता है। शाम के वक्त एक बाउल गर्म सूप हमारी बॉडी और मूड दोनों को सुकून देता है। तो बहनों, अब घड़ी इशारा कर रही है कि हमारे कार्यक्रम का समय समाप्त होने को है। फिर मिलेंगे, करेंगे ढेर सारी बातें। तब तक के लिए मुझे यानी कि सुनीति आर्य को कार्यक्रम संपन्न करने की दीजिए अनुमति। नमस्कार।

अभी हमारी बहनें सुन रही थी अपना कार्यक्रम महिला जगत। ये आकाशवाणी का नजीबाबाद केंद्र है। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्ज पर। दिन के 1:45 हो रहे हैं। प्रस्तुत है लोक संगीत का कार्यक्रम लोक धारा। आज इस कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको सुनवा रही हैं लता कुंजवाल के स्वर में कुमाऊनी लोकगीत। श्रोताओं, लोकगीत किसी भी क्षेत्र की आत्मा होते हैं। इनमें वहाँ की मिट्टी की खुशबू, पहाड़ों की नज़ारे, ये सब हमें देखने को मिलते हैं और यही सब कुछ बयां कर रही हैं लता कुंजवाल अपने इस गीत में।

भई 62 में जवान, सन 61 में बैद, भई 62 में जवाना, बार बार से काश पड़ी फिल लठ मंगा रा राना।

श्रोताओ, मिट्टी की खुशबू, पर्वतों का प्यार, लोक धुनों में बसता है संस्कृति का संसार। आइए सुनते हैं कुमाऊं की वादियों से निकला ये एक और मधुर लोकगीत लता कंजवाल की आवाज में।

श्रोताओं, पहाड़ों की ठंडी हवाएं, कल कल बहते झरने और सरल जीवन की मधुर धुनी, यही पहचान है कुमाऊं की लोक संस्कृति की। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये अंतिम बेहद मनमोहक कुमाऊनी लोकगीत।

0: अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम लोकधारा के अंतर्गत लता कुंजवाल के गाए कुमाऊनी लोकगीत। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रही हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्स पर। दिन के 2 बजने को हैं। कुछ ही पलों में आप दिल्ली केंद्र से प्रसारित समाचार सुनेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: मिडडे न्यूज। द हेडलाइंस। India and Australia sign landmark deals on uranium supply and dedicated critical minerals corridor. Australia

0: Parikh and said it reflects the sustained efforts of the government and the active participation of the people. Meeting of the BRICS Transport Working Group has begun in Nagpur today as part of the third BRICS Transport Ministers meeting under BRICS 2026 chairship of India. Addressing media persons after the working group meeting, Union Transport Secretary V. Umashankar said senior officials deliberated on the main issues of circularity, mobility, urban infrastructure, sustainable development. Similarly, best practices in the transport sector and transportation issues were discussed. Union Home Minister Amit Shah will chair a conference of superintendents of police, SPs from border districts in New Delhi today. Superintendents of police from border states and union territories, including Jammu and Kashmir, Punjab, Uttarakhand, Rajasthan, Gujarat, Uttar Pradesh, Bihar, West Bengal and the northeastern states, will participate in the conference. Apart from infiltration, illegal immigration and demographic changes, border security, drone threats and narcotics trafficking are expected to be discussed. The conference also takes place against the backdrop of the centre's decision to constitute a high-level committee a few months ago to examine the extent of demographic changes taking place in different parts of the country and identify the factors responsible for them. The Indian Pickleball Association has announced the Indian contingent in both men's and women's category to represent India in the pro category at the Pickleball World Cup 2026. The competition will be held at Da Nang in Vietnam from August 30th to September the 6th. Harsh Mehta, a recurring name on the international pickleball circuit, will be leading the charge. Arjun Singh, Anish Walian and Aman Patel have also made the cut in the men's category. Mihika Yadav, Alia Ibrahim, Pearl Amal Sadiwala and Naomi Amal Sadiwala will make up the contingent on the women's side. Benchmark domestic equity indices were trading around 0.7% up in the afternoon session today. The Sensex climbed 565 points to 77,069, while the Nifty added 168 points to 24,050 when reports last came in. And now before we end the bulletin, the headlines once again. India and Australia signed landmark deals on uranium supply and dedicated critical minerals corridor. Australia and India partnership on cyber critical technologies and supply chains becomes operational. Prime Minister Narendra Modi holds annual summit with his Australian counterpart Anthony Albanese in Melbourne. Says bilateral relationship entered an expansive era anchored in deep mutual trust. Vice President C.P. Radhakrishnan unveils national mission for sustainable use of high seas fishery resources in Bhubaneswar. And with that, we end the midday news.
1: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता भारत और ऑस्ट्रेलिया ने यूरेनियम आपूर्ति और महत्वपूर्ण खनिज गलियारे पर ऐतिहासिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए साइबर प्रौद्योगिकी और आपूर्ति श्रृंखलाओं पर ऑस्ट्रेलिया भारत साझेदारी की शुरुआत हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के बीच मेलबर्न में वार्षिक शिखर वार्ता श्री मोदी ने कहा द्विपक्षीय संबंध गहरे आपसी विश्वास पर आधारित विस्तृत युग में प्रवेश कर चुके हैं उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने भुवनेश्वर में खुले समुद्र के मत्स्य संसाधनों के सतत उपयोग के लिए राष्ट्रीय मिशन का अनावरण किया मॉनसून पूरे देश में सक्रिय लगातार बारिश से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में जनजीवन प्रभावित उत्तराखंड राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत वयस्कों के लिए निर्धारित साक्षरता मानकों को प्राप्त कर पूर्णतः साक्षर राज्य बना और वियतनाम में होने वाले पिकलबॉल विश्व कप 2026 के लिए भारतीय दल की घोषणा अब समाचार विस्तार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज विक्टोरिया के गवर्नमेंट हाउस में आयोजित 30वें भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल हुए बैठक के बाद प्रधानमंत्री मोदी और प्रधानमंत्री अल्बनीज ने संयुक्त वक्तव्य दिया हमारे संवाददाता ने बताया है कि दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों में आए परिवर्तनकारी बदलाव का स्वागत किया और क्षेत्रीय स्थिरता ऊर्जा सुरक्षा तथा प्रौद्योगिकी नवाचार के लिए व्यापक रूपरेखाओं को अंतिम रूप दिया
2: यह महत्वपूर्ण शिखर सम्मेलन एक ऐतिहासिक परिवर्तन को दर्शाता है जिसमें भारत और ऑस्ट्रेलिया मिलकर हिंद प्रशांत

क्षेत्र के लिए एक मजबूत ढांचा तैयार कर रहे हैं। पारंपरिक व्यापार से हाईटेक डिफेंस कॉरिडोर की ओर बढ़ने, महत्वाकांक्षी सीका समझौते में तेजी लाने और ऐतिहासिक परमाणु समझौते के अंतर्गत लंबे समय के लिए यूरेनियम निर्यात शुरू करने जैसी पहलों से दोनों देशों के बीच आपसी भरोसा को अभूतपूर्व स्तर पर पहुंचाया गया है। जहां ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री अल्बानीज ने कहा कि 10 लाख लोगों का भारतीय प्रवासी समुदाय इस साझेदारी की असली धड़कन है, वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने दोनों देशों के विकास की गति

0: है, इसलिए हमारी मीटिंग भी क्रिकेट जैसी लगती है। एजेंडा वनडे जैसा फोकस है, डिसीजन T20 जितने तेज है और पार्टनरशिप टेस्ट मैच जितनी लंबी और गहरी।
1: मेलबर्न से सुहास राम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
2: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया साझेदारी भविष्य के लिए निर्मित एक सुदृढ़ और स्थायी संबंध है। संवाददाताओं को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों के संबंध गहरे पारस्परिक विश्वास के आधार पर एक नए युग में प्रवेश कर चुके हैं। शिखर वार्ता की प्रमुख उपलब्धियों में आर्थिक और व्यापारिक सहयोग को नई गति देना शामिल रहा। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि दोनों देशों ने यूरेनियम आपूर्ति और महत्वपूर्ण खनिज गलियारे पर ऐतिहासिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए।
0: पीएम सूर्यघर योजना को सपोर्ट करने के लिए हमने मिलकर गुजरात में रूफटॉप सोलर ट्रेनिंग एकेडमी बनाई है। यह एकेडमी अनेक महिलाओं और युवाओं की कैपेसिटी बिल्डिंग में योगदान देगी। न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में आज हमने एक महत्वपूर्ण समझौता किया है। इससे ऑस्ट्रेलिया से भारत को यूरेनियम सप्लाई का मार्ग खुलेगा और हमारे क्लीन एनर्जी के उद्देश्यों को नई ताकत मिलेगी।
2: प्रधानमंत्री ने कहा कि रणनीतिक प्रौद्योगिकी और संसाधन सुरक्षा के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। इसके अंतर्गत ऑस्ट्रेलिया भारत साइबर क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज और सप्लाई चेन साझेदारी को क्रियान्वित किया गया और महत्वपूर्ण खनिज कॉरिडोर की स्थापना की गई।
0: हमने सीका पर तेजी से काम करने का निर्णय लिया है, जो दोनों देशों के लिए बैलेंस एम्बिशियस। हम बायलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी पर भी तेजी से आगे बढ़ेंगे। हमारी रिन्यूएबल एनर्जी पार्टनरशिप, क्लीन एनर्जी और क्लाइमेट एक्शन में हमारे प्रयासों को साकार रूप दे रही है। इसके तहत हम इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री कोलैबोरेशन पर विशेष बल दे रहे हैं।
2: हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए दोनों नेताओं ने रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर ऐतिहासिक संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए। वार्षिक रक्षा मंत्रियों के संवाद को संस्थागत रूप दिया गया तथा समुद्री सुरक्षा सहयोग रोडमैप का शुभारंभ हुआ।
0: हमारे मैरिटाइम सिक्योरिटी कोलैबोरेशन रोडमैप से इंडो पैसिफिक में हमारे साझा प्रयासों को नई ताकत मिलेगी। हम शिप बिल्डिंग, शिप रिपेयर और मेंटेनेंस में भी मिलकर आगे बढ़ेंगे। फ्रेंड, आज हमने कई क्षेत्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी विस्तार पूर्वक चर्चा की।
2: शिक्षा के क्षेत्र में भी सहयोग पर अभूतपूर्व प्रगति हुई है। इसके तहत ऑस्ट्रेलियाई विश्वविद्यालय

0: और अहम समझौतों के माध्यम से हम रक्षा सुरक्षा, शिक्षा, विज्ञान और तकनीक तथा ऊर्जा सुरक्षा और जरूरी खनिजों के क्षेत्रों में अपने संबंधों का विस्तार कर रहे हैं।
1: इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री अल्बनीज़ ने भारत ऑस्ट्रेलिया मुख्य कार्यकारी अधिकारी मंच और आर्थिक कार्य योजना कार्यक्रम को संबोधित किया। ऑस्ट्रेलिया सुपर के 500 मिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर के निवेश का भारत ने स्वागत किया है। मेलबर्न में कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पॉल श्रोडर ने इसकी घोषणा की। ऑस्ट्रेलिया भारत बिजनेस काउंसिल के प्रमुख सदस्य विश्व विश्वनाथन ने मेक विद इंडिया पहल के बढ़ते असर पर जोर दिया। ये समूह रणनीतिक कॉरपोरेट पार्टनरशिप को बढ़ावा देकर ऑस्ट्रेलिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मेक इन इंडिया दृष्टिकोण को लागू करने का काम कर रहा है। भारत की अध्यक्षता में आज नागपुर में ब्रिक्स 2026 के तहत तीसरे ब्रिक्स परिवहन मंत्रियों की बैठक हुई। कार्यकारी समूह की इस बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में केंद्रीय परिवहन सचिव वी उमाशंकर ने कहा कि वरिष्ठ अधिकारियों ने गतिशीलता, शहरी बुनियादी ढांचा और सतत विकास जैसे मुख्य मुद्दों पर चर्चा की। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIRF और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने भुवनेश्वर में खुले समुद्र के मत्स्य संसाधनों के सतत उपयोग के लिए राष्ट्रीय मिशन का अनावरण किया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: भारत ने आज गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के संसाधनों के टिकाऊ इस्तेमाल के लिए एक अहम राष्ट्रीय पहल शुरू करके अपने समुद्री विकास में एक बड़ा मुकाम हासिल किया। उड़ीसा के एक दिन के दौरे पर आए उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने दूर के समुद्रों में काम करने वाली भारतीय झंडे वाली मछली पकड़ने वाली नावों के लिए अनुमति पत्र जारी करने की राष्ट्रीय प्रक्रिया की शुरुआत की। इससे जिम्मेदारी से गहरे समुद्र में मछली पकड़ने और समुद्री संसाधनों को संरक्षण के लिए एक मजबूत ढांचा तैयार होगा। उन्होंने उड़ीसा डीप सी फिशिंग मिशन डॉक्यूमेंट भी जारी किया जो राज्य में गहरे समुद्र में मछली पकड़ने को इकोसिस्टम को मजबूत करने और ब्लू इकोनॉमी समुद्री अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए एक रणनीतिक योजना है। उपराष्ट्रपति ने युवा भारतीयों से मछली पालन को वैश्विक मौके वाला एक आधुनिक विज्ञान आधारित पेशे के तौर पर अपनाने का आग्रह किया।
3: I urge our institutions to continue supporting our fishing community with knowledge, technology and finance. And this historic initiative brings prosperity to every coastal family and contributes significantly to the realization of Viksit Bharat by 2047.
2: Prakash Das, Akashvani Samachar, Bhubaneswar.
1: गृहमंत्री अमित

0: वर्ष 2014-15 में कृषि मशीनीकरण को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया था। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज पुणे मुंबई घाट में रेलवे लाइन की मरम्मत के काम की समीक्षा की। भूस्खलन भीषण था, रेलवे लाइन के साथ साथ आसपास के क्षेत्रों को भी भारी नुकसान हुआ था। मध्य रेलवे और पश्चिमी रेलवे की टीमें समन्वय से काम कर रही हैं। नीति आयोग ने उभरते क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण खनिजों की आवश्यकता पर हितधारकों के साथ परामर्श बैठक आयोजित की। इस बैठक में सरकार, अनुसंधान संस्थानों, शिक्षाविदों और उद्योग जगत के विशेषज्ञों ने हिस्सा लिया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और उल्लास नए भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत निर्धारित वयस्क साक्षरता मानकों को हासिल करने के बाद उत्तराखंड देश का छठा पूर्णतः साक्षर राज्य बन गया है। शिक्षा मंत्रालय के अधीन विद्यालय शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा निर्धारित मानकों की पूर्ति के बाद राज्यपाल ने 8 जुलाई 2026 को इस घोषणा को मंजूरी दी। दक्षिण पश्चिम मानसून पूरे देश में सक्रिय हो गया है। राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और उत्तरी अरब सागर के शेष हिस्सों में भी ये आगे बढ़ चुका है। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर नरेश कुमार ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से दिल्ली, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में मध्यम से तेज बारिश जारी है। दिल्ली वासियों की सुबह मूसलाधार बारिश और आंधी के साथ शुरू हुई। बारिश के कारण कई स्थानों पर जलभराव हो गया, जिससे यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ। मौसम विभाग ने हरियाणा सहित राष्ट्रीय राजधानी में तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया था।
1: अगर हम आने वाले दिनों की बात करें, सबसे पहले NCR दिल्ली की बात करें, तो NCR दिल्ली के लिए आज के लिए हमारा आवेदन है, हम अनुमान लगा रहे हैं कि जहां आज मॉडरेट टू हैवी रेनफॉल एक्टिविटी हो सकती है, इसके अलावा कल ये रेनफॉल एक्टिविटी कम हो जाएगी, परसों हल्का फुल्का रेनफॉल होने का अनुमान। वेस्ट उत्तर प्रदेश के लिए आज के लिए हमारा रेड अलर्ट है, वहां हम एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल अनुमान लगा रहे हैं।
0: मौसम विभाग ने उत्तराखंड के कई जगहों पर मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है।
2: राजधानी देहरादून सहित प्रदेश के अधिकांश जिलों में रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है। बारिश और भूस्खलन से पर्वतीय जिलों के कुछ राष्ट्रीय मार्गों, राज्य राजमार्गों और ग्रामीण क्षेत्रों के संपर्क मार्गों पर यातायात प्रभावित हुआ है। बंद सड़कों को खोलने के प्रयास किए जा रहे हैं। आपदा प्रबंधन व पुनर्वास सचिव विनोद कुमार सुमन ने संबंधित विभागों को किसी भी संभावित आपदा से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए 24 घंटे सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने प्रदेशवासियों से मौसम विभाग द्वारा जारी चेतावनियों का गंभीरता से पालन करने की भी अपील की है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
0: केरल के अधिकांश हिस्सों में आज बारिश की तीव्रता कम हो गई है। उत्तरी केरल के 5 जिलों में आज येलो अलर्ट जारी किया गया है। ये जिले कल रेड अलर्ट और ऑरेंज अलर्ट पर थे। वायनाड में 5 से 15 मिलीमीटर तक मध्यम बारिश दर्ज की गई। यहां मंगलवार को भूस्खलन हुआ था। भारतीय पिकलबॉल संघ ने 2026 पिकलबॉल विश्व कप के लिए भारतीय दल की घोषणा कर दी है। ये दल एक प्रतिस्पर्धी चयन प्रक्रिया के बाद चुना गया है। 30 अगस्त से 6 सितंबर तक वियतनाम के दानांग में आयोजित होने वाले पिकलबॉल विश्व कप में पेशेवर वर्ग में देश का प्रतिनिधित्व करेगा। अंतर्राष्ट्रीय पिकलबॉल जगत में एक जाना पहचाना नाम हर्ष मेहता दल की कप्तानी करेंगे। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 श्रृंखला का चौथा मुकाबला आज रात 10 बजे से ब्रिस्टल के काउंटी ग्राउंड में खेला जाएगा। आज दोपहर के सत्र में घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक लगभग 0.7% की बढ़त के साथ कारोबार कर रहे थे। नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार सेंसेक्स 565 अंक चढ़कर 77,069 पर और निफ्टी 168 अंक बढ़कर 24,050 पर पहुंच गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने यूरेनियम आपूर्ति और महत्वपूर्ण खनिज गलियारे पर ऐतिहासिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए। साइबर प्रौद्योगिकी और आपूर्ति श्रृंखलाओं पर ऑस्ट्रेलिया भारत साझेदारी की शुरुआत हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के बीच मेलबर्न में वार्षिक शिखर वार्ता। श्री मोदी ने कहा, द्विपक्षीय संबंध गहरे आपसी विश्वास पर आधारित विस्तृत युग में प्रवेश कर चुके हैं। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने भुवनेश्वर में खुले समुद्र के मत्स्य संसाधनों के सतत उपयोग के लिए राष्ट्रीय मिशन का अनावरण किया। मॉनसून पूरे देश में सक्रिय, लगातार बारिश से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में जनजीवन प्रभावित। इसके साथ ही दो

0: दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 2:30 हो रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम एक ही संगीतकार। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं संगीतकार मदन मोहन के संगीत पर बने कुछ फिल्मी गीत। श्रोताओ, आकाशवाणी नजीबाबाद के इस खास फिल्मी संगीत के कार्यक्रम एक ही संगीतकार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। श्रोताओ, फिल्मी दुनिया में कुछ ऐसे संगीतकार हुए हैं जिनकी धुनें वक्त के साथ और भी खूबसूरत होती चली गई हैं। आज हम बात करेंगे ऐसे ही एक महान संगीतकार मदन मोहन की। उनकी बनाई धुनों में प्यार है, दर्द है, सुकून है और दिल की गहराइयों को छू लेने वाला एहसास है। इसीलिए उन्हें अक्सर गजलों का शहजादा भी कहा जाता है। तो आइए शुरू करते हैं उन्हीं के एक बहुत मधुर गीत के साथ अपने इस कार्यक्रम को। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का ये पहला गीत फिल्म अदालत से। आवाज़ है लता मंगेशकर की और इस गीत के बोल लिखे हैं राजेंद्र कृष्ण ने।

वाह क्या बात है, आज भी ये गीत सुनते ही दिल भावुक हो जाता है। यही तो थी मदन मोहन की खासियत, उनकी धुनें सीधे दिल में उतर जाती थी। श्रोता, मदन मोहन का जन्म 25 जून 1924 को हुआ था। उनके पिता फिल्म जगत से जुड़े थे, लेकिन उन्होंने अपनी अलग पहचान अपने हुनर और मेहनत से बनाई। शुरुआत में उन्होंने सेना में कुछ वक्त काम किया, फिर बाद में रेडियो से जुड़े और फिल्मों में संगीत देने लगे। तो आइए सुनते हैं उन्हीं की धुन पर तैयार किया हुआ फिल्म एक कली मुस्काई से ये गीत, आवाज़ लता मंगेशकर की और गीत राजेंद्र कृष्ण का।

0: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी नजीबाबाद केंद्र से एक ही संगीतकार, और इसमें हम आपको सुनवा रहे हैं संगीतकार मदन मोहन की धुनों पर तैयार किए हुए कुछ बेहद मशहूर गीत। श्रोताओं, कार्यक्रम में बढ़ने से पहले ले लेते हैं एक छोटा सा विराम।
1: अपने व्यापार को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना चाहते हैं?
2: तो इंतजार किस बात का,
1: अभी बुक कराइए अपना विज्ञापन आकाशवाणी नजीबाबाद के संग।
2: विज्ञापन बुकिंग कराने के लिए आज ही संपर्क करें।
1: हमारा मोबाइल नंबर है 8865845809।
2: नंबर एक बार फिर सुन लीजिए, 8865845809।
1: और हमारा ईमेल आईडी है
2: akashwaninajibabad@gmail.com।
1: तो देर किस बात की, उठाइए अपना फोन और बुक कराइए अपना विज्ञापन आकाशवाणी नजीबाबाद के संग।
0: श्रोताओं, आइए बढ़ते हैं अपने कार्यक्रम की तरफ। हम बात कर रहे हैं संगीतकार मदन मोहन की। श्रोताओं, संगीतकार मदन मोहन की सबसे बड़ी ताकत थी उनकी मधुर धुनें। उन्होंने खासकर गायिका लता मंगेशकर की आवाज़ के लिए कई अमर गीत तैयार किए। लता जी खुद भी कहती थी कि मदन मोहन की धुनें गाना हर गायक के लिए सम्मान की बात होती है। तो आइए सुनते हैं मदन मोहन के ही संगीत से सजे अपने कार्यक्रम के अगले गीत को, जिसको हमने लिया है फिल्म बावर्ची।

शास्त्रीय संगीत का अमृत कलश रागम भारतीय शास्त्रीय संगीत को समर्पित आकाशवाणी का बेहतरीन चैनल रागम डीटीएच पर लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए इंटरनेट और आपके मोबाइल ऐप पर भी रागम आनंद की अटूट रसधार।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: श्रोताओं, प्यार की भावनाओं को इतनी सादगी और खूबसूरती से संगीत में ढालना हर किसी के बस की बात नहीं थी। मदन मोहन ने कभी शोर शराबे वाले संगीत नहीं बनाए। वो मानते थे कि कम वाद्य यंत्रों में भी दिल को छू लेने वाली धुनें बनाई जा सकती हैं, और कुछ इसी तरह का गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं फिल्म मौसम से। आवाज़ है आशा भोसले की और इस गीत के बोल लिखे थे गुलजार ने। तो आइए सुनते हैं फिल्म मौसम का ये गीत मदन मोहन के संगीत निर्देशन में।

श्रोता, मदन मोहन के संगीत में भारतीय शास्त्रीय संगीत की मिठास भी थी और गजलों की नजाकत भी। यही वजह है कि उनके गीत आज भी उतने ही पसंद किए जाते हैं जितने अपने वक्त में थे। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये अंतिम गीत। फिल्म है जब याद किसी की आती है, आवाज़ महेंद्र कपूर और लता मंगेशकर की, और गीत है राजा मेहंदी अली खां का।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम एक ही संगीतकार के अंतर्गत महान संगीतकार मदन मोहन की धुनों पर बने फिल्मी गीत। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर। दिन के 3 बज चुके हैं। हमारी प्रातःकालीन सभा के प्रसारण अब यहीं पर समाप्त होते हैं। शाम 4 बजे अपनी सांध्यकालीन सभा में पुनः आपकी सेवा में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए।

मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज पर। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 4 बजने को हैं। हमारी संध्याकालीन सभा के प्रसारण अब आरंभ होते हैं। सभा के आरंभ में लीजिए प्रस्तुत है हमारा कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर। ये कार्यक्रम दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

102.6 देश के नंबर वन रेडियो आपके अपने रेनबो पर प्रोग्राम संदेश टू सोल्जर लेकर हाजिर है शाहिद। और यहां पर संदेश टू सोल्जर में हमेशा हम बात करते हैं अपने वीर साहसी सैनिकों के बारे में और उनकी गाथाएं हम सुनते हैं और आपके साथ शेयर करते हैं और हम उनकी जीवनी उनके करियर के बारे में भी जानते हैं और अपने प्रोग्राम में हम उनकी लाइफ में झांक करके उनकी जिंदगी को समझने की कोशिश करते हैं और उनके स्ट्रगल को उनके करियर को उनके जोश और जज्बे को भी हम जानने की कोशिश करते हैं अपने प्रोग्राम संदेश टू सोल्जर्स में। और आज संदेश टू सोल्जर्स के खास प्रोग्राम में शाहिद है आपके साथ। आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं 9868107070 पर। आज के संदेश टू सोल्जर्स के खास मेहमान श्री शिवम कुमार, सहायक कमांडेंट सशस्त्र सीमा बल, असिस्टेंट कमांडेंट सशस्त्र सीमा बल SSB, जो राष्ट्रपति द्वारा अपनी वीरता, अदम्य साहस, सेवा और उत्कृष्ट कार्य के लिए पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री से सम्मानित हैं और इसके अलावा कई सारे कमेंडेशंस एप्रिसिएशंस से भी नवाजे जा चुके हैं। श्री शिवम कुमार, सहायक कमांडेंट SSB।

0: पर प्रोग्राम संदेश टू सोल्जर्स, शाहिद आपके साथ और आज के हमारे खास मेहमान हैं संदेश टू सोल्जर्स में श्री शिवम कुमार, सहायक कमांडेंट सशस्त्र सीमा बल। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका संदेश टू सोल्जर्स के हमारे प्रोग्राम आकाशवाणी रेनबो पर।
1: धन्यवाद। सर्वप्रथम मैं सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक इन्फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट सेल और FM रेडियो रेनबो का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आज हमें मौका दिया गया है कि मैं अपने संदेश को पूरे देश और विदेश के सभी लोगों के साथ साझा कर सकूं।
0: बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने समय निकाला, आपने अपना कीमती वक्त दिया और आप हमारे पास आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, यह हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपके आने का।
1: सर धन्यवाद।
0: आपको बता दें कि श्री शिवम कुमार असिस्टेंट कमांडेंट सशस्त्र सीमा बल राष्ट्रपति द्वारा अपनी वीरता, अदम्य साहस, सेवा और उत्कृष्ट कार्य के लिए पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री से भी सम्मानित किए जा चुके हैं और इसके अलावा बहुत सारे अवार्ड्स, मेडल्स, कमेंडेशंस और एप्रिसिएशंस, सर्टिफिकेट्स तो उनको मिले ही हैं, वो हम आपको आगे बताएंगे। तो सर एक बार फिर से हम आपका स्वागत करते हैं संदेश टू सोल्जर्स में और आपसे जानना चाहते हैं कि सर आपके बारे में हमने जब जाना तो आपने फैशन टेक्नोलॉजी में बैचलर डिग्री हासिल की विद डिस्टिंक्शन फ्रॉम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी। तो SSB और NIFT तो काफी मतलब सिमिलैरिटी नहीं है, तो कुछ बताइए इसके बारे में।
1: सर इसके बारे में मैं शुरुआत करना चाहूंगा कि अंग्रेजी के एक पोएट है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, उनकी एक बड़ी अच्छी पंक्ति है, टू रोड्स डाइवर्ज इन अ वुड एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय। मेरी कहानी है कुछ ऐसी ही रही है
0: जी।
1: जब शुरुआत से बचपन से तो यूं मैं नहीं कहूंगा कि मुझे फौज में आने का शौक था
0: जी,
1: लेकिन जब मैं नौकरी कर रहा था NIFT के उपरांत तो हमारे सोसाइटी में एक शहीद मेजर नितेश राय थे जो शहीद हुए थे अफगानिस्तान के इंडियन आर्मी के एक मिशन में और उनके सम्मान में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था हमारे सोसाइटी में जिसमें मुझे होस्ट करने का मौका मिला।
0: अच्छा, तो आप उस जमाने में पढ़ रहे थे?
1: नहीं, मैं कॉलेज के बाद में नौकरी कर रहा था।
0: अच्छा,
1: तो उसके जब उस होस्टिंग के दौरान मुझे उनकी पूरी जीवनी जानने का मौका मिला, उन्होंने क्या क्या त्याग किए देश के लिए इसको जानने का मौका मिला, उनके साहस और शौर्य से वो कहीं ना कहीं मेरे हृदय के किसी कोने में जाके बैठ गई
0: जी।
1: उसके बाद मैंने सोचा कि अब मुझे भी यही करना है, वर्दी तो धारण करनी है देश के लिए और राष्ट्र सेवा में ही
0: जी। तो जो शहीद मेजर थे वो आपके प्रेरणा स्रोत बने और आप फैशन टेक्नोलॉजी से सीधा सशस्त्र सीमा बल।
1: जी बिल्कुल, फैशन से ये सशस्त्र सीमा बल का जो सफर है उसको मैं शहीद मेजर नितेश राय को डेडिकेट करता हूँ।
0: क्या बात है सर। सर यहाँ ये भी बताइए हमें शिवम कुमार जी के ये जो सफर आपका रहा, मतलब आपने जैसे कहा कि मैंने कभी सोचा नहीं था, तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन आया उससे आपकी जिंदगी पर क्या असर पड़ा, आपने क्या महसूस किया उस वक्त, जो जज्बा आपका रहा होगा वो प्लीज बताइए।
1: उस वक्त जब मैंने ये जाना, उनके जीवन के बारे में जाना, उनके महज 25 साल की उम्र में वो शहीद हो गए और उन्होंने देश के जो के लिए जो किया है, तो ये वाकई में एक प्रेरणा स्रोत था मेरे लिए। मैंने देखा कि आपके व्यक्तित्व के कई ऐसे आयाम हैं जिससे कि आप अपरिचित होते हैं, लेकिन जब आप फौज की नौकरी में आते हैं तो ये विभिन्न आयाम से आप परिचित होते हैं, तो आपको लगता है कि व्यक्ति से बड़ा समाज है, समाज से बड़ा राष्ट्र है। इस जज्बे को मैंने पहचाना जब मैं फौज की ट्रेनिंग में आया, जब मैं फौज में आया।
0: क्या बात है सर, देशभक्ति से बढ़कर मोहब्बत कोई नहीं हो सकती।
1: जी बिल्कुल।
0: तो फिर आपका ये सफर नेशनल इंस्टीट्यूट फैशन टेक्नोलॉजी से बैचलर डिग्री विद डिस्टिंक्शन हासिल करने के बाद एक फैशन ग्रेजुएट बनता, फिर सशस्त्र सीमा बल का एक सिपाही बन जाता है, तो वो सफर अब आगे जब शुरू होता है उसके बारे में बताइए।
1: जी 2018 UPSC में मैंने फॉर्म भरा और उसके बाद फाइनली मेरा सिलेक्शन हुआ 2020 के जनवरी माह में। सशस्त्र सीमा बल अकेडमी में मैं बतौर डायरेक्ट असिस्टेंट कमांडेंट वहां पे अपनी बेसिक ट्रेनिंग की शुरुआत हुई
0: जी।
1: और एक साल के कठिन परिश्रम के उपरांत, एक साल की कठिन ट्रेनिंग के उपरांत जो कि काफ़ी ज़्यादा डिमांडिंग थी मेरे लिए क्योंकि मैं फिजिकली उस टाइम पर बहुत ज़्यादा साउंड नहीं था, उस ट्रेनिंग के उपरांत मैंने जाकर के फिर वो तमगा हासिल किया, मैं असिस्टेंट कमांडेंट बतौर फील्ड में उसके बाद मेरी नियुक्ति हुई।
0: जी जी, तो वो सफर जिस तरीके से रहा आपको फैशन एक बिल्कुल ही अलग एक फील्ड हो गई और उसके बाद आप फौज का एक हिस्सा बनते हैं, आप एक फौजी बन गए, एक सोल्जर बन गए, तो वो जो हथियारों के साथ जब आपका एक रिश्ता बना तो वो कैसा महसूस आपने किया? एक आम जनमानस जो है, एक आम इंसान जो है, वो इस चीज को शायद आपकी बातों से कुछ महसूस कर पाए, उस जज्बे को।
1: बिल्कुल बिल्कुल, जब मैं ट्रेनिंग कर रहा था तो हमें एक चीज सिखाई जाती थी
0: जी,
1: जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी
0: जी,
1: माता और मदरलैंड इससे ये स्वर्ग से भी ऊपर है और इस चीज को आपके हृदय में, आपके खून में, आपके अंतर मन में अंतर्निहित कर

0: किया जाता है ट्रेनिंग के अंदर,
1: जी
0: और यही मेरे साथ हुआ। उसके बाद मैंने ठान लिया कि आज से मेरी दो माएँ हैं,
1: जी
0: एक मेरी माँ अपनी जिन्होंने मुझे जन्म दिया है, और एक मेरा राष्ट्र
1: मातृभूमि,
0: मातृभूमि।
1: क्या बात है सर। यही जो आपके जोशीले और जज्बात से भरे हुए जो जज्बा है आपका, जो शब्द हैं आपके, आप इस मौके पर, अभी हम आगे बढ़ेंगे, आपके करियर को जानेंगे, आपके अचीवमेंट्स को जानेंगे, आप हमारे जो देश का युवा है उसके लिए कुछ कहना चाहेंगे इसी जज्बे के साथ?
0: जी, मैं देश के युवाओं के लिए एक पंक्ति है जो मैं उनके लिए कहना चाहूंगा
1: जी,
0: कि देश के युवाओं में अपने आप के अंदर, उसके अंदर पौरुष होना चाहिए। पौरुष सबसे पहले युवाओं में जरूरी है, क्योंकि जिसके अंदर पौरुष है, जिसके अंदर पुरुषार्थ है, आप उसी से, आप उसी के प्रति आप अपनी इज्जत रखते हैं, आप उसी के प्रति अपनी सांत्वना रखते हैं। अगर आपके अंदर पौरुष नहीं होगा तो आप समाज के लिए, अपने देश के लिए, अपने राज्य के लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। और ये सब सर्वोपरि है। आप अपने अंदर पुरुषार्थ को धारण करें, चाहे वो किसी भी रूप में हो, वो फौज की सेवा में आके हो, या आप वो टीचर बन के हो, या आकाशवाणी की सेवा में जैसा आप कर रहे हैं, तो पुरुषार्थ होना सबसे आवश्यक है।
1: जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके इन शब्दों के लिए। और हम समझते हैं कि जो आपने बात की बहुत ही सच्ची और बहुत ही दिल से आपकी जो बात निकली है वो दिल तक पहुंचेगी, हमारे माध्यम से भी और आपके जरिए भी, दिल से दिल तक, आकाशवाणी के माध्यम से। आपने जो SSB जब ज्वाइन किया तो आपने बताया कि किस तरीके से आपकी ये शुरुआत हुई, लेकिन आपने इसके अलावा ज्वाइन करने के बाद भी कई प्रोफेशनल कोर्सेज किए, जैसे कि आइडेंटिफिकेशन एंड हैंडलिंग ऑफ एक्सप्लोजिव और सिक्योरिंग, आपने पहली पोजिशन भी हासिल करी थी। उसके अलावा आपने GIS कोर्स किया SSB की अकेडमी भोपाल से। तो वो जो एक कोर्स आपने किया आइडेंटिफिकेशन एंड हैंडलिंग ऑफ एक्सप्लोजिव, वो कितना, मतलब क्या बहुत खतरनाक, बहुत आसान था? क्योंकि देखने में, पढ़ने में नहीं लग रहा कि बहुत आसान रहा होगा।
0: जी बिल्कुल, ये भारत के बदलते सुरक्षा परिदृश्य में
1: जी
0: एक्सप्लोजिव IED जैसी घटनाएं आमतौर पर कई ज़्यादा देखने को मिलती थी। तो बतौर अ सोल्जर ये एक व्यक्ति को ट्रेन होना चाहिए कि वो आइडेंटिफाई कर सके कि कौन से एरिया में कहाँ एक्सप्लोजिव लगाया जा सकता है, कैसे एक्सप्लोजिव को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इन चीज़ों के विषय में इस कोर्स में बताया गया, ताकि उस क्षेत्र की जो जनता है उस क्षेत्र में फोर्स ऑपरेट कर सके और उस क्षेत्र की जनता को सुरक्षित कर सके।
1: जी, तो शिवम कुमार जी, हमें ये भी बताइए कि आपने GIS कोर्स, क्योंकि ज्योग्राफिकल इन्फॉर्मेशन सिस्टम जो कोर्स आपने किया, उससे आपकी ट्रेनिंग के लिए और आपकी जो सेवाएं हैं उसमें किस तरीके से आप उसको और बढ़ा सके, सेवाएं अपनी और बढ़ा सके आप?
0: जी बिल्कुल, ये हमारे जनरली जो हमारा इलाका होता है जहाँ पे कि हम अपनी सेवाएं देते हैं, वो बहुत सुदूर और रिमोट एरियाज में रहता है। तो वहाँ पे हमको एक रेडी टू अवेलेबल एक मैप चाहिए होता है, जिसको कि हम डिजिटली देख सकें और देख सकें कि कहाँ कहाँ हमारी तैनाती हुई है। तो इसके लिए ज्योग्राफिकल इन्फॉर्मेशन सिस्टम का ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है, जिससे कि हम अपने ट्रूप्स के मूवमेंट पे नज़र रख सकते हैं, वो कहाँ कहाँ हमारी तैनाती है इस पर नज़र रख सकते हैं। इसके लिए GIS कोर्स महत्वपूर्ण है।
1: तो आप ऑलरेडी एक सहायक कमांडेंट थे, उसके बाद भी SSB के ही आप जरिए ये सब कोर्सेस कर पाए, इतना आगे और बढ़ पाए, अपनी स्किल्स को और ज्यादा बढ़ा पाए और इम्प्रूव कर पाए, तो इसमें फिर आपको आगे भी इस तरीके के फिर मौके मिले जहां पर आप अपनी सेवाएं उस तरह से दें?
0: बिल्कुल बिल्कुल, ये जो बेसिक ट्रेनिंग होती है वो हमारे एक जेंटलमैन को वो एक फौजी में तब्दील करती है, लेकिन दैट इज द बेस, वो बेस है, फाउंडेशन है। उसके ऊपर आपको लगातार कोर्सेज करने हैं ताकि आप एक हुनरमंद और एक आप एबल ऑफिसर बन सकें। तो इसके लिए सारे कोर्सेज,
1: मतलब आप अपनी निपुणता को लगातार जो है बढ़ाते रहें।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: उसमें एडिशन करते रहें। इसी एडिशन में आपकी एक बहुत जबरदस्त जो आपने ग्वालदाम उत्तराखंड में की कमांडो ट्रेनिंग भी आपने की इन सब के साथ साथ, तो उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा?
0: जी, कमांडो जो है वो एक फिजिकल और मेंटल दोनों तरीके से आपको सशक्त बनाता है कि आप विषम परिस्थितियों में, दुर्गम पहाड़, दुर्गम वनों में आप लंबे लंबे ऑपरेशंस कर सके, अपनी ट्रूप्स को मोराल को हाई रख सके और ऑपरेशंस में सामरिक रणनीति के साथ ऑपरेशन में विजय हासिल कर सके।
1: तो सर, ये तो ट्रेनिंग बहुत टफ रही होगी, कैसा रहा आपका वो एक्सपीरियंस इस कमांडो ट्रेनिंग वाला?
0: जी बिल्कुल, ये ट्रेनिंग तो टफ होती है, इसमें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि ट्रेनिंग तो बहुत टफ रहती है, लेकिन आपके अंदर जो वो जज्बा होना चाहिए वो ऐसा निहित कर दिया जाता है उस्तादों के द्वारा, इंस्ट्रक्टर्स के द्वारा, कि वो समय धीरे धीरे पार हो जाता है और आप जब बिगर पिक्चर की ओर देखते हैं, जब आप देखते हैं कि यहाँ से जब आप तप के जाएंगे, जब आप निखर के जाएंगे यहाँ से, तो फील्ड में इसके

0: सफर शुरू बैचलर डिग्री विद डिस्टिंक्शंस के साथ श्री शिवम कुमार का, और उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि जिंदगी पूरी तरह से बदल गई और वो बन गए एक जोशीले जांबाज सिपाही सशस्त्र सीमा बल के। सर, आपकी पूरी सर्विस में अभी तक की, आप अभी भी सर्विस में हैं और सर्विस के दौरान आपकी पोस्टिंग रही एसएसबी एकेडमी भोपाल मध्य प्रदेश में और 32 बटालियन एसएसबी बिहार में, और फिलहाल आप सर्व कर रहे हैं सीआई एंड जेडब्ल्यू स्कूल ग्वालदाम। तो सर, ये जो आप प्रेजेंटली जो सर्विंग है आपकी, ये इसके बारे में थोड़ा सा बताइए, सीआई एंड जेडब्ल्यू स्कूल में आप क्या करते हैं और ये क्या है?
1: काउंटर इंसर्जेंसी एंड जंगल वॉरफेयर स्कूल ग्वालदाम में, उत्तराखंड में स्थापित है। ये हमारे इन सर्विस ट्रेनिंग सेंटर है जहाँ पे कि, जैसा मैंने आपको बताया कि बेसिक ट्रेनिंग के उपरांत कई सारे ऐसे कोर्सेज होते हैं जिसे कि सभी बलकर्मी इरेस्पेक्टिव ऑफ रैंक उस कोर्सेज को पूरा करते हैं ताकि वो अपनी सेवा में और दक्षता हासिल कर सकें। तो हमारे CINJW स्कूल ग्वालदम में माउंटेनियरिंग विंग है जहाँ पे कि मैं गर्व से कहना चाहूंगा कि SSB की टीम माउंट एवरेस्ट की सीमाओं पर भी, माउंट एवरेस्ट की चोटी पर
0: जी
1: अपना विजयी तिरंगा फहरा चुकी है।
0: बहुत खूब सर, क्या बात है।
1: इसके अतिरिक्त वहाँ पे एक्सप्लोजिव की ट्रेनिंग होती है, कमांडोज की ट्रेनिंग होती है, बहुआयामी ट्रेनिंग सेंटर है ये।
0: तो आप इस ट्रेनिंग सेंटर में एज ए ट्रेनर अपनी सेवाएं दे रहे हैं?
1: जी बिल्कुल, मैं यहाँ पे बतौर इंस्ट्रक्टर या ट्रेनर के रूप में अपनी सेवाएं दे रहा हूँ।
0: जी, तो सर किस तरीके का एक्सपीरियंस है, क्योंकि आप पहले सर्व कर चुके उसके बाद फिर आप अब ट्रेनिंग भी दे रहे हैं, तो सीखना और फिर सिखाना, इन दोनों में कितना अंतर आप पाते हैं और क्या ज्यादा कठिन आपको लगता है?
1: मुझे ऐसा लगता है कि दोनों ही का अपना अपना महत्व है
0: जी।
1: जिस व्यक्ति ने धरातल पर कार्य किया है, जिसे धरातल की जो भी कठिनाइयां हैं, चुनौतियां हैं, वो पता है, वह बेहतर तरीके से उसको अपने आने वाली पीढ़ी को या जो भी ट्रेनीज रहते हैं उसको बता सकता है। और यही करने की मैं कोशिश करता हूँ, जो भी मैंने ग्राउंड में अपने अनुभव से और जो हमारा एक वहाँ पर टेन्योर रहा है उससे सीखा है, उसको ट्रेनिंग्स को बताने की मेरी चेष्टा होती है ताकि वो ग्राउंड के लिए रेडी बन सके।
0: जी, अच्छा शिवम कुमार जी, हम यहाँ पर एक बात जानना चाहेंगे कि एक जब फौजी बन रहा होता है तो उसके दिल में क्या अरमान, क्या जज्बा होता है देश सेवा को लेकर के? क्या वो सब चीज़ें चाहता है कि वो जाएगा फ्रंट पर और जैसे दुश्मनों का मुकाबला करेगा, और वो बिल्कुल एकदम बेखौफ होकर के, निडर, बिल्कुल साहस के साथ उनका सामना करेगा, भले ही फिर वो अपनी जान की परवाह ना करे, कुछ भी हो जाए, वो जज्बा कैसा होता है?
1: बिल्कुल शाही जी, इसमें ऐसा है कि जब हम बेसिक ट्रेनिंग के उपरांत धीरे धीरे हमारी नौकरी आदि बढ़ती जाती है
0: जी,
1: तो हमें ये समझ में आ जाता है कि एक फौजी के जीवन का ध्येय वाक्य होता है कि लड़ाई ना तो अधूरी होती है और ना ही अधूरे मन से लड़ी जाती है।
0: क्या बात है।
1: तो एक फौजी अपने पूरा जीवन न्यौछावर करता है, इसी के लिए वो तपता है ताकि जब मौत सामने नाच रही हो
0: जी,
1: तो फौजी उसका डट कर सामना करे और अपने देशवासियों का, अपने राष्ट्रवासियों का, जिसकी सुरक्षा का जिम्मा उसे दिया गया है
0: जी,
1: उसे बखूबी निभाए।
0: क्या बात है, ये जोशीले स्वर आ रहे हैं हमारी तरफ श्री शिवम कुमार जो हैं असिस्टेंट कमांडेंट सशस्त्र सीमा बल। सर, ये जज्बा और ये जोश आप जो जिस तरीके से हम महसूस कर रहे हैं आपको देख करके और आपसे सुन करके, तो इस जज्बे के साथ ही हमारा युवा अगर इसमें जाना चाहता है तो किस तरीके से आप उसको गाइड करना चाहेंगे?
1: जी, युवाओं के लिए सशस्त्र सीमा बल में जाने के 3 रास्ते हैं
0: जी।
1: अगर कोई कांस्टेबल लेवल पे भर्ती होना चाहता है तो SSC द्वारा GD की परीक्षा आयोजित की जाती है, जिसका मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन उसकी मैट्रिकुलेशन होती है।
0: ठीक है।

0: जी बिल्कुल, इसमें ऑपरेशन के एग्जीक्यूशन के उपरांत असली खुशी तो वही होती है। असली खुशी ये नहीं है कि आपने नक्सली को मार दिया या आतंकवादी को मार दिया। असली खुशी वो है कि जब आप जम्मू कश्मीर के जवाहर टनल से निकले, जब आपका कॉन्वॉय निकले
1: जी,
0: या छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा या बिहार के भीमबांध से जब आपकी गाड़ी निकले और तब कोई बच्चा हाथ में झंडा लिए जय हिंद आपको करता है,
1: क्या बात है।
0: तब जो उसके चेहरे की जो वो सुरक्षा का भाव उसके चेहरे पे रहता है, ये आपकी असली जीत है बतौर फौजी।
1: क्या बात है। तो उस झंडे के साथ और उस जय हिंद के नारे के साथ वो जो खुशी मिलती है वो खुशी सबसे बढ़कर होती है।
0: जी बिल्कुल, वो हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी वही है कि जनता का विश्वास जो हमने जीता है
1: जी,
0: वो हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी है और इस ऑपरेशन के माध्यम से हम ये करने में सक्षम हुए थे।
1: जी बिल्कुल, क्या बात है। और यही वो ऑपरेशन था जिसकी वजह से आपको प्रेस्टीजियस पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री से नवाजा गया राष्ट्रपति द्वारा 2024 में।
0: जी बिल्कुल, इस ऑपरेशन में सबका सहयोग था, सीनियर से लेकर के जूनियर सबका सहयोग था।
1: जी
0: मैं आपको छोटा सा वृतांत इस ऑपरेशन का बताना चाहता
1: हूँ। जरूर जरूर।
0: ये हमारी प्लानिंग चल रही थी, जो बिहार के लखीसराय में मैं लोकेटेड था वहाँ पे मेरी पोस्टिंग थी, तो हमारी प्लानिंग चल रही थी कि वहाँ का जो नक्सल ग्रुप है उसको कैसे ट्रैप किया जाए, अपने चक्रव्यूह में कैसे लाया जाए। तो जिन सीनियर्स के मैंने नाम बताया आपको
1: जी,
0: उनके सानिध्य में हमारी प्लानिंग चली। फिर हमने एक गुप्तचर को प्लांट किया उनके नक्सली टीम में और फिर उसके द्वारा दी गई सटीक जानकारी के बेसिस पे हमें ये पता चला कि दिनांक 2 फरवरी 2022 जो मुठभेड़ का दिन था
1: जी,
0: उस दिन ये नक्सली जंगल में आने वाले थे, कोई एक खास जगह थी जहाँ पे वो आने वाले थे। तो उसके लिए हम पहले से ही तैयार थे, हमने पहले से एक लंबी प्लानिंग कर रखी थी। तो हमारी टीम उसके अंदर लॉन्च हुई, लगभग हम अपने पूरे फुल स्ट्रेंथ स्क्वाड के साथ लॉन्च हुए और हमारे हमारे जो कमांडेंट जो थे श्री दीपक सिंह एवं श्री सुशील कुमार जो लखीसराय बिहार के SP थे एवं श्री मनोरंजन पांडे हमारे कमांडेंट सर थे, उनके मार्गदर्शन में हमारी पूरी टीम लॉन्च हुई, जिसमें नरपत सिंह डिप्टी कमांडेंट, गुलशन झा सर, जसवीर तोमर सर और मैं, और मेरे साथ अलग अलग रैंक्स के लड़के थे। हमने दो टीमें बनाई और जंगल की अपनी चुनौतियां हैं।
1: बिल्कुल,
0: जंगल में आपको ये नहीं पता होता है कि गोली कब किधर से आएगी, क्योंकि कोई फिक्स्ड पॉइंट नहीं होता है। तो हमें एक जनरल इलाका पता था कि यहाँ पे नक्सली आने वाले हैं
1: जी,
0: तो हम उस इलाके की तरफ बढ़ रहे थे अपनी पूरी फुल स्ट्रेंथ स्क्वाड के साथ। और 2 तारीख को लगभग 9 बजे सुबह की बात है ये
1: जी,
0: सीधे गोलियों की बौछार हम पे आई।
1: ओके, तो यानी कि आपकी जब आंख खुलती है तो सीधा गोलियों से आपका स्वागत करते हैं वो लोग।
0: जी बिल्कुल, हम जब आगे बढ़ रहे थे उस एरिया की तरफ जा रहे थे तो एकदम से हमारी गोलियों की बौछार हमारे ऊपर आई। क्यों, और जंगल में एक सिद्धांत चलता है, यू मिस एंड आई हिट। और पहली गोली जो थी नक्सलियों की वो उन्होंने मिस कर दिया था,
1: हमें
0: से किसी को भी वो उनकी पहली गोली नहीं लगी। तब हमें पता था कि अब हमें क्या करना है, उसने मिस कर दिया, वी आर गोइंग टू हिट देम।
1: एग्जैक्टली, मतलब हम नहीं मिस करेंगे किसी भी कीमत पर।
0: बिल्कुल, एक हमारी ट्रेनिंग ही इसलिए होती है कि हमको उसको हिट करना है। तो हमने वहीं पे रणनीति बनाई कि कौन किधर से कैसे अटैक करेगा और फिर जवाबी जो हमारी कार्रवाई थी वो हमने फुल स्ट्रेंथ में जवाबी कार्रवाई की नक्सलियों के ऊपर। क्रॉस फायरिंग चली, बहुत देर तक फायरिंग चलती रही, लगभग आधे घंटे तक ये फायरिंग चली, उसके उपरांत जाकर के ये फायरिंग समाप्त हुई। तो ये जो यज्ञ, ये जो नक्सल एनकाउंटर होता है ना, ये हम फौजियों के लिए एक यज्ञ जैसा है, एक धार्मिक अनुष्ठान जैसा है, जिसमें कि हम अपना तन मन धन सब झोंक देते हैं। तो फिर जब ये फायरिंग खत्म हुई उसके बाद जाकर के हमने देखा तो हमने पाया कि 2 बॉडीज वहां पे हमें मिली और संयोग से वो दोनों बॉडीज थी जितेंद्र कोड़ा और विनोद कोड़ा की,
1: मतलब जो उनके लीडर्स थे।
0: जी बिल्कुल, जो उनके लीडर्स थे जिनका आतंक जो है वो पूरे पूरे लखीसराय क्षेत्र में कहें, पूरे बिहार क्षेत्र में फैला हुआ था और जिनके आतंक के कारण जनता हमसे कुछ बात नहीं करती थी, हमारे नज़दीक नहीं आती थी, उन दोनों की बॉडीज हमें वहां मिली। और उसके अतिरिक्त एक उनका और लीडर था अर्जुन कोड़ा
1: जी,
0: जिसको कि उसके राइट थाई में जाकर के हमारी गोली फंस गई थी और फिर आगे आने वाले 1 महीने बाद
1: जी
0: उसने सरेंडर किया एक दूसरी फोर्स के सामने और उसने ये बताया
1: जी
0: कि उस दिन SSB के साथ हुई मुठभेड़ में वो गोली जो है मेरे थाई में आके फंस गई है और अगर मैंने सरेंडर इसलिए किया है क्योंकि अगर मैं इलाज नहीं करवाऊंगा तो मैं मर जाऊंगा।
1: तो उसके बाद इसके अलावा कोई दूसरा चारा नहीं बचा।
0: जी बिल्कुल, तो हमारे लिए ये एक बहुत बड़ी जीत थी, मैं इसे अपने जीवन का सबसे स्वर्णिम पल, अविस्मरणीय क्षण मानूंगा, जहां पे कि मुझे गर्व है कि मैं अपनी पूरे टीम के साथ ऐसे राक्षस से लड़ा
1: जी
0: और उसे पराजित किया और उसका जो फल मिला वो सबसे सुखद फल था कि

0: जो हमारा ध्येय वाक्य है सेवा सुरक्षा बंधुत्व
1: जी,
0: हमने सेवाएं दी वहां की जनता को, उनके मन में नक्सलियों को मारने के उपरांत
1: जी
0: उनके मन में एक सुरक्षा का भाव पैदा हुआ
1: बिल्कुल,
0: और अंततः वो बंधुत्व में तब बदला जब मैं उसी गांव वाले के साथ जो हमसे बात नहीं करता था उसी के साथ मैं बैठ करके चाय पीता था
1: और क्या बात है?
0: खाना खाता था,
1: क्या बात है सर,
0: ये सशस्त्र सीमा बल की जीत थी।
1: बेशक बेशक बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं कि ये जो आपका इतना डायरिंग ऑपरेशन था उसके बाद इसमें जो आपने कामयाबी हासिल करी तो यही सबसे बड़ी जीत थी कि जो विश्वास जो आपने बनाया उन लोगों में जो आपसे पहले बात करने में डरते थे। यहां जिस तरीके से शिवम कुमार आप अपनी जिस तरीके से ऑपरेशन के बारे में बता रहे थे, भाई इमेजिन कर रहा था स्टूडियो में बैठ करके कि वो क्या सिचुएशन वो मंजर रहा होगा, तो मैं सर ये जानना चाहता हूँ, एक शायद लिसनर भी जानना चाहता है और इतने मैसेजेस मेरे पास आ रहे हैं मैं उनको अभी ले नहीं पा रहा, बाद में लूंगा, तो क्या ये जो हम अक्सर मैं बात करता हूँ कि हम इस तरीके की कुछ सिचुएशंस देखते हैं, आप आमने सामने से दो ग्रुप में जो फायरिंग चल रही है, बैटल चल रही है, वॉर सिचुएशन है, तो वो हम फिल्मों में जो देखते हैं तो बड़ा एक्साइटमेंट सा होता है, लेकिन आप उस सिचुएशन को फेस कर रहे हैं, वहां पर मौजूद हैं और आप अपने देश के लिए अपनी जान की बाजी वहां पर लगा रहे हैं उन क्रिमिनल से, उन आतंकवादियों से लड़ने के लिए। सर वो मोमेंट, वो जज्बा, वो जो एक फीलिंग होती है वो क्या होती है, वो खौफ, वो डर, वो सिचुएशन, वो थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे आपके अपने शब्दों में।
0: सबसे पहले तो मैं जो सुन रहे हैं जितनी भी श्रोतागण हैं मैं उनको बताना चाहूंगा कि ये फिल्मों में जो ग्लैमराइज किया जाता है, फौज में आने के सबसे पहले दिन तो आपका ग्लैमर जाता है, वो ग्लैमर छूटता है सबसे पहले, क्योंकि आप ग्लैमर के बल पे आप ये

0: वणकम, नमस्कारम। और ये हैं श्रीरंगम राजेश, श्रीरंगम त्रिची त्रिचुपल्ली तमिलनाडु से।
1: जी धन्यवाद और जय हिंद राजेश जी आपको।
0: और इसके बाद है एक मैसेज, जय हिंद साहब, बहुत बहुत मुबारक सर, आपको SSB के जरिए पूरे देश का नाम रोशन कर रहे हैं आप। आपके साथ
1: कजरा लिखा है,
0: हाँ, कजरा में काम कर रहे, बहुत कुछ सीखने को मिला साहब, जय हिंद। सर, ये आपके कोई एसोसिएट, कोई आपके साथी या जूनियर लगते हैं?
1: बिल्कुल, ये मेरे साथ के हैं, मेरे अच्छा। जूनियर और सीनियर तो है, ये पूरी टीम की बात है क्योंकि
0: जी बिल्कुल बिल्कुल
1: मेरे टीम के साथी हैं, साथी हैं, कार्य किया है हमारे साथ।
0: और इसके बाद ये जय हिंद टू रेस्पेक्टेड गेस्ट सर एंड आर्जे सर हियर। आई वुड लाइक टू पे माय ग्रेटिट्यूड टू शिवम सर एंड ऑल आवर इंडियन आर्मी फ्रॉम बॉटम ऑफ माय हार्ट। इट्स बिकॉज देयर सेल्फलेस सर्विस विद डेडिकेशन डिवोशन दे डिस्चार्ज देयर ड्यूटी फेयरलेसली, दे आर रियल हीरोज। I bow my hat to them, so I would say Jai Hind, Bharat Mata ki Jai, Vande Mataram. Myself, Shankar Lodh, and my wife, Anjali Lodh, offer obedience to all my, to them. My request to Arjun sir, please forward my message, Shivam sir. Thank you. Sir, आपका मैसेज हमने पहुंचा दिया है, शिवम सर सुन रहे हैं।
1: जी धन्यवाद मिसेज एंड मिस्टर लोध जी, मैं आशा करता हूं कि आप ये सभी संदेश जो फौजियों के द्वारा दिया जा रहा है उसको सुन रहे हैं
0: जी,
1: और इस चीज के लिए आपका धन्यवाद
0: जी। इसके अलावा मैसेज है, ये शुभ संध्या कह रहे हैं, जय हिंद, राजेश भल्ला एडवोकेट हैं कंकड़खेड़ा मेरठ से।
1: जी बिल्कुल धन्यवाद आपको राजेश जी, मुझे और खुशी है कि
0: जी
1: एडवोकेट से लेकर के टीचर सभी सभी, सभी। वर्ग के लोग हमारा इस संदेश को सुन रहे हैं।
0: बिल्कुल सर, अपने कर्म और मजबूत इरादों के लिए पहचाने गए नक्सल उन्मूलन हेतु कृत संकल्प राष्ट्र प्रेमी को सैल्यूट है। ललन मिश्र रांची झारखंड से सर ये मैसेज कर रहे हैं आपको।
1: जी बिल्कुल, रांची मेरी जन्मभूमि कर्मभूमि रही है, तो यहां से ये मैसेज आया।
0: बिल्कुल, आपके अदम्य साहस और त्याग के कारण ही हम अपने घरों में सुरक्षित चैन की नींद सो पाते हैं। आप हमारे असली नायक हैं। जय हिंद जय भारत। यह है नेहा मिश्रा सर।
1: मुझे खुशी है कि समाज के सभी लोग फौज के कार्यों का, फौज की जो भी ड्यूटीज होती हैं उसका इतना सम्मान कर रहे हैं।
0: और ये है सर, जय हिंद सर, प्लीज एक कविता भारत माँ के नाम कहिए। रोहित मेहर हैं ये विजयपुर बारगढ़ उड़ीसा से।
1: जी रोहित जी धन्यवाद, मैं कविता सुनाऊंगा आपको अंत में।
0: जी बिल्कुल बिल्कुल, हम जरूर सुनना चाहेंगे सर। हम लोगों का शिवम सर के साथ काजरा बिहार में कार्य करने का अनुभव बहुत उम्दा रहा। शिवम सर का पुलिस को जनता से करीब लाने का बहुत बड़ा योगदान रहा है काजरा लखीसराय बिहार में। सर ये भी आपके कोई साथी लगते हैं, सौम्य झा इनका नाम आ रहा है।
1: जी बिल्कुल, ये मेरे साथ के ही हैं और हमारा उद्देश्य यही होता था कि जनता और पुलिस के बीच, फोर्स के बीच की जो खाई है उसको, उस खाई को पाटना
0: है,
1: उद्देश्य था।
0: बिल्कुल करीब लाना है। जय हिंद सर, मैं आपको सुन रही हूँ, आपकी बातें और आपकी आपके जज्बे को सलाम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ हमारे देश के नौजवान प्रभावित होकर देश सेवा के लिए आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद, मैं शबनम हूँ बी के दत्त कॉलोनी नई दिल्ली से। गैलेंट्री अवार्ड के लिए बहुत बहुत बधाई दे रही है सर ये आपको।
1: धन्यवाद शबनम जी, जय हिंद।
0: और ये हैं शिवम जी, यू आर अ पर्सन ऑफ ग्रेट विल पावर एंड करेज, एट द सेम टाइम यू आर वेरी काइंड ह्यूमन, अ ट्रू इंस्पिरेशन फॉर आवर यंगर जनरेशन। मैसेज आया सर ये विश्वजीत बिहार से, प्राइड ऑफ नेशन प्राइड ऑफ बिहार शिवम कुमार।
1: धन्यवाद विश्वजीत जी हमारे कार्यों की सराहना करने के लिए।
0: जी और ये हैं सर, हेलो सर, ग्वालदाम में महिलाओं की ट्रेनिंग के लिए बहुत अच्छे से आपने काम किया है। ये हैं मृदुल झा।
1: जी धन्यवाद मृदुल जी आपको, ये मुझे उम्मीद है कि ये शायद हमारे यहाँ माउंटेनियरिंग कोर्स जो महिलाओं का चल
0: जी
1: रहा
0: जी
1: है,
0: जी उसकी ये उसकी जरूर जरूर पार्टिसिपेंट रही होंगी। मैं नरपत सिंह, उप कमांडेंट सशस्त्र सीमा बल अंतागढ़ कांकेर छत्तीसगढ़, अपने 60 जवानों के साथ आपका कार्यक्रम सुन रहे हैं सर। ये FM रेनबो की पूरी टीम को हार्दिक आभार, कार्यक्रम अत्यंत प्रेरणादायक और आनंददायक है। हमारे साथ श्री दकेश्वर प्रसाद चंद्र सहायक कमांडेंट भी उपस्थित हैं, उनकी ओर से भी शिवम जी एवं पूरी टीम को विशेष रूप से जय हिंद।
1: नरपत सर 4 बार के गैलेंट्री विनर हैं, मैं okay. तो अपना गुरु मानता हूं और हमारे टीम के ये ग्राउंड कमांडर्स में से एक थे, तो okay. जो मैंने सीखा है इन्हीं सीनियर्स से सीखा है।
0: क्या तो, बात है सर, तो नरपत सिंह जी भी हम बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं अपने इस शो के माध्यम से, आपने हमें मैसेज भी किया सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये है शिवम सर, एन इंस्पिरेशन फॉर मेनी, फीलिंग वेरी प्राउड ऑफ हिम, ही ट्रूली डिजर्व्स ऑल द एक्लेड्स because of his team and their dedicated efforts, a lot of people today live terror-free. Proud of him. Ayush Dhadich hain ye, Nayi Dilli se.
1: Ji, bilkul, ye humare junior hain aur main umeed karta hoon ki jis pehel ki shuruaat hum logon ne ki hai, us pehel ko aage aane wale jitne bhi adhikari hain, usko makam tak le jayenge apni team ke saath.
0: Bilkul, aur Ayush bhi uska hissa rahenge.
1: Ji, bilkul.
0: Aur ye hain, Naxali operation ko successful banane ke liye, bahut bahut badhai Shivam ji, proud of Shalini Pathak likh rahi hain aapke liye.
1: Dhanyawad Shalini ji, aapka.
0: और यह है मैं सोता हूँ रातों को चैन

0: क्योंकि मैं जानता हूं मेरे लिए कोई जाग रहा है। शिव है ये मेरठ से।
1: ये हमारा फर्ज है, हमने राष्ट्र सेवा की कसम खाई है और आप ऐसे ही आप चैन से सोएं, यही हमारी कल्पना है।
0: और यह सर शिवम सर के साथ कचरा में काम करने का अवसर मिला, कई ऑपरेशन में उन्होंने अपनी टीम का नेतृत्व किया। शिवम सर का नक्सलियों के लिए डायलॉग था कि ये कि या तो तुम अपनी हरकत छोड़कर समर्पण कर दो या ये देश, वरना अंजाम तो जानते ही हो। टीम को सदा फ्रंट से लीड किया है, ये कह रहे हैं पंकज लखीसराय से। सर आपके साथी हैं भी?
1: जी पंकज हमारे साथ के थे और ये सभी जांबाज ये टीम मेंबर्स हैं मेरे, जिन्होंने जी गोलियों के सामने जिन्होंने सभी ऑपरेशंस को अंजाम दिया है।
0: जी जी जी, और आपका पूरा पूरा साथ दिया और अपने आप को बिल्कुल कदम से कदम मिला करके।
1: जी बिल्कुल, ये इनके बिना ये सारी उपलब्धि या ये सारा ऑपरेशन संभव ही नहीं था।
0: बिल्कुल। और एक और मैसेज है सर, जय हिंद सर, जब भी आपका प्रोग्राम सुनते हैं संदेश टू सोल्जर हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सर आपको बहुत बहुत बहुत जय हिंद। हम भी सर अपने बच्चों के को आर्मी में भेजना चाहते हैं। हम संजय बोल रहे हैं उत्तम नगर से नई दिल्ली, और आपका प्रोग्राम बहुत बहुत अच्छा है और हमारे आर्मी के सभी जवानों को जय हिंद कह रहे हैं ये।
1: ये धन्यवाद संजय जी, और एक बार फिर से जैसा इन्होंने कहा, मैं एफएम रेडियो को, एफएम रेनबो को धन्यवाद देना चाहता हूं
0: जी,
1: कि जो देश विदेश के सभी लोगों को फौज के द्वारा जो भी कार्य किए जा रहे हैं उससे अवगत करा रहा है और फौज के राष्ट्रप्रेम से, राष्ट्रप्रेम की झागना को, भावना को प्रज्वलित कर रहा है लोगों के अंदर।
0: बिल्कुल सर, आकाशवाणी रेनबो का ये हमारे आर्म्ड फोर्सेस को डेडिकेटेड शो है ये, और ये है संदेश टू सोल्जर्स। सर आपके साथ बातचीत का ये सिलसिला जारी रहेगा, जो समय हमारे पास बचा है वो बहुत तेजी के साथ गुजर रहा है आपके साथ बातचीत करते हुए इस जोश और जज्बे के साथ। हमारे साथ है श्री शिवम कुमार, असिस्टेंट कमांडेंट सशस्त्र सीमा बल। आप सुन रहे हैं संदेश टू सोल्जर्स शाहिद के साथ।

0: 102.6 देश का नंबर वन रेडियो आपके अपने रेनबो पर प्रोग्राम चल रहा है संदेश टू सोल्जर्स. आप हैं शायद के साथ और हमारे साथ हमारे आज के खास मेहमान श्री शिवम कुमार, सहायक कमांडेंट हैं सशस्त्र सीमा बल. सर, हम आपसे बहुत ही शानदार और जोश और जज्बे से भरी हुई बातें यहां पर कर रहे हैं और लगातार मैसेजेस का भी सिलसिला जारी है, मैं आपको जैसे भी बता रहा था. तो हम यहां पर अब आगे बढ़ेंगे सर और जानना चाहेंगे कि आपकी जो लीडरशिप स्किल्स हैं, आपका ऑपरेशनल एक्सेलेंस है जो आपने एंटी नक्सल ऑपरेशंस में दिखाया, उसके अलावा आपने कई खतरनाक वांटेड एक्सट्रीमिस्ट और क्रिमिनल्स को भी ढेर करा, उनको पकड़ने में पूरे पूरे सक्सेसफुल ऑपरेशन चलाए. उसके अलावा आपने इसके अलावा भी कई हाई रिस्क ऑपरेशंस अंजाम दिए हैं जिनके लिए आपको बहुत सारे अवार्ड से नवाजा गया है, जिसमें सबसे पहला प्रेस्टिजियस अवार्ड था पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री 2024 में. उसके अलावा आपको कई सारे मेडल्स, कमेंडेशंस और एप्रिसिएशन मिले हैं, सर्टिफिकेट्स मिले हैं डायरेक्टर जनरल SSB से, इंस्पेक्टर जनरल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से, सुपरिनटेंडेंट ऑफ पुलिस से और कमांडेंट से और अदर सीनियर ऑफिसर से भी. आपको आपकी परफॉर्मेंस के लिए, आपकी ऑपरेशनल अचीवमेंट्स के लिए, आपकी लीडरशिप के लिए, आपके प्रोफेशनलिज्म के लिए, पब्लिक स्पीकिंग और साथ ही एक चीज और भी जो आपके साथ जुड़ी हुई, इतनी सारी आपकी जो खूबियां हैं उनके साथ साथ कि आपकी जो लीडरशिप स्किल है, पब्लिक स्पीकिंग है, आप किस तरीके से मोटिवेट करते हैं यंगस्टर्स को, और साथ ही साथ फोर्स लेवल डिबेट कॉम्पिटिशंस भी आप कंडक्ट कर चुके हैं और बहुत ही शानदार तरीके से उसको परफॉर्म करते हैं, तो इसके बारे में कुछ बताइए.
1: जी शाजी जी, इसमें सबसे प्रथम यह है कि आप जिसके साथ भी कार्य करते हैं, तो हमारे के जितने भी टीम मेंबर्स होते थे, हमारे जितने भी साथी होते हैं, इरेस्पेक्टिव ऑफ रैंक,
0: जी
1: आपको ये समझना पड़ेगा कि आप फर्स्ट अमंग द इक्वल्स हैं, आप उनके साथ के ही हैं. जब आप उनकी परिस्थिति को समझेंगे, जब आप उनके शूज में आएंगे, तभी आप उनको मोटिवेट कर सकते हैं. तो एक कमांडर का सर्वप्रथम यह कार्य है कि वो अपने साथियों की परेशानियों को समझे, उनको बेस्ट से बेस्ट फैसिलिटीज मुहैया करवाए और उनको मोटिवेटेड रखे कि हर परिस्थिति में

0: दिन में, तभी जाकर के वो फौजी या वो जो भी आपका सबॉर्डिनेट है
1: जी,
0: वो आपसे आगे जब भी बाधा आएगी, जब भी गोली आएगी, तभी वो आपसे आगे कमांडर के आगे वो खड़ा होगा। जब उसको पता होगा कि उसका कमांडर उसके लिए हर क्षण खड़ा है, तभी वो आपके लिए खड़ा होगा,
1: तभी वो खड़ा होगा क्योंकि आप उसके लिए पहले से खड़े हैं। सर, हम आपके अवार्ड्स और जो कमेंडेशंस हैं और जो आपके मेडल्स हैं उनकी बात करते हैं। नवंबर 2025 में एंटी नक्सल ऑपरेशंस और शानदार लीडरशिप के लिए ऑनरेबल गवर्नर साहब और चीफ मिनिस्टर ऑफ झारखंड ने भी आपको अवार्ड से सम्मानित किया था, वो कौन सा अवार्ड था?
0: जी, मुझे एंटी नक्सल ऑपरेशंस के लिए

0: भी जो मेरी पोस्टिंग है
1: जी
0: वो CNJW स्कूल SSB ग्वालदम में उत्तराखंड में, जहां मैं बतौर ट्रेनर हूं, तो पिछले 2 वर्षों से मेरी सेवाओं को फैसिलिटेट करने के, उसको सम्मानित करने के लिए मुझे ये मौका मिला कि मेरे सीनियर्स के द्वारा मेरा नाम नामित किया गया। मेरे
1: जी
0: DIG सर थे श्री DN बॉम्बे सर, उन्होंने मेरा नाम नामित किया और मुझे झारखंड उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री द्वारा ये पुरस्कार दिया गया।
1: जी तो ये सर इतने सारे पुरस्कार हैं, इतने सारे आपके जो कमेंडेशंस हैं, मेडल्स हैं, अवार्ड्स हैं, इनको पा करके आप सर कैसा महसूस कर रहे थे और करते हैं?
0: सच पूछूं तो जब भी कोई कार्य करता है, अपने एंटी नक्सल ऑपरेशंस में मैं जा रहा था, तो सर्वप्रथम इसमें ऐसा नहीं था कि पुरस्कार के लिए ये चीज़ें की जाती हैं,
1: जी
0: क्योंकि
1: बिल्कुल
0: तब सिर्फ राष्ट्रहित और देशहित का जो जज्बा है वही आपको इन चीज़ों के लिए मोटिवेट करता है, लेकिन पुरस्कार उसका फल है। तो मैंने जितने भी ऑपरेशंस किए, मैंने अपने सीनियर से सीखा है कि आप फल के पीछे ना भागें, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है जहाँ पे कि जिंदगी और मौत जो है वो लाइन पे खड़ी होती है, तो इसके लिए पुरस्कार सिर्फ आपका मोटिवेटिंग फैक्टर नहीं हो सकता। ये टीम एफर्ट है, राष्ट्रहित की भावना है जिसके
1: जी
0: लिए मैं ये कर रहा था,
1: जी
0: और जब पुरस्कार से इसको नवाजा जाता है तो निश्चित रूप से ये अच्छा प्रतीत होता है।
1: बेशक, और हौसला और भी बढ़ता है और आपके जो भी साथी होते हैं उनको भी हौसला मिलता है। सर ये सब ऑपरेशंस में, इतनी सारी आपकी ट्रेनिंग में, इतने आपके कोर्सेज में, और फैशन टेक्नोलॉजी से SSB में आने में, परिवार का आपका किस तरीके से पूरा एक रोल रहा, सहयोग रहा, कैसी सपोर्ट रही, ये भी बताइए।
0: जी मैं बताना चाहूँगा कि मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मैं बड़े परिवार से आता हूँ जिसमें कि तीन, हम लोग चार भाई बहन हैं और मेरे माता पिता हैं, और मेरी शादी हो चुकी है, मेरी धर्म पत्नी भी हैं।
1: जी
0: तो मेरे पिताजी ने और मेरी माँ ने इसका खुले दिल से इसका सपोर्ट किया जब मैं फोर्स में
1: जी
0: आना चाहता था। हालांकि मेरी माँ डरती थी इस चीज़ से,
1: ओके
0: लेकिन मेरे पिताजी ने बहुत बार मुझे मोटिवेट किया, और मेरे जितने भी भाई बहन हैं और जितने मेरे रिलेटिव्स हैं, मेरे बड़े भाई, मेरी बड़ी बहन, मेरी दो बहनें बड़ी हैं, एक मेरे बड़े भाई साहब हैं,
1: अच्छा
0: उन्होंने मुझे मोटिवेट किया इस चीज़ के लिए लगातार। और अंत में जिस व्यक्ति का एक और बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है वो
1: जी
0: है मेरी पत्नी। उन्होंने लगातार, क्योंकि सबसे ज़्यादा उनको ही इस कठिनाई को झेलना पड़ता था जब मैं बाहर रहता था,
1: जी
0: 3-4 दिनों तक मेरी बात नहीं होती थी उनसे, तो
1: तो
0: वो
1: जाहिर है ये
0: बहुत
1: सपोर्ट तो सबसे इम्पोर्टेंट
0: सबसे
1: सपोर्ट।
0: हाँ ये ऐसा सपोर्ट था जिसकी कि मैं कल्पना नहीं की थी मैंने, तो मैं उसके लिए सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे ऐसा परिवार मिला है।
1: सर बिल्कुल समय हमारे पास खत्म हो चुका है और बातें बहुत सारी बची हुई हैं और मैसेजेस इतने आ चुके हैं मेरे पास कि अगर मैं पढ़ना शुरू करूं

0: तो है कि इसमें से मोस्टली जितने हैं उन्होंने मेरे साथ कार्य किया है, तो ये एक अच्छी बात है।
1: सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप हमारे शो में आए और अपना समय निकाला। श्री शिवम कुमार, सहायक कमांडेंट सशस्त्र सीमा बल, आज के संदेश सोलर के हमारे खास मेहमान। धन्यवाद बहुत बहुत सभी लिसनर्स का और हमारे आज के खास मेहमान का।
0: धन्यवाद सर।
1: जय हिंद।
0: जय हिंद, जय भारत।

मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5 बजे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम मेरा सपना उन्नत भारत। इस कार्यक्रम में अल्पसंख्यक कल्याण के लिए प्रधानमंत्री के 15 नए सूत्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत आज श्रोताओं बात करेंगे मलिन बस्तियों का सुधार और सरकारी सेवाओं में भर्ती विषय पर। पहले बात करते हैं मलिन बस्तियों का सुधार विषय पर। प्रधानमंत्री का 15 सूत्रीय कार्यक्रम समाज के सभी वर्गों विशेषकर अल्पसंख्यक समुदाय के सामाजिक आर्थिक और शैक्षिक विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लागू किया गया है। इस कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण पहलू है मलिन बस्तियों में रहने वाले लोगों के जीवन स्तर में सुधार करना। मलिन बस्तियां वे क्षेत्र हैं जहां रहने वाले लोगों को स्वच्छ पेयजल, शौचालय, पक्की सड़क, जल निकासी, बिजली, स्वास्थ्य सेवाएं और शिक्षा जैसी मूलभूत सुविधाएं पर्याप्त रूप से उपलब्ध नहीं होती। ऐसे क्षेत्रों के विकास पर विशेष ध्यान दिया जाता है। मलिन बस्तियों के समग्र विकास के लिए केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही प्रधानमंत्री आवास योजना और दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन का लाभ इन बस्तियों को तक पहुंचाना है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत सरकार, राज्य सरकारों और स्थानीय निकायों के सहयोग से मलिन बस्तियों में बुनियादी सुविधाओं का विस्तार करती है। इनमें स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था, पक्की सड़कें, नालियों का निर्माण, स्ट्रीट लाइट, सामुदायिक शौचालय, कचरा प्रबंधन तथा स्वच्छता संबंधी कार्य शामिल हैं। इसके साथ ही स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन, बच्चों के टीकाकरण, महिलाओं का पोषण तथा शिक्षा की बेहतर व्यवस्था पर भी विशेष ध्यान दिया जाता है। युवाओं के लिए कौशल विकास और स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने का भी प्रयास इसके अंतर्गत किया जाता है ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें। इस कार्यक्रम का उद्देश्य केवल सुविधाएं उपलब्ध कराना ही नहीं बल्कि मलिन बस्तियों में रहने वाले लोगों को सम्मानजनक जीवन, बेहतर स्वास्थ्य, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और रोजगार के अवसर प्रदान करना भी है। इससे सामाजिक समानता और समावेशी विकास को बढ़ावा मिलता है। इसके बाद आइए अब बात करते हैं सरकारी सेवाओं में भर्ती पर। प्रधानमंत्री का नया 15 सूत्रीय कार्यक्रम एक व्यापक सरकारी पहल है जिसका मुख्य उद्देश्य केंद्र द्वारा अधिसूचित 6 अल्पसंख्यक समुदायों यानी मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, पारसी और जैन के वंचित वर्गों को समान अवसर प्रदान करना है। इसके तहत सरकारी नौकरियों और सार्वजनिक क्षेत्र में अल्पसंख्यकों के लिए उचित प्रतिनिधित्व और भर्ती सुनिश्चित करने पर विशेष बल दिया जाता है। इस कार्यक्रम का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि केंद्रीय और राज्य सरकारों को नौकरियों के साथ साथ सार्वजनिक उपक्रमों में अल्पसंख्यक समुदायों के योग्य उम्मीदवारों को रोजगार में उचित और समान भागीदारी मिले। भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता और उचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय और राज्य स्तर पर चयन समितियों में अल्पसंख्यक समुदायों के प्रतिनिधियों को शामिल करने का प्रावधान है। युवाओं को सरकारी और निजी नौकरियों के लिए तैयार करने हेतु प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जैसी योजनाओं के जरिए तकनीकी और व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम के माध्यम से रियायती दरों पर ऋण प्रदान किए जाते हैं। इस कार्यक्रम की निगरानी अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा राज्य सरकारों के सहयोग से नोडल रूप में की जाती है। अन्य मंत्रालयों की कई सामान्य

10:30 पर। गीत संध्या कार्यक्रम 8 बजे और एक ही फिल्म से कार्यक्रम 8:30 पर। सुगम संगीत कार्यक्रम में शाम 7:32 पर सुनेगा शान ए आलम और साथियों की गायी कव्वाली। छाया गीत शाम 6:55 पर। विविधा कार्यक्रम में शाम 6:45 पर सुनेगा रविंद्र त्यागी से वार्ता, विषय होगा शांति और विकास, एक सिक्के के दो पहलू। कृषि जगत कार्यक्रम में शाम 6:05 पर सुनेगा कार्यक्रम पकडंडी। अब से कुछ ही देर में यानी 5:15 पर युववाणी में आज क्रम होगा बूझो तो जाने कुछ खास है आज। नॉन फिल्मी चार्ट बस्टर गुफ्तगु बस यूं ही और आनंद लीजिएगा फिल्म संगीत का। ये थे हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के शेष कार्यक्रम।

लीजिए अब सुनिए कल के कार्यक्रमों के विषय में जानकारी। रात्रि 9:30 पर सुनिएगा सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो नजीबाबाद। रात के हम सफर कार्यक्रम आप सुनेंगे कल रात्रि 10:30 पर। गीत संध्या कल रात्रि 8:00 और एक ही फिल्म से कार्यक्रम 8:30 पर। सुगम संगीत कार्यक्रम में शाम 7:32 पर सुनेगा विविध कलाकारों की गाई नात। कानूनी सलाह के अंतर्गत कल शाम 6:45 पर आप सुनेंगे एडवोकेट सत्यवीर त्यागी से आलोक कुमार की बातचीत। विषय होगा रैगिंग और उससे जुड़े कानून। छाया गीत आप सुनेंगे कल शाम 7:00। कृषि जगत कार्यक्रम में कल शाम 6:05 पर सुनेगा किसान भाइयों की खेती एवं पशुपालन संबंधी समस्याओं के पत्रों के उत्तर पर आधारित कार्यक्रम चिट्ठी पत्री। युवाणी में कल शाम 5:15 पर क्रम होगा बूझो तो जाने कुछ खास है आज ये शाम गजलों के नाम यंग अचीवर्स लव स्टोरीज और साथ ही आप आनंद लेंगे फिल्म संगीत का। मेरा सपना उन्नत भारत क्रम में कल शाम 5:00 असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए योजनाओं के अंतर्गत जानकारी दी जाएगी। प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन पेंशन योजना और आम आदमी बीमा योजना पर। फिल्मी कव्वालियां आप सुनेंगे कल दोपहर 2:30 पर। लोकधारा कार्यक्रम में कल दोपहर 1:45 पर सुनेगा सीताराम चौहान के गाए जौनसारी लोकगीत। घर संसार कार्यक्रम में कल दोपहर 1:15 पर क्रम होगा माटी मारे देश की। मिड डे मेलेडी कार्यक्रम कल दोपहर 12:30 पर। शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम में कल दोपहर 12:15 पर सुनेगा दिनेश डंडरियाल से गायन आप प्रस्तुत करेंगे राग यमन। प्रायोजित कार्यक्रम हमारी बेड़ियां कल दोपहर 12:00 और प्रायोजित कार्यक्रम उमंग कल सुबह 11:30 पर। चित्रपट संगीत कल सुबह 11:00। सजीव फोन इन कार्यक्रम जागरूक श्रोता आप सुनेंगे कल सुबह 10:30 पर। पत्र और व्हाट्सएप मैसेजेस पर आधारित फिल्मी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम गीत तुम्हारे कल सुबह 10:00 आप सुनेंगे। लोक संगीत का कार्यक्रम धरती गाती है सुनिएगा कल सुबह 9:25 पर। इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे आर्यवीर सिंह की गाई रागिनी। गोल्डन हिट्स कार्यक्रम कल सुबह 8:45 पर और कल सुबह 7:31 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सूरज के साथ साथ। ये थे हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज और कल के कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5:15 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम युववाणी।

0: नमस्कार नमस्कार नमस्कार,
1: स्वागत करते हैं आपका आपके अपने फेवरेट प्रोग्राम युवाणी में, और मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी दोस्त उज्मा,
0: और उज्मा के साथ स्टूडियो में प्रेजेंट हूं मैं वाणी।

0: कौशिक, आपकी शाम को और नायाब बनाने एक बार फिर आ गई हूँ।
1: अच्छे वानी, आज का मौसम कितना खूबसूरत हो रहा है ना।
0: हाँ उज्मा, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। ऐसा मौसम में तो बस अच्छा सा म्यूजिक हो, चाय और पकौड़े हो तो मजा ही आ जाए।
1: वानी देखो, म्यूजिक का इंतजाम तो हमने कर ही लिया है, तो अब हमारे दोस्तों को पता भी है, वो समझ भी गए ही होंगे कि आज है थर्सडे।
0: और थर्सडे के दिन हम अपने पिटारे में बहुत सारे सेगमेंट लेकर आते हैं। उन्हीं में से एक बहुत ही प्यारा सेगमेंट है नॉन फिल्मी चार्ट बस्टर, जिसमें हम अपने लिसनर्स को सुनवाते हैं बहुत सारे स्पेशल एल्बम सॉन्ग्स।
1: तो चलो वानी, इसी के साथ अब चलते हैं हमारे सबसे पुश्तैनी सेगमेंट यानी कि बूझो तो जाने की ओर।
0: जी हाँ, जिसके अंतर्गत हम अपने लिसनर्स से करते हैं एक सवाल, और आज का हमारा सवाल है, विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है?
1: और
0: सवाल एक बार फिर सुन लीजिए, विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है?
1: बिल्कुल, आपको वाकई यही बताना है कि विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है। तो दोस्तों, सवाल का सही जवाब अब आपको देना है, और उसको देने के लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना होगा, जाना होगा हमारे एवे पेज के कमेंट सेक्शन में और लिख देना होगा अपना सही जवाब।
0: और दोस्तों, अब चलते हैं नॉन फिल्मी चार्ट बस्टर के पहले गाने की ओर। तो चलिए हमारे साथ एंजॉय कीजिए हमारा पहला म्यूजिकल ब्रेक।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: कम ब्याज पे लोन चाहिए, वो भी ऐप से।
4: अनजान ऐप से बचें।
5: आरबीआई कहता है,
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: प्रोग्राम में एक बार फिर आपका स्वागत है। तो चलो चलते हैं उज्मा, हमारे सबसे इंटरेस्टिंग सेगमेंट यानी कि कुछ खास है आज की ओर।
7: और वानी, आज का हमारा टॉपिक है ऑफलाइन हो जाओ, जिंदगी ऑनलाइन हो जाएगी। और इस बात को समझने की जरूरत है हमारे जेंजी को, है ना?
6: हाँ उज्मा, ये बात तो तुमने एकदम सही बोली। और दोस्तों, आप लोग भी इस बात से सहमत होंगे कि 24 घंटे फोन से कनेक्ट रहने के चक्कर में असल जिंदगी से हम कितने दूर होते जा रहे हैं।
7: और सच्चाई तो वाणी ये है कि जब इंटरनेट बंद करते हैं तभी जाकर रियलिटी का जो स्विच ऑन है ना, तब होता है वो।
6: और आजकल तो लोग सुबह सूरज देखने से पहले फोन की स्क्रीन देखते हैं और घंटों घंटों वहीं वेस्ट कर देते हैं।
7: बिल्कुल। और वानी, लोग आजकल फ्राइडे नाइट को ऐसे फोन यूज करते हैं भाई कि अगर आज नहीं किया ना तो कभी नहीं कर पाएंगे। और सैटरडे संडे दोनों मॉर्निंग वेस्ट कर देते हैं।
6: और तो और, सारा दिन स्क्रोल करते करते अपना फोकस कम कर रहे हैं, आईसाइट वीक कर रहे हैं और कानों में ईयरफोन्स लगा लगा कर कान भी खराब कर रहे हैं।
7: लेकिन वानी, इससे बाहर कैसे आया जाए? ये एक लत जैसी है।
6: हाँ उज्मा, तुमने एकदम सही कहा, लत लगनी आसान है, छोड़नी उतनी ही मुश्किल। धीरे धीरे सब हो जाएगा, अपने आप को थोड़ा नेचर से कनेक्ट कीजिए, फोन से शायद आप टूटने लगेंगे।
7: बिल्कुल। और अपने फोन को कंट्रोल करने के लिए इंस्टा स्नैप जैसी ऐप पर जो टाइमर का फीचर है ना, उसका यूज करना बहुत जरूरी है।
6: फिर देखिए, ऑफलाइन होते ही कैसे जिंदगी ऑनलाइन हो जाएगी।
7: बिल्कुल सही कहा वानी तुमने। दोस्तों, आप भी अपनी लाइफ में कुछ ऐसे रूल ऐड करके स्क्रीन से अपनी दूरी बनाइए, जिंदगी से ज्यादा कनेक्ट तभी होंगे आप।
6: और कुछ खास है आज में बस इतना ही। अब चलते हैं नॉन फिल्मी चार्ट बस्टर के दूसरे नगमे की ओर।

0: नए जमाने की नई तस्वीर। अब छत पर लगे टीवी एंटेना को कहो गुड बाय सदा के लिए। समय के साथ बदलें, आगे बढ़ें, ले आएं आज ही दूरदर्शन का डीडी फ्री डिश। इसमें है आपके पसंदीदा 100 से ज्यादा टीवी चैनल्स, इसके अलावा 51 एजुकेशनल यानी पढ़ाई लिखाई वाले चैनल्स और 48 रेडियो चैनल्स। और तो और, सेट टॉप बॉक्स लगवाने के बाद कोई खर्चा नहीं, बिल्कुल नहीं। डिजिटल क्रांति की ओर एक कदम और आपका डीडी फ्री डिश।
1: उज्मा, जैसे तुम और मैं, हम दोनों जानते हैं कि हमारे प्रोग्राम में हम अपने यूथ से कितना कनेक्ट करते हैं।
2: वानी, ये बात तो सिर्फ हम दोनों ही नहीं, हमारे दोस्त भी जानते हैं।
1: जी हाँ, हम बहुत सारे

0: थी हमारे साथ जुड़ी जिनका नाम।
1: वानी वानी जरा थोड़ा सब्र करो भाई, मैं भी एक्साइटेड हूँ बताने के लिए, मुझे भी बताने दो।
0: चलो चलो बताओ।
1: दोस्तों हमारे सेगमेंट गुफ्तगू बस यूं ही में आज हमारे साथ एक हमारी नई साथी जुड़ी हैं जिनका नाम है निदा परवीन,
2: जिनसे बातचीत की थी हमारी ही साथ की एक बहुत ही काबिल प्रेजेंटर अक्षय त्यागी ने।
1: तो चलिए सुनते हैं आखिर इन दोनों की क्या बातें हुई, हम भी तो सुने।
3: हेलो दोस्तों, विश अ वेरी वेरी गुड इवनिंग। तो आज आप सभी के साथ हूँ मैं, आपकी अपनी दोस्त अक्षय त्यागी। और जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि मैं आई हूँ आप लोगों के लिए लेकर के एक ऐसा सेगमेंट जिसमें हम करते हैं अपने युवा साथियों से थोड़ी सी गुफ्तगू। और इसी के अंतर्गत आई है मेरे साथ एक और युवा साथी, लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं उनसे उनका नाम। आपका नाम?
4: निदा।
3: तो निदा, आप क्या हमारे साथ जुड़ने में एक्साइटेड हैं या नहीं?
4: Of course, I am very excited.
3: Okay, तो निदा, आपने सबसे पहले तो मैं आपसे यही पूछूंगी कि अपने बारे में बताइए।
4: I have done my graduation. मैं ग्रेजुएशन कर चुकी हूँ और आगे प्लान है मेरा बीएड करने का।
3: बीएड यानी एज अ टीचर आप अपना प्रोफेशन रखना चाहती हैं?
4: जी।
3: तो आप बीएड ही क्यों करना चाहती हैं, कुछ और भी आप कर सकती हैं?
4: या श्योर, मैं कर सकती हूँ कुछ और ही, बट बीएड एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें हम अपनी फैमिली से दूर नहीं हो सकते, हम अपनी फैमिली के पास रहकर अच्छी अपॉर्चुनिटीज ले सकते हैं, हम टीचिंग में अपना करियर बना सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं, साथ में अपनी फैमिली की केयर भी कर सकते हैं।
3: ये तो सोच आपकी बहुत अच्छी है कि आप अपने फैमिली के साथ रह करके ही अपनी स्टडी कंप्लीट कर सकती हैं और बाकी सारे कोर्सेज करने के लिए आपको बाहर जाना पड़ेगा। तो जैसे बीएड आप करना चाहते हैं, तो बीएड करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा?
4: सबसे पहले उसके लिए एंट्रेंस एग्जाम दिया जाता है एक, जो मैं दे चुकी हूँ। अब आगे मेरा एडमिशन का प्रोसीजर स्टार्ट होएगा, अब आगे देखते हैं फैमिली की राय कैसे रहेगी कि मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, थोड़ा और डिस्कशन फिर आगे देखते हैं।
3: तो अच्छी बात है और आपके लिए मेरी दुआएं हैं कि आप आगे जाकर एक अच्छी शिक्षिका बन सकें। तो निदा, इसके अलावा आपने जो ग्रेजुएशन किया है वो कौन से स्ट्रीम में किया है?
4: बीएससी।
3: आपने जो अपना ग्रेजुएशन किया है उसमें आपने बीएससी की है?
4: जी, बीएससी की।
3: तो किस सब्जेक्ट में?
4: बीएससी में केमिस्ट्री एंड जूलॉजी।
3: तो केमिस्ट्री और जूलॉजी आपके पास रहा है, तो आप केमिस्ट्री लेकर के आगे जाकर के केमिस्ट भी बन सकती थी?
4: या मेरा प्लान है कि मैं बीएड के बाद एमएससी करूँ इन फ्यूचर, अगर मैं करती हूँ बीएड देन फिर एमएससी, बट अभी मैं चाह रही हूँ पहले बीएड कंप्लीट हो जाए देन उसके बाद एमएससी और फिर उसके बाद बाहर का प्लान, हो सकता है इतने बन जाए।
3: अच्छी बात है और काफी अच्छी सोच आपकी है। तो इसके अलावा आपकी क्या क्या हॉबीज हैं, उसके बारे में कुछ बताएंगी?
4: सबसे ज्यादा हॉबी तो मेरे अंदर बातें करने की है, मुझे बातें करना बहुत अच्छा लगता है।
3: ये तो अच्छी बात है कि आप बातें करती हैं, बातें करना एक स्किल है और अगर हमारे अंदर बातें करने की स्किल है तो जाहिर सी बात है कि हम सामने वाले को इम्प्रेस कर सकते हैं इजीली।
4: बातें करने के साथ साथ मुझे लोगों की केयर करना बहुत पसंद है, इसलिए मैं पूजा हॉस्पिटल नजीबाबाद में इंटर्नशिप भी कर रही हूँ, वहाँ पे मुझे बहुत कुछ सीखने को भी मिल रहा है, अच्छा लग रहा है, सबसे कन्वर्सेशन, सब कुछ अच्छा बुरा सब कुछ सीखने को मिलता है वहाँ पे।
3: ये तो और भी अच्छी बात है कि आप इंटर्नशिप पर हैं अभी और केयर करना आपको सबकी बहुत पसंद है। तो और इसके अलावा क्या क्या हॉबीज हैं?
4: और मुझे घूमना पसंद है, ट्रैवलिंग करना भी काफी पसंद है, स्पेशली माउंटेन्स पर।
3: ओके, तो अभी फिलहाल गर्मियों की छुट्टियों में कहीं गई हैं आपने घूमने?
4: जी, मसूरी गए थे हम थोड़े वक्त पहले, बट बहुत ज्यादा ट्रैफिक था तो अब ज्यादा इंजॉय वगैरह जैसे हम चाहते थे, जैसे घूम कर आना चाहते थे वैसे नहीं घूम कर आ पाए, लेकिन फिर भी बहुत मजा आया। सबसे ज्यादा तो अच्छा लगता है वहाँ का नजारा, सबसे ज्यादा हाँ, खूबसूरत
3: तो है कि मसूरी एक मतलब खूबसूरती से भरा हुआ है शहर।
4: जी।
3: तो और इसके अलावा कुछ और पसंद?
4: और उसके अलावा मुझे सबसे ज्यादा पसंद मेहंदी लगाना बहुत पसंद है, मैं मेहंदी लगाती हूँ, बहुत अच्छी लगती है मुझे मेहंदी लगाना।
3: ओके।
4: जी, मेहंदी लगाना, केयर करना, बातें करना और सबसे ज्यादा बस यही है कि मुझे केयर करना बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। Okay. चाहती हूँ बस किसी का मुझसे दिल ना दुखे।
3: अच्छी बात है, नहीं दुखेगा। और इसके अलावा जैसे किसी किसी का शौक होता है कविता लिखने का, या किसी की कविताएं उन्हें बहुत पसंद आती हैं तो वो जाहिर सी बात है कभी कभी गुनगुनाते भी रहते हैं, या किसी की शायरी हो या कुछ इस तरह का कोई शौक आपके अंदर?
4: जी, मैंने यहाँ पर एक सीनियर थे महेंद्र सिंह अश्क जी, उनकी कुछ शायरियाँ पढ़ी है, पढ़ लेती हूँ, सुन भी लेती हूँ, अच्छी लगती है, जिसमें से मैं एक आपको सुनाना भी चाहती हूँ।
3: जी, अर्ज है।
4: देखिए, ये सैयद जब्ते गम नहीं

0: सही जब्ते गम नहीं, आंखों पर जब्र है, पलकों को सी कर आंसू को पी रहा हूं मैं, पलकों
1: वाह
0: को
1: वाह,
0: सी कर आंसुओं को पी रहा हूं मैं। जो मेरी जिंदगी थी वो तो तेरे साथ चली गई, जो मेरी जिंदगी थी वो तो तेरे साथ चली गई, ये किसकी जिंदगी है जो जी रहा हूं मैं।
1: वाह वाह वाह वाह वाह, ये तो बहुत ही अच्छी शायरी है. और महेंद्र इश्क जी हमारे इंटरनेशनल शायर रह चुके हैं, जो
0: जी
1: अब इस दुनिया में नहीं है.
0: जी
1: और उनकी शायरियां सुनकर ही लगता है कि बस हमारे जहन में एक अलग सा ही रूप आ जाता है.
0: जी
1: तो बहुत अच्छा लगा आपसे महेंद्र इश्क जी के बारे में, उनकी शायरी सुनकर अच्छा लगा. जैसे आपने बताया था कि आपने अभी ग्रेजुएशन में बीएससी कंप्लीट किया है,
0: जी
1: और बीएससी में आपके पास केमिस्ट्री और जूलॉजी रहा है. तो आपने बीएससी जो किया, ये सब्जेक्ट्स आपके खुद के चॉइस के थे या आपके पेरेंट्स के चॉइस के थे?
0: खुद की चॉइस के थे
1: अच्छा, आपकी खुद की चॉइस के
0: जी
1: थे. तो आप स्टार्टिंग से ही साइंस साइड्स में काफ़ी अच्छी रही होंगी.
0: जी
1: तो इसके अलावा आपके कोई ऐसे शिक्षक या ऐसा कोई टीचर जो आपको मोटिवेट करता हो, ऐसा कोई?
0: मोटिवेशन के लिए तो मैं अपनी मदर को ही कहूँगी। सबसे ज़्यादा मोटिवेशन मेरे लिए मेरी मदर है, मेरे पेरेंट्स है। वो कहते हैं कि जो करना है सोच समझ कर अच्छे से, जिस पे दिल मुतमईन हो जाए वो करना चाहिए। हमें आगे की सोचनी है, बट उस आगे से पहले तुम आज क्या चाहते हो हमें वो करना चाहिए।
1: बहुत अच्छा लगा ये जान करके, और आपके पेरेंट्स की थिंकिंग जान करके भी. और जहाँ तक आप अपने पेरेंट्स के बारे में बता रही हैं, तो उससे मुझे यही लगता है कि आगे जाके आपको बहुत अच्छा लक मिलने वाला है, कि आपके
0: इंशाल्लाह, और साथ
1: पेरेंट्स
0: में आपको भी मिले
1: थैंक यू, आपके पेरेंट्स आपके लिए काफ़ी कुछ कर रहे हैं, और उनकी
0: जी।
1: जो आपके वो आपको लेकर के थिंकिंग है वो बहुत अच्छी है. और जाहिर सी बात है,
0: थैंक यू
1: हमें वही करना चाहिए जो हमारा दिल चाहे.
0: जी,
1: तो बहुत अच्छा लगा निदा आपसे बात करके, बहुत बहुत धन्यवाद.
0: थैंक यू।
2: हम हंसाएंगे, आप मुस्कुराएंगे,
3: हो जाओगे आज सच कर लोट कोट,
2: क्योंकि यह है लाफ्टर का सॉलिड डोज।
4: और डोज में क्या है?
3: डोज में है मजा।
2: जी हाँ, मजा आ गया।
5: सुनो, इधर आना जरा।
6: अरे क्या हुआ, क्यों हर टाइम बिजली की तरह बरसती रहती हो?
5: इधर आना जरा तुम आज।
6: अरे क्या हुआ, क्यों बिजली की तरह गरज रही हो?
5: हाँ हाँ, इधर तो आओ।
6: आ गया भाई, बताओ क्या बात है।
5: ये बताओ, कल कहाँ थे तुम?
6: अरे भगवान, कोई तुम्हारी शरण छोड़ के कहीं जा सकता है क्या?
5: झूठे, कल तुम पड़ोसन के साथ पिक्चर नहीं देखने गए थे?
6: अरे तुम तो सब जानती हो ना।
5: क्या जानती हूँ मैं?
6: ज्यादा अनजान मत बनो,
5: दिमाग मत खराब करो।
6: अरे भाई, आजकल परिवार के साथ देखने लायक पिक्चर बनती कहाँ है?
2: जी हाँ, मजा आ गया।
7: तो दोस्तों, प्रोग्राम में वक्त हो चला है हमारे आज के एक और स्पेशल कार्यक्रम का। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको सैर कराने वाले हैं कार्यक्रम होनहार की, जो कि होली फैमिली कन्वेंट स्कूल में आयोजित हुआ है। तो आइए सुनते हैं इस प्रोग्राम की कवरेज को।
8: दोस्तों, आज हम आ गए हैं होली फैमिली कॉन्वेंट स्कूल नजीबाबाद में, जहां पर चल रहा है एक फंक्शन। जी हाँ, हम कह सकते हैं फेलिसिटेशन डे फंक्शन या फिर अचीवमेंट डे फंक्शन। तो चलिए, हम आपको सैर करवाते हैं इस फंक्शन की।
9: लिटरेरी मिनिस्टर्स, वंश चौहान, कॉन्फिडेंट एंड वेल डिसिप्लिन, सर्विस माइंडेड एंड लविंग, और शिफा, अ पर्सन ऑफ ओपन माइंडेडनेस, क्रिएटिविटी, क्रेडिबिलिटी एंड ट्रस्ट। आर्ट एंड क्राफ्ट क्लब मिनिस्टर्स, अथर, पैशनेट फॉर द आर्ट टू मेक एवरी सेलिब्रेशन मेमोरेबल, मैत्री, क्रिएटिव, टैलेंटेड एंड एंथुसियास्टिक पर्सन। इको क्लब मिनिस्टर्स, नमन, सिंसियर, पंचुअल, रेस्पॉन्सिबल एंड अ नेचर लवर। इफ्रा अंसारी, अ पर्सन ऑफ हाई मॉरल वैल्यूज एंड अ डेडिकेशन टू प्रोटेक्ट नेचर इज रिमार्केबल। रेड हाउस बॉयज कैप्टन सक्षम पवार, डिस्चार्जेस हिज ड्यूटीज विद द अटमोस्ट सिंसियरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। गर्ल्स कैप्टन जैनब नूर, अ पर्सन ऑफ अकाउंटेबिलिटी एंड लॉयल्टी एंड अबव ऑल एन अमेबल पर्सन। ब्लू हाउस बॉयज कैप्टन आरुष आर्य, अ पर्सन विद ग्रेट वैल्यूज sense of responsibility. Girls Captain Mubashira, very simple and sincere, good and responsible at her work. Yellow House Boys Captain Mohammad Zed. Girls Captain Gauri Chauhan, smart, vibrant and well-disciplined girl. Now I request the head boy and the head girl of the school to take the oath along with the cabinet members. The chief is Mr.

0: for Reverend Mr. Principal will administer the oath for the student.
1: Oath from Cabinet. Aye. Swear to you, God Almighty.
2: Swear to you, God Almighty.
1: Through our administration body, I will,
2: that I will
1: perform my duties, with
2: sincerity of heart,
1: honest will,
2: and
1: truthfulness,
2: as the
1: of the Holy Family,
2: Convent School,
1: Amanullahpur,
2: according to the rules
1: and
2: regulations
1: of this institution.
0: Thank you, Rino sir. Now you may proceed to your respective seats, and I request Mr. Principal to remain on the stage.
3: तो दोस्तों आपको बता दें इन्वेस्टिचर सेरेमनी हो चुकी है और उसमें इलेक्ट हुए हैं हमारे पास हेड बॉय हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं उनसे उनका नाम। आपका नाम?
4: निशांत राठे।
3: निशांत, कैसा लग रहा है आपको हेड बॉय बनकर?
4: बहुत अच्छा लग रहा है।
3: तो आप हमें बताइए कि आपके फ्यूचर गोल्स क्या है, आपकी क्या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज है, आपकी ये जो पोजिशन आपको मिली है इसके प्रति?
4: पहले तो मैम, जो गाइडलाइंस हमें मैनेजमेंट के थ्रू प्रोवाइड होंगी वो हम अपने जूनियर्स को देंगे और उन्हें स्ट्रिक्टली बाउंड नहीं करेंगे, उनसे फ्रेंकली होके उन्हें मोटिवेट करेंगे और उनकी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। ये हमारा
3: बहुत खूब एक हेड बॉय की यही रेस्पॉन्सिबिलिटीज होती है कि वो अपने जो जूनियर्स हैं उनको डराए ना और अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को बखूबी निभाए। थैंक यू सो मच। दोस्तों अब चलते हैं हेड गर्ल के पास। सबसे पहले जान लेते हैं उनसे उनका नाम। आपका नाम?
5: दक्षिता।
3: कैसा लग रहा है दक्षिता हेड गर्ल बनकर?
5: बहुत अच्छा लग रहा है, I'm feeling very proud.
3: वो दक्षिता होता है ना कि हम पहले से माइंड सेटअप करे हैं कि हेड गर्ल तो मैं ही बनूंगी, ऐसा कुछ था या कंपटीशन था आपके इस पर्टिकुलर?
5: वैसे तो बहुत ज्यादा कंपटीशन था, बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स भी थे, लेकिन फॉर्चुनेटली मैं बन गई और आई एम वेरी फॉर्चुनेट इनफ टू बी बिकम हेड गर्ल। I'm very happy also.
3: Congratulations, और हमें उम्मीद है कि आप अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज को बखूबी निभाएंगी। तो दोस्तों अब चलते हैं स्पोर्ट्स मिनिस्टर के पास, जो कि देखने में बहुत प्राउड भी फील कर रहे हैं अपने ऊपर और लग रहा है कॉन्फिडेंट भी है बहुत ज्यादा। तो सबसे पहले उनसे जानते हैं उनसे उनका नाम।
6: Myself, देव चौधरी।
3: देव, कैसा लग रहा है स्पोर्ट्स मिनिस्टर बनकर?
6: I am feeling so proud.
3: और आगे के क्या प्लान्स है, किस तरह अपने इस पोस्ट को मेंटेन करेंगे आप?
6: मैम, मेरे परफॉर्मेंस को मैं बच्चों की, जो हमारे स्कूल की बच्चे हैं जो स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट रखते हैं, मैं उनकी बिल्ड करना चाहता हूँ और भी कैरेक्टरिस्टिक जो स्पोर्ट्स में हेल्प करे उनको, और मैं अपने स्कूल को स्पोर्ट्स में बहुत आगे लेके जाना चाहता हूँ। जो बच्चे इंटरेस्ट रखते हैं स्पोर्ट्स में उनको ट्रेनिंग देना, उनकी परफॉर्मेंस चेक करना और उनको कॉम्पिटिशन में वर्क कराना, या और उनसे मैं होप करूंगा कि इस बार मैं अपने स्कूल के बच्चों को विनिंग प्राइज के लिए टीम लेके जाऊँ।
3: दोस्तों देखिएगा, देव बहुत एंथुसियास्टिक है और वो पूरी एनर्जी के साथ में उम्मीद करते हैं कि वो अपने स्कूल को स्पोर्ट्स मीट में ट्रॉफी हासिल कराए।
7: एवरी ग्रेट जर्नी बिगिंस विद अ स्मॉल स्टेप। आवर अचीवर्स हैव शोन रिमार्केबल प्रोग्रेस एंड डेडिकेशन इन देयर एकेडमिक जर्नी। आई रिक्वेस्ट देम टू मूव अहेड एज देयर नेम्स आर कॉल्ड आउट टू ग्रैब देयर अवार्ड्स। आई काइंडली रिक्वेस्ट रेवरेंट सिस्टर मरिया, आवर वाइस प्रिंसिपल, एंड रेवरेंट फादर शिबु, द गेस्ट ऑफ ऑनर, टू काइंडली कम forward and award the proficiency. Christina Chaudhary with 91.4%. Maria Mansari with 90.8%. Dakshita with 88.4%. Sumaya with 87%. Saksham Pawar with 86.2%. Nishant Rathi with 86.8%. Arpita Chaudhary with 86.8%.

0: सर का नाम, आपका नाम?
1: मेरा नाम मोहम्मद रियान अंसारी है।
0: रियान कैसा लग रहा है स्कूल टॉपर बनकर?
1: मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, आई एम वेरी हैप्पी।
0: तो रियान आपके फ्यूचर के क्या प्लान्स हैं? आपने कौन सी स्ट्रीम ली है और आगे क्या बनना चाहते हैं आप?
1: आई हैव चूजन साइंस स्ट्रीम विद पीसीबी एंड आई वांट टू बिकम अ कार्डियोलॉजिस्ट।
0: देखिए दोस्तों, रियान की बातों से साफ जाहिर है कि रियान क्या बनना चाहते हैं और वो पूरे कॉन्फिडेंट हैं और उन्हें पता है कि उन्हें क्या हासिल करना है। हमें उम्मीद है कि वो बिल्कुल कामयाब होंगे, अपने मुकाम पर पहुंचेंगे। हम आपको मिलवाते हैं क्लास 10th आईसीएसई बोर्ड की टॉपर जिनके आए हैं 91.4% मार्क्स। सबसे पहले जान लेते हैं उनसे उनका नाम। आपका नाम?
2: क्रिस्टीना चौधरी।
0: क्रिस्टीना कैसी हैं आप, पहले तो ये बताइए।
2: मैं बहुत अच्छी हूँ।
0: और कैसा लग रहा है 91.4 मार्क्स हासिल करके?
2: बहुत अच्छा लग रहा है, अ प्राउड मोमेंट फॉर मी एज आई एम हियर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू एक्सप्रेसिंग माय व्यूज।
0: और आगे क्या बनने का प्लान है आपका, क्या हासिल करना चाहती हैं आप?
2: मैं एक अच्छी डॉक्टर बनना चाहती हूँ जो अपनी सोसाइटी को सर्व करे।
0: हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं और हम चाहते हैं आप जल्दी से एक अच्छी सी डॉक्टर बन जाए।
2: थैंक यू।
0: तो दोस्तों, अब हम आपको मिलवाते हैं क्रिस्टीना की मदर से जो कि क्रिस्टीना के साथ यहाँ पर आई हैं और अपनी बेटी को उन्होंने अवार्ड लेते हुए देखा, तो उन्हें कैसा लगा?
3: बहुत खुशी हुई।
0: और ये आपका भी ख्वाब है कि क्रिस्टीना डॉक्टर बने?
3: बहुत खुशी होगी डॉक्टर बनेगी तो।
0: आपकी दुआ जरूर कबूल होगी। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, आपको बता दें कि हमारे बीच गेस्ट ऑफ ऑनर मौजूद हैं फादर शिपू। तो सबसे पहले उनसे जानते हैं कि इस पूरे प्रोग्राम में उन्होंने क्या एक्सपीरियंस किया।
4: देखो, ये बच्चों के लिए, हर एक बच्चों चाहते हैं कि जिंदगी में कुछ मैं हासिल करूं। ये बच्चे जो आज ओथ सेरेमनी किया या अन्य पार्टिसिपेट किया, ये हमेशा के लिए उनके लिए यादगार रहेगा। ये जीवन में एक अचीवमेंट है। ये देख के हमें भी पुराना हमारे बचपन का याद आ रहा था।
0: थैंक यू सो मच फादर। तो दोस्तों, अब हम आपको मिलवाते हैं हमारे अगले गेस्ट ऑफ ऑनर से जो कि फादर पायस हैं और वो इस वक्त भी मैनेजर हैं सेंट मेरी हॉस्पिटल नजीबाबाद में। तो सबसे पहले उनसे जानते हैं कि उन्हें आज के प्रोग्राम को विटनेस कर कैसा लग रहा है।
5: बहुत अच्छा लगा आज होली फैमिली स्कूल में जो बच्चों को ऑनर करना और उनको जो लीडरशिप को मोटिवेट करना, ये बहुत अच्छा रहा और अरेंजमेंट्स वाज फैंटास्टिक इन फैक्ट।
0: तो फादर, जो आज स्टूडेंट मेरे 2 years स्टूडेंट्स से और कैबिनेट मिनिस्टर्स जो चुने गए हैं, उनके लिए एक शब्द आप क्या कहना चाहेंगे?
5: आई ऑलवेज टेल लीडरशिप इज इट्स अ सर्विस। जो हर एक इंसान को दूसरों के लिए सेवा का एक महत्व जो देते हैं, जैसे हम बताते हैं कि हमारे जो प्रभु मसीह, जो सबसे बड़ा लीडर जो हम मानते हैं, जो प्रभु मसीह अपने शिष्यों के जो पाँव धोके जो उसने नमूना जो उदाहरण जो दिए, उसी तरह एवरी लीडर शुड बी अ सर्वेंट। दैट्स अ मैसेज आई वुड लाइक टू।
0: थैंक यू फादर, थैंक यू सो मच।
5: थैंक यू।
0: तो दोस्तों, हम आ गए हैं स्कूल के असिस्टेंट प्रिंसिपल के पास में। सबसे पहले उनसे जानते हैं कि जो पूरा प्रोग्राम उन्होंने होस्ट किया है, इस प्रोग्राम को होस्ट करने के पीछे उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा?
6: एक्चुअली आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी फॉर द सक्सेस ऑफ द प्रोग्राम। हियर व्हेनेवर वी कंडक्ट अ प्रोग्राम, इट्स नेवर अ वन मैन शो, सो वी डिवाइड द रिस्पांसिबिलिटीज and all the teachers cooperate, contribute their maximum, so works become easy. So this program also we have understood different teachers, sisters are included, and when it is divided then everything becomes so easy and successful. So I was comfortable, and only because of the weather we were a little bit tensed, but I think everything went on well. It was God's grace.
7: तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं प्रोग्राम में आगे और चलते हैं अपने सेगमेंट लव स्टोरी की ओर। और हमारी लव स्टोरी चल ही रही है तुमसे ही, जिसका आज एपिसोड है,
8: आज है 4th एपिसोड।
7: बिल्कुल। तो आइए आज हम सुनते हैं कि हमारे 4th एपिसोड में आखिर क्या होने वाला है।
9: हेलो दोस्तों, मैं अक्षी त्यागी आपके लिए लेकर आई हूँ अपनी डायरी से

अपने सामने है। वहाँ अनामिका बच्चों को संगीत सिखा रही होती है। तरुण अनामिका को देखता है और खुद को संभालता है, और जब उसे ये पता चलता है कि अनामिका उसे नहीं पहचानती, वो खुद को संभालने की पूरी कोशिश करता है और हाथ आगे बढ़ाता है। हे, मैं तरुण और आज से बच्चों को गिटार सिखाऊंगा और मैं अनामिका। ये सुनकर तरुण की आंखें भर आती हैं। नाम उसे याद था लेकिन उसके साथ जुड़े जिंदगी नहीं। अगले कुछ हफ्तों में दोनों साथ काम करने लगते हैं। अनामिका को तरुण के साथ एक अजीब सा अपनापन महसूस होता है और वो तरुण से कहती है, तरुण पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं आपको बहुत पहले से जानती हूँ, कोई नाता है आपसे मेरा। अनामिका, शायद कुछ रिश्ते याद नहीं दिल पहचानते हैं। एक दिन संडे को तरुण उसे उसी चाय की दुकान पर ले जाता है जहाँ वो पहली बार मिले थे। तरुण, मुझे ना बड़ा अजीब सा सुकून मिल रहा है, यहाँ आते ही मेरा मन शांत हो गया। चलो और जगह लेके चलता हूँ। और फिर दोनों उसी कॉलेज की छत पर जाते हैं और अनामिका अचानक रुक जाती है। उसे चक्कर से आने लगते हैं, धुंधले धुंधले दृश्य दिखाई देने लगते हैं। बारिश, एक लड़का, एक पारदर्शी फाइल और एक गिटार। वो अपना सर पकड़ लेती है। तरुण, मुझे कुछ याद आ रहा है, पता नहीं थोड़ा धुंधला धुंधला सा है मगर कुछ तो है जो मुझे याद आ रहा है। अनामिका, कोई बात नहीं, रिलैक्स, सब ठीक होगा। उसी शाम तरुण के पिता एनजीओ पहुंचते हैं। उनकी आंखों में पछतावा था और वो तरुण से कहते हैं, बेटा मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारी खुशी छीन ली। अगर उस दिन मैं तुम्हारी बात सुन लेता तो शायद तुम दोनों इतने साल अलग न रहते। तरुण पहली बार अपने पिता को गले लगा लेता है और कहता है, कोई बात नहीं पापा, देर से ही सही, कम से कम आपको ये रियलाइज तो हुआ और आप आगे आए। थैंक यू पापा, थैंक यू सो मच, और मुझे मेरी अनामिका भी वापस मिल गई है पापा। एनजीओ का एनुअल फंक्शन चल रहा होता है, पूरे हॉल में तालियों की गूंज हो रही होती है।

0: तरुण स्टेज पर आता है, हाथ में वही पुराना गिटार और वही पुरानी धुन बजाना शुरू करता है जो उसने कॉलेज में पहली बार अनामिका के लिए बजाई थी। अनामिका दर्शकों में बैठी थी। धुन सुनते ही उसकी आंखों के सामने एक एक करके सब लौटने लगता है। बारिश, पहली मुलाकात, कॉलेज, छत, वादा, आखिरी गले लगना और अस्पताल। और वो जोर से चीखती है, तरुण! पूरा हॉल उसकी ओर देखने लगता है। वो दौड़कर स्टेज पर आती है और रोते हुए तरुण के सामने खड़ी हो जाती है।
1: तरुण, तरुण, मुझे सब याद आ गया, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाना चाहती थी तरुण।
0: कोई बात नहीं अनामिका, कम से कम तुम्हें सब कुछ याद तो आ गया, और मुझे भी माफ कर दो, मैंने एक पल के लिए तुम्हें गलत समझा था, मुझे लगा कि तुम मुझे छोड़कर चली गई, तुम हमेशा के लिए छोड़कर चली गई मुझे, तुमने मुझे धोखा दिया, I'm sorry, I'm really really sorry अनामिका। और दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठता है और सभी अनामिका और तरुण के नारे लगाने लगते हैं।

दोस्तों, क्लाइमेक्स तो अभी बाकी है और वो क्लाइमेक्स जानने के लिए आपको आना होगा मेरी डायरी से एक खूबसूरत कहानी लव स्टोरी तुमसे ही के अंतिम पड़ाव की ओर, एपिसोड नंबर 5 की ओर, कल शाम 5:15 बजे।

0: हम हंसाएंगे, आप मुस्कुराएंगे,
1: हो जाओगे हंस-हंस कर लोटपोट,
0: क्योंकि यह है लाफ्टर का सॉलिड डोज।
2: और डोज में क्या है?
1: डोज में है मजा। जी हाँ, मजा आ गया।
3: हाँ भाई लड़के, क्या नाम है तुम्हारा?
4: अंकल मेरा नाम संजू है।
3: संजू, क्या करते हो?
4: अंकल अभी पढ़ाई पूरी हुई है, बस इंटर्नशिप कर रहा हूँ।
3: इंटर्नशिप कर रहे हो? अच्छा ये बताओ, तुम्हें मेरी बेटी पसंद तो है ना?
4: और क्या अंकल, बहुत पसंद है मुझे आपकी बेटी।
3: और फ्यूचर में क्या प्लान्स हैं तुम्हारे?
4: अंकल आप इतने डिटेल में क्यों जा रहे हैं?
3: देखो भाई, मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी अपनी पूरी जिंदगी एक मूर्ख इंसान के साथ गुजारे।
4: बस अंकल, इसीलिए तो मैं उसे यहाँ से ले जाना चाहता हूँ।
3: दे चप्पल, दे जरा मेरा, उठा चप्पल।
1: जी हाँ, मजा आ गया।
5: दोस्तों, की जैसा आप जानते हैं कि कार्यक्रम की शुरुआत में बूझो तो जाने के अंतर्गत हमने अपने लिसनर से किया था एक सवाल, और आज का हमारा सवाल था
2: कि मीठे विश्व की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है।
5: तो उसमें बताओ आप किन्होंने सही जवाब दिए हैं।
2: पहले जवाब तो दे दूं वानी, हमारा जो जवाब है दोस्तों, उसका सही जवाब है बेकाल झील। और जवाब देने वालों के नाम है दुर्गाराम साहू, नदीम बाकी, नंद कुमार ठाकुर, दिनेश वर्मा, सुदर्शन शाह, जॉन डी कैस्ट्रो, दिलदार, नानक खन्ना, और हमारे दोस्त हैं भगवत चौबे।
5: दोस्तों ये था हमारा आज का कार्यक्रम, हम उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। हमारा प्रोग्राम आपको कैसे लग रहे हैं आप हमें खत के जरिए भी बता सकते हैं। खत के लिए हमारा पता नोट कीजिए, कार्यक्रम युववाणी अनुभव द्वारा केंद्र निर्देशक आकाशवाणी नजीबाबाद, पिन कोड 246733। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9457078288। आप हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं अपडेटेड रहने के लिए, हमारा फेसबुक अकाउंट आकाशवाणी नजीबाबाद, हमारी इंस्टाग्राम आईडी @आकाशवाणी नजीबाबाद, साथ ही हमारे पुराने प्ले कहानी आने वाले प्लेज और हमारे यूट्यूब चैनल में आकाशवाणी नजीबाबाद पर सुन सकते हैं। इसी ही के साथ लाइक कमेंट शेयर एंड फॉलो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपके साथ ही वाणी कौशिक
2: और उज्मा को दीजिए कार्यक्रम संपन्न करने की अनुमति।
5: नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युववाणी। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6 बजने को हैं, कुछ ही पलों में आप समाचार सुनेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 21वीं सदी का भारत एक विकसित राष्ट्र बनने के लक्ष्य की ओर अग्रसर है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज का भारत अधिक विकास और उपलब्धियां हासिल करने में विश्वास रखता है। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में आज प्रवासी भारतीय समुदाय के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी वर्ष 2014 की यात्रा 28 वर्ष बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ऑस्ट्रेलिया यात्रा थी।
1: मैं जब साल 2014 में ऑस्ट्रेलिया आया था तो 28 साल के बाद भारत का कोई पीएम यहां पहुंचा था। तब मैंने कहा था कि अब आपको 28 साल इंतजार नहीं करना पड़ेगा। पिछले 12 वर्षों में मैं तीसरी बार यहां आया हूं, यानी इस बार हैट्रिक लगी है। ये दिखाता है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के रिश्ते किस ऊंचाई पर है।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के बीच आज मेलबर्न में तीसरी ऑस्ट्रेलिया भारत वार्षिक शिखर वार्ता हुई। इस दौरान दोनों नेताओं ने प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता में द्विपक्षीय संबंधों को और सशक्त बनाने पर चर्चा की। शिखर सम्मेलन के समापन के बाद विक्टोरिया के गवर्नमेंट हाउस में संयुक्त वक्तव्य जारी किया गया। संवाददाताओं को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने यूरेनियम आपूर्ति और महत्वपूर्ण खनिज गलियारे से जुड़े ऐतिहासिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज ने कहा कि इस भविष्य उन्मुख भारत ऑस्ट्रेलिया साझेदारी का सबसे मजबूत आधार दोनों देशों के बीच सेतु का कार्य करने वाला जीवंत भारतीय प्रवासी समुदाय है। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कहा है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच संबंध गतिशील हैं और तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। आज मेलबर्न में श्री मिश्री ने कहा कि व्यापार, रक्षा और ऊर्जा सहित अनेक क्षेत्रों में दोनों देशों की द्विपक्षीय साझेदारी लगातार सुदृढ़ हुई है। गुजरात सरकार ने आज गांधीनगर के महात्मा मंदिर में विकसित भारत डेटा सेंटर नीति 2026-29 का शुभारंभ किया। इस नीति का उद्देश्य 8 गीगावाट क्षमता का लक्ष्य निर्धारित करते हुए गुजरात को भारत के अग्रणी डेटा सेंटर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस केंद्र के रूप में स्थापित करना है। इस नीति का उद्देश्य राज्य में 6 लाख करोड़ रुपए के निवेश और अधिक रोजगार सृजित करना है। सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने आज जम्मू कश्मीर में पुंछ जिले की अग्रिम सीमा चौकियों का दौरा किया। सेना प्रमुख ने मौजूदा सुरक्षा स्थिति का जायजा लिया और सैन्य तैयारियों की समीक्षा की। पदभार ग्रहण करने के बाद सेना प्रमुख का पुंछ के अग्रिम क्षेत्रों का ये पहला दौरा है। सेना प्रमुख ने नगरोटा स्थित व्हाइट नाइट कोर मुख्यालय में वरिष्ठ कमांडरों से जम्मू क्षेत्र की सुरक्षा स्थिति और सैन्य तैयारियों की जानकारी ली। सरकार ने सोशल मीडिया पर उस दावे का खंडन किया है जिसमें भारत आ रहे एक एलपीजी टैंकर पर ईरान के मिसाइल हमले की बात कही गई है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने इस दावे को झूठा बताते हुए कहा है कि साझा की जा रही तस्वीर पिछले साल यमन के अदन तट के पास कैमरून के झंडे वाले एलपीजी टैंकर एमवी फाल्कन में विस्फोट के बाद लगी आग से संबंधित है। ईरान ने अमेरिका पर आज बुशहर परमाणु ऊर्जा संयंत्र के पास हवाई हमला करने का आरोप लगाया। ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी ने बताया है कि ये कार्रवाई उस पर हमले समाप्त करने की अमेरिकी सेना की घोषणा के कुछ घंटों बाद हुई। अमेरिकी केंद्रीय कमान ने इसकी पुष्टि नहीं की है। अमेरिका ने आज सुबह ईरान पर फिर हवाई हमले किए। ईरान ने भी खाड़ी क्षेत्र में अमेरिका के सहयोगी देशों को निशाना बनाकर जवाबी कार्रवाई की। इन हमलों से पश्चिम एशिया में युद्ध समाप्त करने का अंतरिम समझौता खतरे में पड़ गया है। ईरान के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार अमरीकी हवाई हमलों से 2 दिन में 14 लोग मारे गए हैं और 78 घायल हुए हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून आज पूरे देश में सक्रिय हो गया है। मानसून राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और उत्तरी अरब सागर के शेष हिस्सों में भी आगे बढ़ चुका है। विभाग ने हरियाणा सहित राष्ट्रीय राजधानी में तेज बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। भारत और इंग्लैंड के बीच चौथा T20 मैच आज रात 10 बजे से ब्रिस्टल में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्स पर। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6:05 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम कृषि जगत।

कृषि जगत कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान बहन भाइयों को आपके भैया नरेश पाल सिंह की राम राम। क्या हाल चाल है किसान भाइयों? देखिए हाल चाल आपके बढ़िया होंगे। और देखिए भाई, अब तो बारिश भी बहुत अच्छी हो गई है और जो हमारे सभी किसान भाई बारिश का इंतज़ार था उनका, वो समाप्त हो गया है। और किसान भाइयों, ये बारिश जो है हमारी खेती के लिए वरदान बन के आई है, क्योंकि बहुत लंबे समय के बाद वर्षा हुई है और गर्मी से भी हमारे किसान भाइयों को राहत मिली है। खैर भाई, देखिए ये तो मौसम है और प्रकृति है, ये तो सब ईश्वर के अधीन है और ईश्वर जैसा चाहते हैं वैसा ही होता है। तो भाई देखिए, धान की फसल हमारे किसान भाई इस समय रोपाई में व्यस्त हैं, तो धान की रोपाई में के समय वर्षा हो गई है, ये और भी अच्छी बात है। किसान भाइयों को जो है ज़्यादा पानी की व्यवस्था भी नहीं करनी पड़ेगी। तो धान की रोपाई करते समय कुछ ज़रूरी सावधानियाँ हमारे किसान भाइयों को रखनी चाहिए। और भाई, जब हम पौध घर से पौध लेते हैं या उखाड़ते हैं, तो उस क्यारी में पानी अवश्य लगा दें ताकि पौध आसानी से उखड़ जाए। फिर इन पौधों की गुच्छियों को, यानी कि उनकी जड़ों को, किसी कवकनाशी से उपचारित अवश्य करें। और भैया, सिंचाई की नाली में आप पानी भरकर उसमें कार्बनडाइजिन, बायोस्टीन या मैंकोजेब जैसी दवाइयाँ मिलाकर आप ये गुच्छियाँ नाली में रख दें। और यदि रात भर ये गुच्छियाँ नाली में रखें तो और भी अच्छा, अन्यथा 2 से 3 घंटे तो अवश्य इसमें रख दें और उसके बाद इसका आप जो है पौध घर से खेत में ले जाकर रोपाई कर दें तो बड़ा अच्छा रहता है। क्योंकि कवक के द्वारा ही धान में कम से कम 70 से 80% रोग होता है, या किसी भी फसल में ज़्यादातर रोग कवकों से होते हैं। और इसके बाद रोपाई वाले खेत की अच्छी प्रकार से आप पडलिंग करें ताकि बढ़िया कीचड़ तैयार हो सके। लेकिन भैया, पडलिंग के तुरंत बाद रोपाई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि पौधों की जड़ें जो है, हमारी जो पौध होती है उसकी जड़ ज़्यादा गहराई पर चला जाता है और ज़्यादा गहराई पर जाने का जो है ये नुकसान होता है कि उसमें कल्ले कम बनते हैं और देर से बनते हैं, तो लगभग 7 से 8 दिन पछेती हमारी फसल हो जाती है। तो इसके लिए हमारे किसान भाई 4-5 घंटे इंतजार करें और उस खेत में उसके बाद ही पौध को लगाएं। यदि लाइन में हम पौधा लगाएं तो निराई गुड़ाई करने में आसानी रहती है और लाइन से लाइन की दूरी हमारे किसान भाई 20 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 15 सेंटीमीटर रखते हैं। तो किसान भाइयों, जब हम पडलिंग करके पौध लगाने से पूर्व अपने खेत को तैयार करते हैं तो उस समय फास्फोरस और पोटास की संपूर्ण मात्रा हमारे किसान भाई अपने खेत में बिखेर दें और नाइट्रोजन की, यानी कि नाइट्रोजन की 1/3 मात्रा आप उसी समय प्रयोग करके और फिर उसके बाद अपने खेत में रोपाई कर सकते हैं। ध्यान रहे कि रोपाई के समय खेत में ज़्यादा पानी न खड़ा रहे और रोपाई के 4-5 दिन बाद ही एक हल्की सिंचाई करें। और भैया, आवश्यक हो तो ये भी थोड़ी सी जो है आप उसमें हल्की हल्की सिंचाई कर सकते हैं। अब भैया, हम जिक्र करते हैं दूसरी चर्चा की ओर, और वो चर्चा है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। तो किसान भाई, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जो है सभी किसान भाइयों के लिए होती है, इस बात का ध्यान रखें, चाहे वो बड़ा हो, छोटा किसान हो, या सीमांत किसान हो, लघु किसान हो, सभी श्रेणियों के किसान भाइयों को ये सम्मान निधि दी जाती है। और इसकी सहायता में हमारे किसान भाइयों के बैंक अकाउंट में नगद राशि के रूप में धन मिलता है और 1 वर्ष में 6,000 रुपये वार्षिक के हिसाब से यह राशि प्राप्त होती है, जिसकी 1 वर्ष में किसान भाइयों 3 किस्त मिलती हैं, या आप अच्छी तरह जानते हैं, और 1 किस्त में 2,000 रुपये मिलते हैं और प्रत्येक 4 माह में 2,000 रुपये

0: हिसाब से हमारे किसान भाइयों को यह राशि प्राप्त होती है। और जिन किसान भाइयों को यह राशि किसी कारणवश भैया नहीं मिल रही है, तो वे जनसेवा केंद्र या स्वयं के जो एंड्रॉयड मोबाइल है उस पर भी आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, या अपने विधानसभा क्षेत्र या मतलब जो विकास खंड है आपका, तो विकास खंड में जाकर आप अपने कृषि विभाग में जाएं और वहां संपर्क करें। और यदि फिर भी यह सहायता आपको नहीं मिलती है, तो अपने जिले के उप कृषि निदेशक कार्यालय में जाकर संपर्क करें, आपकी समस्या का समाधान अवश्य होगा। तो भाई ये थी थोड़ी सी चर्चा खेती किसानी की, और चर्चा के बाद अब कार्यक्रम में लेते हैं एक बहुत ही छोटा सा विराम और सुन लेते हैं जरूरी संदेश।
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए 8700014242।
2: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
0: तो किसान भाइयों ने सुने ये जरूरी संदेश, और संदेश के बाद भैया कार्यक्रम में आपका फिर से स्वागत है। और भैया अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आपको बता दें कि आज है जुलाई माह का दूसरा गुरुवार, और प्रत्येक माह के दूसरे गुरुवार को आप सुनते हैं हमारा मासिक कार्यक्रम पगडंडी। साथियों, पगडंडी एक ऐसा संकरा टेढ़ा मेढ़ा रास्ता होता है जिस पर चलकर हम अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं, और बीच बीच में अनेक छोटी बड़ी बाधाएं हमें मिलती हैं, लेकिन भैया पगडंडी की सहायता से हम इन बाधाओं को पार कर लेते हैं और अपनी मंजिल पर पहुंच जाते हैं। तो साथियों, आज की पगडंडी कार्यक्रम में विषय रहेगा शैक्षिक प्रणाली का विकास। तो आइए सुनते हैं ये मासिक कार्यक्रम पगडंडी। किसान भाइयों, आज है जुलाई माह का दूसरा गुरुवार, और प्रत्येक माह के दूसरे गुरुवार को आप सुनते हैं हमारा मासिक कार्यक्रम पगडंडी। साथियों, पगडंडी एक ऐसा संकरा और टेढ़ा मेढ़ा रास्ता होता है जिस पर चलकर हम अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं, और बीच बीच में अनेक छोटी बड़ी बाधाएं हमें मिलती हैं, लेकिन पगडंडी की सहायता से हम इन बाधाओं को पार कर लेते हैं और अपनी मंजिल पर पहुँचते हैं। तो साथियों, आज की पगडंडी का विषय है शैक्षिक प्रणाली का विकास। तो आइए करते हैं चर्चा। श्रोताओं, हमारी प्राचीन शिक्षा पद्धति गुरुकुल पर आधारित थी, जो वैदिक कालीन शिक्षा पर आधारित होती थी। उस समय उच्च कुलीन वर्ग के लोग ही शिक्षा प्राप्त करने के हकदार थे, जो गुरुकुल या आश्रम में जाकर शिक्षा प्राप्त करते थे। आपने श्री रामचंद्र जी जैसे महापुरुषों के बारे में सुना होगा, जिनके गुरु आचार्य कहलाते थे, और आश्रम में ही आचार्य की पत्नी रहती थी, जिसे गुरु माता कहते थे। उस समय छात्र भिक्षा मांगकर आश्रम के गुरु और छात्रों की आवश्यकताओं की पूर्ति करते थे, और गुरु शिष्य के संबंध पिता पुत्र जैसे होते थे। गुरु की आज्ञा का पालन करना हर हाल में कर्तव्य होता था, और प्राचीन काल की इस शिक्षा पद्धति में छात्र अपने घर से दूर रहकर लंबे समय तक आश्रमों में रहकर शिक्षा प्राप्त करते थे। कुछ समय बाद गुरुकुल पद्धति में शिक्षा का रुझान लोगों में कम होता चला गया। समय बीतने के साथ साथ फिर बौद्ध शिक्षा का आरंभ हुआ, जो बौद्ध मठों में दी जाती थी। छात्र को बौद्ध भिक्षु कहते थे। फिर मुस्लिम कालीन शिक्षा का आरंभ हुआ, जिसमें अरबी और फारसी विषयों में शिक्षा मकतब और मदरसों में दी जाती थी। इसके बाद धीरे धीरे भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत हुई, और उसमें स्त्री और पुरुष को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार था। आज धीरे धीरे आधुनिक शिक्षा का विकास होता गया, और स्वतंत्र भारत में प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा का विस्तार हुआ, और इसके लिए अलग अलग आयोग बने, जिसमें छात्र और शिक्षक दोनों के कल्याण के लिए अनेक प्रयास होकर उन्हें लागू किया गया, जिसमें छात्रों के लिए आधुनिक शिक्षा और छात्रवृत्ति का प्रबंध किया गया है, और शिक्षकों के लिए वेतन आयोग का गठन हुआ, जिसमें शिक्षकों को भी वेतन बढ़ाने आदि की सुविधाएं शामिल हुई। धीरे धीरे शिक्षा पद्धति में सुधार हुए, और 1992 में यशपाल समिति के नाम से एक आयोग का गठन हुआ, और पाठ्यक्रम

0: था तकनीकी पर जोर दिया गया। इससे पहले सन 1986 में तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी के नेतृत्व में शिक्षा नीति लागू की गई, जो काफी लंबे समय तक चली। श्रोताओं, शिक्षा प्रणाली में एक प्रभावी और जरूरी कानून लाया गया सन 2009 में, जो कि RTE यानी के राइट टू एजुकेशन के नाम से जाना जाता है। हिंदी में कहते हैं निःशुल्क बाल शिक्षा का अधिकार, जिसमें 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान था और यह आज तक क्रियान्वित है। किसान भाइयों, प्राथमिक स्कूलों में छात्रों को छात्रवृत्ति, निःशुल्क पाठ्य पुस्तक और मिड डे मील की योजना चलाई गई, जो कि आज भी निरंतर रूप से जारी है। आज के समय में प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा तक बहुत से आयाम स्थापित हुए और आज शिक्षा प्राप्त करने की भाषा हिंदी और अंग्रेजी मुख्य रूप से क्रियाशील है। आज के युग में खेती का आधुनिकीकरण कृषि शिक्षा के माध्यम से हुआ। कृषि शिक्षा के साथ तकनीकी शिक्षा का विकास होकर आज के छात्र बीटेक, एमटेक, बीसीए, एमसीए और एरोनॉटिक्स इंजीनियरिंग जैसे विषयों की शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। शिक्षा प्रणाली के विकास के विषय में हमें वीरेंद्र सिंह बताते हैं, जो कि प्रवक्ता के पद से सेवानिवृत्त हुए हैं। तो आपने हमें शिक्षा के विकास में बताया,
1: शिक्षा के क्षेत्र में जो है बहुत प्रगति हुई है और बहुत सुधार हुआ है। प्राचीन काल में जो गुरुकुल पद्धति थी, उस प्राचीन पद्धति का जो है विस्तार किया गया है और घर घर जो है विद्या आई। प्राइमरी विद्यालय खोलकर गांव गांव जो है जूनियर हाई स्कूल खुल गए। 2-4 किलोमीटर पर इंटरमीडिएट कॉलेजों को मान्यता मिल गई। तो बच्चों को जो है कहीं दूर जो गुरुकुल पद्धति में घर त्याग करके जाना पड़ता, उसे जो है त्याग नहीं करना पड़ता और वो अपने घर से ही जो शिक्षा अर्जन कर रहे हैं, विद्या अध्ययन कर रहे हैं। इससे जो है सामाजिक प्रगति हो रही है, हमारे समाज में जो है विकास हो रहा है और छात्रों का जो है ज्ञान वर्धन हो रहा है। शैक्षिक जो स्तर है वो हमारे समाज का उठ रहा। पहला पाठ्यक्रम जो है वो वार्षिक होता था और क्लिष्ट होता था। जैसे उदाहरण दिया जाए, इंटरमीडिएट की जो परीक्षा होती थी वो 2 वर्ष में होती थी। तो बालक को जो है 2 वर्ष का जो उसका सिलेबस था, कोर्स था, उसके अध्ययन का, उसके स्वाध्याय का 2 साल में जो है वो अंकन होता था, जो बड़ा मुश्किल था। अब उस कोर्स को जो है काट छांट करके वैज्ञानिक बनाया गया है।
0: अच्छा।
1: और उसे वार्षिक बनाया गया है। उदाहरण के लिए जैसे कोई बालक जो है विद्यार्थी, वो 11 में पढ़ेगा, कक्षा 11 में।
0: अच्छा।
1: तो कक्षा 11 का कोर्स जो है 11 में ही समाप्त हो जाएगा।
0: अच्छा।
1: और सेकेंड ईयर के लिए जो है अलग कोर्स जो वार्षिक है। तो इससे छात्रों का जो है जो बोझ था, द्विवार्षिक बोझ, वो कम हुआ। नई शिक्षा नीति में जो है कोर्स का जो है परिमार्जन किया गया है, उसमें सुधार किया गया है। उसमें बालक में जो है तार्किक शक्ति बढ़ विकास हो, वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाया गया है, जिससे छात्र जो है पढ़कर उसे और कहीं उसका जो जीवन है अगला वो सुगम हो और उसका जीवन से जुड़ा हुआ जो है कोर्स है। जैसे टेक्निकल एजुकेशन आई है, जगह जगह ITI खुल गई है, जगह जगह जो है पॉलिटेक्निक खुल गई है, इंजीनियरिंग कॉलेज बहुत खुले हैं। जो अब से 25 साल पहले इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए बालकों को 2-2, 3-3 साल जो है प्रतीक्षा करनी पड़ती थी, उसकी तैयारी करनी पड़ती थी। अब वार्षिक तैयारी के बाद ही इतने संस्थान खुले हुए हैं कि उसे उसकी योग्यता के अनुसार जो प्रवेश मिल जाता है और वो 5 साल में जो है प्रशिक्षित इंजीनियर बन जाता है और उसका अगला जीवन जो है उससे बेहतर बनता है।
0: शिक्षण संस्थानों और विभिन्न कोर्स के बारे में हमें श्री वीरेंद्र सिंह ने बताया।
1: शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुमुखी विकास हुआ है। जैसे जगह जगह जो BTC ट्रेनिंग के लिए जो है अवसर प्रदान किए जा रहे हैं। जगह जगह जो डिग्री कॉलेज है उनमें BEd की जो है व्यवस्था की गई है। पहले जिले में एक विद्यालय होता था BEd का, जिसमें 100 सीट होती थी, तो वो 100 आदमी ही एक साल में निकल सकते थे। अब बहुत विद्यालय है जिससे BEd कर निकल रहे हैं। तो शिक्षा के क्षेत्र में जो है इन नई नीति से 1990 के बाद जो अपनाई गई है, तो शिक्षा जो है घर तक आई है, बहुत उसे दूर नहीं जाना पड़ता छात्र को।
0: दूरस्थ शिक्षा के विषय में हमें मास्टर वीरेंद्र सिंह ने जानकारी दी।
1: जैसा मेरा संज्ञान में है
0: जी,
1: कि डिस्टेंस एजुकेशन भी चली है। छात्र जो है घर बैठे ही अध्ययन कर सकता है और परीक्षा दे सकता है और अपने जीवन में जो सफलता को प्राप्त कर सकता है। निःशुल्क शिक्षा होने से समाज को लाभ ये मिला है कि जो कमजोर वर्ग के बालक पढ़ नहीं पाते थे, तो उनका शिक्षा से जो है जुड़ाव हुआ है और लगभग लगभग 100% बालक जो है आजकल जो है विद्यालय में दिखाई देते। दूसरी जो एक अच्छी योजना लाई है सरकार, जो भी तत्कालीन सरकार रही होंगी, तो जो उन्होंने ये पोषण का कार्य किया है सब प्राइमरी विद्यालयों में जूनियर तक जो

0: मध्यान्ह में जो उनके लिए खाने की व्यवस्था की गई है ये अति उत्तम है। सब बालक जो है शिक्षा के प्रति भी आकर्षण बढ़ा है
1: जी।
0: और उसे जो परेशानियां होती थी, दूर दराज सब बालक जाते थे, तो दोपहर के समय मध्यान्ह के समय उन जो भोजन की व्यवस्था की गई है ये जो है प्रशंसनीय है। दूसरी तरफ जो है गरीब बालक जो है शिक्षा से विलग ना हो तो पाठ्यक्रम में जो पुस्तकें हैं वो भी विद्यालय की ओर से दी जाती हैं, विभाग की तरफ से दी जाती हैं, जिससे चहुमुखी विकास हो रहा है शिक्षा का। समाज भी जो है शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति कर रहा है। जो साक्षर प्रतिशत था जो पहले बहुत कम होता था वो पूर्ण साक्षरता की ओर जो चल रहा है। घर घर में बालक पढ़ रहे हैं और उनका उन्नति हो रही है, उन्नयन हो रहा है। जिस प्रकार शिक्षा के क्षेत्र में विकास हुआ है ठीक ऐसे ही अगर हम उसका निरीक्षण करें तो शिक्षक जो है उसका भी उन्नयन हुआ है। भली भांति प्रशिक्षित जो शिक्षक हैं वो इस क्षेत्र में आ रहे हैं। उनके पढ़ाने की जो विधि है, उनके पढ़ाने का जो कौशलता है, छात्रों को आकर्षित करने की जो उनका विधि विधान है वो उसमें जो है पूर्ण प्रशिक्षित और पूर्ण पारंगत है। वो ज्यादा योग्यता है उनमें, वो वैज्ञानिक पद्धति से पढ़ा रहे हैं और कई परीक्षाएं के जो साधारण पहले बीएड जो बीटीसी अध्यापक हो जाता था सीटेट टेट सभी परीक्षाएं जो हैं उन्होंने पास कर रखी हैं। ये उनकी गुणवत्ता का प्रतीक है, योग्यता का प्रतीक। शिक्षा के क्षेत्र में जो है आज पहले की अपेक्षा
1: जी,
0: पहले तो कई गांवों में एक प्राथमिक विद्यालय होता था, अब सरकार ने जो हर एक गांव में प्राथमिक विद्यालय स्थापना की है और जूनियर हाई स्कूल की व्यवस्था की है। संयुक्त विद्यालय खोले हैं, इनमें बालक जो एक स्थान पर कक्षा एक से लेकर के आठवें तक की शिक्षा कमता से ग्रहण कर सकता है और अपना भविष्य जो हो वो बना सकता है हायर एजुकेशन के लिए। फिर बाहर वो भी क्षेत्र में जो हो डिग्री कॉलेज, जहां जिले में एक दो कॉलेज होता था अब तो कम से कम ये पता नहीं कि कितने कॉलेज हैं, उनकी गणना करना मुश्किल है। तो शिक्षा जो है द्वार तक आई है और व्यक्ति के विकास में बहुत सहायक सिद्ध हो रही।
2: शैक्षिक प्रणाली का विकास धीरे धीरे अनेक क्षेत्रों में किया गया। कृषि और तकनीकी शिक्षा के साथ साथ चिकित्सा के क्षेत्र में भी शिक्षा ने आयाम स्थापित हुए हैं और चिकित्सा के क्षेत्र में अनेक आयुर्वेदिक और एलोपैथिक तथा होम्योपैथिक जैसे कोर्स चलाए जा रहे हैं। शिक्षा के विकास पर और अधिक प्रकाश डालते हुए हमें गुरुकुल आर्ष विद्यापीठ नजीबाबाद की प्रधानाचार्य श्रीमती प्रेमवदा बताती हैं।
3: प्राचीन काल में प्रारंभ से ही गुरुकुल पद्धति प्रचलित रही है। गुरुकुल पद्धति का तात्पर्य है कि गुरु का अपना कुल होता था और वो जितने विद्यार्थियों को पढ़ा सकते थे, बहुत अधिक अधिक संख्या भी बड़े बड़े राजा महाराजाओं के टाइम से होती थी, लेकिन प्राय कम ही विद्यार्थियों को लेकर के गुरु लोग पढ़ाते रहते थे। वहाँ पढ़ाने के विषय क्या थे यदि आप ये जानना चाहें तो जो उपनिषदों में आता है ना सनत कुमार और नारद का संवाद, तो उसमें ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद और उसके साथ सारी विद्याएं ज्योतिष विद्या पढ़ी है, वाको वाक के इतिहास पुराण आदि दिन अजान बहुत सारी मतलब वहाँ पर विद्याओं का उल्लेख किया गया है। महिलाओं के भी अलग अलग गुरुकुल थे, औधमेघया छात्रा औधमेघा छात्रा, ये औधमेघी जो है ये महिला का नाम है, महावाक्य में पतंजलि महावाक्य में आता है। तो महिलाओं के भी गुरुकुल होते थे, वो कन्याओं को पढ़ाती थी और जो पुरुष वर्ग होते थे उनको पुरुष पढ़ाते थे। इस तरह से ये अपनी प्राचीन काल से शिक्षा चल रही थी। अंग्रेजों के आने से पहले तक ये सब पद्धतियां चल रही थी। आपने सुना होगा कि जिस समय अंग्रेज आए उन्होंने निरीक्षण करवाया कि इस देश की उन्नति का कारण क्या है, तो उन्होंने कहा था गुरुकुल और गाय दो ही इस देश की उन्नति के कारण है, क्योंकि गाय को जो माता मानते हैं या गाय के दूध पीना वगैरह वगैरह उसकी सेवा करना आदि जो भी कुछ है उन सबको थोड़ा सा अलग कर दिया जाए। हाँ, शिक्षा में परिवर्तन ये हुआ कि अब गुरु लोग जो है वो उन्होंने जैसे अपने कॉलेज बनाने शुरू कर दिए ना, अलग अलग स्थान स्थान पर कॉलेज है विद्यालय है, एक प्रकार से वो जो पूर्ण विद्या वाली बात दे रही शिक्षा एक सर्टिफिकेट आने लगा, मतलब उसके प्रमाण पत्रों के आधार पर हमारी चल पड़ी ना कि ये डिग्री होनी चाहिए, इस डिग्री के बाद आप ये पढ़ा सकते हो। प्रायोगिक परीक्षण न होते हुए भी चल यदि कागज में वो सही है तो पढ़ाएगा। शिक्षा ने तो अब बहुत उच्च रूप कर चुके हैं, सैन्य शिक्षा भी हो रही है और अपनी ये आयुर्वेद की शिक्षाएं भी आयुर्वेद के लिए चल रहे हैं और अपने कंप्यूटर युग भी आ चुका है, कंप्यूटर जगह जगह अनिवार्य हो गया है, सभी लोग कंप्यूटर को पूछते हैं और अन्य भाषाओं का भी अध्ययन हम करते हैं। पहले भी मना नहीं था अन्य भाषाओं का अध्ययन करने का, लेकिन अब जरा कुछ अंग्रेजी आजादी का प्रचलन अधिक हो गया है तो इस तरह से काफी इसका क्षेत्र बड़ा व्यापक हो चुका है पहले की अपेक्षा, ये कहा जा सकता है।
2: क्या प्रणाली के विकास में जो संस्कृत का योगदान है और अन्य विधाओं का क्या योगदान रहा है, इस पर श्रीमती प्रेमवदा जी ने प्रकाश डालते हुए बताया।
3: जितना हम संस्कृत को पढ़ेंगे या पढ़ाएंगे अपने बच्चों को तो उतना

0: हमारे ज्ञान में वृद्धि होगी, तो इसलिए हमें संस्कृत को तो कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। हाँ, अन्य चीजें पढ़ाएं, लेकिन मूल वही से। आप देखिए किसी भी थीसिस को पढ़िए, तो सर्वप्रथम वेद क्या कहता है, वेद से ही हर थीसिस की शुरुआत होती है। तो सारी चीजों का मूल पहले वेद में ढूंढा जाता है। तो वेद को हमारे प्राचीन काल में सब पढ़ते थे, अनेक प्रकार की इसकी रक्षा के लिए बहुत प्रयास भी किए गए, जैसा शिखामाला, गण, ध्वज, रथ इत्यादि पाठों के द्वारा। इसीलिए किए गए क्योंकि वेद जैसा अमूल्य ग्रंथ मनुष्य नहीं बना सकता। मनुष्य तो ऐतिहासिक ग्रंथ बना सकता है या किसी एक विद्या पर कुछ लिख सकता है, लेकिन जहाँ सब कुछ विद्यमान हो एक साथ, उसका नाम है वेद है। तो पहले वेद की शिक्षा थी और वेद के आधार पर अलग अलग ऋषियों ने अपने उन्होंने विशेष दीक्षा प्राप्त की, विशेष उसका अध्ययन किया, उसका विकास किया। विकास करते करते आज हम बहुत काफी उन्नत हो चुके हैं, उन्नत हो रहे हैं। लेकिन जो वैदिक शिक्षा की जो मूलभूत बातें थी, चारित्रिक है, नैतिक शिक्षा आदि, उन सब की ओर उतना ध्यान नहीं गया, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन विकास वैसे बहुत हुआ है। अच्छी बात है पत्राचार से करें, साक्षात करने वाली बात कुछ और होती है, लेकिन पत्राचार से हो रहा है, नहीं जा सकते तो ये भी अच्छी बात है। हाँ, ऑनलाइन भी पीछे पढ़ा, कोरोना के काम ही पढ़ा, अभी भी बहुत सारी क्लासेस चलती है, ये बहुत अच्छे रूप है। आजकल बहुत इसका प्रचार प्रसार हो रहा है। शिक्षा तो यथा तथा देनी ही चाहिए, ये नहीं प्रकार में किस जगह कौन कहाँ हीरा छिपा हुआ है, कौन कितना विकास कर सकता है इसको, इसलिए हमें चाहे वो गरीब हो अमीर हो सबको देनी चाहिए शिक्षा अनिवार्य रूप से। ये बहुत अच्छे प्रयास है। वही तो है कि शिक्षा सबके लिए अनिवार्य हो, किसी कारण से अपनी यात्रा को रोके नहीं, है ना, धन बाधा ना आए, इनकी बाधा नहीं होनी। सरकार प्रयास कर रही है और भी बहुत सारे ट्रस्ट करते हैं, बहुत सारे धनी मानी लोग करते हैं, बहुत अच्छे प्रयास है। आगे ही सारे राज्य की चिंता करता था, अलग अलग माता पिता को चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं होती थी, अपने अपने राज्य में शिक्षा की व्यवस्था निःशुल्क करता था। ये तक्षशिला, नालंदा विश्वविद्यालय जो सब राजा से चलते थे ना, किसी एक व्यक्ति के कार्य तो नहीं चलते थे। तो इस तरह से शिक्षा के जहाँ तक हो सके प्रयास करने ही चाहिए, आज भी हो रहे हैं, अच्छी बात है। अब गुरु के विषय में जो कहा गया, गुरु माता पिता से भी बढ़कर के गुरु का स्थान है।
1: जी।
0: माता पिता ने जितनी शक्ति है जितना वो कर सकते थे उतना किया, लेकिन संपूर्ण व्यक्तित्व का निर्माण तो गुरु के हाथों ही होता है। इसलिए गुरु जितना योग्य होगा उतना ही शिष्य भी योग्य होगा। हालांकि उसके बहुत सारे पूर्व जन्म के संस्कार भी सामने आते हैं, बहुत सारी बातें भी है, लेकिन फिर भी गुरु का प्रभाव तो बच्चे पर अधिक पड़ता ही है। और गुरु एक सर्वोत्तम समझिए, सर्वोत्तम यही है अपने देश की, किसी भी देश की। भारत तो सबका गुरु रहा है और शिक्षा यहाँ के लोग दूर पूरे पूरे अन्य देशों के लोग भी आया करते थे। मनु महाराज ने बहुत पहले कह दिया था, ये सब देश प्रस्तुत से सकाशा दगर शिक्षण प्रतिव्याम करो मानव, तो सारे मानव आकर के यहाँ से शिक्षा लिया करते थे। मतलब यहाँ ऐसी उच्च मस्तिष्क, उच्च मेधा वाले जो ऋषि लोग हुए हैं, उनके चरणों में बैठ करके तो व्यक्ति का बहुत महान विकास हो सकता है। भारत में बहुत समय तक ये परंपरा चलती रही, इसी कारण से भारत जो है विश्व का गुरु रहा है। और अन्य देशों में भी बहुत सारी चीजें जो गई हैं वो यहीं से गई हैं। अब उसके लिए अब कुछ दूसरे प्रकार की मतलब इसे खोज की आप गणित का विकास कहाँ से हुआ, जीरो का विकास कहाँ से हुआ, हमें सुनते हैं भारत से हुआ। तो ये जितनी भी चीजें हैं कि सूक्ष्म सब भारत से प्रारंभ हुई है, इसलिए भारत में तो ये चीजें अधिक अच्छे रूप में विकसित हो सकती है। और अन्य देशों में भी कार्य चल रहा है, वो भी सराहनीय है, क्योंकि सबको विकास की आवश्यकता है, तो हम चाहेंगे कि सभी लोग करें। कृषि शिक्षा के बारे में वेद में भी बहुत सारी चर्चाएं हैं कि वेद में कहा कि आप बीज को बहुत अच्छे से अच्छा बनाओ। बीज को यदि हम किसी अच्छे पात्र में, चांदी सोने के पात्र में या सोने के चांदी के संपर्क में रख देते हैं तो बीज में गुण आ जाते हैं। उस बीज को जब हम बोएंगे तो निश्चित है कि वो अन्न में भी आएंगे, जो खाएगा उसके अंदर भी उसका कुछ तत्व आएगा आदि आदि। इतनी सूक्ष्म बातें वेदों में विद्यमान है कि उनका जितना भी विकास हो जाए अच्छी बात है। कृषि शिक्षा होनी ही चाहिए, आजकल तो रेडियो से है, हर तरह से दे ही रहे कृषि शिक्षा, बहुत समय से लोग देते आ रहे हैं, तो बहुत आवश्यक है। खेती के बहुत प्रकार हो गए हैं, बहुत से लोग तो अपने व्यवसाय को, अन्य व्यवसायों को छोड़कर के खेती को ही व्यवसाय बना रहे हैं। बुद्धिपूर्वक यदि करे कार्य व्यक्ति तो खेती नुकसान नहीं दे, कृषि शिक्षा का परिणाम। आप देखिए गौशालाएं खोल रहे हैं लोग, अपने सारे बड़े बड़े व्यापार छोड़ के गौशालाएं खोल रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लाभ है तभी तो कर रहे हैं। तो इस तरह से ये हो रहा है, अच्छी बात है।
1: श्रोता बंधुओं, शैक्षिक प्रणाली के विकास पर प्रकाश डालते हुए डॉक्टर रजनी शर्मा हमें बताती हैं।
2: सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रही शैक्षिक प्रणाली की बात, तो यदि शिक्षा की बात की जाए तो शिक्षा किसी भी देश की रीढ़ होती है, ये आप जानते हैं। और हमारा जो भारत में पढ़ाई लिखाई का सफर शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ और आज कहाँ तक पहुँच गया है, ये हम सभी के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि हम दिन प्रतिदिन शिक्षा के क्षेत्र में उन्नति कर रहे हैं। तो यदि शिक्षा के पुराने समय की बात करें तो देखिए, हम सभी जानते हैं, हमारे किसान बंधु भी जानते हैं कि पुराने समय में हमारे देश में गुरुकुल होते थे और जो बच्चे होते थे वो अपने घर से दूर गुरु के आश्रम में रहते थे, वहाँ पेड़ों के नीचे बैठकर पढ़ाई

0: होती थी और वहाँ पर उन्हें वेद, रामायण, गणित ये सारी चीजें सिखाई जाती थी। आपने रामायण महाभारत के प्रसंग सुने होंगे, देखे भी होंगे, उसमें भी यही है कि यदि किसी युद्ध की भी शिक्षा देनी है, इससे मेरा अभिप्राय जो हमारे अस्त्र शस्त्र हैं, तो वो शिक्षा भी हमारे जो बच्चे होते थे, यहाँ मैं राम, भगवान राम और कृष्ण का भी नाम लेना चाहूंगी, उन जैसे महापुरुषों का, पांडव जैसों का, कर्ण को कह सकते हैं, अर्जुन जी को कह सकते हैं, तो उन्होंने भी इसी तरह से गुरुकुल में जाकर शिक्षा ग्रहण की और एक बहुत बड़े योद्धा बने और वहाँ किसी तरह की कोई फीस भी देनी नहीं पड़ती थी। जब शिक्षा पूरी हो जाती थी उसके बाद जो बच्चे होते थे, चाहे वो राजकुमार हो या वो एक वैसे आम बच्चे हो, वो अपनी मर्जी से अपने गुरु को कुछ भी भेंट कर सकते थे। और यदि देखिए इसमें गुरु दक्षिणा की बात करें तो हमारे देश में बहुत सारे ऐसे नाम हैं जिनके विषय में जितना कहा जाए कि वो किस तरह से उन्होंने गुरु दक्षिणा दी, वो मेरे ख्याल से हर किसी की जुबान पर होगा। और नालंदा जो विश्वविद्यालय है वो तो दुनिया भर में मशहूर है, यहाँ भी दूर दूर से, केवल भारत के नहीं, बहुत दूर दूर से दूसरे देशों के लोग भी यहाँ पढ़ने आते थे। अब इसी के चलते चलते आगे भारत में गुरुकुल के स्थानों को मदरसों ने ले लिया, कलाओं ने ले लिया, मदरसों में उर्दू पढ़ाई जाने लगी, फारसी पढ़ाई जाने लगी और यहाँ पर धर्म की किताबें भी बहुत ज्यादा पढ़ाई जाने लगी। और जो लड़कियों की शिक्षा की बात थी वो इस समय में आकर, वैदिक काल की बात यदि मैं करूं, तो यहाँ आकर के लड़कियों की शिक्षा थोड़ी कम हो गई। इसी के चलते चलते फिर ब्रिटिश साम्राज्य आया और ब्रिटिश साम्राज्य ने जहाँ तहाँ भारत में अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय भी खोले, उससे पहले हिंदी माध्यम के भी खुले, दयानंद सरस्वती का नाम हम ले सकते हैं, और भी हमारे बहुत से महापुरुष ऐसे हुए हैं जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में, राजा राम मोहन राय का नाम ले सकते हैं, जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान दिया। लेकिन इसी के साथ मैकाले साहब ने अंग्रेजी में पढ़ाई शुरू करवा दी और देखिए महिलाएं भी यहाँ पीछे नहीं थी। सावित्री बाई फुले जैसी महिलाओं ने, जिनको आज भी हम याद करते हैं और हमेशा करते रहेंगे, उन्होंने लड़कियों के लिए भी स्कूल खोले। अब मुंबई में या कोलकाता में बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां बनी, वहां पर शिक्षा बढ़ती चली गई, शिक्षा क्षेत्र इस तरह से बढ़ता चला गया। और आज यदि हम गांव के संदर्भ की भी बात करें तो देखिए एक वो भी समय था कि गांव में स्कूल नहीं होते थे और बच्चे पढ़ाई से वंचित रह जाते थे, होते थे तो बहुत दूर दूर होते थे, लेकिन वर्तमान समय में मेरे विचार से हर गांव में विद्यालय खुल रहे हैं। जो हमारी सरकार है पढ़ाई लिखाई पर बच्चों की बहुत ज्यादा ध्यान दे रही है, शायद इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ है। चाहे मिड डे मील योजना हो, बच्चों की पुस्तकों की बात हो, बसों की बात हो, उनके स्कूल की वेशभूषा की बात हो, तो सब कुछ बच्चों को निःशुल्क दिया जा रहा है। हमारी सरकार का उद्देश्य सिर्फ यही है कि हमारा भारत एक शिक्षित देश बने, कि बच्चा शिक्षा से वंचित ना रहे। जो अंग्रेजी माध्यम प्राइवेट आज के टाइम में स्कूल खुले हुए हैं, तो यदि समय रहते कोई फॉर्म भर देता है और उस बच्चे का नाम उसमें सेलेक्ट हो जाता है, तो वो अच्छे स्कूलों में, जो बहुत अच्छे प्रतिष्ठित विद्यालय हैं, वहाँ जाकर अपने बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दिलवा सकते हैं। फीस नहीं देनी है उन्हें, कुछ नहीं देना है, उनकी फीस स्कूल को सरकार खुद देती है। ये कृषि है, वाणिज्य है, कला है, संगीत है, साहित्य है, विज्ञान है, ये शिक्षा है।
1: महिला शिक्षा के बारे में हमें डॉक्टर रजनी शर्मा बताती हैं।
0: केवल ऐसा ही नहीं है कि केवल पुरुष वर्ग यानी लड़के ही शिक्षा को ग्रहण कर रहे हैं, कि आज हमारी जो बेटियां हैं वो भी हर प्रकार की शिक्षा ग्रहण करके ऊंचे ऊंचे पदों पर आसीन हो रही हैं। आज हमारी बेटियां रेलगाड़ी भी चला रही हैं, हवाई जहाज भी उड़ा रही हैं, इंजीनियर भी हैं, हर चीज। फिर अछूता नहीं है जिसे ये कहा जाए कि आज लड़कियों से कोई क्षेत्र अछूता है। लड़कियां लड़कों से आगे बढ़कर काम कर रही हैं। अंत में मैं यही कहना चाहूंगी, शिक्षा है संजीवनी का गुणों की खान, शिक्षा है संजीवनी शिक्षा गुणों की खान, बिन शिक्षा के आदमी रहता पशु समान।
1: किसान भाइयों, शैक्षिक पद्धति का निरंतर विकास होते होते आज शिक्षा विभिन्न रूप धारण कर चुकी है और प्रत्येक क्षेत्र में शिक्षा के नए आयाम स्थापित हो रहे हैं। भाई, हमारा देश वैश्विक स्तर पर अपना नाम कमा रहा है और ये सब शिक्षा के विकास की ही देन है, शैक्षिक प्रणाली के विकास की ही देन है। तो श्रोताओं, आज हमारा पगडंडी कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है।
2: किसान भाइयों, अभी आप हमारा मासिक कार्यक्रम सुन रहे थे पगडंडी, जो कि प्रत्येक माह के दूसरे गुरुवार को आता है। और भैया, ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा ये तो आप हमें बताएंगे समीक्षा के माध्यम से। और देखिए, अब कार्यक्रम में जो है अंतिम समय हो चला है और कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव में हम आपका मनोरंजन भी कराते हैं, तो भैया ज़्यादा देर न करते हुए आइए आपका मनोरंजन कराते हैं ब्रह्म।

9 महीने तक रखा गर्भ में। भाइयों ने अभी ब्रह्मदेव आर्य की गई महाभारत के किस्से की रागनी सुनी और इसमें किस्सा था कर्ण और कुंती प्रसंग का। और भाई देखिए, आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा ये तो आप हमें बताएंगे, लेकिन देखिए जैसे मौसम चल रहा है बरसात का, तो किसान भाई इस बात का विशेष ध्यान रखें कि अपने पशु कभी भी ऐसे मौसम में जर जर पशुशाला में न बांधे, क्योंकि भैया बरसात के मौसम में कुछ मकान गिरने की संभावना ज़्यादा होती है। तो भाई अपने नुकसान से बचें और साथ में भैया अपने परिवार का भी ध्यान रखें, अपना भी ध्यान रखें कि भाई अपना जो ऐसा मकान होना चाहिए जो सुरक्षित होना चाहिए, ऐसे मकान में ही आप अपने परिवार के साथ रहें जहां पर आपको सुरक्षा मिले। और भैया एक बात और कहना चाहेंगे सुरक्षा की दृष्टि से, वो ये है कि भैया इन दिनों सांप बिच्छू जैसे जहरीले जंतु निकलते हैं, तो किसान भाई इनसे भी चौकस रहें, अपने और अपने परिवार को अपने बच्चों को इन चीज़ों के बारे में बताएं। और भाई तालाब के किनारे या कहीं गड्ढों में जहां गहरे गड्ढे होते हैं उनमें आजकल पानी भर गया होगा क्योंकि वर्षा काफ़ी हुई है, तो ऐसी जगह अपने बच्चों को भेजने से बचें, यानी कि अपने घर में ही रहें वर्षा में, और जो ज़रूरी काम हो तभी बाहर निकलें। तो ऐसी किसान भाइयों से हम अपील करते हैं। और भैया ये भी अपील करते हैं कि आप हमें अपनी प्रतिक्रियाएं अवश्य भेजें, और आप हमें दो तरीकों से प्रतिक्रियाएं भेज सकते हैं। एक तो आप अपने व्हाट्सएप संदेश से हमें प्रतिक्रिया भेज सकते हैं, जिसके लिए हमारा नंबर है 9457072888। और भैया दूसरा तरीका है आपके पत्रों द्वारा। तो भाई आप हमें हमारे वही पुराने पते पर पत्र भेजें। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि जगत द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी नजीबाबाद पिन 246763। तो भैया इस पते पर हमें आपके पत्रों की प्रतीक्षा रहेगी। और भाई अब अगले कार्यक्रम तक हमारे किसान भाई अपने भैया नरेश पाल सिंह को अनुमति दें। किसान भाइयों राम राम।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कृषि जगत। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6:45 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम विविधा। इस कार्यक्रम में श्रोताओं लीजिए सुनिए रविंद्र त्यागी से वार्ता। विषय है शांति और विकास, एक सिक्के के दो पहलू।
1: शांति और विकास वास्तव में एक ही सिक्के के दो ऐसे पहलू हैं जो एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। दोनों का संबंध इतना गहरा और परस्पर निर्भर है कि किसी एक की अनुपस्थिति में दूसरे की कल्पना भी नहीं की जा सकती। शांति जहां विकास के लिए अनुकूल और स्थिर वातावरण प्रदान करती है, वहीं विकास समाज में समानता, अवसर और न्याय सुनिश्चित कर शांति को स्थायी बनाता है। इसलिए कहा जा सकता है कि शांति और विकास एक दूसरे के पूरक ही नहीं बल्कि एक दूसरे के अस्तित्व के आधार भी हैं। सबसे पहले यदि शांति की बात करें तो यह किसी भी समाज या राष्ट्र के विकास की बुनियादी शर्त है। एक शांत वातावरण में भी बेहतर शासन व्यवस्था, शिक्षा प्रणाली, व्यापार, उद्योग और नवाचार फल फूल सकते हैं। जब समाज में भय, हिंसा या स्थिरता नहीं होती तब लोग रचनात्मक गतिविधियों में भाग लेते हैं और अपनी ऊर्जा विकास के कार्यों में लगाते हैं। इसके विपरीत अशांति और संघर्ष संसाधनों को नष्ट कर देते हैं, विकास योजनाओं को बाधित करते हैं और समाज को पीछे धकेल देते हैं। इसलिए शांति को विकास की नींव कहा जाना बिल्कुल उचित है। दूसरी ओर विकास भी शांति का एक सशक्त माध्यम है। जब विकास समावेशी और निष्पक्ष होता है तब समाज के सभी वर्गों को शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य और मूलभूत सुविधाओं तक समान रूप से पहुंच मिलती है। इससे असंतोष, हताशा और असुरक्षा की भावना कम होती है जो अक्सर संघर्ष और आंदोलनों का कारण बनती है। यदि विकास में पक्षपात या असमानता होती है तो समाज में असंतुलन पैदा हो जाता है और यही असंतुलन धीरे धीरे अशांति में बदल जाता है। इतिहास गवाह है कि जहां जहां विकास का लाभ सीमित वर्ग तक सिमट गया वहां सामाजिक तनाव और संघर्ष बढ़े। पिछले कुछ वर्षों में देखा गया कि विश्व के कई देशों में जन आंदोलन के कारण अशांति फैल गई। नेपाल, ईरान से लेकर श्रीलंका और बांग्लादेश से लेकर पाकिस्तान तक कई देशों में जन आंदोलनों के साथ विकास बाधित हुआ। आर्थिक संकट और राजनीतिक अस्थिरता के बीच सरकारें गिरी। सड़क से लेकर संसद तक अशांति तो फैली, वहीं इससे देश का विकास भी बाधित हो गया। यूं कहना भी अतिशयोक्ति नहीं होगी कि विकास की दौड़ में दौड़ते हुए गिर पड़े। वेनेजुएला और ईरान का हाल इसका एक उदाहरण है। ऐसा भी नहीं है कि अशांति से एक पक्ष पर ही बुरा प्रभाव पड़ता है, इससे दोनों पक्षों का विकास प्रभावित होता है। व्यापारिक और आर्थिक रूप से कमर टूटने के कारण विकास के बजाय अपनी पहचान बनाने और न्याय के लिए जुटता है। भारत को देखा जाए तो भारत की एक अलग तस्वीर दिखाई देती है। चुनाव हुए, दबाव भी था, विरोध प्रदर्शन भी हुए, फिर भी देश डटा रहा। लोकतंत्र ने अपना काम किया, सत्ता का हस्तांतरण शांतिपूर्वक हुआ और व्यवस्था स्थिर बनी रही। किसी को पसंद हो या न हो, इस दौर ने एक बात साफ कर दी, भारत को तोड़ना आसान नहीं। देश बहुत बड़ा है, बेहद विविध है और सबसे बढ़कर अपनी ताकत और जिम्मेदारी दोनों को समझता है। शांति और विकास के लिए भारत हमेशा अग्रणी रहा है। विकास और शांति की यह परस्पर निर्भरता राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। जब कोई राष्ट्र शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा को प्राथमिकता देता है तो हिंसा और अपराध की संभावना स्वतः कम हो जाती है। शिक्षित और रोजगार युक्त समाज अधिक जागरूक होता है और समस्याओं का समाधान संवाद और सहयोग के माध्यम से करता है, न कि टकराव के जरिए। इसके विपरीत अशांति और संघर्ष न केवल विकास की गति को रोकते हैं बल्कि वर्षों की मेहनत से बनी संरचनाओं को भी नष्ट कर देते हैं। अशांति असामाजिक तत्वों का संघर्ष को बढ़ावा देने का हथियार है, वहीं शांति और विकास देश की आर्थिक, सामाजिक, व्यापारिक स्थिति को मजबूत बनाने का एक ऐसा शस्त्र है जो एक दूसरे पर गहरा प्रभाव

0: किए जा सकते हैं। यह एक बहुआयामी प्रक्रिया है जिसमें सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ साथ सभी के लिए अवसर पैदा करना मुख्य लक्ष्य है। भारत सहित कई विश्व के विकासशील देश जो शांतिप्रिय हैं, ऐसे देशों की यदि युद्ध या अशांति का साथ देते तब विकास होना संभव नहीं था। आज भारत ने शांति के सहारे भारत में विकास के नए आयाम स्थापित किए। आज भारत इसी के कारण कई क्षेत्रों में अपने उत्पाद बना रहा है, जिन उत्पादों के लिए पहले भारत को दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ता था। अशांति और हिंसा मनुष्य को और परिवार के विकास को भी प्रभावित करती है, जबकि शांति विकास को गति प्रदान करने के साथ साथ विकास करने की भावना को बढ़ावा देती है। आज देश विकास के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। अशांति और संघर्ष विकास को 20 वर्ष पीछे धकेल देता है, जबकि शांति विकास का नया रास्ता दिखाता है। शांति और विकास महात्मा गांधी के अहिंसा के सिद्धांत पर आधारित हैं। यह न्याय की भूमिका भी अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। सच्चा विकास केवल आर्थिक वृद्धि तक सीमित नहीं होता, बल्कि उसमें सामाजिक न्याय, समानता और अवसरों की समान उपलब्धता शामिल होती है। जब विकास न्याय संगत होता है तब समाज में विश्वास और आपसी सौहार्द बना रहता है, जो शांति का मूल आधार है। बिना न्याय के विकास खोखला होता है और वह लंबे समय तक शांति को बनाए नहीं रख सकता। अतः यह स्पष्ट है कि सतत और समावेशी विकास के लिए शांति अपरिहार्य है और दीर्घकालिक शांति की स्थापना के लिए न्यायपूर्ण विकास आवश्यक है। दोनों एक दूसरे को मजबूत करते हैं और साथ मिलकर ही किसी समाज या राष्ट्र को समृद्ध, स्थिर और सशक्त बना सकते हैं। इस प्रकार यह निर्विवाद रूप से सिद्ध होता है कि शांति और विकास वास्तव में एक ही सिक्के के दो पहलू हैं।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विविधा। इस कार्यक्रम में आपने सुनी रविंद्र त्यागी से वार्ता, विषय था शांति और विकास, एक सिक्के के दो पहलू। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्स पर। अपने श्रोताओं को एक बार फिर याद दिला दें, कंट्री वाइड और इनसाइड्स ये दोनों ही कार्यक्रम आप सुनेंगे रात्रि 9:30 पर। ये कार्यक्रम हम अपने लखनऊ केंद्र से रिले करेंगे। गीत संध्या कार्यक्रम 8:00, एक ही फिल्म से कार्यक्रम 8:30 पर। सुगम संगीत कार्यक्रम में शाम 7:32 पर सुनेगा शान ए आलम और साथियों की गाई कव्वाली। रात्रि 10:30 पर सुनेगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश। 10:00 आप सुनेंगे रूपक, हिंदी साहित्य में तुलनात्मक आलोचना के जनक पंडित पदम सिंह शर्मा। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम छाया गीत।

साहिर लुधियानवी का लिखा गीत, रवि के संगीत में भी आप सुन रहे थे महेंद्र कपूर की आवाज में फिल्म थी हमराज। आकाशवाणी नजीबाबाद से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम छाया गीत। कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं आशा भोसले और मोहम्मद रफी की युगल आवाजों में। फिल्म का नाम है एक फूल दो माली। गीत प्रेम धवन का है और संगीत दिया है रवि ने।

आशा भोसले और मोहम्मद रफी का गाया गीत अभी आपने सुना फिल्म एक फूल दो माली से। कार्यक्रम का अंतिम गीत आपको सुनवा रहे हैं मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर की युगल आवाजों में फिल्म फर्ज से। संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है और गीत लिखा है आनंद बख्शी ने।

सुमन कल्याणपुर और मोहम्मद रफी के गाए फिल्म फर्ज के इसी गीत के साथ कार्यक्रम छाया गीत अब यहीं पर संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं, प्रस्तुत है तेजगान।

अभी आप देशगान सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं लीजिए सुनिए हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के शेष और कल के कार्यक्रमों के विषय में जानकारी। पहले सुनिए आज के शेष कार्यक्रम।

रात्रि 9:30 पर सुनिएगा कंट्री वाइड और इनसाइट्स, ये दोनों ही कार्यक्रम हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। रात्रि 10 बजे सुनिएगा रूपक, हिंदी साहित्य में तुलनात्मक आलोचना के जनक पंडित पद्म सिंह शर्मा। आपकी फरमाइश आप सुनेंगे रात्रि 10:30 पर। गीत संध्या 8 बजे और एक ही फिल्म से कार्यक्रम 8:30 पर। सुगम संगीत में अब से कुछ ही देर में यानी 7:32 पर सुनेगा शान आलम और साथियों की गाई कव्वाली। ये थे हमारे आज के शेष कार्यक्रम और लीजिए अब सुनिए कल के कार्यक्रमों के विषय में जानकारी। कल सुबह 7:31 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सूरज के साथ साथ धरती गाती है। कार्यक्रम में कल सुबह 9:25 पर सुनिएगा आर्यवीर सिंह की गाई रागिनी। गीत तुम्हारे कार्यक्रम कल सुबह 10 बजे। सजीव फोन इन कार्यक्रम जागरूक श्रोता 10:30 पर। चित्रपट संगीत सुबह 11 बजे। प्रायोजित कार्यक्रम उमंग 11:30 पर और हमारी बेड़ियां 12 बजे। शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम में कल दोपहर 12:15 पर सुनिएगा दिनेश डंडरियाल का गायन, आप प्रस्तुत करेंगे राग यमन। मिड डे मेलोडी कल दोपहर 12:30 पर। घर संसार कार्यक्रम में कल दोपहर 1:15 पर सुनिएगा कार्यक्रम माटी मारे देश की। लोकधारा कार्यक्रम में 1:45 पर आप सुनेंगे सीताराम चौहान के गाए चौंसारी लोकगीत। फिल्मी कव्वालियां कल दोपहर 2:30 पर। मेरा सपना उन्नत भारत क्रम में कल शाम 5 बजे असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए सुनेगा प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना और आम आदमी बीमा योजना के विषय में। युवाणी कार्यक्रम में कल शाम 5:15 पर क्रम होगा बूझो तो जाने कुछ खास है आज ये शाम, गजलों के नाम, यंग अचीवर्स, लव स्टोरीज और साथ ही आपन लेंगे फिल्म संगीत का। ये थे हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज और कल के कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 7:18 होने को हैं, थोड़ी ही देर में आप प्रादेशिक समाचार सुनेंगे।

प्लेटो का कथन है, बुद्धिमान लोग इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनके पास कहने के लिए कुछ होता है, और मूढ़ व्यक्ति इसलिए बोलते हैं क्योंकि उन्हें कुछ भी बोलना होता है।

0: जीवन कठिन प्रतीत हो सकता है, लेकिन आपके करने योग्य हमेशा कुछ न कुछ होता है जिसे करके आप सफल हो सकते हैं। ये विचार है स्टीफन हॉकिन के। महात्मा गांधी के अनुसार युद्ध भूमि से भागने से अच्छा है हम लड़खड़ाएं, गिर जाएं, लेकिन फिर से शक्ति बटोर कर खड़े हो जाएं।
1: निश्चित रूप से बहुत।
2: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बांदा में 710 करोड़ रुपए से अधिक लागत की 229 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, डबल इंजन सरकार ने बुंदेलखंड में बदली विकास की तस्वीर। श्री राम जन्मभूमि मंदिर के चढ़ावे में अनियमितता के मामले में पुलिस ने तेज की जांच। 8 आरोपियों समेत संदेह के दायरे में आए परिजनों के 30 बैंक अकाउंट सीज। प्रदेश सरकार 12 जुलाई को लगाएगी 35 करोड़ पौधे। प्रदेश के वन राज्य मंत्री अरुण सक्सेना ने कहा, हरित क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है सरकार। और प्रदेश में कई जनपदों में भारी वर्षा से जनजीवन प्रभावित। मौसम विभाग ने 11 जुलाई तक बारिश का ऑरेंज अलर्ट किया जारी। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं तनवीर फातिमा और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज बांदा में 710 करोड़ रुपए से अधिक लागत की 229 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र, चेक और आयुष्मान कार्ड वितरित किए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि बुंदेलखंड के विकास का सपना डबल इंजन सरकार ने साकार किया है। सरकार इस क्षेत्र को यूपी के सबसे बड़े औद्योगिक शहर बीड़ा के रूप में विकसित कर रही है।
3: मैं उन्हें आश्वस्त करता हूं कि हमारे बुंदेलखंड के विकास के लिए, यहां की विरासत के संरक्षण के लिए जो भी प्रोजेक्ट शासन के संज्ञान में आएगा, उसको आगे बढ़ा करके बुंदेलखंड को धरती का स्वर्ग बनाने का काम हम लोग करेंगे, आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे।
2: मुख्यमंत्री ने बांदा में वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी की प्रतिमा का अनावरण भी किया। इससे पहले मुख्यमंत्री ने आज अपने चित्रकूट दौरे के दूसरे दिन कानून व्यवस्था और विकास परियोजनाओं की समीक्षा कर अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने भगवान श्री कामतानाथ के दर्शन किए और पावन कामदगिरी की परिक्रमा कर प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। अयोध्या के श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में चढ़ावे में अनियमितता के मामले में पुलिस की विशेष टीम ने जांच तेज कर दी है। पुलिस ने 8 आरोपियों समेत संदेह के दायरे में आए परिजनों और रिश्तेदारों के करीब 30 बैंक अकाउंट सीज कर दिए हैं। पुलिस ने आरोपी अनुकल्प मिश्रा के चाचा को हिरासत में लिया है। इसके साथ ही इनायत नगर स्थित एक सर्राफा प्रतिष्ठान के संचालक को भी हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। इस बीच श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी महाराज ने बताया कि संत समाज ने ट्रस्ट के फैसलों पर संतुष्टि जताई है। उन्होंने बताया कि ट्रस्ट ने मंदिर में चढ़ावा गिनती स्थल का निरीक्षण किया है और ऐसी व्यवस्था की जा रही है जिससे भविष्य में कोई अन्य घटना दोबारा न हो सके।
4: इस बात का विश्वास रखिए कि हम लोग इस कार्य को अब अधिक दक्षता के साथ करेंगे, किसी पर निर्भर नहीं रहेंगे और जब यहाँ का सीईओ नियुक्त हो जाएगा उसके पश्चात तो सारी कार्य पद्धति में एक निखार आएगा।
2: श्री राम जन्मभूमि मंदिर में दर्शन के लिए जारी किए जाने वाले वीआईपी पास की व्यवस्था में बदलाव किया गया है। ट्रस्ट के महासचिव रहे चंपत राय, ट्रस्टी अनिल मिश्रा और गोपाल के रेफरेंस आईडी सस्पेंड कर दी गई है। इसके चलते उनके माध्यम से विशेष दर्शन पास जारी नहीं हो रहे हैं। नई रेफरेंस आईडी अभी तक जारी नहीं की गई है। ऐसे में पहले से जारी किए गए विशेष पास मान्य किए जा रहे हैं। नए पास नई रेफरेंस आईडी जारी होने के बाद बन सकेंगे। केंद्रीय राज्य मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने आज मिर्जापुर में पार्टी पदाधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक कर संगठनात्मक गतिविधियों पर चर्चा की। मीडिया से बात करते हुए श्री चौधरी ने अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी के मामले को गंभीर बताते हुए कहा कि जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई होगी।
1: मंदिर बनने के बाद उसका एक प्रभावित ट्रस्ट बना हुआ है, ट्रस्ट के ही देख रेख में होता है, सरकार का उसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं होता है और निश्चित तौर से जो भी ट्रस्ट का हेड है वो भी जवाबदेह होगा और जो जांच में दोषी पाया जाएगा निश्चित तौर से कड़ी से कड़ी सजा।
2: एक राष्ट्र एक चुनाव पर पीपी चौधरी की अध्यक्षता में गठित संयुक्त संसदीय समिति 10 से 15 जुलाई तक पणजी और लखनऊ का दौरा करेगी। इस अध्ययन दौरे का उद्देश्य क्षेत्रीय स्तर पर संवाद की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना तथा विभिन्न हितधारकों के साथ व्यापक विचार विमर्श करना है। समिति इस दौरान उच्च संवैधानिक पदाधिकारियों, निर्वाचित जनप्रतिनिधियों, राजनीतिक दलों, अधिवक्ता संघों और विभिन्न पेशेवर संगठनों के साथ परामर्श करेगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कृषि क्षेत्र में उत्कृष्ट नीतिगत नेतृत्व के लिए उत्तर प्रदेश को 17वें एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड 2026 से सम्मानित किया। नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में यह सम्मान प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही को प्रदान किया गया। इस मौके पर कृषि मंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश आज कृषि के क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। उन्होंने कहा कि आज उत्तर प्रदेश का खाद्यान्न उत्पादन 543 लाख मीट्रिक टन से बढ़कर 750 लाख मीट्रिक टन हो गया है। देश के कुल उत्पादन में अकेले यूपी 22% योगदान कर रहा है। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। प्रदेश सरकार की ओर से 12 जुलाई को 35 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। इस महाअभियान के तहत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में एक पेड़ मां के नाम लगाएंगे। प्रदेश के वन राज्य मंत्री अरुण सक्सेना ने कहा कि सरकार हरित क्षेत्र को बढ़ावा देने को लेकर प्रतिबद्ध है और ये कीर्तिमान आसानी से हासिल करेगी।
5: 35 करोड़ का लक्ष्य बड़ा है, लेकिन उत्तर प्रदेश और माननीय योगी जी की सरकार और यहाँ की जनता के लिए बहुत बड़ा नहीं। हमने पिछली बार भी 35 करोड़ का टारगेट था तो हमने 36 करोड़ पेड़ लगाए थे एक ही दिन में, तो हमारे लिए 35 करोड़ का लक्ष्य बड़ा जरूर है लेकिन बहुत बड़ा नहीं है, हम इस पे कहीं ज्यादा पेड़ लगाएंगे।
2: राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की अध्यक्षता में आज कानपुर के छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह संपन्न हुआ। इस मौके पर विद्यार्थियों को 1 लाख से अधिक डिग्रियां और 51 पदक प्रदान किए गए। पदक पाने वालों में 9 छात्र और 42 छात्राएं शामिल हैं। इस मौके पर आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए किट का वितरण और 800 बालिकाओं का HPV टीकाकरण कराया गया। इस मौके पर राज्यपाल ने कहा कि अब तक लगभग 3 लाख बालिकाओं का निशुल्क HPV टीकाकरण कराया जा चुका है। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2026 की प्रोविजनल उत्तर कुंजी को लेकर अभ्यर्थी 14 जुलाई तक ऑनलाइन आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष डॉ. प्रशांत कुमार ने जानकारी दी है। TET परीक्षा 2 और 3 जुलाई को प्रतिदिन 2-2 पालियों और 4 जुलाई को प्रथम पाली में सम्पन्न हुई थी। भातखंडे संस्कृत विश्वविद्यालय ने प्रवेश के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 15 जुलाई तक बढ़ा दी है। अभ्यर्थी विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं। प्रदेश के कई जनपदों में बारिश ने आम जनजीवन को प्रभावित किया है। राजधानी लखनऊ समेत फरुखाबाद, मुजफ्फरनगर, संभल, नोएडा, अयोध्या, चित्रकूट, बिजनौर सहित कई जिलों में आज बारिश हुई। बारिश और जलभराव के चलते संभल और मुजफ्फरनगर में जिला प्रशासन ने आज स्कूलों में अवकाश घोषित कर दिया। अमरोहा में बारिश और बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद गंगा का जलस्तर बढ़ गया है, जिससे कई गांवों में जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। बाढ़ की आशंका को देखते हुए यहां 11 बाढ़ चौकियां स्थापित की गई हैं। लगातार बारिश के कारण गंडक नदी कुशीनगर के खड्डा में खतरे के निशान के करीब पहुंच गई है। लखनऊ स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के मौसम वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने बताया कि 11 जुलाई तक प्रदेश में कई स्थानों पर भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है।
6: पिछले 24 घंटों के दौरान वेस्ट यूपी में हेवी टू वेरी हेवी रेन के साथ कहीं कहीं एक्सट्रीमली हेवी रेन हुई है, और अगर आगे आने वाले दिनों में बात करें तो ये उत्तरोत्तर मध्य उत्तर प्रदेश और उसके बाद पूर्वी उत्तर प्रदेश की ओर आगे बढ़ेगा। यद्यपि यह उत्तरोत्तर कमजोर होता जाएगा, परंतु इसके प्रभाव से कल जो है इसके सेंट्रल यूपी की तरफ आने पर और थोड़ा कमजोर होने पर वर्षा की मात्रा में थोड़ी कमी आएगी, लेकिन भारी से बहुत भारी वर्षा का दौर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कल यानी कि 10 जुलाई को भी जारी रहेगा, और इसके बाद 11 जुलाई को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इसमें व्यापक तौर पर कमी आ जाएगी और तराई इलाकों में या कहीं कहीं भारी वर्षा तक सीमित हो जाएगा।
2: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बांदा में 710 करोड़ रुपए से अधिक लागत की 229 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, डबल इंजन सरकार ने बुंदेलखंड में बदली विकास की तस्वीर। श्री राम जन्मभूमि मंदिर के चढ़ावे में अनियमितता के मामले में पुलिस ने तेज की जांच। 8 आरोपियों समेत संदेह के दायरे में आए परिजनों के 30 बैंक अकाउंट सीज। प्रदेश सरकार 12 जुलाई को लगाएगी 35 करोड़ पौधे। प्रदेश के वन राज्य मंत्री अरुण सक्सेना ने कहा, हरित क्षेत्र बढ़ाने को लेकर प्रतिबद्ध है सरकार। और प्रदेश के कई जनपदों में भारी वर्षा से जनजीवन प्रभावित। मौसम विभाग ने 11 जुलाई तक बारिश का ऑरेंज अलर्ट किया जारी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: मीडियम वेव 401.6,
1: मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज पर। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 7:30 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुगम संगीत। इस कार्यक्रम में श्रोताओं लीजिए सुनिए शान-ए-आलम और साथियों की गाई कव्वाली।

आकाशवाणी नजीबाबाद से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुगम संगीत, और इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं शाने आलम और साथियों की गाई कव्वाली। लीजिए अब

सुगम संगीत कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे शाने आलम और साथियों की गायी कव्वाली। इसी के साथ कार्यक्रम सुगम संगीत अब यहीं पर संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम गीत संध्या। कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को ज्योति गौड़ का प्यार भरा नमस्कार। स्वागत आप सभी का आज के इस कार्यक्रम में। और श्रोताओं, कार्यक्रम का पहला गीत लीजिए सुनिए कुमार शानू और अलका याग्निक की युगल आवाजों में।

बरसात का मौसम श्रोताओं आ ही चुका है और हम कल से बरसात का मजा भी ले रहे हैं। कई जगहों पर पानी भी भरा है लेकिन फिर भी बरसात का अपना मजा है। बरसात होने से श्रोताओं कई हमें परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है लेकिन कहीं कहीं जगह तो आराम ही मिलता है। जैसे अब खेतों के लिए बड़ा अच्छा है बरसात का पानी लेकिन जब जगह जगह पानी भर रहा है, सड़कें जाम हो रही हैं और जन जन जन के लोग परेशान हो रहे हैं, तो उनके लिए बरसात का पानी थोड़ा दिक्कत करता है। लेकिन

0: जब टिप टिप टिप टिप बूंदे बरसती हैं तो बरसात जो है वो सबसे अच्छी लगती है, और जब गर्मी में बरसात आए तो राहत ही राहत, और मौसम ठंडा, गर्मी से राहत में भी बरसात का अपना अलग मजा है। जी हाँ, ये गीत हमने आपको सुनवाया कुमार शानू और अलका याग्निक की युगल आवाजों में। फिल्म का नाम था दिल कितना नादान है, संगीत अनु मलिक का था और गीत लिखा था राहत इंदौरी ने। कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं अभिजीत और अलका याग्निक की युगल आवाजों में फिल्म बादशाह से। श्रोताओ, प्यार जब दिल में दस्तक देता है ना तो दुनिया कुछ और ही नजर आने लगती है। चेहरे पर मुस्कान, आंखों में सपने और दिल में किसी खास का एहसास, यही तो मोहब्बत का सबसे खूबसूरत रंग है।
1: अपने व्यापार को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना चाहते हैं?
2: तो इंतजार किस बात का,
1: अभी बुक कराइए अपना विज्ञापन आकाशवाणी नजीबाबाद के संग।
2: विज्ञापन बुकिंग कराने के लिए आज ही संपर्क करें।
1: हमारा मोबाइल नंबर है 8865845809।
2: नंबर एक बार फिर सुन लीजिए 8865845809।
1: और हमारा ईमेल आईडी है
2: akashwaninajibabad@gmail.com।
1: तो देर किस बात की, उठाइए अपना फोन और बुक कराइए अपना विज्ञापन
2: आकाशवाणी नजीबाबाद के संग।
0: लीजिए सुनिए ये कार्यक्रम का अगला गीत अभिजीत और अलका याग्निक की आवाजों में।

ये गीत अभी आपने सुना अभिजीत और अलका याग्निक की युगल आवाजों में। फिल्म थी बादशाह। श्रोताओं, आंखें केवल देखने का माध्यम नहीं होती, बल्कि ये दिल की भावनाओं की सबसे सच्ची जुबान भी होती है। कभी खुशी, कभी इंतजार, कभी अपनापन और कभी प्रेम। बिना कुछ कहे ही आंखें बहुत कुछ बयां कर जाती हैं।

अलका याग्निक, बाबू सुप्रियो और साथियों का गाया ये गीत अभी आपने सुना फिल्म चोरी चोरी चुपके चुपके से। इस गीत को संगीत अनु मलिक ने दिया था और गीत लिखा था समीर ने। श्रोताओं, मौसम बदलते ही मन के रंग भी बदलने लगते हैं। कभी ठंडी हवाएं सुकून देती हैं तो कभी बारिश की फुहारे पुराने एहसासों को ताज़ा कर जाती हैं। और जब मौसम में प्यार की खुशबू घुल जाए तो दिल की धड़कनें भी कुछ अलग ही अंदाज में गुनगुनाने लगती हैं। सुनिएगा कैसे।

सोनू निगम के गाए फिल्म चुप चुपके के इसी गीत के साथ कार्यक्रम गीत संध्या अब यहीं पर संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम एक ही फिल्म से। एक ही फिल्म से कार्यक्रम में श्रोताओं, आज हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म जानम समझा करो से कुछ गीत। इस फिल्म के गीतों को संगीत दिया है अनु मलिक ने और गीत लिखे हैं मजरू सुल्तानपुरी ने। कार्यक्रम का पहला गीत आपको सुनवा रहे हैं कुमार शानू और अलका याग्निक की युगल आवाजों में।

कुमार शानू का गाया ये गीत सुना अभी आपने। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही फिल्म से, और इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म जानम समझा करो से कुछ गीत। कार्यक्रम का अंतिम गीत लीजिए सुनिए जसविंदर नरूला की आवाज में।

0: जसपिंदर नरूला के गाए फिल्म जानम समझा करो के इसी गीत के साथ कार्यक्रम एक ही फिल्म से अब यहीं पर संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 8:45 होने को हैं। कुछ ही पलों में आप समाचार सुनेंगे।
1: कार आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने शांतिपूर्ण और स्थिर हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त घोषणा पत्र को स्वीकार किया। ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम की आपूर्ति के लिए भी समझौता हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत अधिक विकास अधिक उपलब्धि के मंत्र के साथ दुनिया की शीर्ष 3 अर्थव्यवस्थाओं में से एक बनना चाहता है। मेलबर्न में भारतीय समुदाय को संबोधित किया। राष्ट्रीय महिला आयोग ने IVF केंद्रों को नियंत्रित करने वाले नियमों और कानूनों की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया। सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए उनमें इस्तेमाल होने वाले मुख्य पुर्जों पर मूल सीमा शुल्क में छूट दी। ईरान ने अमेरिका पर बुशहर परमाणु ऊर्जा संयंत्र के पास हवाई हमला करने का आरोप लगाया। जवाब में बहरीन, कुवैत और कतर में अमरीकी ठिकानों पर हमले किए। और फीफा विश्व कप के पहले क्वार्टर फाइनल में आज रात फ्रांस का मुकाबला मोरक्को से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज के बीच आज मेलबर्न में तीसरी ऑस्ट्रेलिया भारत वार्षिक शिखर वार्ता हुई। इस दौरान दोनों नेताओं ने प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता में द्विपक्षीय संबंधों को और सशक्त बनाने पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों में आए परिवर्तनकारी महत्वपूर्ण बदलाव का स्वागत करते हुए क्षेत्रीय स्थिरता, ऊर्जा सुरक्षा और प्रौद्योगिकी नवाचार के लिए व्यापक सहयोग ढांचे को अंतिम रूप दिया। हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से दोनों देशों ने रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर ऐतिहासिक संयुक्त घोषणा पत्र को स्वीकार किया, वार्षिक रक्षा मंत्रियों के संवाद को संस्थागत स्वरूप प्रदान किया तथा समुद्री सुरक्षा सहयोग का प्रारूप जारी किया।
2: हमारे मैरिटाइम सिक्योरिटी कोलैबोरेशन रोडमैप से इंडो पैसिफिक में हमारे साझा प्रयासों को नई ताकत मिलेगी। हम शिप बिल्डिंग, शिप रिपेयर और मेंटेनेंस में भी मिलकर आगे बढ़ेंगे। फ्रेंड, आज हमने कई क्षेत्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी विस्तार पूर्वक चर्चा की।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि दोनों देशों ने यूरेनियम आपूर्ति और महत्वपूर्ण खनिज गलियारे पर ऐतिहासिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए।
2: पीएम सूर्यघर योजना को सपोर्ट करने के लिए हमने मिलकर गुजरात में रूफटॉप सोलर ट्रेनिंग एकेडमी बनाई है। ये एकेडमी अनेक महिलाओं और युवाओं की कैपेसिटी बिल्डिंग में योगदान देगी। न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में आज हमने एक महत्वपूर्ण समझौता किया है। इससे ऑस्ट्रेलिया से भारत को यूरेनियम सप्लाई का मार्ग खुलेगा और हमारे क्लीन एनर्जी के उद्देश्यों को नई ताकत मिलेगी।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि रणनीतिक प्रौद्योगिकी और संसाधन सुरक्षा के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। इसके अंतर्गत ऑस्ट्रेलिया भारत साइबर महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी तथा आपूर्ति श्रृंखला साझेदारी को कार्यान्वित किया गया है। बाद में प्रधानमंत्री मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में मेलबर्न मीट्स मोदी कार्यक्रम में कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया गठबंधन नई ऊंचाइयों पर पहुंच गया है। 12 वर्षों में ऑस्ट्रेलिया की अपनी तीसरी यात्रा में प्रधानमंत्री ने 10 लाख से अधिक प्रवासी भारतीयों को द्विपक्षीय मित्रता का आधार स्तंभ बताया। श्री मोदी ने कहा कि 21वीं सदी का भारत एक विकसित राष्ट्र बनने के लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है।
2: 21वीं सदी का भारत आज विकसित होने के लक्ष्य पर काम कर रहा है। ये वो भारत है जो कहता है ग्रो मोर अचीव मोर। हम 140 करोड़ एस्पिरेशन से भरे राष्ट्र है। हम अधीर है, बेसब्र है। हम दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती इकोनॉमी है, लेकिन हम जल्द से जल्द दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमी बनना चाहते हैं।
1: श्री मोदी ने कहा कि भारत में चिप से लेकर जहाजों तक के विनिर्माण का तंत्र विकसित किया जा रहा है।
2: आज चिप से लेकर शिप तक मैन्युफैक्चरिंग का भारत में एक नया इकोसिस्टम डेवलप किया जा रहा है। भारत के बड़े सपनों, बड़ी एस्पिरेशंस की नींव है पीपल फर्स्ट, यानी नागरिक देवो भव का मंत्र। ये आज के भारत की गवर्नेंस का मूल मंत्र बन गया है।
1: इस अवसर पर ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने कहा कि इस आयोजन की ऊर्जा स्पष्ट रूप से महसूस की जा सकती है। एक रिपोर्ट।
3: भारत ऑस्ट्रेलिया के रिश्ते सामान्य कूटनीति से कहीं आगे बढ़ चुके हैं। ये मार्बल स्टेडियम में गूंजती तालियां और लोगों के उत्साह से बड़ा होता है। प्रधानमंत्री मोदी का एक महत्वाकांक्षी और विकसित भारत का दृष्टिकोण, जिसमें वैश्विक विनिर्माण में कामयाबी से लेकर ऑपरेशन ब्रह्मा के अंतर्गत अहम मानवीय मदद तक शामिल है, साबित करता है कि भारत मानवता के हित में लगातार काम कर रहा है। प्रधानमंत्री अल्बनीज ने ऑस्ट्रेलिया में भारतीय समुदाय को दोनों देशों के बीच महत्वपूर्ण सेतु बताया। इससे ये साफ होता है कि भारतीय समुदाय दोनों देशों की व्यवस्था और रणनीतिक रक्षा गलियारे को मजबूती दे रहा है, जिससे हमारा साझा भविष्य सुरक्षित और समृद्ध बना रहे और हम आपसी भरोसे से जुड़े रहें। मेलबर्न से सुहास राम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
1: विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने आज कहा कि तीसरा वार्षिक भारत ऑस्ट्रेलिया शिखर सम्मेलन ऊर्जा सुरक्षा के क्षेत्र में भारत के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। विदेश सचिव ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि शिखर सम्मेलन में भारत को ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम की दीर्घकालिक आपूर्ति सुनिश्चित करने को अंतिम

0: जलवायु परिवर्तन मंत्री तथा न्यूजीलैंड में भारत के उच्चायुक्त सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।
1: ऑकलैंड में वाइटाकरे इंडियन एसोसिएशन द्वारा आयोजित एक समारोह में न्यूजीलैंड में बसे भारतीय समुदाय के आर्थिक योगदान पर आधारित एक रिपोर्ट जारी की गई। इस रिपोर्ट में न्यूजीलैंड की अर्थव्यवस्था में भारतीय समुदाय की बढ़ती भागीदारी और उसके व्यापक आर्थिक प्रभाव का आकलन किया गया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि भारतीय समुदाय उद्यमिता, सूचना प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य, शिक्षा, आतिथ्य, खुदरा व्यापार तथा अन्य क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष प्रस्तुत करते हुए इन्फोमेट्रिक्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ब्रेड ऑल्सन ने कहा कि भारतीय समुदाय न्यूजीलैंड के सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाले समुदायों में से एक है। मंजू मीना, आकाशवाणी समाचार, ऑकलैंड।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: अभियान निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
1: निक्षय मित्र इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: टीबी मुक्त भारत अभियान। अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने IVF केंद्रों को नियंत्रित करने वाले नियमों और कानूनों की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। इस समिति का गठन सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी ARP क्षेत्र में अनियमितताओं के कारण किया गया। ये समिति IVF क्लिनिक, ARP केंद्रों और गैमीट बैंकों को नियंत्रित करने वाले नियामक ढांचे और संबंधित कानूनों की व्यापक समीक्षा करेगी। इसमें महिलाओं के प्रजनन अधिकारों, गरिमा और सुरक्षा की रक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। दिल्ली उच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति आशा मेनन इस विशेषज्ञ समिति की अध्यक्षता करेंगी। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने आज कहा कि वर्ष 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बदलने के लिए बुनियादी विज्ञान में मजबूत आधार होना अत्यंत आवश्यक है। भुवनेश्वर में राष्ट्रीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान के 15वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही। एक रिपोर्ट।
3: उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने कहा कि वैज्ञानिक क्षमता विकसित भारत की आधारशिला है। नाइजर के 15वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था बनाने, राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने और टिकाऊ विकास सुनिश्चित करने के लिए बुनियादी विज्ञान में मजबूत नींव का होना बहुत जरूरी है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि ये ऐसे युवा शोधकर्ताओं को तैयार कर रहा है जो जलवायु परिवर्तन, सार्वजनिक स्वास्थ्य आपात स्थितियों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्वांटम टेक्नोलॉजी जैसे उभरती वैश्विक चुनौतियों का सामना करने में सक्षम है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
2: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आज राज्य में समान नागरिक संहिता UCC लागू करने के लिए रूपरेखा तैयार करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना देसाई की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय समिति के गठन की घोषणा की। प्रस्तावित कानून में धर्म की परवाह किए बिना विवाह, तलाक, विरासत, उत्तराधिकार और गोद लेने जैसे मामलों को शामिल किए जाने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि समिति राज्य सरकार को अपनी सिफारिशें सौंपने से पहले प्रस्तावित कानून के कानूनी, संवैधानिक और सामाजिक पहलुओं की जाँच करेगी। सरकार ने स्मार्टफोन, लैपटॉप, पहनने योग्य स्मार्ट उपकरणों और स्मार्ट टीवी जैसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के निर्माण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से डिस्प्ले असेंबली, लिथियम आयन सेल और इंडक्टर कॉयल मॉड्यूल के निर्माण में उपयोग होने वाले सामान पर मूल सीमा शुल्क में छूट देने का फैसला किया है। ईरान ने अमेरिका पर आज बुशहर परमाणु ऊर्जा संयंत्र के पास हवाई हमला करने का आरोप लगाया। ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी ने बताया कि ये कार्रवाई उस पर हमले समाप्त करने की अमेरिकी सेना की घोषणा के कुछ घंटों बाद हुई।

0: अमरीकी केंद्रीय कमान ने इसकी पुष्टि नहीं की है। अमरीका ने आज सुबह ईरान पर फिर हवाई हमले किए। ईरान ने भी खाड़ी क्षेत्र में अमरीका के सहयोगी देशों को निशाना बनाकर जवाबी कार्रवाई की। ईरानी मिसाइलों ने कुवैत और कतर को निशाना बनाया। इन हमलों से पश्चिम एशिया में युद्ध समाप्त करने का अंतरिम समझौता खतरे में पड़ गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने बताया है कि दक्षिण पश्चिम मानसून ने पूरे देश को अपनी चपेट में ले लिया है। उत्तराखंड में कल तेज वर्षा और कुछ स्थानों पर मूसलाधार वर्षा की चेतावनी जारी की है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों, सिक्किम तथा उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में शुक्रवार को तेज वर्षा होगी। फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल मुकाबले आज से शुरू हो रहे हैं। पहले मुकाबले में आज रात 1:30 बजे बोस्टन में फ्रांस का सामना मोरक्को से होगा। वहीं दूसरे क्वार्टर फाइनल मुकाबले में कल देर रात स्पेन और बेल्जियम आमने सामने होंगे। भारत और इंग्लैंड के बीच चौथा T20 मैच आज रात 10 बजे से ब्रिस्टल में खेला जाएगा। 5 मैचों की श्रृंखला में 2-0 से पीछे भारतीय टीम को सीरीज ड्रॉ कराने के लिए हर हाल में आज का मैच जीतना होगा। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में चेक गणराज्य की कैरोलिना मुखोवा ने महिला सिंगल्स के फाइनल में प्रवेश कर लिया है। कैरोलिना ने सेमीफाइनल में अमेरिका की कोको गॉफ को हराया। दूसरे सेमीफाइनल में मार्टा कोच्यूक का मुकाबला लिंडा नोस्कोवा से होगा। पुरुष सिंगल्स के सेमीफाइनल मुकाबले कल खेले जाएंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त घोषणा पत्र स्वीकार किया। ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम की आपूर्ति के लिए भी समझौता हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत अधिक विकास अधिक उपलब्धि के मंत्र के साथ दुनिया की शीर्ष 3 अर्थव्यवस्थाओं में शामिल होने का इच्छुक। मेलबर्न में भारतीय समुदाय को संबोधित किया। राष्ट्रीय महिला आयोग ने IVF केंद्रों को नियंत्रित करने वाले नियमों और कानूनों की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया। सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए उनमें इस्तेमाल होने वाले मुख्य पुर्जों पर मूल सीमा शुल्क में छूट दी। ईरान ने अमरीका पर बुशहर परमाणु ऊर्जा संयंत्र के पास हवाई हमला करने का आरोप लगाया। जवाब में बहरीन, कुवैत और कतर में अमरीकी ठिकानों पर हमले किए। और फीफा विश्व कप के पहले क्वार्टर फाइनल में आज रात फ्रांस का मुकाबला मोरक्को से। इसके साथ ही समाचार संध्या का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। आई एम अनुजा कुमार विद द न्यूज एट 9। The headlines. India and Australia adopt a joint declaration on defense and security cooperation to ensure free and open Indo-Pacific. Also ink deal for supply of uranium from Australia. Prime Minister Narendra Modi says India aspires to be one of world's top 3 economies driven by motto of grow more, achieve more. Addresses Indian diaspora in Melbourne. National Commission for Women forms a high-level expert committee to review regulatory framework and laws governing IVF clinics. Government waives basic customs duty on key components used in electronic devices to promote their domestic production. Iran accuses US of conducting airstrike near Bushehr nuclear power plant, attacks US bases in Bahrain, Kuwait and Qatar. And in FIFA World Cup, France to face Morocco in the first quarterfinal at Boston in US tonight. And now the news in detail. India and Australia today adopted a new joint declaration on defense and security cooperation and a maritime security collaboration roadmap to promote a free, open and inclusive Indo-Pacific. The deal was signed following delegation-level talks between Prime Minister Narendra Modi and his Australian counterpart Anthony Albanese during the 3rd Australia-India Annual Leaders Summit in Melbourne. In a joint press statement after the talks, Prime Minister Modi said the Indo-Pacific is not just

0: News agency reported that the strike took place around noon today, hours after the U.S. military's Central Command said it had concluded its strikes on Iran. Earlier in the day, the United States launched fresh airstrikes on Iran, while Tehran responded with missile attacks targeting U.S. allied countries in West Asia. Sirens were reported in Bahrain, Kuwait, Qatar and Jordan, where the United States maintains military presence. The latest escalation has raised concerns over a fragile ceasefire aimed at ending the conflict in the region. The India Meteorological Department, or IMD, today said that the southwest monsoon has covered the entire country. IMD has issued a red alert for very heavy rainfall over Uttarakhand tomorrow. The weather agency has predicted heavy rainfall over Delhi, Haryana, Chandigarh, Himachal Pradesh, Bihar, East Madhya Pradesh and Madhya Maharashtra over the next 4 days. Meanwhile, parts of Delhi NCR witnessed light to moderate rain today. In FIFA World Cup, France will face Morocco in the first quarterfinal at Boston in US tonight. The match will begin at 1:30 a.m. Indian time. Spain will take on Belgium in the second quarterfinal match tomorrow late night. In the remaining quarterfinal matches, Norway will play against England, while defending champions Argentina will clash with Switzerland on Sunday morning. In Wimbledon tennis, Karolina Muchová of Czech Republic has reached women's singles final. 10th seed Muchová defeated 7th seed American player Coco Gauff in the first semi-final of the women's singles this evening. Later in the second semi-final, Ukraine's Marta Kocsiuk will take on Czech player Linda Noskova. And in men's cricket, India will face England in the 4th T20 International of the 5-match series at the County Ground in Bristol tonight. The match will begin at 10 p.m. Indian Standard Time. The Indian team trailed the series 0-2, making this a must-win game to stay alive. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. India and Australia adopt a joint declaration on defence and security cooperation to ensure free and open Indo-Pacific, also ink deal for supply of uranium from Australia. Prime Minister Narendra Modi says India aspires to be one of the world's top three economies, driven by the motto of Grow More, Achieve More, addresses Indian diaspora in Melbourne. National Commission for Women forms a high-level expert committee to review regulatory framework and laws governing IVF clinics. Government waives basic customs duty on key components used in electronic devices to promote their domestic production. Iran accuses U.S. of conducting airstrike near Bushehr nuclear power plant, attacks U.S. bases in Bahrain, Kuwait and Qatar. And in FIFA World Cup, France to face Morocco in the first quarterfinal at Boston in U.S. tonight. That is all in the news at 9. Good night.
1: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शमीम अहमद। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने आजाद और खुले भारत बहरुल काहिल को यकीनी बनाने के सिलसिले में दिफा और सिक्योरिटी तआवुन के एक मुश्तरका ऐलानिए पर दस्तखत किए हैं। ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम की सप्लाई के लिए भी एक समझौता किया गया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत ज्यादा तरक्की करो, ज्यादा हुसूलयाबी करो के नज़्बुल ऐन से मुतासिर होकर दुनिया की तीन आला तरीन मईशतों में से एक बनने की ख्वाहिश रखता है। उन्होंने मेलबर्न में भारतीय बिरादरी से भी खिताब किया। ख्वातीन के कौमी कमीशन ने आला सतह की माहिरीन की एक कमेटी तश्कील दी है, जो IVF क्लिनिक के जवाबित से मुतालिक फ्रेमवर्क और उनके सिलसिले में कवानीन का जायजा लेगी। हुकूमत ने इलेक्ट्रॉनिक आलात में इस्तेमाल होने वाली अहम अशिया पर बुनियादी कस्टम ड्यूटी खत्म कर दी है, ताकि मुल्क में उनकी मैनुफैक्चरिंग को फरोग दिया जा सके। ईरान ने अमेरिका पर इल्जाम लगाया है कि उसने बुशहर न्यूक्लियाई बिजली के प्लांट के नजदीक फजाई हमला किया। उसने बहरीन, कुवैत और कतर में अमरीकी बेसिस पर हमले किए। और फीफा आलमी कप में अमरीका के बोस्टन में आज रात पहले क्वार्टर फाइनल में फ्रांस और मराकश आमने सामने होंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के उनके हम मनसब ने मेलबर्न में आज तीसरी ऑस्ट्रेलिया भारत सालाना लीडर समिट में शिरकत की, जिसके दौरान दोनों लीडरों ने वफ्द की सतह की बातचीत की, जिसका मकसद बाहमी ताल्लुकात को मजबूत करना था। भारत बहरुल काहिल में अमनो इस्तेहकाम कायम करने की गरज से दोनों लीडरों ने दिफा और सिक्योरिटी तआवुन के सिलसिले में संगे मील की हैसियत रखने वाली संगे मील की

0: Countrywide. ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम कंट्रीवाइड। इसके अंतर्गत सुनिए भारत में नवाचार, उच्च कौशल, रोजगार और वैश्विक प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने वाले ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं महासचिव डॉक्टर रंजीत मेहता। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं मनोज पाठक।
1: एक ओर भारत दुनिया में सबसे तेज गति से विकसित हो रहा देश है, दूसरी ओर दुनिया के तमाम देशों को भारत तकनीक, प्रतिभा और आगे बढ़ने के लिए उन्नत अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में भी महत्वपूर्ण योगदान कर रहा है, जिससे हमारे श्रोता अपेक्षाकृत थोड़ा सा कम परिचित हैं। और यह है क्षेत्र भारत में वैश्विक क्षमता केंद्र। ये वैश्विक क्षमता केंद्र वस्तुतः क्या है, किस रूप में भारत ही नहीं दुनिया में अपना योगदान दे रहे हैं, और एक ओर प्रतिभा को उचित अवसर मिल रहा है, नए नए नवाचार हो रहे हैं और बड़े पैमाने पर रोजगार का सृजन हो रहा है। वैश्विक प्रतिस्पर्धा में भारत दुनिया के बड़ी बड़ी कंपनियों को आगे बढ़ने में योगदान दे रहा है। कुछ इन्हीं विषयों पर हम आज चर्चा करेंगे अपने इस अंक में। हमारे साथ इस विषय पर चर्चा के लिए आमंत्रित है डॉक्टर रंजीत मेहता, सीईओ और सेक्रेटरी जनरल पीएचडी सीआईआई। स्वागत है आपका डॉक्टर मेहता।
2: बहुत बहुत धन्यवाद।
1: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने आज नई दिल्ली में भारतीय उद्योग परिसंघ की ओर से आयोजित जीसीसी बिजनेस समिट को संबोधित किया।
3: Today, the greatest competitive advantage lies in generating knowledge, applying technology, and solving complex problems. That's what the GCCs are. It's not as if it's a slightly upgraded version of your backroom, back off, or office space, the BOPs. No, this is a completely different domain. It has a lot of technology, no doubt, but the new human intervention, human skills and the human knowledge which gets crystallized, what makes this century going to stand out in the name of GCC?
1: शुरुआत डॉक्टर साहब हम यहीं से करना चाहेंगे कि वैश्विक प्रतिस्पर्धा में हमारी जो वैश्विक क्षमता केंद्र है वो किस रूप में योगदान दे रहे हैं, और उससे भी पहले समझना चाहेंगे आम जुबान में आम लोगों के लिए ये वैश्विक क्षमता केंद्र क्या है और किस रूप में यहाँ प्रतिभा का, तकनीक का संगम हो रहा, बड़ी कंपनियों के लिए हम उत्पाद बना रहे।
2: पिछले अगर दशक में देखें तो भारत एक बहुत ही प्रेफर्ड डेस्टिनेशन हो गया है ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स के लिए। और जो इससे पहले क्या होता था, भारत में सिर्फ बैक ऑफिस लोग रखते थे, उसमें कॉल सेंटर्स ये सब आते थे, लेकिन पिछले दशक में जिस तरीके से भारत में एक आमूलचूल परिवर्तन हुआ है और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और नए नए जो भारत के कार्यक्रम जो कि जैसे मेक इन इंडिया है, स्किल इंडिया है, डिजिटल इंडिया है, सारे नए नए जो कार्यक्रम आए उससे जो है एक भारत जो है एक इवॉल्व हो चुका है हाई वैल्यू स्ट्रेटेजिक सेंटर्स के तौर पे, जिसमें सिर्फ एक बैक ऑफिस ऑपरेशन तक ही ये सीमित नहीं है, बल्कि जिसमें रिसर्च होती है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट होता है, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन है, अब तो एक नया आ गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, साइबर सिक्योरिटी है, इंजीनियरिंग है, फाइनेंस, फिनटेक, लीगल सर्विसेज, ऑल जो ग्लोबल बिजनेस ऑपरेशंस हैं जिसमें जो भी चीजें यूज होती हैं, आज भारत उसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण हब बन चुका है। आज भारत में 1800 से ज्यादा ऐसे ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स हैं, जिसमें कि 20 लाख से अधिक लोगों को आज प्रोफेशनल्स को एम्प्लॉयमेंट मिलता है। अगर आप देखें इसमें, जो कि भारत डेफिनेटली एक टैलेंट कैपिटल भी है, आज अगर आप देखें भारत जो है 65% जो भारत की जनता है वो 35 साल से कम उम्र के लोग हैं, तो भारत एक यंग कंट्री है। एक यंग कंट्री होने के नाते हमारे पास टैलेंट पूल है, बट टैलेंट पूल होने के साथ साथ हमने पिछले करीब दशक में देखा है कि भारत एक स्टार्टअप इकोसिस्टम बन चुका है। आज जो भारत का आप देखिए, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने 2016 में जब स्टार्टअप इंडिया का लॉन्च हुआ था तब भारत में सिर्फ करीब 300-400 रजिस्टर्ड स्टार्टअप थे, लेकिन आज जब हमें बात कर रहे हैं 1.5 लाख से ज्यादा रजिस्टर्ड स्टार्टअप जो है भारत के अंदर है, और भारत जो है दुनिया का थर्ड लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम बन चुका है। ये इसलिए बहुत जरूरी है क्योंकि जब आप इनोवेशन की बात करते हैं, इनोवेशन कैपिटल बनाने की बात करते हैं, क्योंकि टैलेंट कैपिटल तो है ही भारत विश्व का, लेकिन एक इनोवेशन कैपिटल बनाने की दिशा में भी भारत जो है आगे बढ़ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से जो ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स बनने जा रहे हैं, इसमें जो है आगे चल के मैं समझता हूँ आगे चल के सिर्फ एक कॉस्ट आर्बिट्रेज, क्या कॉस्ट के बेसिस पे कि भारत में लेबर सस्ती है, इस बेसिस पे ही आप अपना एक कॉम्पिटिटिव जो एडवांटेज है उसको आप नहीं ले सकते। आगे चलने के लिए हमें एक वर्ल्ड क्लास टैलेंट की जरूरत है, और उसमें कितना हम इनोवेशन करते हैं, कितना हम उसको ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस को इसमें इंटीग्रेट करते हैं, इस पे डिपेंड करेगा। और जब हम एक ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर बनाने की बात कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ उसके जो तीन मुख्य पिलर होंगे ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर के। पहला पिलर मैं समझता हूँ एक स्किल, कि क्या हमारे पास स्किल सेट्स हैं आज भारत में। आप टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से बदल रही है, आप देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ चुका है, जेनरेटिव AI आ चुका है, क्लाउड कंप्यूटिंग है, रोबोटिक्स है, सेमीकंडक्टर है, इस साइड डेटा एनालिटिक्स है, साइबर सिक्योरिटी और सस्टेनेबिलिटी भी ऐसी एक नया एक स्टेप आ चुका है जिससे जो है हर इंडस्ट्री अपना ट्रांसफॉर्म हो रही है, एक चर्निंग हो रही है इंडस्ट्री में, क्योंकि भारत ने ऑलरेडी 2070 तक नेट जीरो होने का अपना एक कमिटमेंट कर चुके हैं। अगर आप लंबी दिशा में अगर आप देखना चाहते हैं, तो उसमें ट्रेडिशनल जो एजुकेशन है जो हम करते आ रहे हैं वही सफिशियंट नहीं होगा, बल्कि इस दिशा में हमें अपने एजुकेशन को भी ले जाना है। तो जिससे कि भारत में एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी ऑलरेडी भारत की आ चुकी है, भारत के अंदर इकोसिस्टम तैयार करना है जिसमें कि कंटिन्यूअस लर्निंग हो, जहां पे कि इंडस्ट्री, एकेडमिया, गवर्नमेंट सब साथ मिलके

0: जो है, जो हमारी वर्क फोर्स है उसको जो है हमें फ्यूचर रेडी बनाना है।
1: श्रोताओं, देश की राजधानी दिल्ली में आज भारतीय उद्योग परिसंघ की ओर से एक महत्वपूर्ण सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर केंद्र कई सारी बातों पर चर्चा हुई, बहुत सारे विचार रखे गए। और सबसे बेहतर हमारे विशेषज्ञ ने जो कहा कि एक ओर शिक्षा, प्रतिभा, कौशल, दूसरी ओर उद्योग, और तीसरी ओर देश की नीतियां इस दिशा में हो कि हम वस्तुतः दुनिया को दिशा दिखा सकें और तीनों का एकीकरण कर सकें। इस अवसर पर सम्मेलन को संबोधित करते हुए इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव ने कहा,
2: What is it that AI can do to enhance productivity, enhance efficiency and effectiveness across a range of sectors? How is it that India can adapt AI and what is it that India can contribute in this space? And which is why the thought was that India really needs to become the application and AI-based solution capital of the world and the way in which we can actually roll out using our talent. What is the way in which we roll out AI for the rest of the world? Today, one of the things that many people, many experts do comment is that while there's a lot of investment taking place in building out data centers, in, you know, the chips that need to be done for this, the high bandwidth memory that needs to work in the data centers, on the infrastructure side, there's a lot of effort which is going on into building the models. But ultimately, all these are just the infrastructure piece of the play. What happens with what actually gets deployed at the enterprise level and at various levels? And the deployment of AI in enterprises is still lagging across the world, not just in India, but across the world. And that is truly where I think GCCs in India will come in and play that critical role.
1: डॉक्टर मेहता, यहाँ से दिशाएं स्पष्ट होनी शुरू हो रही हैं कि हमारा भविष्य क्या है और किस रूप में इसे कार्यान्वित करना है। यहाँ पर हमारा सवाल ये होगा कि जो लक्ष्य हम सामने रख रहे हैं कि उच्च कौशल और तकनीक का जो वास्तविक उत्पाद है एआई के ऐप के रूप में, वह किस रूप में पूरी क्षमता के साथ हम दुनिया के सामने रख सकेंगे।
0: अभी सेक्रेटरी ने भी कहा कि कैसे हम स्किल सेट्स को, यहाँ पे सिर्फ बीपीओ जॉब्स, हमें बीपीओ जॉब के लिए ही नहीं काम करना है, बल्कि जो ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स बन रहे हैं उसमें हमें हायर लेवल जॉब्स के लिए जो है अपने आप को तैयार करना है। तो उसमें जो पहला पिलर मैंने बताया स्किल है, और जो सेकेंड पिलर है वो होगा इनोवेशन। क्योंकि आप जो नेक्स्ट लेवल के जीसीसी आएंगे वो सिर्फ यहाँ पे भारत में सिर्फ ग्लोबल मैंडेट को सिर्फ एग्जीक्यूट करने के लिए नहीं होंगे, बल्कि हमें एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्रिएट करनी पड़ेगी, इनोवेशन का हब बनाना पड़ेगा, नई नई टेक्नोलॉजीज पे काम करना है, नई टेक्नोलॉजीज डेवलप करनी पड़ेंगी, और उसके लिए हमें एक प्रोडक्ट हब बनाना पड़ेगा जिसमें कि हम विश्व के लिए इसमें प्रोडक्ट को बना सकें। जैसे कि मेक इन इंडिया हमारा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव है, जो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इसको लॉन्च किया था आज से 10 साल पहले, उसमें कई सारी प्रोग्रेस हुई है। और क्योंकि इसमें सबसे बड़ी बात है, इंडिया के पास एक बहुत ही यूनिक टैलेंट है। आप अगर देखें तो साइंटिफिक टैलेंट इंडिया में सबसे ज्यादा है। आप देखिए जो हमारी एंटरप्रेन्योरियल एनर्जी है, जो प्रोवेस है, आपने देखा कि किस तरीके से कोविड के टाइम में भारत के एंटरप्राइजेस ने पूरी दुनिया में कैसे काम किया। भारत जो है एक फार्मा हब बन गया था कोविड के टाइम में, कैसे नई वैक्सीन हमने जनरेट की। तो एंटरप्रेन्योरियल एनर्जी हमारे यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत हमारा एक स्ट्रेंथ है। और तीसरा जो हमारा स्ट्रेंथ है इनोवेशन के लिए वो है हमारा स्टार्टअप इकोसिस्टम, क्योंकि हमारा स्टार्टअप इकोसिस्टम बहुत ही काफी स्ट्रांग हो चुका है। आज हमारे देश में नए नए जो बच्चे हैं 18 साल, 20 साल, 30 साल से कम उम्र के जो युवा हैं, वो भी आपने देखा यूनिकॉर्न का स्टेटस ले चुके हैं। ऐसी ऐसी कंपनी देश में अभी आई है जिसमें कि 1.5 साल, 2 साल के अंदर वो यूनिकॉर्न बन चुके हैं। यूनिकॉर्न वो कंपनी होती है जिसका वैल्यूएशन $1 बिलियन करीब, आज के अगर टर्म में देखें तो करीब 10,000 करोड़ से ऊपर जिसका वैल्यूएशन है, वो एक यूनिकॉर्न मानी जाती है कंपनी। तो ये हमारे देश में एक इनोवेशन का जो एक कल्चर बन चुका है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें फर्दर इसको स्ट्रॉन्ग करना है, इंडस्ट्री, एकेडमिया और गवर्नमेंट का कोऑर्डिनेशन करके एक रिसर्च इंस्टीट्यूशन के साथ एक्सीलरेट करना है इनोवेशन को। तभी हम जो यूनिवर्सिटीज में टेक्नोलॉजी बनाई जाएगी उसको कैसे हम कॉमर्शियली उसको वायबल बनाएं, इस पे हमें काम करना है, जिससे कि जो विश्व की समस्याएं हैं तो उसको हम भारत में करें, टेक्नोलॉजी डेवलप करके उसको हम कैसे सॉल्यूशन निकालें। जो थर्ड पिलर है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पिलर है, वो है ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस। अब ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस कैसे आएगी? सबसे पहले हमारे यहाँ वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट, जो कि बहुत कुछ हो रहा है। आज अगर आप रोड की बात करें, भारत जो है विश्व का लार्जेस्ट रोड इंफ्रास्ट्रक्चर आज बन चुका है। तो इसमें ग्लोबल जो इन्वेस्टर्स हैं भारत की तरफ आ रहे हैं, क्योंकि हमारी पॉलिसीज स्टेबल हैं और हमारा जो एक पॉलिटिकल सिस्टम है बहुत उसमें स्टेबिलिटी है, और हमारे पास आज एक वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग तैयार कर रहे हैं, उसमें बहुत कुछ हो चुका है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में इतने सारे काम हो रहे हैं, और जो भारत का एक रिफॉर्म का जो मुहिम चली है वो बिल्कुल आगे चलती जा रही है। और डिजिटल कनेक्टिविटी की बात करें, जिसमें कि 1.4 बिलियन 140 करोड़ के देश में 100 करोड़ मोबाइल से वो लोग कनेक्टेड हैं, तो डिजिटल कनेक्टिविटी हमारे गांव तक है, लास्ट माइल तक है। ग्लोबली कॉम्पिटिटिव जो हम बनने की कोशिश कर रहे हैं, इन्हीं सब चीजों से होता है। और इंडिया ने कई ऐसे रिमार्केबल इनिशिएटिव लिए हैं, जैसे कि डिजिटल इंडिया। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इसमें समय से पहले ही इन सब चीजों का ऐलान किया था, और आज उसमें कई सारी प्रोग्रेस हो चुकी है। जैसे डिजिटल इंडिया है, स्टार्टअप इंडिया है, स्किल इंडिया है, मेक इन इंडिया है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, ये जो सारे रिफॉर्म्स हैं, इससे जो है हमारे जो ग्लोबल इन्वेस्टर्स इंडिया में आ रहे हैं उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। आर्बिट्रेशन के फील्ड में, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के फील्ड में हमने काम किए हैं। इंडिया जो है अपने आप को एक वर्ल्ड का फास्टेस्ट ग्रोइंग इनोवेशन इकोसिस्टम बनने की तरफ इसमें काम कर रहा है।
1: डॉक्टर मेहता, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
0: बहुत बहुत धन्यवाद।
3: अभी आप सुन रहे थे भारत में नवाचार, उच्च कौशल रोजगार और वैश्विक प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने वाले ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं महासचिव डॉक्टर रंजीत मेहता। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे मनोज पाठक। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है AIRNSDtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
4: Countrywide.

0: उत्तर प्रदेश के जनपद बिजनौर की तहसील चांदपुर के उत्तर में स्थित है गांव नायक नंगला। ये वही गांव है जो हिंदी साहित्य के विकास काल के द्विवेदी युग में काव्य कुटीर के रूप में जाना जाता रहा है। संस्कृत, उर्दू, अरबी, हिंदी, मराठी और बंगला भाषाओं के ज्ञाता पंडित पद्म सिंह शर्मा की ये जन्मस्थली है।
1: वो पंडित पद्म सिंह शर्मा जिन्होंने बिहारी की सरसई का संजीवन भाष्य एवं तुलनात्मक अध्ययन कर मंगला प्रसाद पारितोषिक प्राप्त किया था। एक अभिनंदन समारोह में कविवर पंडित नाथुराम शंकर शर्मा ने कहा था,
2: पाकर इष्टादर्श भाषा को वाचक वृंद प्रसन्न हुआ, माना कौरव रत्नाकर ने रंजन रत्न प्रदान किया।
3: आहा, किसी भी कवि के लिए संपूर्ण प्राकृतिक दृश्य। क्यों लालाराम जी,
4: जी
3: कैसा लग रहा है भाई? मैं तो यहां का सुख पहले भी भोग चुका हूं।
4: स्वर्ग सा सुंदर। आहा, पंडित राम स्वरूप जी के प्रणयानुरोध को स्वीकार करना हमारे लिए सौभाग्य की बात रही है।
3: बुलंद शहर में आहार घाट का ये एकांत स्थान, भागीरथी का ये पावन तट, बिहारी की सत्सई के संजीवन भाष्य के लिए इससे अच्छा स्थान और कहाँ होगा?
4: आज एक विशेष तिथि है जो अमर हो जाएगी। बिहारी की सत्सई पर कितनी भी टीकाएं क्यों न हुई हों, परंतु आपसे सुगढ़ व्याख्या भला कौन कर सकता है?
3: रलाराम जी, आप साथ हैं तो ईश्वर ने चाहा तो सब कुछ अच्छा ही होगा।
4: मेरा अहोभाग्य, ईश्वर ने आपका सत्संग करा दिया।
3: आप भी रलाराम जी।
0: पंडित पद्म सिंह शर्मा जी के जीवन और साहित्यिक यात्रा पर प्रकाश डाल रहे हैं साहित्यकार भोलानाथ त्यागी।
5: संपादकाचार्य और समालोचना शिरोमणि पंडित पद्म सिंह शर्मा का जन्म 25 फरवरी सन 1876 को हुआ एक छोटा सा गांव नायक नंगला, जनपद बिजनौर, उत्तर प्रदेश का। उनके पिता का नाम चौधरी उमराव सिंह था, जो अपने समय के बहुत प्रतिष्ठित जमींदार थे, और उनकी प्रारंभिक शिक्षा अपने घर पर ही हुई। और संस्कृत पढ़ने के लिए उनको दो पंडित रखे गए, और उर्दू और फारसी और अरबी के लिए एक मौलवी साहब को अध्यापन के लिए उनके रखा गया था। और काफ़ी कम समय में ही उनकी प्रतिभा इतनी थी, इतनी अधिक थी, कि उन्होंने इतना गहन गंभीर अध्ययन किया कि उसके बाद फिर वो आगे की शिक्षा के लिए इटावा गए, और स्वामी दयानंद सरस्वती के शिष्य पंडित भीमसेन जी वेदाचार्य से अष्टाध्यायी का अध्ययन उन्होंने किया। और उसके पश्चात वो काशी गए, वहाँ पे काशीनाथ पांडे जी से उन्होंने शिक्षा प्राप्त की, और सन 1904 के बाद आपने गुरुकुल कांगड़ी में अध्यापन कार्य आरंभ किया। महात्मा मुंशीराम, जो स्वामी श्रद्धानंद के रूप से जाने गए, उनके साप्ताहिक अखबार सत्यवादी का प्रकाशन भी और संपादन भी उन्होंने किया। बिजनौर के धामपुर निवासी पंडित रुद्रदत्त शर्मा भी उनसे जुड़े रहे, और पंडित पद्म सिंह शर्मा के संपादकीय सहयोग से लेखन की दुनिया में जो एक उस समय चमत्कृत कर देने वाली शैली ने जन्म लिया था, वो आज इतिहास में अपना नाम दर्ज करा चुकी है।
1: पंडित जी बिहारी की सत्से के दोहों का गूढ़ अर्थ खोजते हुए,
6: मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सो, जातन की जाई परे श्याम हरित दुति हो।
4: वाह वाह पंडित जी वाह, क्या मंगलाचरण है! आपने बिहारी का ये दोहा चुनकर जो श्री गणेश किया है भाई, ये अति उत्तम।
3: रलाराम जी, बिहारी कहते हैं वो पुराणादि प्रसिद्ध, पर दुख कातरा भक्त वत्सला, भक्तों के भय हरने में परम प्रवीण श्री राधिका जी, मेरे जन्म मरण की पीड़ा और सांसारिक दुखों को दूर करें। वो राधा जी कैसी हैं जिनकी काया की कांति पड़ने से श्री कृष्ण जी हरे अर्थात परम आनंदित हो जाते हैं।
4: वाह वाह बिहारी वाह।
3: ये बिहारी के दोहे का साधारण सा अर्थ है रलाराम जी,
4: जी
3: मगर अब वो सुनिए जो इस दोहे का गूढ़ भाव है।
4: आप सुनाइए पंडित जी, मैं वही तो सौभाग्य प्राप्त करना चाहता हूँ।
3: हरा होना मुहावरे में खुश होने को कहते हैं, अर्थात जिन राधिका जी के पीत वर्ण की कांति पड़ने से श्री कृष्ण जी का श्याम रंग हरा हो जाता है, जैसे पीला और नीला रंग मिलने से हरा रंग बन जाता है। यह प्रसिद्ध है ललाराम जी।
4: वाह, साहित्य में क्या रासायनिक योग है भाई, आपकी खोज भी निराली है पंडित जी।
3: हरित रंग की झाई या कांति छाया में संताप हरण का सामर्थ्य सर्वाधिक है। फिर जिस रंग से श्याम या तमोगुण भी हरित अर्थात दूसरों को शांति देने वाला बन जाता है, उसका स्वयं भव बाधा हरने में अनुपम सामर्थ्यशाली होना उचित ही है।
4: वाह वाह भाई, मैं तो मतवाला हो गया हूँ पंडित जी।
3: हरित द्युति न चंपक वर्णी राधा की है और न घनश्याम की, किंतु इन दोनों के राधा श्याम के मेल से शांतिप्रद हरित वर्ण की उत्पत्ति है। इस अर्थ से कवि का यह भाव ध्वनित होता है कि शांति शून्य ब्रह्म विरहित शक्ति की उपासना में शांति नहीं है।
4: क्या दर्शन है भाई, वाह।
3: जो भक्त जन शक्ति विशिष्ट ब्रह्म अथवा सगुण के उपासक हैं, वो भव बाधा से छूटकर शांति पाते हैं। अथवा हरा होना और सरस कहना एक ही बात है। जिस पदार्थ में ललाराम जी रस होता है वो ही हरा कहलाता है, जैसे कि हरी टहनी।
4: जी,
3: नागरी दास जी ने भी कहा है, जा में रस सोई हरेओ, यह जानत सब कोय, गौर श्याम द्वय रंग बिन हरेओ बनत नहीं कोई।
4: भाई वाह, कमाल हो गया पंडित जी, कमाल हो गया। बिहारी के इस दोहे में आपने जादू भर दिया है भाई, क्या भाव है।
3: इससे ये भाव प्रकट होता है ललाराम जी कि राधा की छाया से या कृपा से श्री कृष्ण जी रसिक बिहारी कहलाते हैं।
0: डेढ़ महीने में कुल 126 दोहों का ही भाष्य कर पाए थे कि तभी पंडित जी को गुरुकुल महाविद्यालय जाना पड़ा। महाविद्यालय का मुखपत्र भारतोदय मासिक से साप्ताहिक हो गया, संपादन का भार आपको संभालना पड़ा। गुरुकुल महाविद्यालय ज्वालापुर के प्राचार्य डॉक्टर हरिगोपाल शास्त्री बताते हैं,
7: 1904 में ये गुरुकुल कांगड़ी सबसे पहले आए, वहाँ इन्होंने एक पत्रिका का संपादन किया। 1908 में गुरुकुल ज्वालापुर चले आए। गुरुकुल ज्वालापुर से पद्म सिंह जी शर्मा का बहुत पुराना और बड़ा घनिष्ठ संबंध रहा है। यहाँ आकर के उन्होंने परोपकारी पत्रिका का संपादन किया और उसके बाद भारतोदय संस्कृत मासिक पत्रिका जो यहाँ से अनवरत अब भी निकल रही है, सन 1908 से लेकर के और पर्याप्त समय तक उन्होंने नरदेव शास्त्री के साथ मिलकर के इन्होंने उस पत्रिका का संपादन किया। संपादन के साथ साथ अध्यापन में इनकी बहुत अच्छी रुचि थी, तो यहाँ के प्रबंध तंत्र ने उनको अध्यापन का भी कार्य दिया और बहुत काल तक उन्होंने यहाँ अध्यापन कराया। आपके कार्यकाल में महाविद्यालय की चौमुखी उन्नति हुई, यहाँ तक के सन 62 में जब गुरुकुल महाविद्यालय ज्वालापुर में प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू आए, उन्होंने इनकी ख्याति को, इनके गुणग्रामों को अपने कानों से सुना और जब इन्होंने सुना तो उनके नाम पर पंडित पद्म सिंह शर्मा अनुसंधान भवन की स्थापना नेहरू जी ने अपने करकमलों से गुरुकुल महाविद्यालय के इस भव्य सुंदर रमणीय प्रांगण में की। आज भी वो महाविद्यालय उसमें MA कक्षाएं और आयुर्वेद की कक्षाएं आज भी चलती हैं और उनका नाम अमर होकर के आज उस पर अंकित है।
0: आप हिंदी साहित्य सम्मेलन में सभापति भी चुने गए और आपने विभिन्न अधिवेशनों में भाषण भी दिए।
3: हिंदी के कुछ वर्तमान कवियों की महिमा विचित्र है। तुकबंदी का नाम कविता नहीं है, 5 छंदों के अधिकार नहीं, और संस्कृत के अनुष्टुप और आर्य छंदों के अकबरी गज से हिंदी कविता की गर्दन नापी जा रही है। कोई फारसी बहरों की लहरों में पड़ा बह रहा है, कहीं से बंगला पायल, मराठी से अभंग मांगा जा रहा है, मानो हिंदी छंदों का दिवाला निकल गया है। और तो और वेद की ऋचाओं का अनुवाद दादरे और ठुमरी टप्पों में हो रहा है, अजब तमाशा है। उन्हें शौके इबादत भी है और गाने की आदत भी, निकलती है ऋचाएं उनके मुंह से ठुमरियां होकर।
1: पंडित जी एकांतवास छीनने वाले मित्रों से अधिक दुखी रहते थे। दिल्ली प्रवास के दौरान प्रस्तुत है ऐसी ही एक घटना।
3: आइए मित्रवर लक्ष्मण स्वरूप जी, आप कब आए विक्रमपुर से?
4: बस चला आ रहा हूं। आप जैसे विद्वानों का आदर सत्कार करना हम जैसे धनिकों का कर्तव्य है। आपके बारे में सुना तो चला आया आपके पास।
3: आपकी महान कृपा है
4: पंडित जी। मैं चाहता हूं कि आप इस शहर के कोलाहल से दूर कुछ वक्त के लिए हमारे यहां विक्रमपुर चलें।
3: विक्रमपुर?
4: जी हां, वहां एकांत में जब तक आपका मन हो लिखें और जब चाहें विश्राम करें। इससे हमें भी मेहमान नवाजी का मौका मिल जाएगा। ये मेरा आपसे आग्रह है।
3: ठीक है लक्ष्मण स्वरूप जी, आपके आग्रह को मैं नहीं टालूंगा। और इधर कुछ पत्रिकाओं के लिए लेख भी लिखने हैं, चलिए आपके साथ ही सही।
0: पंडित जी ने दिल्ली से विक्रमपुर पहुंचकर रात्रि विश्राम किया और अगले दिन सुबह।
3: ओह, सूरज निकलने को है और मैं हूं कि सोया ही हूं। वाह, इस शीतल हवा ने तो इतना मदमस्त कर दिया कि रात कब बीत गई पता ही नहीं चला।
4: जाग चुके पंडित जी?
3: लक्ष्मण स्वरूप जी,

0: आज ही से काम शुरू कर दें,
1: क्यों भाई?
0: अपने दिमाग को कुछ आराम तो दें, तुरंत ही कष्ट नहीं उठाइएगा।
1: लक्ष्मण स्वरूप जी, लेख लिखने में कोई कष्ट नहीं, बल्कि मुझे आनंद ही मिलता है।
0: अरे वाह, आज का दिन तो विशेष रूप से इस योग्य है कि प्राकृतिक दृश्य का आनंद लिया जाए।
1: उफ।
0: चलिए गाड़ी तैयार कराते हैं, दरिया की सैर होगी, फिर वहां से 2 मील पर दौलतपुर है, आपको वहां के रईस राजा हृदय नारायण सिंह से भी मिलवाएंगे।
1: मिल चुका अवकाश, लिख लिए लेख। हे ईश्वर, मुझे मेरे मित्रों से बचाओ। हाँ लक्ष्मण स्वरूप जी,
2: पंडित जी की कार्यकुशलता और पत्राचार आदि के संबंध में बता रहे हैं वर्धमान महाविद्यालय बिजनौर के हिंदी के पूर्व विभागाध्यक्ष डॉक्टर रामस्वरूप आर्य।
3: पंडित पद्म सिंह शर्मा का सबसे बड़ा योगदान हिंदी साहित्य के क्षेत्र में तुलनात्मक आलोचना का शुभारंभ है। उनके युग में कुछ ऐसी प्रवृत्ति आरंभ हो चुकी थी और मिश्र बंधुओं ने देव और बिहारी नाम से एक प्रसंग चलाया था और उसमें देव को बड़ा और बिहारी को उनसे कुछ छोटा बताया था। पंडित पद्म शर्मा बिहारी के बहुत बड़े प्रशंसक थे और उन्हें ये बात खली और उन्होंने एक बीड़ा उठा लिया कि वे सिद्ध करेंगे कि बिहारी देव से बड़े हैं और ऐसी एक लेख माला लिखी। उनकी भावना से प्रभावित होकर लाला भगवान लीन ने एक पुस्तक ही लिख दी जो बिहारी और देव नाम से थी। एक प्रकार से देव और बिहारी का उत्तर था ये, जिसमें बिहारी को बहुत बढ़ा चढ़ाकर दिखाया गया था। फिर तो उन्होंने अपने जीवन एक मिशन ही बना लिया और बिहारी का सत्सई का संजीवन भाष्य लिखा, जिसमें बिहारी की कविताओं की विशेषता बताते हुए संस्कृत के अनेक ग्रंथ और उर्दू के और फारसी के अनेक उद्धरण देते हुए बिहारी शास्त्र की व्याख्या लिखी और उसमें उन श्लोकों से संस्कृत के और उर्दू फारसी के जो शेर थे उनसे बिहारी की तुलना की और कई स्थलों पर यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि बिहारी ने उन विषयों को छुआ और उनसे बहुत आगे निकल गए। उन्होंने संस्कृत के अनेक श्लोक और बिहारी की तुलना और बिहारी ही नहीं बल्कि रीतकाल के अनेक कवियों की तुलना करते हुए एक प्रकार से सरस्वती जो पत्रिका थी उसमें बहुत से ऐसे उद्धरण प्रस्तुत किए जिसमें कि संस्कृत के और हिंदी के और फारसी के और उर्दू के तुलनात्मक उद्धरण प्रस्तुत किए गए और उसके बाद तो हिंदी में एक धारा ही चल पड़ी और अनेक तुलनात्मक कार्य हुए। तो इस प्रकार से हम उन्हें पद्म जी को हिंदी साहित्य में तुलनात्मक आलोचना का जनक मान सकते हैं। पंडित जी अद्वितीय पत्र लेखक थे और बहुत चुलबुली भाषा में पत्र लिखते थे। जो सामयिक परिस्थितियाँ होती थी उनका भी चित्रण करते थे। उनके पत्र बहुत महत्वपूर्ण हैं। उनके पत्रों का संग्रह पंडित बनारसदास चतुर्वेदी और पंडित हराशंकर शर्मा ने पंडित पद्म सिंह शर्मा के पत्र नाम से किया है जो अपने आप में अनोखा है। चांदपुर में पंडित रामस्वरूप जी थे कोई, जो उनके बड़े आदमी थे, उन्हें वे पत्र लिखा करते थे। उनके समकालीन थे, सहयोगी थे, समवयस्क थे, उनके बहुत से पत्र उनके पास सुरक्षित थे।
4: जब पंडित जी 8 मार्च सन 1915 को इलाहाबाद में उर्दू के महान शायर अकबर इलाहाबादी के घर इशरत मंजिल पहुंचे।
5: अकबर इलाहाबादी साहब जी, मैंने कहा अकबर इलाहाबादी साहब घर पर हैं?
6: अरे भाई कौन साहब है
5: जी? मेरा नाम पद्म सिंह है।
6: माफ कीजिएगा, मालूम न था पंडित जी आप हैं।
5: कोई बात नहीं
6: पंडित जी, अगर कुछ हर्ज न हो, नागावारे खातिर न हो, तो बगल गिर होकर मिल लो।
5: जहीर किस्मत, बगल गिरी क्या, कदम बोसी भी हो जाए तो मुराद पा जाऊं।
6: क्या कहने पंडित जी, आइए बैठिए, तशरीफ रखिए।
5: जी बहुत बहुत शुक्रिया।
6: और सुनाइए, भाभी और बच्चों के क्या हाल है?
5: जी बिल्कुल भगवान की कृपा है,

0: तुमने अपने बड़े लड़के को तालीम कहाँ तक दिलवाई है?
1: संस्कृत पढ़ाई है।
0: वाह, बहुत खूब।
1: क्या सोचने लगे शायर साहब?
0: यार एक शेर याद आ रहा है, मगर याददाश्त इतनी कमजोर है।
1: अरे हुजूर, मैं अर्ज करता हूं,
0: जी
1: बदन
0: सर।
1: में रूह आ जाती है जब बेगोरी रंगत के, बदन में रूह आ जाती है जब बेगोरी रंगत के, तो बे इंग्लिश पढ़े रोटी भी मिल सकती है नेटिव को।
0: क्या कहने क्या कहने, जहन हो तो पंडित जी आप जैसे।
1: अरे हुजूर, आपका शेर है
0: जी। शाबाश शाबाश, मैं अपने इसी शेर को याद कर रहा था जो जहन से उतर गया।
1: जी
0: आप समझ गए कि मैं इसकी तलाश में हूं।
1: जी बिल्कुल,
0: सचमुच इस वक्त आपको इल्हाम हुआ है।
1: इल्हाम तो नहीं, पर हुजूर मुझे आपका हर मौके का चुना हुआ कलाम याद है। मैं ये समझ गया कि इसी की तलाश है आपको, यही शेर इस मौके के लिए मौजू है। खैर शायर साहब, मैं आपसे हिंदी सम्मेलन के जलसे में तशरीफ लाने की गुजारिश करने के लिए आया, अज़राहे करम मना मत कीजिएगा।
0: अरे पंडित जी, आपने तो कश्मकश में डाल दिया।
1: क्यों हुजूर?
0: अरे बीमारी और कमजोरी के सबब कहीं आता जाता नहीं हूं। अक्सर दोस्त अहबाब बुलाना चाहते हैं, जिद करते हैं, पर मैं किसी जलसे में शरीक होता ही नहीं। दिल तो बहुत चाहता है कि आपके जलसे में चलूं, लेकिन फिर और लोगों को मौका मिल जाएगा, वो जगह जगह मुझे घसीट के ले जाएंगे, इसलिए मैं माफी चाहता हूं।
1: कहीं आप इसलिए तो पहलू नहीं बचाते कि हिंदी साहित्य सम्मेलन के जलसे में शरीक होने से उर्दू के हिमायती नाराज हो जाएंगे?
0: नहीं, ये बात नहीं पंडित जी, हिंदी सीखना चाहता हूं, और मेरी खुशकिस्मती है कि आप यहां तशरीफ लाए हैं। आपके साथ रहूं तो हिंदी पढ़ूं।
1: अच्छा, जाने दीजिए, ये बात है तो तशरीफ न ले चलिए, पर कोई पैगाम तो दे दीजिए जो मैं वहां जाकर सुना दूं।
0: अगर पंडित जी यही आपकी जिद है तो लीजिए, कथा आपकी खिदमत में हाजिर है।
1: इरशाद आली।
0: हो सकूं किस तरह हाजिर है, मेरी सेहत खराब।
1: वाह।
0: हो सकूं किस तरह हाजिर है, मेरी सेहत खराब, खाने तन में मेरे बद इंतजामी क्यों ना हो।
1: क्या बात है, वाह।
0: मेरी जानिब से वो लेकिन दिल को रखे मुतमईन।
1: वाह।
0: मेरी जानिब से वो लेकिन दिल को रखे मुतमईन, बुत का जो मद्दाह हो हिंदी का हामी क्यों ना हो।
2: सम्मेलन में पंडित जी ने अकबर का यह संदेश सुनाया तो लोग खूब हंसे। इस तरह हिंदी वालों को अकबर का प्रथम परिचय पंडित जी ने ही कराया था। अकबर इलाहाबादी से संबंधित संस्मरण के विषय में बता रहे हैं श्री विश्वपाल त्यागी।
3: देश की महान विभूतियाँ यहाँ आती रहीं। मुझे एक बार की घटना याद आ रही है, अपने बाबा मुंशी मक्कर सिंह जी से मैं सुना करता था कि पंडित जी ने एक बार अकबर इलाहाबादी साहब से अपने गांव चलने के लिए जब कहा तो खरसा का महीना था, तो हंसे और उन्होंने एक बात कही कि भैया आप ले पड़ जाए अकबर के जिस्म में, पढ़ कर के कोई फूंक दे अप्रैल मई जून।
4: पंडित जी मरणासन थे, लेकिन साहित्य सेवा और समाज सेवा का भाव उनके हृदय में वर्तमान था।
1: बेटे रामनाथ।
5: जी पिताजी।
1: बेटा लगता है मेरा अंतिम समय आ चुका है।
5: ऐसी बात नहीं है पिताजी, अभी तो आपके लिए बहुत से कार्य शेष है।
1: मौत भी भला कुछ देखती है पगले?
5: नहीं पिताजी, ईश्वर बड़ा कारसाज है पिताजी।
1: हाँ।
5: और फिर परिवार तथा आपके साहित्यिक मित्रों की शुभकामनाएं भी तो आपके साथ है ना।
1: आज तो उठा ही नहीं जा रहा रामनाथ। कमबख्त प्लेग ने मेरे छोटे से गांव को अपने शिकंजे में कस लिया।
5: पिताजी आप धैर्य रखे पिताजी, जल्दी ही ये मुसीबत टल जाएगी पिताजी।
1: एक दो पत्र भी लिखने थे, आज तो लगता है जैसे ये शरीर साथ छोड़े जा रहा है। आज तो गांव में किसी की खैर खबर भी नहीं ली।
5: पिताजी आप लेटे रहिए पिताजी, सब ठीक हो जाएगा, आप चिंता क्यों करते हैं।
1: ओ, ओ, ओ, बेटा शरीर में जलन जैसे बढ़ती जा रही, मुंह में खुश्की।
5: क्या हुआ?
1: पानी।
5: क्या हुआ?
1: मुझे पानी चाहिए।
5: अभी लाए पिताजी, आप चिंता ना करें, मैं अभी जा रहा हूं, अभी ला रहा हूं मैं।
1: जलन तो किसी दावा नल की भांति है बेटा। शायर ने क्या खूब कहा है, भूली हुई है डारे हिरनों की चौकड़ी सब, जाए बताओ किस सू दौ लग रही है मन में।
5: पिताजी आराम करिए पिताजी।
1: लग रहा है अब मेरी सामाजिक सेवा भी गई और साहित्य सेवा भी। ईश्वर मेरे प्राण ले ले, मगर मेरे गांव को इस महामारी से निजात दिला दे प्रभु।
5: पिताजी आप निराश मत होइए पिता।
1: आह कायम,
5: आप आराम करिए पिताजी।
1: आह कायम, तुम अमर हो गए और तुम्हारा कलाम भी दुनिया की मुसीबतों से जो दम घुट गया, इसीलिए महदूद से मकाम को छोड़कर कायम चले गए।
2: और इस तरह 7 अप्रैल सन 1932 को पंडित पद्म सिंह शर्मा जी इस नश्वर देह को त्याग कर अमर हो गए।
4: पंडित जी से जुड़ी कुछ यादों को ताजा कर रहे हैं उनके प्रपौत्र श्री सत्येंद्र कुमार त्यागी।
6: प्लेग की बीमारी जब यहाँ फैली तो मुझे खबर मिली, पिताजी ने चिट्ठी लिख दी कि गांव में भयंकर प्लेग फैली हुई है, तो वे उसको पढ़ते के साथ ही गांव में चले आए। दवाई भी देते थे वे, पूरे गाँव में उन्होंने दवाई दी और वो बीमारी प्लेग की उन्हें लग गई। फिर बीमारी नहीं रही गाँव में, उनके मरने के बाद कोई भी आदमी बीमार नहीं हुआ बीमारी से।
2: पंडित जी के संबंध में कुछ विशेष जानकारी दे रहे हैं गुरुकुल महाविद्यालय ज्वालापुर के आचार्य श्री सुशील कुमार त्यागी।
7: महाविद्यालय ज्वालापुर के मुखपत्र भारतोदय में सर्वप्रथम प्रकाशित अपने लेख के विषय में भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने स्वयं परम पूजनीय श्रद्धेवर पद्म सिंह शर्मा को लिखा कि समाज संशोधन वाला लेख आपको इतना पसंद होगा यह मुझे कभी धारणा न थी। यदि इधर भारतोदय कृतार्थ हुआ तो उधर मैं भी कृतार्थ हुआ। राजेंद्र बाबू ने सन 1959 में सार्वजनिक रूप से उस समय भी भारतोदय में लेख प्रकाशित करने की कृतार्थता का प्रकटीकरण उन्मुक्त भाव से किया। जब वे गुरुकुल महाविद्यालय ज्वालापुर के स्वर्ण जयंती समारोह के अवसर पर पधारे थे, वहां उन्होंने न केवल पद्म सिंह शर्मा को अपना सम्मान प्रदर्शित किया अपितु गुरुकुल को भी अपनी मातृ संस्था मानते हुए यह उद्गार प्रकट किए कि इस संस्था के अनन्य सूत्रधार पंडित पद्म सिंह शर्मा ने ही मेरा हिंदी का सबसे पहला लेख यहाँ के मासिक मुखपत्र भारतोदय में प्रकाशित किया था, अतः इस नाते यह शिक्षण संस्था मेरी भी है और मैं इस भूमि में आकर अपने को धन्य अनुभव कर रहा हूँ।
2: पंडित जी के संबंध में विभिन्न साहित्यकारों ने कहा है।
4: प्रसिद्ध साहित्यकार बनारसी दास चतुर्वेदी ने कहा,
2: छोटे से छोटे लेखकों तथा कवियों से लगाकर बड़े से बड़े साहित्य सेवियों को प्रोत्साहन देना मानो शर्मा जी के ही हिस्से में आया था।
4: प्रसिद्ध शिकार कथा लेखक श्री राम शर्मा ने कहा,
2: अपने कष्टों को भूलना और दूसरे के कष्ट को दूर करना, ये स्वभाव उनमें तब तक रहा जब तक खून में गर्मी रही।
4: कथा सम्राट प्रेमचंद ने कहा,
2: हिंदी में आप एक खास शैली के जन्मदाता हैं जिसमें चुलबुलापन है, शेखी है और साथ गांभीर्य भी।
4: तुलनात्मक समीक्षा के जनक और बहुत सी हिंदी विधाओं के आदि आचार्य को हिंदी साहित्य जगत इतनी आसानी से भूल जाएगा ऐसा विश्वास नहीं होता है। गांव में जन्मे संपादकाचार्य पंडित पद्म सिंह शर्मा की स्मृति के लिए साहित्यकारों और सरकार को सृजनात्मक कदम बढ़ाने ही चाहिए।

0: अभी आप सुन रहे थे रूपक, हिंदी साहित्य में तुलनात्मक आलोचना के जनक पंडित पद्म सिंह शर्मा। आलेख तैयार किया था अमन कुमार ने। सूत्रधार थे शैलेंद्र तिवारी और अनीता नेगी। प्रतिभागी कलाकार अकबर इलाहाबादी, राशिद बिजनौरी, रामनाथ रॉबिन कर्माकर, पंडित रलाराम, श्री ब्रिज किशोर सुयाल, लक्ष्मण स्वरूप, डॉक्टर एस के जौहर और पंडित पद्म सिंह शर्मा, पंकज गर्ग। तकनीकी सहयोग धर्मेंद्र सिंह और वीपी सिंह। प्रस्तुति सहयोग श्री इकबाल अहमद और प्रस्तुतकर्ता सुशील त्यागी और अनिल भारती। ये रूपक आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र पर तैयार किया गया।
1: अभी आप सुन रहे थे रूपक, हिंदी साहित्य में तुलनात्मक आलोचना के जनक पंडित पद्म सिंह शर्मा। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 10:30 हुए हैं। प्रस्तुत है पत्रों और व्हाट्सएप मैसेजेस पर आधारित फिल्मी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम आपकी फरमाइश।

कुमार शानू और अलका याग्निक का गाया ये गीत अभी आपने सुना फिल्म बरसात से। इस गीत को संगीत दिया था नदीम श्रवण ने, गीत लिखा था समीर ने, सुनने की फरमाइश की थी हमारे इन सभी श्रोताओं ने। वर्ली मुंबई से ये मैसेज हमें किया था नवाब खान, इरशाद जहान, मास्टर अजहर खान और अजीम खान ने इसी गीत को सुनना चाहते थे। आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरभ शर्मा, साइना शर्मा और निवान शर्मा। मोहल्ला अफगानान शेरकोट से ये मैसेज हमें किया था नदीम बाकी, कलीम बाकी, अलीम बाकी, अजीम बाकी, अदीम बाकी, अब्दुल गनी, अलमीर, जैन, जन्नत ने। और इसी गीत को सुनने की फरमाइश हमें भेजी थी शेरवानी स्कूल गंज डुंडवारा से आफ्ताब अंसारी, रियाज अंसारी, मोहम्मद कैफ, अनवर मास्टर, लुबना अंसारी और आलिया अंसारी ने। और कार्यक्रम में ये मैसेज हमें किया था कस्बा उगेती बदायूं से देवेंद्र कुमार गुप्ता, धीरज गुप्ता, पंकज गुप्ता, प्रिंस कुमार, प्रशांत कुमार और कार्तिकेय गुप्ता ने। इसी गीत को सुनना चाहते थे ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, महराज जहां, आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से। इसी गीत को सुनने के लिए हमें ये मैसेज किया था कवाई सालपुरा जिला बारा राजस्थान से सतीश श्रीवास्तव, श्रीमती प्रेमलता श्रीवास्तव, हिमानी हर्षिता और अभिषेक श्रीवास्तव ने। इसी गीत को सुनना चाहते थे जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी, नजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज रिफाकत, मोहम्मद रिहान, समरीन परवीन और माहिरा नूर। गंज डुंडवारा से शमशूल कमर राही, शाहीन फातिमा, अनु खान, अदनान खान, फैजान खान, आबाद खान, अलीम अंसारी और उस्मान खान। और इसी गीत को सुनना चाहते थे गांव व डाकघर निजामाबाद जिला जिंद हरियाणा से जसबीर सिंह अरोड़ा, जितेंद्र कौर, गुरप्रीत सिंह, लवप्रीत कौर और करमजीत कौर। और इसी गीत को सुनना चाहते थे राहुल नगली से आचार्य सत्यवीर सिंह, अलका चौहान, अक्षत चौहान और भूमिका चौहान। ये मैसेज हमें किया था भोपाल राजस्थान से धर्मेंद्र छीपा, कपिल छीपा, ईशान छीपा और पूजा अहिरवार ने। मोहल्ला हलवाईयान शेरकोट।

बिजनौर से मोहम्मद वक्कार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी परवीन, विटू भैया, सास दरानी और हिना कौसर। इसी गीत को सुनना चाहते थे खेल बाजार पानीपत से नरेश मल्होत्रा, नीटू, लक्ष्य मल्होत्रा, लाडो कोयल मल्होत्रा, पापा जी नानक चंद्र मल्होत्रा, शिवाजी कॉलोनी रोहतक से पीयू सिक्का, कोयल सिक्का और डुग्गू भाविक सिक्का ने। और इसी गीत को सुनने की फरमाइश हमें की थी मरहरा दरवाज़ा एटा से नबी हसन अब्बासी, सहनाज अब्बासी, नवेद हसन अब्बासी, सुहेल हसन अब्बासी, अनम यशफ अब्बासी, रशीद वारसी ने। और इसी गीत को सुनना चाहते थे लाल कुर्ती रुड़की कैंट से राजेश वर्मा, मंजू वर्मा, निशांत वर्मा, कौशिकी वर्मा, दीपाली वर्मा, युवान और आर के राजा। कार्यक्रम का अगला गीत श्रोताओं हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म गोपी किशन से, आवाजें हैं कुमार शानू और पूर्णिमा की, संगीत आनंद मिलंद का है और गीत लिखा है समीर ने। सुनने की फरमाइश भेजी है जैन मंदिर वाली गली कुरावली से राशिद हुसैन अंसारी, नसरीन अंसारी, नौरीन अंसारी, आसना अंसारी और मोहम्मद कैफ अंसारी। इसी गीत को सुनना चाहते हैं जगमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, जे एस नायक, शुभ नायक और समस्त डागला परिवार के सदस्य। इन्होंने ये मैसेज में किया है रेलवे कॉलोनी हनुमानगढ़ जंक्शन राजस्थान से। और इसी गीत को सुनने की फरमाइश हमें भेजी है बिहारी कॉलोन शहादरा कॉलोनी शहादरा दिल्ली से तुलसी मस्किन, वीना मस्किन, आशीष राजा, चैतन्य मस्किन, मेगा मस्किन चंडीगढ़ से, राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशु रिधान खुराना ने। और इसी गीत को सुनना चाहते हैं यवतमाल विदर्भ महाराष्ट्र से संतोष खड से और विनोद खड से। ये मैसेज हमें मिला है वार्ड नंबर 1 पोफाली जिला यवतमाल से, भेजने वाले हैं जयराम सिंघड़कर, दिशांत कुमार और अर्पिता जी। इसी गीत को सुनना चाहते हैं मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू सुरेश, राजपाल पंकज, काजल सीमा, मानवी तन्वी, लक्ष्य सोनी, मोहिनी ऋतिक और बलवीर सिंह। इन्होंने ये मैसेज किया है जिला मुरादाबाद ग्राम दुबलापुर उत्तर प्रदेश से। और ये अगला मैसेज हम पढ़ रहे हैं जो आया है अनारकली बाजार जगराव से, सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गाव्या मल्होत्रा, भाई सुच्चा सिंह पाठक का। और इसी गीत को सुनना चाहते हैं रंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा, नई बस्ती गंज डुंडवारा से मोहम्मद यासीन हाशमी, नाजमा बेगम हाशमी, मोहम्मद तौफीक तौसीफ हाशमी, मोहम्मद तैमूर हाशमी और कलीम अंसारी। ये मैसेज हमें मिला है कुम्हार हेड़ा सहारनपुर से, भेजा है सैयद मसरूर, साइना हसन, अक्सा, नाजिया, आफिया, इब्राहिम, सद्दाम और आदिब ने। और इसी गीत को सुनने की फरमाइश की है कोटवा नारायणपुर बाबा बट्टी बलिया से, ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय, दुबिहा निवेदा जिला गाजीपुर से प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय और प्रियांजल राय ने। इसी गीत को सुनना चाहते हैं बाजार रोड मुसिंगापुर से जाकिर मंसूरी, कमरून निशा, साबिस्सा मोहम्मद नसीब, पलक लुबना और यश मंसूरी। और ये गीत के लिए हमें फरमाइश भेजी है गांव फरासी हिसार से राजकुमार डुड्डी, प्रमोद कुमार डुड्डी, पुष्पेंद्र कुमार डुड्डी ने। और इसी गीत को सुनना चाहते हैं छत्रपति शांभाजी नगर से राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश और श्रीमती शीतल राजेश। लीजिए पेश है आप सभी श्रोताओं की पसंद पर कार्यक्रम का ये अगला गीत फिल्म गोपी किशन से।

गोपी किशन का ये गीत सुना अभी आपने कुमार शानू और पूर्णिमा की युगल आवाजों में। कार्यक्रम का अगला गीत हमारे इन सभी श्रोताओं की पसंद पर ग्राम गदरौना से मदनगिरी, विमलागिरी, बलरामगिरी, भारत

गिरी, सोनिया गिरी, गोविंद गिरी, सिमरन गिरी, वंशिका गिरी, रमन गिरी और दिव्या गिरी। इसी गीत को सुनने के लिए हमें मैसेज किया है पटेल नगर मलोट से डॉक्टर रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी जाजोरिया, गगनदीप जाजोरिया, आरजू जाजोरिया और गुड्डू ने। इसी गीत को सुनना चाहते हैं जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल प्रिया दिशानी और नमित आहूजा। इसी गीत को सुनना चाहते हैं धनोरी तेली वाला से निसार सलमानी, नौशाद सलमानी, बेबी आलिया और अयान बाबू। और ये कार्यक्रम में अगला मैसेज हम पढ़ रहे हैं जो आया है गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा, जसवीर जस्सी, सीता और गीता का। इसी गीत को सुनना चाहते हैं चंडीगढ़ से सतीश अनेजा और विमला अनेजा। मोताला महाराष्ट्र से ये मैसेज हमें किया है विजय सुरलकर, रतन माला, आरती गौरी और ओम कुमार सुरलकर ने। चकला बाजार समाना शहर पंजाब से पप्पू राजा खुशदिल, संगीता रानी जिंदल, पप्पू महक खुशदिल, सुनीता रानी जिंदल, आरजू पप्पू, हसमुख लाल जिंदल, बुलबुल शक्ति खुशदिल, संजीव बंटी जिंदल और इनका पूरा परिवार भी यही गीत सुनना चाहता है। और ये कार्यक्रम में हमें अगला मैसेज मिला है जो आया है लोहारू हरियाणा से भेजने वाले हैं बिल्लू सिंह चिंडालिया, लक्ष्मी देवी, सुरेंद्र कुमार, बरखा, योगेंद्र कुमार, नरेंद्र कुमार। और इसी गीत को सुनने की फरमाइश हमें की है पहाड़गंज मुल्तानी टांडा से अनिल मोहन, उषा मोहन, टिल्लू नायक और मधु नायक ने। इसी गीत को सुनना चाहते हैं जनकपुरी सहारनपुर से जॉन डिकैस्ट्रो, रोजिस डिकैस्ट्रो, पर्ल और विलिस डिकैस्ट्रो। इसी गीत को सुनने के लिए हमें ये मैसेज मिला है ग्राम बग बुड़वा पथरिया छत्तीसगढ़ से नरेन नेताम और कुसुम नेताम का। इसी गीत को सुनने की फरमाइश हमें की है टोरोवाल नवाशहर पंजाब से गगनदीप थादी, तृप्ता कुमार, डॉक्टर प्रियंका थादी, डॉक्टर प्रशांत थादी, डॉक्टर प्रियम, बेबी वामिका और वाणी का। इसी गीत को सुनना चाहते हैं पद्मा टॉकीज नेपनगन मध्य प्रदेश से सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल शाह, नीति शाह, सुरभि शाह, अश्विन शाह, मंगलाबेन शाह और राजेंद्र जी शाह का। लीजिए पेश है आप सभी श्रोताओं की पसंद पर कार्यक्रम का अगला दी गीत शान और अलका याग्निक की युगल आवाजों में फिल्म तलाश से। संगीत संजीव दर्शन का है और गीत लिखा है समीर ने।

आपने सुना फिल्म तलाश का ये गीत जिसको गाया था शान और अलका याग्निक ने, और इसी गीत के लिए ये मिली जुली फरमाइश हमें मिली थी। संदीप मक्कड़, ज्योति मक्कड़, मन्नत मक्कड़, भरत मक्कड़, कमल सहानी की, इन्होंने ये मैसेज हमें भेजा था।

0: वाला चौक गोराया जालंधर से। और इसी गीत को सुनना चाहते थे राज पैलेस मऊनाथ भंजन उत्तर प्रदेश से राजेश कुमार वर्मा, प्रीति वर्मा, कार्तिक आर्यन वर्मा, शिव मंदिर हकीकतपुरा मऊ से मुन्ना भाई स्वर्णकार, पिंकी स्वर्णकार, आर्यन कृष्णा और पीहू स्वर्णकार। इसी गीत को सुनने की फरमाइश हमें की थी। मध्य प्रदेश छिंदवाड़ा बेरडी से नाना लामसे, मीना, तेजस, जय और हर्षिता ने। और इसी गीत को सुनना चाहते थे हमारे ये सभी श्रोता। लक्सर रोड गांव सुहेड़ी कस्बा पुकराजी जिला मुजफ्फरनगर से मोहम्मद जाबिर, मोहम्मद हुजैफा, मोहम्मद शहनवाज, मोहम्मद शाहरुख, मोहम्मद शोहेब, कहकशा और इनका पूरा परिवार भी यही गीत सुनना चाहता था। जलालाबाद वेस्ट से ये गीत सुनना चाहा था सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल, प्रिया दिशानी और नमित आहूजा ने। और ये मैसेज हमें मिला था मोहल्ला बरादरी महमूद खान रामपुर से। भेजने वाले थे भाई रफत साहब, सईद भाई मंसूरी, रसिद भाई मंसूरी, असद भाई बहन, फिरोजा मुस्कान, अफसर अली और नगमा नाज मंसूरी का। और इसी गीत को सुनने के लिए ये अंतिम मैसेज हम पढ़ रहे हैं। इसी गीत को सुनना चाहा था जिला मुरादाबाद ग्राम धूलापुर उत्तर प्रदेश से मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इसरार और नरगिस खातून ने। इसी के साथ कार्यक्रम आपकी फरमाइश अब यहीं पर संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 11 बजे हैं, अब आप समाचार सुनेंगे।
1: प्रशांत कुमार। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त घोषणा पत्र को स्वीकार किया। ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम की आपूर्ति के लिए भी समझौता हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज के साथ आज मेलबर्न में तीसरी ऑस्ट्रेलिया भारत वार्षिक शिखर वार्ता हुई। इस दौरान दोनों नेताओं ने प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता में द्विपक्षीय संबंधों को और सशक्त बनाने पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों में आए परिवर्तनकारी महत्वपूर्ण बदलाव का स्वागत करते हुए क्षेत्रीय स्थिरता, ऊर्जा सुरक्षा और प्रौद्योगिकी नवाचार के लिए व्यापक सहयोग ढांचे को अंतिम रूप दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि दोनों देशों ने यूरेनियम आपूर्ति और महत्वपूर्ण खनिज गलियारे पर ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए।
2: पीएम सूर्यघर योजना को सपोर्ट करने के लिए हमने मिलकर गुजरात में रूफटॉप सोलर ट्रेनिंग एकेडमी बनाई है। यह एकेडमी अनेक महिलाओं और युवाओं की कैपेसिटी बिल्डिंग में योगदान देगी। न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में आज हमने एक महत्वपूर्ण समझौता किया है। इससे ऑस्ट्रेलिया से भारत को यूरेनियम सप्लाई का मार्ग खुलेगा और हमारे क्लीन एनर्जी के उद्देश्यों को नई ताकत मिलेगी।
1: बाद में प्रधानमंत्री मोदी ने आज ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में मेलबर्न मीट्स मोदी कार्यक्रम में कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया गठबंधन नई ऊंचाइयों पर पहुंच गया है। 12 वर्षों में ऑस्ट्रेलिया की अपनी तीसरी यात्रा में प्रधानमंत्री ने 10 लाख से अधिक प्रवासी भारतीयों को द्विपक्षीय मित्रता का आधार स्तंभ बताया। श्री मोदी ने कहा है कि 21वीं सदी का भारत एक विकसित राष्ट्र बनने के लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने आज कहा कि तीसरा वार्षिक भारत ऑस्ट्रेलिया शिखर सम्मेलन ऊर्जा सुरक्षा के क्षेत्र में भारत के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रेलिया की बेहद सफल राजकीय यात्रा का समापन हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल ऑस्ट्रेलिया के विपक्ष के नेता एंगस टिलर से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज के साथ प्रतिष्ठित मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड MCG का भी दौरा करेंगे। दोनों नेता इस अवसर पर ऐतिहासिक भारत ऑस्ट्रेलिया खेल सहयोग रोड मैप का अनावरण भी करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में होने वाले राज्यसभा उपचुनाव के लिए सुखेंदु शेखर रॉय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिक बराइक को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। इन तीनों सीटों के लिए 24 जुलाई को मतदान होगा। ये तीनों नेता हाल ही में अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। केंद्र सरकार जल्द ही फ्लेक्स फ्यूल वाहनों के लिए E85 ईंधन शुरू करने की योजना बना रही है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह

0: ने कहा है कि इसकी कीमत E20 पेट्रोल से लगभग 20 रुपए प्रति लीटर कम होगी। एक निजी समाचार चैनल को दिए साक्षात्कार में श्री पुरी ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य उपभोक्ताओं को आर्थिक राहत देना और सरकार के एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम को बढ़ावा देना है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आज राज्य में समान नागरिक संहिता UCC लागू करने के लिए रूपरेखा तैयार करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना देसाई की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय समिति के गठन की घोषणा की। ईरान ने अमेरिका पर आज बुशहर परमाणु ऊर्जा संयंत्र के पास हवाई हमला करने का आरोप लगाया। ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी ने बताया कि ये कार्रवाई उस पर हमले समाप्त करने की अमेरिकी सेना की घोषणा के कुछ घंटों बाद हुई। अमेरिकी केंद्रीय कमान ने इसकी पुष्टि नहीं की है। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स में लिंडा नोस्कोवा ने फाइनल में जगह बना ली है। सेमीफाइनल में आज नोस्कोवा ने मार्ता कोस्तियुक को 6-4, 6-4 से हराया। महिला सिंगल्स का फाइनल मुकाबला 11 जुलाई को लिंडा नोस्कोवा और कैरोलिना मुचोवा के बीच खेला जाएगा। वहीं पुरुष सिंगल्स के पहले सेमीफाइनल में कल आर्थर फेरी का मुकाबला अलेक्जेंडर ज्वेरेव से और मौजूदा चैंपियन यानिक सिनर का सामना नोवाक जोकोविच से होगा। भारत और इंग्लैंड के बीच चौथा T20 क्रिकेट मुकाबला ब्रिस्टल में जारी है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 13 ओवर में 3 विकेट पर 94 रन बना लिए हैं। 5 मैचों की श्रृंखला में इंग्लैंड 2-0 से आगे है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल मुकाबले आज से शुरू हो रहे हैं। पहले मुकाबले में आज रात 1:30 बजे बोस्टन में फ्रांस का सामना मोरक्को से होगा। वहीं दूसरे क्वार्टर फाइनल मुकाबले में कल देर रात स्पेन और बेल्जियम आमने सामने होंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani. The news read by Abhineet Shukla. India and Australia today adopted a new joint declaration on defense and security cooperation and a maritime security collaboration roadmap to promote a free, open and inclusive Indo-Pacific. The deals were signed following delegation-level talks between Prime Minister Narendra Modi and his Australian counterpart Anthony Albanese during the 3rd Australia-India Annual Leaders Summit in Melbourne. In a joint press statement after the talks, Prime Minister Modi said, "The Indo-Pacific is not just a meeting point of two oceans, but showcases the shared aspirations of like-minded democracies like India and Australia." Later briefing the media, Foreign Secretary Vikram Misri said, "Both the sides finalized the administrative arrangement for a long-term supply of Australian uranium to India. The agreement is expected to strengthen India's clean energy program and support its net zero goals." Prime Minister Narendra Modi today said, "India's aspiration to become one of the world's top three economies at the earliest is driven by the motto of grow more, achieve more." Mr. Modi was addressing the Indian community at the Marvel Stadium in Melbourne.
2: 21वीं सदी का भारत आज विकसित होने के लक्ष्य पर काम कर रहा है। ये वो भारत है जो कहता है ग्रो मोर अचीव मोर। हम 140 करोड़ एस्पिरेशन से भरे राष्ट्र है। हम अधीर है, बेसब्र है। हम दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती इकोनॉमी है, लेकिन हम जल्द से जल्द दुनिया की टॉप थ्री इकोनॉमी बनना चाहते हैं।
1: Speaking at the Melbourne Meets Modi event, Prime Minister Modi also referred to Operation Sindoor. He said, "The operation demonstrated the effectiveness of India's homegrown defense systems in carrying out anti-terror operations." Mr. Modi said, "The India-Australia partnership has reached new heights, driven by shared values, strong people-to-people ties, and expanding cooperation across key sectors." He described the 1 million strong Indian diaspora as a vital pillar of bilateral relations. Speaking on the occasion, Australian Prime Minister Anthony Albanese described the Indian community as a living bridge between the two countries. Union Home Minister Amit Shah stated that a secure border, a prosperous border region and a vigilant society together can make the country secure. The Home Minister said this while addressing a conference of superintendents of police, that is SPs, from border districts in New Delhi today. Mr. Shah said, "The government is creating a robust system to make the country completely infiltration-free." He noted that the Narendra Modi-led government has scientifically increased border infrastructure by 400%. Referring to the Vibrant Villages program, the Home Minister said, that under the initiative, efforts are being made to prevent migration, create jobs and ensure 100% implementation of government welfare schemes. Mr. Shah said, the government is fencing the over 1,600-kilometer long India-Myanmar border at a cost of 31,000 crore rupees. He stressed the importance of ensuring that information on demographic changes caused by abnormal factors in border areas is communicated from the grassroots to the highest level at the earliest. The Home Minister stated that the government's objectives are to prevent proxy war, illegal infiltration, radicalization, narcotics trafficking, smuggling, drone-related threats, cybercrime, organized crime and demographic changes, and to make border areas more livable. External Affairs Minister Dr. H. Jaishankar has arrived in Oman after concluding his visit to Kuwait. Upon arrival, the External Affairs Minister was received by Director General, Foreign Ministry of Oman, Sheikh Ahmed Al Maskari. Dr. Jaishankar is currently on an 11-day trip to Qatar, Bahrain, Kuwait, Oman, New York and Brussels. The National Commission for Women, that is NCW, to reconstituted a high-level expert committee amid growing concerns over irregularities in the rapidly expanding assisted reproductive technology, that is ART, sector. The panel will undertake a comprehensive review of the regulatory framework and concerned laws governing IVF clinics, ART centers and gamete banks with a focus on protecting the reproductive rights, dignity and safety of women. Former judge of the Delhi High Court, Justice Asha Menon, will chair the expert committee. And that is the end of this news bulletin.
3: मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 11:10 हो चुके हैं। हमारे संध्याकालीन सभा के प्रसारण अब यहीं पर संपन्न होते हैं। प्रातःकालीन सभा में सवेरे 5:55 पर आपसे पुनः भेंट होगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय हिंद।